साथियों, हम अपनी जिंदगी में ढेरों सपनों को जीते हैं, ढेरों सपने देखते हैं। हमारे दिलों में अलग अलग इंसानों के रूप में, अलग अलग दिलों में एक नई चाह होती है, एक नया सपना होता है जिसको बुनने के लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी वो सपने हमसे दूर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी किसी ने खूब कहा है कि सपने अगर सच्चे हों तो राह मिल ही जाती है, अंधेरी रात के बाद सुबह खिल ही जाती है। जो चलते रहते हैं सच्चे विश्वास के साथ, उनके कदमों को मंजिल मिल ही जाती है।

कभी कभी राह में जब हम भटक जाते हैं ना, तो अपनी मंजिल से दूर हो जाते हैं, लेकिन वो मंजिल हमें थोड़ी सी कोशिश करने के बाद मिल ही जाती है।

साथियों, दुनिया निभाते निभाते, दुनियादारी को निभाते निभाते हमारे बचपन की मासूमियत और निश्चलता ना जाने कहाँ खो जाती है। कभी कभी लगता है वो बचपन ही भला था, जिसमें कोई चिंता नहीं थी, कोई बेफिक्री नहीं थी। कम से कम हम बिना किसी रुकावट के, बिना किसी चिंता के हंस तो सकते थे। दुनियादारी निभाते निभाते, अपने कामों में व्यस्त रहते रहते हम खुद हंसना भूल जाते हैं। क्या ख्याल है? चले थोड़ी देर के लिए उसी बस बचपन की यादों की ओर, मासूमियत की ओर।

भोर सुहानी से फिलहाल रूपा विदा लेती है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 मई 2026। सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब आपको आज के कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 6:10 पर आप सुन सकेंगे भक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम अर्पण, जिसे लेकर आएंगे शीतल। 6:44 पर श्री रामचरित मानस गान, जिसमें आज आप सुनेंगे बालकांड भाग 63। 6:55 पर आप सुन सकेंगे संस्कृत, हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार। 7:10 पर कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात।

7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज सवेरे। 8 बजे से आप सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार।

8:45 से आप सुनेंगे म्यूजिक दिल लगी। 11:10 का समय रहेगा आज के मेहमान कार्यक्रम का, जिसमें आज के मेहमान हैं श्री राम सिंह बौद्ध और उनसे बातचीत करेंगी रश्मि कुकरेति। और अब वक्त है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की

0: आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूरजुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden, marking a historic milestone in the deepening alliance between New Delhi and Stockholm. Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson to review the entire gamut of bilateral relations and explore new avenues of cooperation to enhance bilateral trade as well as collaboration in green transition, AI, emerging technologies, start resilient supply chains, defense, space, climate action and people-to-people ties. The two prime ministers will also address the European Roundtable for Industry, a leading pan-European business leaders forum, along with President of the European Commission, Ursula von der Leyen. This engagement represents the third leg of the prime minister's broader European tour. Earlier, Prime Minister Modi undertook a series of engagements on his visit to the Netherlands yesterday, ranging from community interactions to the meeting with the Dutch royal family. Addressing a community program in The Hague, the Prime Minister said the world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts, and an emerging energy crisis. He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as a land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
1: 21st sadi ka Bharat avsaron ki bhoomi hai. Bharat technology driven bhi hai aur humanity driven bhi hai. भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है. मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं. इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा.
2: The Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election Bill held extensive consultations in Bengaluru with political parties, legal fraternity and civil society yesterday. Briefing media persons, the chairman of the committee, P.P. Chaudhary, informed that the objections and recommendations are being collected by the JPC during their visits to different states. On challenges posed by the proposal, he said that synchronizing elections will need to prematurely dissolve a few state assemblies and resolve issues arising out of anti-defection laws, no confidence motion and president rule. The Archaeological Survey of India, ASI, has granted the Hindus an unrestricted access to the monument at Bhojshala complex in Dhar district of Madhya Pradesh for worship and other purposes. The ASI's decision came a day after the Madhya Pradesh High Court ruled that Bhojshala in Dhar was a temple of goddess Saraswati. Within days of levying high custom duties on precious metals, government has imposed import curbs on silver. The Directorate General of Foreign Trade in a notification said the import policy for silver, including silver plated with gold and platinum, are revised from free to restricted with immediate effect. Delhi government has taken a significant decision to reduce the value-added tax on aviation turbine fuel in the national capital from 25% to 7%. Delhi Chief Minister Rekha Gupta said that the decision has been taken in line with the Prime Minister Narendra Modi's emphasis on strengthening connectivity and economic activity with the objective of providing relief to the aviation sector, promoting tourism and logistics activities. In badminton, Indian duo Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will face the Indonesian pair of Leo Roli Coronando and Daniel Martin in the men's doubles final of the Thailand Open in Bangkok today. And that is the end of this news bulletin.

40 सेकंड हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। हो चुकी है भोर और भोर की शुरुआत हमारे जीवन में आशाओं के साथ अर्पण लेकर। मैं शीतल हूँ आपके साथ, आप सभी को मेरा नमस्कार। प्रभु चरणों में आइए समर्पित करते हैं अपना वंदन।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हमारे जीवन में सबसे अहम है कि हमारे मन में सामने वाले के प्रति भरोसा होना चाहिए। अगर हम सामने वाले के ऊपर भरोसा कर सकते हैं तो हम उससे जुड़ सकते हैं, और अगर हम उससे जुड़ सकते हैं तो हम उससे प्रेम कर सकते हैं, और प्रेम ईश्वर का असली रूप है। और जहां जहां विश्वास की बात आती है वहां रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। बस हमें भरोसा रखना है अपनी मेहनत पर, क्योंकि सही समय पर बोया गया मेहनत का बीज कभी भी निष्फल नहीं जाता। तो इस श्वास रूपी बीज में हम हर पल हर क्षण क्या बो रहे हैं? क्या हम उस नाम से जुड़े हुए हैं, क्या उस परम शक्ति के आसपास हैं या नहीं? अगर नहीं तो फिर पुनः हमें विचार करना होगा और उस नाम को जपना, नहीं छोड़ना होगा। बेशक से हम कुछ भी छोड़ दें,

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: छह बजकर 35 मिनट और 45 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह है अर्पण और आज अर्पण में आपके साथ हूं मैं शीतल। हमारे जीवन में हमेशा हमारे पास दो पसंदे रहती हैं, या तो हम कठिन परिश्रम और धैर्य का रास्ता चुने या फिर हम अपनी भावनाओं के रास्ते बहते चले जाएं और धैर्य ना रखें और अपने कर्मों को अपनी किस्मत को ही हम कोसते रहें। जरूरत है कि हम अपने जीवन में कौन सी पसंद को तरजीह दे रहे हैं, हमने क्या चूज किया है। जीवन सभी का किसी न किसी परेशानी से दो चार होता रहा है, पर हमने क्या निश्चय किया है। ये जीवन एक ऐसा अनोखा अवसर है जो एक बार जाने के बाद फिर वापस लौट कर नहीं आने वाला। ये समस्याएं करोड़ों वर्षों से, जब से मानव का अस्तित्व है तब से लगातार बनी हुई हैं। नए तो हम हैं, हमें देखना है कि इन समस्याओं का समाधान करना कैसे है। और इन सारी समस्याओं का सबसे बेहतरीन समाधान ये है कि कुछ भी होता रहे, किस भी तरह की स्थितियां हमारे आमने सामने मंडराती रहे, धैर्य के साथ हम उन परिस्थितियों का न सिर्फ सामना करें बल्कि अपनी पसंद को परिस्थितियों के सामने रख दें कि हमें हर स्थिति में हर हालात में खुश रहना है। और फिर देखिएगा कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हम अपने आप को खुश रख पाएंगे, क्योंकि ये जिंदगी खुश रहने के लिए मिली है। बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां करोड़ों वर्षों से हैं, लगातार बनी रहेंगी। हमें खुद को बताना है, हर दिन जगाना है कि हमें खुश रहना है, मुस्कुराना है और प्रभु चरणों में अपना ध्यान लगाए रखना है।

6:44 और 25 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस से पाठ, जिसमें आज हम सुनेंगे बालकांड के कुछ अंश।

कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु पर अपना प्रभाव पुष्ट होता देख उन्हें बताया कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है और मात्र उसी शाप से उनका नाश हो सकता है और किसी प्रकार नहीं। अतः राजा ने मुनि से ब्राह्मणों को वश में करने का उपाय पूछा। कपटी मुनि एक तनु ने कहा, उपाय तो बहुत हैं किंतु वे कष्ट साध्य हैं। राजा ने एक तनु के चरण पकड़ लिए। तपस्वी बोला, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा क्योंकि तुम पूरी निष्ठा से मेरे भक्त हो गए हो, किंतु योग युक्ति तप और मंत्रों का प्रभाव तभी होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। यदि मैं भोजन बनाऊं तुम परोसो और कोई मुझे जानने ना पावे तो उस अन्न को जो भी खाएगा वह पूरी तरह तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ। कुछ ही देर में आप सुनेंगे ठीक 6:55 पर संस्कृत में समाचार, फिर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 7:10 पर होगा आपका हमारा साथ गोल्ड सुप्रभात में। तो आप सुनिए संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और लौट कर आइए बहुत खूबसूरत सी सुबह के साथ।

0: विंशत्यधिकद्विसहस्रतमाब्दीयस्य राष्ट्रिय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रमस्य अनुसारि एतासु तिस्रिषु भाषासु न्यूनातिन्यूनं भाषाद्वयं भारतीय मूलकं भवेत्। भारतीयार्थविभागेन अद्य अण्डमान निकोबार द्वीप समूहाय पश्चिम बंगाले हिमालयस्य अधोवर्ती क्षेत्रेभ्य सिक्किमाय च अतिवृष्टिपरा नारंगवारणकी संचेतना प्रसारिता। केरलम माहे लक्षद्वीप दक्षिणाभ्यंतरीण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु उत्तरपूर्वीय क्षेत्रस्य कतिपय भागेषु च समाना एव स्थितिः भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। प्रिया श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु, बैंकॉक नगरे थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडा मालिकायाः पुरुष युगल वर्गीय निर्णायक द्वंद्वे अद्य भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी च इंडोनेशिया देशस्य लियो रॉली कार्नांडो डेनियल मार्थिनाभ्याम स्पर्धिष्येते। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ कोलकातायाः ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे आयोजिते द्वंद्वे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन गुजरात टाइटन्स दलम् ऊनत्रिंशत् धावनांकैः पराजितम्। आदोपणं विजित्य गुजरात टाइटन्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। अद्यतने द्वंद्वद्वये प्रथमं धर्मशालायां अपराह्णे सार्धत्रिवादने पंजाब किंग्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन स्पर्धिष्यते। ततः सायं सार्धसप्तवादने दिल्ल्यां दिल्ली कैपिटल्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच हेग के व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से बढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से

प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। विभाग के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि हिंदुओं को अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुसार परिसर में पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति होगी। उच्च न्यायालय ने इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सका। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेटो और जेनेल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो जी फेई और नूरुजुद्दीन को हराया था। मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम माहे लक्षद्वीप दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के वक्त जब सूरज की किरणें आती हैं और इस अंधकार के बीच समा जाती हैं, अंधकार अपने अस्तित्व को खोकर अपने आप को पूरी तरह से इस रोशनी सूर्य को अर्पण कर देता है। जब हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जहां हम खुद को पूरी तरह से उसके लिए समर्पित कर दें और अपना जीवन उसके लिए जीना शुरू कर दें, तो फिर देखिएगा कि हमारी जिंदगी में जो खुशियां आनी शुरू होंगी वो बिल्कुल ऐसी होंगी जैसे अंधकार के बाद सूर्य उदय होता है। जिंदगी में बहुत जरूरी है कि हम मुस्कुराते रहें, और मुस्कुराहट को लेकर के आप भी बहुत सी चीजें जानते होंगे, मैं भी बहुत सी चीजें पढ़ती रहती हूं, और उनमें खास बात यह है कि अगर आप लगातार मुस्कुराते रहते हैं तो आपकी न सिर्फ जो नस नाड़ियां हैं वो खुली रहती हैं, साथ ही आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो चलिए करते हैं गोल्ड सुप्रभात की शुरुआत इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ कि हम आज दिन भर मुस्कुराएंगे। जिंदगी मुश्किलों से भरी है पर खुशियां भी तो ढेर सारी हैं। 7:12 और 10 सेकंड हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं शीतल करती हूं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस प्यारी सी सुबह में। हालांकि आज का दिन थोड़ा सा गर्मी वाला तो रहना है कि, लेकिन अगर आपके सामने वो हो जिसे देख करके कलियां खिल जाएं, आपके होंठ मुस्कुराना बंद ही ना करें, ये खुशियां कहीं तक सीमित ही ना हो, फिर देखिएगा कि उनका मिलना जीवन में कितनी सारे कुछ भी मौसम हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, वो हर चीज को एक

घर में, क्योंकि भाई आज का तापमान थोड़ा सा डरा देने वाला है, तो डरिएगा नहीं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अधिकतम तापमान 43 यानी 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक जाने की उम्मीद है और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। वैसे फिलहाल जो ये वक्त है ना, जिसमें हम अभी इस खूबसूरत सी जिंदगी की बातें कर रहे हैं, इस वक्त तो ना जो तापमान है वो बहुत बढ़िया है। सूरज की जो तपिश है वो अच्छी लग रही है, सहन की जा रही है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, हमें पूरे दिन की तैयारी करनी है। आज दोपहर को भाई लू चल सकती है, तो अपने पानी का, हाइड्रेशन का आपको बहुत ख्याल रखना है। आपको कोशिश करनी है कि अगर आप उसमें थोड़ा सा नींबू पुदीना डाल लें और हाइड्रेटेड कर लें, तो आपकी जो मुस्कुराहट है आपको और ज़्यादा बढ़ाती रहेगी, आपको और हेल्दी करती रहेगी। और ये देखिएगा, धूप बहुत तेज हो, कम हो, बारिश ना हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो, लेकिन प्रकृति अपना काम करती है। जो कलियाँ हैं वो खिल जाती हैं और मुस्कुराहट के साथ हमें मुस्कुराने की वजह दी जाती हैं।

सुबह सवेरे ही सूरज ने अपनी आंखें खोली हैं, पवन थमी है, सरगम मौन है, लू की चलती बोली है, तप रही है जो ये धरा सुनहरी, अंबर का रंग गाढ़ा है, जेठ की इस चिलचिलाती धूप ने सबको घर में ताड़ा है और हमें रहना पड़ेगा।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

7:25 और 20 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये महफिल है गोल्ड सुप्रभात की। और जैसे हम देखते हैं जिंदगी धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है, तो हमें बहुत सी चीजें जो पहले समझ नहीं आती थी अब समझ आनी शुरू हो जाती हैं। जब कहीं ना कहीं हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं तो स्वस्थ रहने का महत्व समझ आने लग जाता है। तो जरूरत है कि हम सबसे पहले ईश्वर के दिए इस सबसे खूबसूरत तोहफे का ध्यान रखें, जो कि है हमारा ये शरीर। और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है कि हम अपनी दिनचर्या में कोई ना कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जरूर शामिल करें, जिससे हम अपने मन के साथ साथ अपने तन के साथ भी जुड़ पाए। योग करें, वॉक पर जाएं, प्राणायाम शुरू करें, ताकि हम बाहर की दुनिया को जानने के साथ साथ अपने अंदर की दुनिया को भी जान पाएं।

0: आप इतने प्यार से मनाएंगे तो हमें मानना ही होगा, और हम तो जानते हैं कि हम हैं आपके दिल का करार। लेकिन वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। ठीक 7:30 बजे आप सुनिएगा समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे। फिलहाल गोल्ड सुप्रभात से मैं शीतल चाहती हूँ इजाजत। नमस्कार।
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: जिंदगी बहुत छोटी है, इसे ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो आपको हंसाएं, खुश रखें और आपको महसूस कराएं कि आप उनके लिए कितने जरूरी हैं। इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर शुरू करते हैं आज सवेरे कार्यक्रम। कार्यक्रम में हम एक बार फिर हाजिर हैं देश दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी लेकर जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संग के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी तन्वी खुराना। तन्वी, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। यस, यू हर्ड इट राइट, दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे एंड वी आर गोइंग टू शेयर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर डे विच इज 17th of May 2026 एंड टुडे इज संडे। सो जस्ट वॉन्ट टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी संडे। बी लेजी, बी कोजी इन योर house and enjoy the way you want this day to be. So let's begin our program with the news headlines.
0: जी बिल्कुल। हेग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए भी कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत और नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। श्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत के प्रमुख यूरोपीय साझेदारों में से एक बताया। श्री मोदी ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य, बाजार अर्थव्यवस्था और जिम्मेदार व्यवहार हमारे साझा दृष्टिकोण का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की जरूरत है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर देते हुए आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया।
1: Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden, marking a historic milestone in the deepening alliance between New Delhi and Stockholm. Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson to review the entire gamut of bilateral relations and explore new avenues of cooperation to enhance bilateral trade as well as collaboration in green transition,

0: AI, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and also people-to-people ties. The two prime ministers will also address the European Roundtable for Industry, a leading pan-Asian leading pan-European business leaders forum, along with the president of the European Commission, Ursula von der Leyen.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने को स्वीकृति दे दी है। विधि और न्याय मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार यह अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इस संशोधन के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 38 हो जाएगी।
0: The Archaeological Survey of India, ASI, has granted the Hindus an unrestricted access to the monument at Bhojshala complex in Dhar district of Madhya Pradesh for worship and for other purposes. The ASI's decision came a day after the Madhya Pradesh High Court ruled that Bhojshala in Dhar was a temple of goddess Saraswati. Quoting the ASI's order, an official said that Bhojshala was a center of learning and research on Sanskrit language, grammar and literature besides being a temple. The official further said that the Hindu community shall have an unrestricted access to the complex in connection with the ancient practice of learning and worship of goddess Saraswati.
1: कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
0: The government has debunked a video circulating on social media claiming that petrol supplied by Indian petroleum companies to Bhutan is being sold there at a significantly lower price than in India. The fact check unit of the Press Information Bureau, PIB, said that the video is old and is being shared out of context to mislead the citizens. The government has also urged citizens to always verify information through authentic sources before believing or sharing it and report any suspicious content related to the Government of India to the PIB Fact Check Unit through WhatsApp and email.
1: और खेलों की बात करें तो बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया की गो सी फेई और नूर इज्जुद्दीन की जोड़ी को हराया था।
0: And in tennis, India's Siddhant Banthia, alongside his Bulgarian partner Alexander Donsky, clinched the doubles title at the ORS4 2026 ATP Challenger 100 tournament in Portugal yesterday. The unseeded Indo-Bulgarian duo defeated Portugal's Tiago Pereira and Spain's David Vega Hernandez 6-3, 6-2 in the final, sealing the victory in just 1 hour and 3 minutes. The title marked Siddhant Banthia's second ATP Challenger doubles crown of this season and third overall, all alongside Alexander Donsky.
1: और आज सवेर में वक्त हुआ है मेट्रो न्यूज का, तो तन्वी सबसे पहले आप बताएं चेन्नई से क्या समाचार है आपके पास।
0: श्योर। इन चेन्नई द सदर्न बेंच ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज डायरेक्टेड अ जॉइंट कमिटी ऑफ द ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन एंड द स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट टू क्लीन अप द वेस्ट अलोंग द ईस्ट कोच बीचेस फ्रॉम कासीमेडु टू एन्नोर। द ट्रिब्यूनल इज कंसर्न्ड अबाउट लार्ज अमाउंट्स ऑफ थर्मोकोल एंड अदर फ्लोटिंग गार्बेज एंटरिंग द सी थ्रू द अदियार रिवर एंड कोइम River. It suggested using booms and skimmers to collect floating waste and also noted that the ongoing fishing ban period could be used to clean fishing harbors and remove accumulated debris. The order was issued in a Suomoto case based on media reports, with a bench comprising Justice Pushpa Satyanarayan and expert member Prashant Gargav, after the reports highlighting recurring garbage buildup that harms marine life and also public health. Now, what do we have from

0: दिल्ली मुकेश।
1: हाँ, दिल्ली से पहले हम मुंबई की बात करते हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा की तारीख 21 जून से बदलकर 28 जून कर दी गई है। ये निर्णय नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होने के कारण लिया गया है। और महाराष्ट्र महिला और बाल विकास विभाग ने सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी कार्यालयों में पोष अधिनियम के सख्त कार्यान्वयन का निर्देश दिया है। 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी कार्यस्थलों को कम से कम 50% महिला सदस्यों वाली एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना होगा। बृहन्मुंबई महानगर पालिका आयुक्त अश्विनी भिड़े ने निर्देश दिया है कि मुंबई में सभी सड़क विकास कार्य इस महीने की 31 तारीख तक पूरे कर ले जाएं। और इसके अलावा महानगर पालिका ने मुंबई में चल रही 10% जल कटौती के दौरान बिजली के पंपों का इस्तेमाल करके पाइपलाइनों से अवैध रूप से पानी निकालने वालों के खिलाफ आपराधिक मामलों सहित सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
0: And let's move towards Hyderabad. The Telangana government will organize a special youth and sports week from tomorrow till 23rd of this month as part of its 99-day program called Praja Palan Pragati Pranalika. The week is designed to promote fitness, youth development and employment opportunities across the state with events at state, district and local levels involving students, youth groups and sports professionals. Officials in the districts have been asked to make the proper arrangements and ensure wide participation and also publicity.
1: और अब रुख करते हैं कोलकाता का। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कल समीक्षा बैठक की। बैठक में ऐप आधारित एम्बुलेंस किराए तय करने, पार्किंग सुविधाओं में सुधार करने, अस्पताल में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अस्पतालों में अवैध दलालों पर रोक लगाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लिए गए निर्णय को अधिकारियों को शीघ्रता से लागू करने के निर्देश दिए गए।
0: And about Bengaluru, Karnataka's primary and secondary education minister Madhu Bangarappa said a grand welcome will be held on 1st of June for the students returning to school after the holidays. He said Chief Minister Siddaramaiah will visit a school in person, interact with the students and also address a large parent-teacher meet through video conference. The Chief Minister will also lay the foundation stone for a new building of Karnataka Public School in Shivamoga. The minister added that the government will focus on increasing enrollment in government schools, improving education quality, ensuring timely distribution of the textbooks and uniforms, and providing nutritious midday meals in the coming academic year.
1: और अब रुख करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर यानी वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए किया गया है। इसका उद्देश्य विमानन क्षेत्र को राहत प्रदान करना तथा पर्यटन और रसद गतिविधियों को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि रियायती दर शुरू में 6 महीने के लिए लागू रहेगी। दक्षिणी दिल्ली के नेहरू प्लेस डाकघर में कल 11 बजे से एक दिवसीय डाक चौपाल का आयोजन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि अब डाकघर में पोस्टल बैंकिंग, बचत खाता और बीमा के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएंगी। राजधानी में कल राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी कंपनियां चलाकर जीएसटी रिटर्न, नकली बिलिंग और गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर रहे थे। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे मुकेश कुमार और तन्वी खुराना के साथ। और कार्यक्रम में वक्त हुआ है मौसम का हाल जानने का, तो सबसे पहले दिल्ली का मौसम बता दें।
0: जी,
1: तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बिजली कड़कने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा या गरज के साथ तूफान आने की संभावना है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और मुंबई में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रहेगा।
0: चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद द पॉसिबिलिटी

0: Of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 28 degrees and maximum will be around 37 degrees. Bengaluru is expected to have thunderstorm with rain. The minimum temperature was 23 degrees and maximum will be around 32 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with the possibility of development of thunder lightning. The temperature will hover somewhere between a minimum of 29 degrees and a maximum of 42 degrees Celsius. And today we are talking about 17th of May, and today we are also celebrating World Hypertension Day. It aims to raise global awareness about high blood pressure, promote prevention, detection and control, and also encourage action at individual, community and health system levels.
1: जी हाँ, ये आज भी दुनिया भर में समय से पहले होने वाली मौतों का प्रमुख कारण बना हुआ है। अनुमान के अनुसार विश्व भर में 1 अरब 40 करोड़ लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। प्रभावी और किफायती उपचार उपलब्ध होने के बावजूद बहुत से लोगों को अपनी बीमारी के बारे में जानकारी तक नहीं होती।
0: Absolutely, and this year the global message is beautiful and also simple: controlling hypertension together. When it comes to our health, small happy steps make a big, huge difference.
1: बिल्कुल, चूंकि रक्तचाप का ध्यान रखना केवल खुद की सेहत के बारे में जागरूक रहने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम है जिसके जरिए आप अपने परिवार के साथ लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें।
0: So true, and the government is also making it easier than ever for us to stay healthy together with wellness and care now just a short walk from your neighborhood. Step 1, you have to visit your nearest Ayushman Arogya Mandir for a routine complimentary blood pressure check. It's easy, quick and also completely free of cost.
1: बिल्कुल तन्वी, सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जन औषधि केंद्रों का विशाल नेटवर्क, उच्च गुणवत्ता वाली सरकार द्वारा प्रमाणित दवाएं बेहद किफायती दरों पर हर घर तक पहुंचा रहा है, जो आपकी पहुंच से दूर नहीं है।
0: And here is a wonderful tip from the FSSAI for every kitchen. आज से थोड़ा कम. Just a small reduction in our daily salt intake keeps our hearts happy and energetic.
1: बिल्कुल, और 17 मई की कुछ और घटनाओं पर आप नजर डालें।
0: Let's talk about the year 1498 when Portuguese explorer Vasco da Gama arrived near Calicut or Coimbra, marking the discovery of the first direct sea route from Europe to Asia.
1: और 1540 की बात करें तो आज ही के दिन शेरशाह सूरी ने कन्नौज की लड़ाई में मुगल सम्राट हुमायूं को बुरी तरह पराजित किया। इसके बाद हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा था। इसके अलावा 1769 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के कपड़ा उद्योग को बर्बाद करने के लिए बुनकरों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए।
0: इन द ईयर 1792 द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वाज ऑफिशियली फाउंडेड बाय ब्रोकर्स साइनिंग द बटनवुड अग्रीमेंट ऑन वॉल स्ट्रीट।
1: 1954 की बात करें तो आज ही के दिन अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन मामले में ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए सरकारी स्कूलों में नस्ली अलगाव को पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसके अलावा 1975 में आज ही के दिन जापानी महिला जुनको तैबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी।
0: इन द ईयर 1987 लेजेंडरी इंडियन बैट्समैन सुनील गावस्कर ऑफिशियली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट।
1: 1990 की बात करें तो आज ही के दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने समलैंगिकता को मानसिक बीमारियों की आधिकारिक सूची से पूरी तरह से हटा दिया था।
0: In the year 2006, Four Peaked Mountain in Alaska erupted for the first time in at least 10,000 years.
1: और 2010 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने उड़ीसा के व्हीलर द्वीप के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया। ये मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। अग्नि 2 का विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशालाओं और भारत डायनेमिक्स हैदराबाद के साथ किया गया था।
0: And now, moving towards our next segment, let's talk about the great personalities who have taken birth on this day or who have left for their heavenly abode on this particular day. And the first person in the list is...
1: जी बिल्कुल, आज हम याद कर रहे हैं मशहूर फिल्म निर्देशक प्रकाश मेहरा को, आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों का निर्देशन किया। 70 के दशक की अगर हम बात करें तो वो रोमांस का दौर था और हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार थे दिलीप कुमार। धर्मेंद्र उस दौर में मेरा

0: गांव मेरा देश, जो कि 1971 में बनी और 1972 की सीता और गीता जैसी बेहतरीन फिल्मों से खुद को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर चुके थे। समय के साथ वो फिल्में बनाने में दिलचस्पी लेने लगे, लेकिन कोई भी स्क्रिप्ट अच्छी लगती थी तो झट से खरीद लेते थे। सीता और गीता में काम करते हुए धर्मेंद्र ने उस फिल्म की राइटर जोड़ी सलीम जावेद की एक कहानी सुनी और नाम था जंजीर। तो सबसे पहले जंजीर का ये डायलॉग सुने।
1: जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं।
2: आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही। तुम नहीं, तुम्हारी वर्दी, तुम्हारी कुर्सी बोल रही है। जिस दिन ये वर्दी ये कुर्सी नहीं होगी, उस दिन तुम गला खराब हो जाएगा। घंटी बजाओ और हवलदार को बुलाओ और कहो कि शेर खान को बंद कर दे।
3: हवलदार, शेर खान को बाहर छोड़ दो।
2: जरूरत नहीं, शेर खान खुद आया था, खुद चला जाएगा।
0: और अपने श्रोताओं को बता दें कि सलीम जावेद तब अंदाज और हाथी मेरे साथी जैसी फिल्में लिख चुके थे। कहानी पसंद आने पर धर्मेंद्र ने जंजीर की स्क्रिप्ट झट से खरीद ली। और लेकिन धर्मेंद्र ने दिलचस्पी तो दिखाई और कहानी भी सुनी। उन्हें वो स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई थी कि वो झट से इसे करने के लिए मान गए थे। लेकिन फिर एक डील हुई और धर्मेंद्र ने प्रकाश मेहरा से समाधि की स्क्रिप्ट खरीदी और बदले में 3,500 रुपए लेकर जंजीर की स्क्रिप्ट थमा दी जो सलीम जावेद ने उन्हें दी थी। इसके अलावा प्रकाश मेहरा ने एक और बहुत अच्छी फिल्म निर्देशित की थी, उसका नाम था मुकद्दर का सिकंदर, जिसमें अमिताभ बच्चन ने बहुत अच्छा काम किया है। तो उस फिल्म का एक गाना सुन लें।

और आज जयंती है हिंदी और ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक धीरेन्द्र वर्मा की। जो कार्य हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, वही कार्य हिंदी शोध के क्षेत्र में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया। धीरेन्द्र वर्मा जहां एक तरफ हिंदी विभाग के उत्कृष्ट व्यवस्थापक रहे, वहीं दूसरी ओर के आदर्श अध्यापक भी रहे। भारतीय भाषाओं से संबद्ध समस्त शोध कार्य के आधार पर उन्होंने 1933 में हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास लिखा। फ्रेंच भाषा में उनका ब्रजभाषा पर शोध प्रबंध है, जिसका अब हिंदी में अनुवाद हो चुका है। प्रारंभ में धीरेन्द्र वर्मा का नाम 1908 में डीएवी कॉलेज देहरादून में लिखवाया गया था, लेकिन कुछ ही दिन बाद वे अपने पिता के पास चले गए और

0: इनका नाम क्वींस कॉलेज लखनऊ में लिखाया गया। इसी स्कूल से सन 1914 में प्रथम श्रेणी में स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा पास की और हिंदी में विशेष योग्यता प्राप्त की। इसके बाद म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में उन्होंने प्रवेश लिया और 1921 में इसी कॉलेज से उन्होंने संस्कृत में एमए पास किया। उन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी और इसके अलावा एक और हिंदी विभाग के उत्कृष्ट व्यवस्थापक तो वो रहे, दूसरी ओर आदर्श अध्यापक भी थे और स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के निर्धारण, नियोजन और व्यवस्थापन में जो विशदकार श्याम सुंदर दास ने किया उसे उन्होंने वैशिष्ट प्रदान की और पाठ्यक्रम में भाषा और साहित्य की व्यापकता को ध्यातव्य मानकर उसे नवीन गति भी प्रदान की।
1: एंड टुडे इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ बॉलीवुड स्टेज एक्टर एंड ऑल्सो लिरिसिस्ट। His name is Sajjan. He acted in several plays and movies from 1950s to 1980s. And his best known films are 20 Saal Baad, Chalti Ka Naam Gaadi, April Fool, Rail Ka Dibba, Johnny Mera Naam and also Jhumru. But let me just play a clip here and I want you, Mukesh, to tell me who these people are. And also I want our listeners to tell me what is this conversation all about.
2: मगर तुम्हारी समस्या ये है कि निर्णय करोगे तो बोलोगे और मेरी शर्त ये है कि तुम बोलोगे और मैं जाऊंगा, तुम बोले मैं जा रहा हूँ।
3: मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
4: विक्रम आजा, मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महान झूठ है।
1: सो मुकेश, कैन यू रिकॉग्नाइज?
0: जी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ये एक धारावाहिक आता था विक्रम और बेताल, और इसमें विक्रम जो थे वो एक राजा थे और उनकी भूमिका निभा रहे थे अरुण गोविल, लेकिन बेताल के बारे में मुझे जानकारी नहीं है।
1: बेताल, वी नो बेताल एज बेताल ओनली, राइट? वी डोंट नो हिम हिज ओरिजिनल नेम, बट हिज ओरिजिनल नेम इज सज्जन। ही वाज दिस आर्टिस्ट एंड एन आर्टिस्ट ऑफ मोर देन 150 फिल्म्स। ही आल्सो वर्कड इन टीवी सीरियल्स विक्रम एंड बेताल, एंड हिज अदर सीरियल वाज लेना एंड देना। दिस वाज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल टीवी सीरियल एंड ही वाज वेल एस्टैब्लिश्ड इन फिल्म्स एज वेल। And apart from Sachin, we are also talking about Shyam Ramsey here. Today is his birth anniversary. A Bollywood film director, he was one of the 7 Ramsey brothers who were active in Indian cinema throughout the 1970s and 1980s. Shyam Ramsey was considered the main artist and head of this group, and he has directed multiple horror movies. So let me ask you, Mukesh, have you seen horror movies when you were a child or an adult? Were you into horror movies or were you scared?
0: नहीं, जो इस तरह की डरावनी फिल्में हुआ करती थी देखने का मन तो करता था, लेकिन इतनी भयानक हुआ करती थी कि बहुत डर लगता था, इसलिए उनसे बचा ही रहा हूं मैं।
1: Let me just play a clip here and let's see if our listeners go the down the memory lane or not.

0: This is the title track of India's first horror TV series called Z Horror Show. And with this, who is the next person in the list?
1: जी बिल्कुल, प्रसिद्ध भारतीय गजल और पार्श्व गायक पंकज उधास को हम याद कर रहे हैं, आज उनकी जयंती है। उन्होंने हिंदी सिनेमा और भारतीय पॉप में अपने काम के लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1980 में आहट नामक एक गजल एल्बम के साथ की थी। पद्मश्री पंकज उदास हिंदुस्तानी संगीत में गजल की वो आवाज रहे जिन्होंने गजल को जटिल परंपरा से बाहर निकालकर उसे हर आदमी तक पहुंचाया। तो क्यों ना उसकी उनकी एक इस गजल को सुन लिया जाए।

और पंकज उदास ने न केवल गली मोहल्लों चौक चौराहों छोटी जगह के लोगों के दिलों को गजल से सुकून से परिचित कराया बल्कि आम आदमी के दुख दर्द को पहचानने वाली आवाज भी बनी। एक दौर था जब चिट्ठी आई जैसी गजल गाकर पंकज उदास ने बेशुमार लोकप्रियता कमाई और वे उस दौर में रेडियो के माध्यम से हर घर में गूंजने लगी थी। तो क्यों ना ये गाना भी सुना जाए।

0: तो इसी के गाने के साथ घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आज का आज सवेरे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त किया जाए। तो अनुमति दें मुकेश कुमार और तन्वी खुराना को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
3: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है।

0: ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
0: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी लवली, इन खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 ATP चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
7: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोकटोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा

0: प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors, including trade, defence, technology, water management, clean energy, healthcare and education. Several agreements were also signed to deepen collaboration in priority areas. Announcing the elevation of ties to a strategic partnership, Prime Minister Modi said, India-Netherlands ties had witnessed significant progress over the last decade and described the Netherlands as one of India's key European partners.
3: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नीदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर।
2: Highlighting cooperation in sectors such as water management, healthcare and education, Mr. Modi said, democratic values, market economy and responsible behavior are part of our common approach. Calling for greater collaboration in emerging sectors, Prime Minister Modi said, India and the Netherlands should combine Dutch expertise with India's speed and skill to expand cooperation in innovation, sustainability, investment and defense.
3: भारत और नीदरलैंड के बीच मजबूत हो रही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे बिजनेस रिलेशंस को नई प्रेरणा दे रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप भारत में अपना स्कोप, इन्वेस्टमेंट और एम्बिशन बढ़ाएंगे और आपके साथ पूरे यूरोप का इनोवेशन इकोसिस्टम भी भारत आएगा। आपका देश सदियों से नए अवसरों की खोज में आगे बढ़ता रहा। मैं आपको आश्वासन देता हूं, भारत में आपकी ये खोज सफल होगी और सार्थक भी। अब आपको भारत में और बोल्डली वेंचर करना है।
2: Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden, marking

0: moment heavy with history and symbolism, writes that the Leiden University announced its decision to return the plates after an official inquiry concluded that they were taken during the Dutch colonial rule without the consent of their rightful custodians. And finally, an elephant has given birth to twin calves at the Corbett Tiger Reserve, reports Hindustan Time. Wildlife experts have described it as a rare event among elephants. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. Archaeological survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के उनके हम मनसब रॉब जेटन के दरमियान बातचीत के बाद दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदल दिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी स्वीडन के अपने दो रोजा दौरे पर आज गोटेनबर्ग पहुंचेंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म स्विट्जरलैंड के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत करेंगे। महकमा आसारे कदीमा ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदुओं को भोजशाला मंदिर में बिला रुकावट दाखिले की इजाजत दे दी है। हुकूमत ने चांदी की दरामद में कटौती करते हुए इसे पाबंदी वाली अशिया के जुमरे में डाल दिया है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में हवाई जहाजों के ईंधन पर वैल्यू एडिड टैक्स में कटौती करते हुए इसे 25% से घटाकर 7% कर दिया है। और बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के फाइनल में आज सत्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म रॉब जेटन के दरमियान हेग में वसी तर मुज़ाकरात के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने अपने बाहमी ताल्लुकात को एक कलीदी शराकतदारी की सतह पर ले जाने से इत्तेफाक किया है। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, दिफा, टेक्नोलॉजी, पानी के बंदोबस्त, साफ तवानाई, हिफ़्ज़ाने सेहत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में तआवुन का जायजा लिया।
3: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नीदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर।
2: तरजीही शोबों में वसी इश्तराक के लिए कई समझौतों पर भी दस्तखत किए गए। बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी तक ले जाने का ऐलान करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि पिछली एक दहाई में भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान ताल्लुकात में खातिरख्वाह पेशरफ्त हुई है और उन्होंने नीदरलैंड को भारत का एक कलीदी यूरोपीय शराकतदार करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मुश्तरका जमहूरी अकदार, मजबूत माशी तआवुन और अवाम से अवाम के दरमियान गहरे रिश्तों पर मबनी है।
3: हम नीदरलैंड को भारत के सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर में से मानते हैं। नीदरलैंड भारत के टॉप 5 इन्वेस्टर्स में से एक है। हमारे हिस्टोरिकल, कल्चर और पीपल टू पीपल टाइज भी बहुत गहरे हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मार्केट इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ये हमारी साझी सोच का हिस्सा है। हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए।
2: नीदरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म रॉब जेटन ने भारत के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात की अहमियत पर भी जोर दिया और माशी और कलीदी शोबों में मजबूत तआवुन की हिमायत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्वीडन के दो

0: दौरे पर आज गोटेनबर्ग पहुंचेंगे। ये दौरा भारत और स्वीडन के दरमियान वसत पा रहे इश्तराक के लिए एक तारीखी संगे मील साबित होगा। जनाब मोदी बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेने की खातिर स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत करेंगे और बाहमी बातचीत को तिजारत को बढ़ाने के साथ साथ मसनूई जहानत, एआई, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, स्टार्टअप्स, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, दिफा, खला, आबो हवा से मुतालिक कार्रवाई और अवाम के दरमियान रिश्तों और कार्रवाई माहौल दोस्त बदलाव की जानिब मुंतकली को बढ़ाने के लिए तआवुन के नए मौके तलाश किए जाएंगे। दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म सनद के लिए यूरोपियन गोलमेज कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे, जो यूरोपियन कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डर लायन के साथ एक सरकर्दा पैन यूरोपियन सरबराहों का फोरम है। ये बातचीत वजीर आजम के वसी यूरोपी दौरे के तीसरे मरहले का एक हिस्सा है और जनवरी 2026 में हुए भारत यूरोपियन आजाद तिजारती मुआहदे एफटीए के बाद से खित्ते का ये पहला दौरा है। ये दौरा बाहमी ताल्लुकात का जायजा लेने की गरज से तैयार किया गया है और इसका मकसद तेजी से बढ़ती हुई तब्दीलियों और पेचीदा जोग्राफियाई चैलेंजों के दौर में तआवुन का पता लगाना है। ये दौरा इक्तिसादी सरगर्मियों में तेजी के रुझान के बाद हो रहा है, जहां दो तरफा तिजारत साल 2025 में रिकॉर्ड 7.75 अमरीकी डॉलर हो गई और साल 2000 से 2025 के दरमियान भारत में स्वीडन के रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का हजम 2.825 अरब डॉलर्स रहा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: स्वीडन जो दुनिया की सबसे ज्यादा इख्तराई मईशतों में से एक है, भारत के डिजिटल पूल के साथ कुदरती हम आहंगी तलाश कर रहा है। फिलहाल 280 से ज्यादा स्वीडिश कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, जबकि 75 भारतीय फर्म स्वीडन में कायम हो चुकी हैं। इस दौरे की एक खास बात वज़ीरे आज़म की यूरोपीय कमीशन की सदर के साथ यूरोपीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस बराए सनद से मुश्तरक तौर पर खिताब है। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन सनती इंजमाम की तरफ बढ़ते हुए एक मरकजी सुतून में तब्दील हुआ है। इन ताल्लुकात की जड़ें 2009 के दिफाई ताउन के मुआहदे और 2019 के जनरल सिक्योरिटी मुआहदे में पेवस्त हैं। मसनू जहानत, एआई और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में ताउन इस शराकतदारी की बुनियाद फराहम करता है। इसके अलावा दोनों ममालिक खलाई तहकीक में भी ताउन कर रहे हैं। स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स इसरो के वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए आलात फराहम कर रहा है। आखिर में वजीर आजम का गोटेनबर्ग का दौरा तारीखी एतमाद को मुस्तकबिल के लिए तैयार अहदाफ से जोड़ता है। गोटेनबर्ग स्वीडन से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: भारत और स्वीडन के दरमियान तिजारत और अवाम से अवाम के दरमियान राब्तों की विरासत है, जो एक सदी से ज्यादा अरसे पर मुहित है और इसकी जड़ें बाहमी एहतराम, पुरअमन बका और अहिंसा के नजरिए में पेवस्त हैं। इस गहरे ताल्लुक की निशानदेही नोबेल इनाम याफ्ता रविन्द्रनाथ टैगोर के साल 1926 के स्वीडन दौरे के 100 साल मुकम्मल होने से होती है। आज ये ताल्लुकात सकाफती बुनियादों से आगे बढ़कर जामे सनती इक्तिसादी शराकतदारी में बदल रहे हैं। कीमती धातुओं पर इजाफी कस्टम ड्यूटीज आयद करने के कुछ ही दिनों बाद हुकूमत ने अब चांदी की दरामद में कटौती की है। गैर मुल्की तिजारत के डायरेक्टोरेट जनरल डीजीएफटी ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि चांदी पर सोने का पानी चढ़ी चांदी और प्लेटिनम समेत चांदी पर दरामदी पॉलिसी को फौरी तौर से आजाद से पाबंदी शुदा के जुमरे में तब्दील किया गया है। हुकूमत ने बुध के रोज कीमती धातुओं पर दरामदी ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी थी। पाबंदियां आयद किए गए जुमरे की अशिया की दरामद के लिए हुकूमत की लाइसेंस की जरूरत होती है। दिल्ली हुकूमत ने एक अहम कदम उठाते हुए कौमी दारुल हुकूमत में एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैल्यू एडिड टैक्स को 25% से घटाकर 7% करने का फैसला किया है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि ये फैसला वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से कनेक्टिविटी और माशी सरगर्मियों को मजबूत बनाने पर जोर देने से मुताबकत रखता है, जिसका मकसद शहरी हवाबाजी के शोबे को राहत फराहम करना, सियाहत और लॉजिस्टिक्स से मुतालिक सरगर्मियों को फरोग देना है। वजीर आला ने बताया कि ये रियायती शरह आइंदा 6 माह तक नाफिज रहेंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। महकमा आसार कदीमा ASI ने

0: मध्य प्रदेश के धार जिले में वाकई भोजशाला कॉम्प्लेक्स इमारत में हिंदुओं को पूजा पाठ और दीगर मकासिद के लिए बिला रुकावट रसाई की इजाजत दे दी है। महकमा आसार कदीमा का ये फैसला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले के एक दिन बाद आया है, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धार जिले में भोजशाला को सरस्वती देवी का मंदिर करार दिया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: महकमा आसार कदीमा के हुक्मनामे का हवाला देते हुए एक अफसर ने बताया कि भोजशाला मंदिर के अलावा संस्कृत जबान, कवायद और अदब सीखने सिखाने और तहकीक का मरकज भी रही। अफसर ने मजीद बताया कि हिंदू बिरादरी के सरस्वती देवी की पूजा और सीखने सिखाने के कदीम तरीक़ेकार से ताल्लुक़ की बिना पर उन्हें कॉम्प्लेक्स में बिला रुकावट रसाई की इजाज़त होगी। इससे पहले जुमे के रोज़ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार जिले के भोजशाला कॉम्प्लेक्स को सरस्वती देवी का मंदिर करार दिया था और कहा था कि मरकज और ASI इसके इंतजाम व इंसराम तय कर सकते हैं। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने 7 अप्रैल 2023 के महकमे आसार कदीमा के उस हुक्मनामे को भी कलदम करार दिया, जिसमें मुसलमानों को हर जुमा को भोजशाला कॉम्प्लेक्स में जुमे की नमाज अदा करने की इजाजत थी। दलाइल की समाप्त कर रही बेंच ने यह भी कहा कि मुसलमान बिरादरी जो ASI के तहफ़ वाली 11वीं सदी की इमारत को कमाल मौला मस्जिद मानती है, वो जिले में मस्जिद की तामीर के लिए अलहदा जमीन अलॉटमेंट की खातिर रियासती हुकूमत से रुजू कर सकती है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: CBI ने नीट पेपर लीक केस के सिलसिले में पुणे से एक और अहम मुलजिमा को गिरफ्तार किया है। मुलजिम प्रोफेसर मनीषा मंधारे पुणे में एक कॉलेज में बॉटनी के उस्ताद हैं। CBI के मुताबिक कौमी जांच एजेंसी ने इम्तिहान के अमल में एक एक्सपर्ट के तौर पर उनका तकर्रुर किया था। इससे पहले 14 मई को एक और मुलजिमा मनीषा वाघमारे को भी पुणे से गिरफ्तार किया गया था। दोनों मुलजिमान को पुणे की एक अदालत में पेश किया गया था और बाद में मजीद तफ्तीश के लिए उन्हें दिल्ली लाया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस शंपा सरकार और जस्टिस तीर्थांकर घोष की एक डिवीजन बेंच की जानिब से RG कर मेडिकल कॉलेज असमतदरी और कत्ल केस की समाअत की जाएगी। इससे पहले इस हफ्ते जस्टिस राजा शेखर मांथा और जस्टिस राय चट्टोपाध्याय ने ज्यादा मसरूफियत का हवाला देते हुए खुद को इस केस से अलग कर लिया था। इस केस में संजय राय जनवरी 2025 में उम्र कैद की सजा पाने वाले वाहिद मुजरिम है। मुतवफी डॉक्टर की वालिदैन ने कोलकाता की सियालदा अदालत में एक केस दायर किया था, जिसमें उन्होंने TMC के साबिक MLA निर्मल घोष, संजीव मुखोपाध्याय और घोला पुलिस स्टेशन के उस वक्त के इंचार्ज की गिरफ्तारी की अपील की थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 के निफाज के जरिए भारत के चीफ जस्टिस को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 33 से 37 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कानून और इंसाफ की वजारत की तरफ से शाया करदा एक गेजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक इस ऑर्डिनेंस में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक एक्ट 1956 में तरमीम की गई है। एक मुल्क एक चुनाव बिल से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी ने कल सियासी पार्टियों, कानूनी बिरादरी और सिविल सोसाइटी के साथ बेंगलुरु में वसी तर तबादला ख्याल किया। बाद में अखबार नवीसों को जानकारी देते हुए कमेटी के चेयरमैन PP चौधरी ने बताया कि मुख्तलिफ रियासतों के अपने दौरे के दौरान मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी की तरफ से एतराजात और सिफारिशात जमा की जा रही हैं। बैडमिंटन में बैंकॉक में जारी थाईलैंड ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में आज सत्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रॉली कॉर्नेंडो और डेनियल मार्टिन से जोड़ी से होगा। इससे पहले कल सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी मलेशिया के गो जीफी और नूर इजुद्दीन को हराकर फाइनल में पहुंची है। टेनिस में आलमी नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर इटालियन ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में रोम के कैंपो सेंट्रेल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। आज फाइनल में सिनर का मुकाबला कैस्पर रूट से होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया तौर पर जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड दौरे की खबर को सफ़े अव्वल की शहसुर्खी बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म कल एम्स्टर्डम पहुंचे, जहां भारतीय बिरादरी ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में जंग और बढ़ती आलमी गैर यकीनी कई दहाइयों की तरक्की को उलट सकती है और बड़ी आबादी को दोबारा गुर्बत में ढकेल सकती है। रोजामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने तमिलनाडु में वुजरा में कलमदानों की तकसीम से मुतालिक खबर को नुमाया तौर

0: पर जगह दी है। अखबार के मुताबिक वजीर आला जोसेफ विजय ने दाखला और आम इंतजामिया जैसे अहम महकमे अपने पास रखे हैं। रोजनामा प्रताप ने दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता के उस बयान को अपनी चैसुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बेटियों की तालीम सिर्फ खानदान ही नहीं बल्कि समाज और मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद होती है।
1: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के उनके हम मनसब रॉब जेटन के दरमियान बातचीत के बाद दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदल दिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी स्वीडन के अपने दो रोजा दौरे पर आज गोटेनबर्ग पहुंचेंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत करेंगे। महकमा आसार कदीमा ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदुओं को भोजशाला मंदिर में बिला रुकावट दाखिले की इजाजत दे दी है। हुकूमत ने चांदी की दरामद में कटौती करते हुए इसे पाबंदी वाली अशिया के जुमरे में डाल दिया है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में हवाई जहाजों के ईंधन पर वैल्यू एडिड टैक्स में कटौती करते हुए इसे 25% से घटाकर 7% कर दिया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

ये जो संगीत से अपनी दिल लगी हो गई है, सच्ची कहें तो जिंदगी कुछ और हंसी हो गई है। धड़कनें अब सीधी सीधी धड़कती नहीं साहब, इनमें गिटार की कोई सुरीली धुन खो गई है। ये दिल लगी बड़ी मासूम है, बड़ी बेबाक है, इसमें ना कोई शिकवा है ना कोई मलाल है। गम की धूप हो या फिर तन्हाई का कोई मौसम, सुरों का हमसफर होना ही सबसे बड़ा कमाल है। गुनगुनानी लगती है ये खामोशियां भी अक्सर, जब ख्यालों में कोई सुरीला सा तराना आता है। इस म्यूजिकल दिल लगी का बस यही एक दस्तूर है, ये रुठे हुए दिलों को भी हंसाना सिखाता है। चलो आज सुरों के समंदर में डूब जाएं, लय और ताल के साथ थोड़ा सा मुस्कुराएं। काम काज तो खैर चलते ही रहेंगे जिंदगी भर, आज इस संगीत में दिल लगी में खुद को भूल जाएं और खुद को भूलकर एंजॉय करने की कोशिश करें इस दिन को। और इस दिन में याद रखें कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो थोड़ा सा भी रूठ गया है तो उसे मना लीजिए। 8:46 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शुरू हो चुकी है एफएम गोल्ड पर म्यूजिकल दिल लगी, जिसमें आपके साथ मैं शीतल हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस प्यारी सी सुबह में एक बार फिर। और अगर किसी से नाराजगी है तो शब्दों के जरिए बयां कर दीजिए, अगर आपको किसी की बात पसंद नहीं आ रही है तो थोड़े तरीके से कह दीजिए, बस रूठिएगा मत, क्योंकि रूठने से ना दोनों तरफ दिल में बड़ी दिक्कत होने लग जाती है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जाएं।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 8:53 और 19 सेकंड हुए हैं और आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में डॉक्टर शोभना नारायण जी का संदेश।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर शोभना नारायण, कथक नृत्यांग

गुरु एवं कोरियोग्राफर हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं आकाशवाणी से कई दशकों से जुड़ी हुई हूँ और मैंने देखा है कि आकाशवाणी में भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह मंच कलाकारों के लिए अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम रहा है, जिसने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जन जन तक पहुंचाया है। कथक जैसी समृद्ध नृत्य परंपरा को भी आकाशवाणी ने अपनी तरंगों के माध्यम से देश विदेश में पहचान दिलाने में योगदान दिया है। मैं कामना करती हूँ कि आकाशवाणी इसी प्रकार कला, संस्कृति और समाज को जोड़ते हुए नई ऊंचाइयों को छूता रहे। एक बार फिर मैं आकाशवाणी परिवार को 90 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डॉक्टर शोभना नारायण जी का संदेश। कहते हैं संगीत दिल की वो भाषा है जो बिना कुछ कहे सब कुछ बयां कर देती है। जब जिंदगी में सुर और ताल का तालमेल बैठ जाता है तो हर दिन एक खूबसूरत गीत बन जाता है, और हम यही चाहते हैं कि हर दिन एक खूबसूरत गीत की तरह हमारी जिंदगी को सुर से ताल से सजाता रहे। ऐसे में जरूरत है कि हम अपने जीवन को खुशियों से और मोहब्बत से भरते रहें। अक्सर हमें नहीं सभी को ये चाह होती है कि हमें प्यार मिले, मोहब्बत मिले। हम ये सोचते हैं कि हो सकता है कि हमारी ये जो एक खोज है ये शायद पूरी ना हो, पर हम किसी की खोज पूरी कर सकते हैं। जिंदगी में कोई ऐसा मिले जिसे हम बहुत चाहते हों, हो सकता है हम उसे ना पा पाए, लेकिन हम किसी की जिंदगी में उसकी चाहतों को पूरा करने का जरिया बन सकते हैं, उसके जीवन में खुशियों की वजह बन सकते हैं।

0: यही कामना करते हैं कि आपकी जिंदगी में मंजिलें आपको मिलती रहें, आपके रास्तों के सफर खूबसूरत बीतते रहें। लेकिन फिलहाल म्यूजिकल दिल लगी के इस तरफ के पड़ाव को यहां मैं शीतल चाहती हूं इजाजत रैप अप करने का, विराम देने का। आप सुनिए हिंदी अंग्रेजी में समाचार और म्यूजिकल दिल लगी की अगली जो कह सकते हैं जो कड़ी है वो यूं ही जारी रहेगी। मुस्कुराती रहिए, जिंदगी को खूबसूरती से स्वीकारती रहिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
3: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। पीठ ने कहा कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग से भूमि आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां सुझाव एकत्र कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नोडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। आईपीएल में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to a level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors including trade, defence, technology, water management, clean energy, healthcare and education. Several agreements were also signed to deepen collaboration in priority areas. Announcing the elevation of ties to a strategic partnership, PM Modi said India-Netherlands ties had witnessed significant progress over the last decade and described the Netherlands as one of India's key European partners. Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden, marking a historic milestone in the deepening alliance between New Delhi and Stockholm. Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart, Ulf Kristersson, to review the entire gamut of bilateral relations and explore new avenues of cooperation to enhance bilateral trade as well as collaboration in green transition, AI, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defence, space, climate action, and also people-to-people ties. The two prime ministers will also discuss the European Roundtable for Industry, a leading pan-European business leaders forum, along with the president of the European Commission, Ursula von der Leyen. This engagement represents the third leg of the prime minister's broader European tour and his first visit to the continent since the landmark India-European Union Free Trade Agreement FTA took effect in January 2026. The visit follows a high growth trajectory in economic engagement, with bilateral trade reaching a record $7.75 billion in 2025 and Swedish FDI into India totaling $2.8 billion between 2000 and 2025. More on this from our correspondent.
2: Sweden, one of the world's most innovative economies, finds a natural synergy with India's digital talent pool. Currently, over 280 Swedish companies operate in India, while 75 Indian firms have established themselves in Sweden. A unique highlight of the visit is the joint address by the Prime Minister to the European Roundtable for Industry alongside the European Commission President. Defence and security cooperations have evolved into a central pillar moving towards industrial integration. This relationship is anchored in a 2009 Defence Cooperative Agreement and 2019 General Security Agreement. Industrial trust is exemplified by Swedish major establishing a fully owned production facility in Haryana under Make in India. It may be noted that such investment drive local employment and capacity building. Collaboration in artificial intelligence and emerging technologies provide the bedrock of this partnership. Future cooperation prioritizes AI, digital and the Internet of Things. Furthermore, the two nations are collaborating on space exploration, with the Swedish Institute of Space Physics providing instruments for ISRO's Venus orbiter mission. The green energy transition is central to the bilateral agenda. A standout success is the LEED IT initiative launched in 2019 to guide the heavy industries towards a low-carbon economy. It may be noted that at COP28, the two prime ministers launched LEED IT 2.0.

रहे हैं ना आप? कहाँ जी, हमें कौन सुनता है। ये तो मेहरबानी है उन साहिबे आवाज और अहले मौसिकी, सुर साधक शारदा पुत्र गायकों गवैयों की, जिन्होंने उन गीतों को तरन्नुम में गाकर अपने स्वर माधुर्य से आम और खास के दिलों को जीता। दिल हारने के लिए ही तो आते हैं ना आप एफएम गोल्ड पर। हमको मालूम है जनाब, हम भी इसीलिए आते हैं। नमस्कार, आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज के सभी सुनने वालों को, मेरे सभी दोस्तों को, मैं हूं विजय। आज है 17 मई और आज का दिन बेहद खास है। म्यूजिकल दिल्लगी में अगले कुछ मिनटों में हम बात करेंगे आपकी सेहत, सुरक्षा और एक सुरक्षित भविष्य की। लेकिन हो सके तो उत्तर दीजिए हमारे एक सवाल का पहले। रेडियो की लोकप्रिय आवाज देवकी नंदन पांडे किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हुए? उत्तर भेज सकते हैं हमें आप व्हाट्सएप पर 9868-868753 पर। जी हाँ, 9868-868753 पर। सबसे पहले आए जो सही जवाब आएगा ना, उसका हम नाम लेंगे आज हम म्यूजिकल दिल्लगी के आखिर में। आइए के अमरनाथ द्वारा निर्देशित 1964 में आई फिल्म इशारा से ये गाना सुनते हैं। मजरूह के लिखे इस गीत में कल्याण जी आनंद जी ने अपने संगीत से सितारे जड़ दिए हैं और रफी साहब ने 4 चांद लगा दिए हैं। उस पर खूबसूरती की चमक और बढ़ा दी है जॉय मुखर्जी और वैजंती माला की मौजूदगी ने। ये एक ही फिल्म है दोस्तों जिसमें दोनों साथ आए। आइए इस गाने का आनंद लेते हैं। रफी साहब ने शानदार गाया है।

0: से बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: दोस्तों, आज वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे है, जो हमें तकनीक से जोड़ता है। लेकिन तकनीक के इस दौर में हम अपनी सेहत को ना भूलें, क्योंकि आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी है। भागदौड़ भरी जिंदगी में साइलेंट किलर यानी हाई ब्लड प्रेशर से बचें, तनाव कम लीजिए, सेहतमंद खाइए और डिजिटल दुनिया के साथ साथ अपनी सेहत का भी नेटवर्क मजबूत रखिए। अगला गाना जो हम सुनने जा रहे हैं वो और पीछे ले जा रहा है हमें, 1944 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रतन से। ये हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर का एक बेहद मकबूल गीत हम सुनने जा रहे हैं दोस्तों। गहरी और कंट्रोल्टो वॉइस यानी नारी कंठ की वो आवाज जो मंद्र सप्तक कितना प्यारा शब्द है ना, मंद्र सप्तक यानी नीचे के सुर में सहजता से गा सके, ऐसी आवाज में जोहरा भाई अंबाले वाली द्वारा गाए इस गीत का संगीत बनाया था नौशाद साहब ने, नौशाद अली। स्वर्ण लता और करण दीवान पर यह गाना फिल्माया गया था दोस्तों, और इस गीत के बोल लिखे थे DN मधोक ने। 75,000 में बनी थी रतन फिल्म कहते हैं, लेकिन उसका संगीत ही इतना बड़ा हिट हुआ कि ग्रामोफोन कंपनी ने पहले ही साल में 3 लाख रुपए की तो रॉयल्टी कमा ली थी। तो ये रॉयल्टी कमाने यानी कि एक जमाने में इस गाने ने सेट कर दिया था कि संगीत फिल्म का कैसा मकबूल होना चाहिए। आप भी गाइए और गुनगुनाइए साथ में।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: सुरक्षा की बात तो दोस्तों हर जगह आती है, चाहे सड़क पे हो या जिंदगी में। सफर में तो रोड सेफ्टी यानी सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जान बेहद कीमती है। इसी तरह अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से आज ही जुड़े दोस्तों। सिर्फ एक छोटे से सालाना प्रीमियम में 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिल जाता है। सुरक्षित चलें, सुरक्षित रहें। हमारे एक सवाल का जवाब भी आपको हमने खुद ही बताना है, लेकिन जिन्होंने सही जवाब बताया उनका नाम भी बताना है। हमारा सवाल था, रेडियो की लोकप्रिय आवाज देवकी नंदन पांडे किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हुए। इसका जवाब है समाचार वाचन। और सबसे पहले सही जवाब भेजा प्रकाश गोगिया ने दिल्ली से। क्या बात है, एकदम से बाजी मार गए। हमारा सवाल पूरा नहीं हुआ था, वहां से जवाब भी आ गया, नंबर भी सेव किया हुआ है भाई साहब ने। म्यूजिकल दिल लगी की जो हमारी आखिरी पेशकश है, जो गाना है वो है गायक सुबीर सेन की एक शुरुआती हिंदी फिल्म का जो 1957 में आई थी, कठपुतली। हसरत जयपुरी का लिखा ये मधुर गीत जिसका संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। शंकर जयकिशन के बारे में तो हम जानते हैं, 50 और 60 के दशक में और बाद में भी उन्होंने तो संगीत के ऐसे ऐसे शाहकार दिए। इस गाने के वीडियो में बलराज साहब तो बलराज साहनी साहब तो अपनी मौजूदगी से ही दृश्य को जिंदा कर देते हैं। एक्टर कमाल के हैं और वैजंती माला की मौजूदगी इस गाने में भी बड़ी खूबसूरत है, गति का संचार सा करती है। बहुत सुंदर फिल्माया भी गया है गीत और बहुत सुंदर गीत है भी। उनके चेहरे पर आए हाव भाव भी देखने योग्य हैं इस गाने में। आइए सुनते हैं ये गाना।

क्या गाने की लाइनें हैं, कंफ्यूज सा कर देती है ना। मंजिल वही है प्यार की, तो राही कैसे बदल सकते हैं, और राही अगर वही है तो मंजिल कैसे। हाँ, मंजिल तो हो सकता है बदल जाए, लेकिन हमारी मंजिल कभी नहीं बदलेगी। हमारी एक ही मंजिल है कि आप आकाशवाणी से जुड़े रहें और ऐसे गाने सुनते रहें, और उनको सुनने के बहाने हम कुछ ऐसी बातें भी आपको बताएं जो आपके काम की हों। बस यही हमारा मकसद है। आइए सुनते हैं वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि वीके कृष्ण मेनन का जन्म कब हुआ था। इसका

0: सही जवाब है 3 मई। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के 2 भाग्यशाली श्रोता हैं, शिवाजी नगर भोपाल से जयप्रकाश दुबे और उज्जैन से संजीव जैन। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

चंपारण भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास से जुड़ी वो भूमि जहां सत्य ने पहली बार अन्यायी सत्ता की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारा था, जहां से नील की खेती करने पर मजबूर शोषित किसानों की मुक्ति का महामंत्र गूंजा और पूरे देश में छा गया। चंपारण यदि गांधी जी को महात्मा बनाने वाली प्रयोगशाला थी, तो उस प्रयोगशाला में प्रज्वलित सबसे प्रकाशवान दीपक थे राजकुमार शुक्ल। उन्हें चंपारण आंदोलन का वास्तविक शिल्पकार माना जाता है। राजकुमार शुक्ल का जन्म 23 अगस्त सन 1875 को चंपारण जिले के सतवरिया गांव में हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार था जिसकी अपने क्षेत्र में बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनके पिता का नाम कोलाहल शुक्ल था, जो मूलतः सीवान जिले के निवासी थे, लेकिन बाद में वो सतवरिया आकर बस गए थे, जहां उन्होंने काफी भूमि अर्जित की। इसी समृद्ध परिवार में राजकुमार शुक्ल का पालन पोषण हुआ। इस तरह वो एक समृद्ध और प्रभावशाली किसान थे, जिनकी आर्थिक स्थिति उस समय के औसत किसान से बहुत बेहतर थी। उनका विवाह केवला देवी से हुआ था। उनके पारिवारिक जीवन में उनकी पत्नी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि पंडित राजकुमार शुक्ल को एक सत्याग्रही के रूप में विकसित करने और संघर्षों में साथ देने में केवला देवी का महत्वपूर्ण योगदान था। उनके परिवार में दो पुत्रियां थीं, जिन्होंने उनके संघर्षपूर्ण जीवन को बहुत करीब से देखा था। राजकुमार शुक्ल ने अपनी युवावस्था में बेतिया राज में एक मुहर्रिर यानी मुंशी के रूप में भी कार्य किया था, जहां उन्हें प्रशासनिक और विधिक प्रक्रियाओं का आरंभिक ज्ञान प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह कृषि तथा सामाजिक कार्यों में संलग्न हो गए। ये वो समय था जब अंग्रेजों ने किसानों पर अत्याचार की एक अलग ही कहानी लिखी। अपनी ही कृषि भूमि पर किसानों के लिए अलग नियम कानून और प्रतिबंध लागू हुए, जिसने किसानों की दुर्दशा कर रखी थी।

19वीं शताब्दी के मध्य से ही यूरोपीय बागान मालिकों ने चंपारण में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी थीं और ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में उन्होंने किसानों पर अत्याचार का एक संगठित ढांचा तैयार कर लिया था। उन्होंने तिनकठिया खेती की प्रणाली लागू की थी। ये एक दमनकारी भू राजस्व व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी भूमि के प्रत्येक बीघा यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा भूमि पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी। ये प्रणाली बेहद शोषणकारी थी क्योंकि किसानों को नील की फसल के लिए जो मूल्य दिया जाता था वो उनकी लागत से भी कम होता था। बागान मालिक स्वयं ही मूल्य निर्धारित करते थे। नील की खेती से भूमि की उर्वरता का भी ह्रास होता था क्योंकि नील की जड़ें गहरी होती थीं जो भूमि की उर्वरता को नष्ट कर देती थीं, जिससे उस भूमि पर बाद में अनाज उगाना कठिन हो जाता था। इसके साथ ही 40 प्रकार के अवैध कर भी किसानों पर लगाए गए थे। राजकुमार शुक्ल स्वयं बेलवा कोठी के अंतर्गत एक रैयत थे, इसलिए इन प्रताड़नाओं का उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव था। अंग्रेजों के इस शोषण और अत्याचार ने उन्हें भीतर तक आंदोलित कर रखा था। उनकी संघर्ष यात्रा इन्हीं अत्याचारों के प्रतिरोध से आरंभ हुई। उनका प्रतिरोध सन 1907-8 के आसपास स्पष्ट रूप से उभरने लगा था। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था और भारत की धरती पर यह उनका पहला आंदोलन था, लेकिन चंपारण में गांधी जी के आगमन से लगभग एक दशक पहले भी किसानों ने सामूहिक विद्रोह किए थे, जिसमें शेख गुलाब और शीतल राय जैसे नेताओं की अगुवाई में बागान मालिकों के गुंडों और कारिंदों को कड़ी चुनौती दी गई थी। राजकुमार शुक्ल ने इस दौरान स्थानीय पंचायतों को संगठित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। वो चाहते थे कि किसान अपने विवादों को निलहे साहबों की अदालत के बजाय अपनी पंचायतों में सुलझाएं। राजकुमार शुक्ल की ये पहल ब्रिटिश सत्ता और बागान मालिकों के लिए एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि इससे उनके न्यायिक और प्रशासनिक एकाधिकार को खतरा पैदा हो गया था। वो बागान मालिकों के लिए एक बड़ा अवरोध बन गए थे। परिणाम स्वरूप उन्हें व्यक्तिगत क्षति पहुंचाई गई, उनकी फसलों को नष्ट कर दिया गया, उनके घर को आग लगा दी गई, उनका पशुधन भी छीन लिया गया, उन पर दर्जनों झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। बेलवा कोठी के बागान मालिकों ने उन पर चोरी, मारपीट और दंगे के आरोप लगाए। सन 1914 में एक बागान मालिक के साथ हुए विवाद के कारण उन्हें कुछ हफ्तों के लिए जेल में भी डाला गया, लेकिन राजकुमार शुक्ल का प्रतिरोध लगातार जारी रहा। ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, उनका संकल्प अडिग रहा। अपमानजनक स्थिति और आर्थिक नुकसान के बावजूद

वो अंग्रेजों को चुनौती देते रहे। लेकिन अब उन्हें लगने लगा था कि चंपारण की जो समस्या है वो केवल स्थानीय स्तर पर प्रतिरोध करके सुलझाई नहीं जा सकती है, इसके लिए एक राष्ट्रीय नेतृत्व की आवश्यकता है। और उनकी दृष्टि में इस समस्या को केवल गांधी जी ही सुलझा सकते थे।

राजकुमार शुक्ल के इस संघर्ष में उनके साथ जुड़े पीर मोहम्मद मुनीश। वो एक पत्रकार थे और कानपुर से निकलने वाले समाचार पत्र प्रताप में वो चंपारण के किसानों पर होने वाले अत्याचारों की खबरें लिखते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में निकलने वाला ये पत्र किसानों की पीड़ा का दर्पण बन गया। पीर मोहम्मद मुनीश के साथ मिलकर राजकुमार शुक्ल ने इस संदर्भ

में गांधी जी और कई राष्ट्रीय नेताओं को पत्र भी भेजे थे। दोनों की जोड़ी ने ही मिलकर वो वैचारिक धरातल तैयार किया जिस पर बाद में चंपारण सत्याग्रह खड़ा हुआ। दिसंबर सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, अंबिका चरण मजूमदार जैसे अनेक नेताओं से राजकुमार शुक्ल खुद मिले, लेकिन सभी ने उनसे कहा कि वो स्थानीय स्तर पर इस समस्या को सुलझाएं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब गांधी जी से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने गांधी जी से प्रार्थना की कि आपको चंपारण चलना होगा, वहां किसान मर रहे हैं। हालांकि अधिवेशन में उनके प्रयासों से चंपारण में किसानों की दुर्दशा पर एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया था, लेकिन राजकुमार शुक्ल इससे संतुष्ट नहीं थे। वो चंपारण में गांधी जी की उपस्थिति चाह रहे थे, जैसे नियति भविष्य लिख रही थी। अधिवेशन के बाद गांधी जी ने चंपारण जाने में अपनी असमर्थता जताई और राजकुमार शुक्ल साये की तरह उनके पीछे हो लिए। गांधी जी कानपुर गए, शुक्ल जी वहां भी पहुंच गए। गांधी जी साबरमती आश्रम लौट आए तो वो आश्रम में डेरा डालकर बैठ गए। गांधी जी कलकत्ता पहुंचे तो वो पहले से ही वहां मौजूद थे। गांधी जी ने बाद में लिखा भी कि इस अनपढ़ किंतु संकल्पवान किसान ने मुझे जीत लिया। अंततः 9 अप्रैल सन 1917 को वो राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण के लिए रवाना हुए और 10 अप्रैल को दोनों पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचे। दोनों की साधारण वेशभूषा देखकर नौकरों ने उन्हें अछूत समझ लिया तथा कुएं से पानी तक लेने से रोक दिया। यही वो बिंदु था जब गांधी जी ने महसूस किया कि भारत की लड़ाई केवल अंग्रेजों से नहीं, सामाजिक कुरीतियों से भी है। इसके बाद गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां जेवी कृपलानी और छात्रों ने उनका स्वागत किया। 15 अप्रैल सन 1917 को वो मोतिहारी पहुंचे, जो पूर्वी चंपारण का मुख्यालय था। यहीं से आरंभ हुआ चंपारण सत्याग्रह, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह जिसने ब्रिटिश राज को हिला कर रख दिया। कमिश्नर ने गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने इस सरकारी आदेश की विनम्रता पूर्वक अवहेलना की। 18 अप्रैल को मोतिहारी की अदालत में गांधी जी की पेशी हुई। राजकुमार शुक्ल ने आसपास के गांवों में सूचना फैला दी, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों की संख्या में किसान अदालत परिसर में जमा हो गए। ये जन सैलाब ब्रिटिश सत्ता के लिए अप्रत्याशित था। और फिर गांधी जी ने अदालत में अपना ऐतिहासिक बयान दिया। उन्होंने कहा, मैंने कानून तोड़ने के लिए नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज और मानवीय सेवा के उच्चतर कानून का पालन करने के लिए जिला छोड़ने से इनकार किया है। उनका बयान बिजली की तरह पूरे देश में फैल गया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा, मुकदमा वापस ले लिया गया और गांधी जी को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति मिल गई। ये भारत में सविनय अवज्ञा की पहली बड़ी नैतिक जीत थी। राजकुमार शुक्ल गांधी जी के साथ गांव गांव घूमते रहे। गांधी जी ने उन क्षेत्रों को देखा जहां अत्याचार चरम पर था। इस जांच के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद और जेबी कृपलानी आदि के साथ एक टीम तैयार हुई। राजकुमार शुक्ल ने किसानों को निर्भीक होकर बयान देने हेतु प्रेरित किया और लगभग 10,000 किसानों के बयान दर्ज हुए। इस आधार पर चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ, तिनकठिया प्रथा समाप्त हुई, किसानों से वसूले गए अवैध धन का एक हिस्सा लौटाने का आदेश हुआ और अन्यायपूर्ण कर से भी मुक्ति हुई। राजकुमार शुक्ल ने इस आंदोलन के बाद भी शिक्षा, स्वच्छता और जन जागरण के कार्य में स्वयं को समर्पित रखा। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। वो विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और खादी के प्रचार में जुट गए तथा किसान सभा आंदोलन के प्रारंभिक स्तंभ बने। वर्षों की कानूनी लड़ाई में ब्रिटिश दमन ने उनकी संपत्ति छीन ली थी, पशुधन नष्ट हो गया था, उनकी आर्थिक स्थिति भी टूट चली थी, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। इसी विपन्न अवस्था में उन्होंने 20 मई सन 1929 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि राजकुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? सवाल एक बार फिर सुन लें, राजकुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

देखिए दोस्तों, अभी हम वतन का राग सुनने के बाद थोड़ी देर में समाचार सुनेंगे और अभी 10:30 बजे हमारी मुलाकात होगी दिल का मेल बॉक्स में। वो फरमाइशी प्रोग्राम है। आप व्हाट्सएप पर हमें फरमाइशें भेज सकते हैं। अगर फरमाइश ना भी भेजनी हो तो सिर्फ अपना नाम और जगह का नाम लिखकर भेज दें तब भी चलेगा। गाने तो सभी आपकी पसंद के ही बजते हैं ना। 98-68-86-87-53 ये वो नंबर है जिस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं हमें fmgoldairdaily@gmail.com पर। तो मिलते हैं इन समाचारों के उस पार, पहले हिंदी अंग्रेजी फिर विश्व दर्पण और वर्ल्ड न्यूज के बाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। पीठ ने कहा कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग से भूमि आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि सोने और प्लेटिनम से बड़ी मड़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर VAT 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए लिया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति PP चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कॉर्निलो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors including trade, defence, technology, water management, clean energy, healthcare and education. Several agreements were also signed to deepen collaboration in priority areas. Announcing the elevation of ties to a strategic partnership, PM Modi said that India and Netherlands ties had witnessed significant progress over the last decade and described the Netherlands as one of India's key European partners. Prime Minister Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden, marking a historic milestone in the deepening alliance between New Delhi and Stockholm. Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart.

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन के स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। अमरीका और नाइजीरिया की सेनाओं ने इस्लामिक स्टेट के वरिष्ठ कमांडर अबू बिलाल अल मिनुकी को मार गिराया। बुल्गारिया ने ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट 2026 में सबसे अधिक वोट प्राप्त करके जीत हासिल की। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। और टेनिस में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर इटली ओपन के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में

0: व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: भारत और स्वीडन के बीच एक सदी से अधिक पुराना व्यापारिक और आपसी संबंध का समृद्ध इतिहास है, जो पारस्परिक सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित है। दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों की पहचान कई ऐतिहासिक उपलब्धियों से होती है, जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की 1926 में स्वीडन यात्रा की शताब्दी। आज ये संबंध अपनी सांस्कृतिक नींव से आगे बढ़कर एक मजबूत औद्योगिक और आर्थिक साझेदारी में तब्दील हो रहा है। आकाशवाणी से बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने इस बात पर बल दिया कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमरीका और नाइजीरिया की सेनाओं ने इस्लामिक स्टेट के वरिष्ठ कमांडर अबू बिलाल अल मिनुकी को मार गिराया है। शुक्रवार रात को नाइजीरिया के लेकचाट बेसिन में सेना द्वारा एक संयुक्त सैन्य अभियान चलाया गया, जिसमें इस्लामिक स्टेट के वरिष्ठ कमांडर अबू बिलाल अल मिनुकी और अन्य आईएसआईएस के आतंकियों को मार गिराया गया। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबी ने इनके मारे जाने की पुष्टि की है।

0: जीत बंगरंगा को सबसे अधिक वोट मिले। बल्गारिया की 4 वर्ष में ये पहली जीत है। बल्गारिया ने कुल 516 अंक के साथ प्रतियोगिता जीती है। यूरोविजन की परंपरा का पालन करते हुए पहले निर्णायक मंडल ने अंक दिए, उसके बाद जनता के टेली वोट के परिणाम घोषित किए गए। वहीं निर्णायक मंडल ने गीत बंगरंगा को 204 अंक दिए और टेली वोट के माध्यम से उसे 312 वोट मिले। लगभग 10 वर्ष में ऐसा पहली बार हुआ है जब निर्णायक मंडल और जनता ने एक ही विजेता को चुना है। इससे पहले ये प्रतियोगिता 2017 में कीव में हुई थी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इसराइल और लेबनान के बीच वाशिंगटन में अमेरिका की मध्यस्थता से हुए 45 दिन के युद्ध विराम के विस्तार की घोषणा का स्वागत किया है। श्री गुतरश ने संबंधित देश से शत्रुता समाप्त करने, हमले रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा अपने दायित्वों का समुचित पालन करने का आग्रह किया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार पल।
2: बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 ATP चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे।
1: आज विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों की रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। अमेरिका और नाइजीरिया की सेनाओं ने इस्लामिक स्टेट के वरिष्ठ कमांडर अबू बिलाल अल मिनुकी को मार गिराया। बुल्गारिया ने वियना में आयोजित यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट 2026 जीता। 10 वर्षों में ऑस्ट्रिया ने सबसे अधिक वोट हासिल किए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। और टेनिस में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर ने इटली ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सुनील वर्मा विद वर्ल्ड न्यूज। The headlines. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a 2-day visit to Sweden. US and Nigerian forces kill senior Islamic State commander Abu Bilal al-Minuki. Bulgaria wins Eurovision Song Contest 2026 in Vienna, Austria, with highest number of votes in 10 years. In badminton, Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. And in tennis, world number one Jannik Sinner storms into the final of Italian Open. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors including trade, defence, technology, water management, clean energy, healthcare and education. Several agreements were also signed to deepen collaboration in priority areas, announcing the elevation of bilateral relations to

भाई लोगों को तो पहले ही पता चल चुका है, दिल का मेल बॉक्स खुल गया है। कब से खोल के रखा है उन लोगों ने, मैसेज इतने सारे आ रहे हैं कि पूछे मत। बस 98 68 86 87 53 हमारा नंबर, ऐसा लगता है पूरी दुनिया में सबसे अधिक मकबूल नंबर है। और हमारी ईमेल आईडी भी fmgoldair@delhi@gmail.com भी, बहुत मैसेज बरसात हो रही है फरमाइशों की। लेकिन दोस्तों, जब आप एक बार अपना नाम भेज दें तो दोबारा भेजने की क्या जरूरत है। और दूसरी बात ये कि नाम से पहले वो गुलाब का फूल, सूरजमुखी का फूल और तमाम तरह के डिजाइन, ये बनाने की क्या जरूरत है भाई। उन सब से गुजरते हुए फिर हमें आपका नाम पढ़ना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। और इसमें होता क्या है फिर, टाइम, समय,

घंटे का तो प्रोग्राम है, उसमें आपके नाम भी पढ़ने हैं, गाने भी सुनने हैं, बहुत सारे काम करने हैं ना। कुछ मदद कीजिए हमारी, अपना नाम एक ही बार भेज दीजिए, बस हो गया। एक भाई साहब के तो 10 मैसेजेस आ चुके हैं। खैर साहब, हम आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर दिल का मेल बॉक्स खोल कर बैठे हैं आपकी फरमाइशों का प्रोग्राम। और फरमाइशों का प्रोग्राम है तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने फरमाइशें की हैं उनके नाम पढ़ देना जरूरी है, फिर उन्हीं में से किसी एक का गाना हम चला देंगे और बजेंगे वो गाने जो सुनेंगे आप भी और हम भी। मालियान सरदना मेरठ से, अनिल जैन, संयम मुस्कान, मास्टर जीव्यम, भाई दिग्दर्शन जी, भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से, कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी, ये राजेश कुमार साहब हैं, मोहन गार्डन दिल्ली से, मुंबई से अनु बरजात्या, शमसुल खान और अनुराज बेनारा, शीना नायर मैंगलोर कर्नाटका से संदेशा भेजती हैं, इन सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी नाम बाद में पढ़ेंगे, गाना सुनने की बहुत जल्दी हो रही है।

देखिए साहब, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित, रितु, मुकेश, जगताप, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा माही, ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू, देवेंद्र अरोड़ा साहब देहरादून से, और ये एक संदेशा हिमानी शर्मा का आया है सहारनपुर से। वाह, सहारनपुर से हिमानी शर्मा का संदेशा आया है। उन्होंने एक बहुत ही प्यारे गीत की फरमाइश की है और कहा है कि ये गीत मैं अपने हस्बैंड को डेडिकेट करना चाहती हूँ। कमाल है साहब, आप सीधा उन्हें फोन करके बता दो ना। मजे की बात यह है कि वंदना चौहान का ये संदेशा भी इसी गीत के लिए आया है दिल्ली से। तो आइए ये गाना सुनते, बहुत ही प्यारा गीत आपके लिए आ रहा है।

0: बचाएं।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पद्मा टॉक।

किज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगलाबेन राजेंद्र वेद प्रकाश मोदी नगर गाजियाबाद से मारहड़ा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी शहनाज नवेद हसन सुहेल रशीद वारसी अनम यशफ उत्तम नगर वेस्ट से जयराम खोरवाल सचिन अमन दीपांशु कस्बा गन्नौर उत्तर प्रदेश से फारूक अली खान फैजी फराज फरहीन फरहान फारिया ताहिरा और कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा सिटी दीवाना नवाब अहमद भारती शबाना भारती अरहान अहमद सूफिया नवाब बल्लीमारान से पंकज मोहोड़ अमरावती महाराष्ट्र से और चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा विमला अनेजा बठिंडा रोड मंडी मणि डब्वाली से राजेंद्र नारंग अंजू मोहित तानिया भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा कपिल ईशान पूजा परिहार गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार पुष्पेंद्र कुमार सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और उनके साथ चंद्रकला गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार डैनी और मनीष राम देवरा से दिनेश चौहान डांगरी से बाबूराम जयपाल खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजरनिया देवेंद्र राजपाल अभिषेक योगेश पूजा आरजू नव्या बिजरनिया और सुदर्शन मुखी अनीता और सिमरन शांति नगर सोनीपत झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया आपके नाम पढ़ूं रीटा भाटिया जी भी साथ हैं और गाना सुनवाऊं दोनों में फंस गए हैं अपन लेकिन नहीं भाई साहब हम तो गाना सुनेंगे आप भी सुनिए रानी की दिल्ली से ये फरमाइश है।

दोस्तों आपके मैसेजेस आते हैं, आपके संदेशे आते हैं, फरमाइशें आती हैं, दिल भीग भीग जाता है, जी तो चाहता है आपकी हर फरमाइश हम पूरी करें, लेकिन क्या करें, समय की पाबंदियां होती हैं। और दूसरी बात यह कि आप बार बार एक भी कार्यक्रम में बार बार अगर मैसेज भेजेंगे तो हमारे बाकी भाई बहनों का क्या होगा, उनकी भी हमें नाम पढ़ने का दिल करता है, आपको भी अच्छा लगता है कि आपका नाम सुने आप, तो आप के भाई बहनों को भी अच्छा लगेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखें। और वो सरनेम हर नाम के साथ साथ लगाएं, आप एक साथ अगर 10 नाम लिखते हैं तो अगर सरनेम हर नाम के साथ पढ़ना होगा तो क्या होगा, कम से कम 5 और नाम पढ़ने की जगह कम पड़ जाएगी सबको शामिल जो करना है। अगला गीत भी बहुत प्यारा फरमाइशी है एक, और वो सुनने से पहले हम कुछ नाम जल्दी से पढ़ देते हैं एक मिनट के अंदर जो पढ़े जा सके। और आप में से जिनके नाम हम नहीं पढ़ पाए, हाथ जोड़ के हम माफी मांग रहे हैं, भाई आपको हम बहुत दिल से मोहब्बत करते हैं, बस क्या करें। संदीप मक्कड़, मनोहर लाल गांधी, धर्मवीर दिल्ली वाले, कमल साहनी, बुट्टी राम हांडा, जोगिंदर पाल मक्कड़ पिंगड़ा वाले चौक गोराया जलंधर से, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, रिफ्लिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे, प्रशांत राजे, कुमार संचित, कुमार प्रथमेश, प्रणाली सर्वद, सानवी दत्रेंगी भाटपाड़ा भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक कैथल हरियाणा से, मधु नायक व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से, भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण, और संस्कृति और पौरुष, आप सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया। ये प्यारा सा गीत, इसके साथ दिल का मेल बॉक्स आज यहाँ पर बंद हो जाएगा, ऐसा कहें नहीं, दिल का मेल बॉक्स तो खुला रहता है, आगे भी जो कार्यक्रम होंगे समाचार सुनने के बाद भी जब आप आते रहेंगे तो गाने तो आपकी पसंद के ही बजेंगे और बातें भी आपको सुनने में अच्छी लगे ऐसी ही होंगी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने, यांत्रिक मेधा, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। भारत और स्वीडन के बीच व्यापार 2025 में रिकॉर्ड 7.75 अरब डॉलर का रहा और वर्ष 2000 से 2025 के बीच स्वीडन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2.8 अरब डॉलर से अधिक का रहा। प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के बीच कल हेग में हुई वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी

0: कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक तथा रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रूपये की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रूपये, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रूपये और गुरूग्राम में 85.12 रूपये हो गई है। इस सप्ताह की शुरूआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रूपये की वृद्धि की थी। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का 6ठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति जिले के येरुपेडु में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के डॉक्टर एस वेंकटेश्वर ने इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a 2-day visit to Sweden, marking a historic milestone in India-Sweden relations. He will hold bilateral talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review cooperation in trade, green transition, AI, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. The two leaders will also address the European Roundtable for Industry alongside European Commission President Ursula von der Leyen. This visit is the third leg of Prime Minister Modi's UAE and European tour and his first to Europe since the India-EU Free Trade Agreement took effect in January 2026. Bilateral trade reached a record $7.75 billion in 2025, with Swedish investment in India totaling over $2.8 billion between 2000 and 2025. The partnership was strengthened during Mr. Modi's 2018 visit, which led to the Joint Innovation Partnership for a Sustainable Future. Yesterday, in the second leg of the Prime Minister's tour, India and the Netherlands have agreed to elevate their bilateral relationship to a strategic partnership following talks between Prime Minister Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. The leaders reviewed cooperation across trade.

0: नमस्कार, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल एफएम गोल्ड और आप हमें सुन पा रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: मेरा नाम है रश्मि कुकरेती और कार्यक्रम है आज के मेहमान। दोस्तों, आज के मेहमान कार्यक्रम में आज एक विशेष शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप हैं राम सिंह बौद्ध जी। आपको शौक है तरह तरह के रेडियो जमा करने का, रेडियो से बहुत प्यार करते हैं। जब रेडियो की बात होती है तो हमें एक ही शेर याद आता है मजरू का, हम तो आवाज हैं दीवारों से छन जाते हैं। तो जो आवाज है ना, वो तो अगर कहीं भी आप सुनना चाहे तो ऐसे संचार के माध्यम मौजूद हैं जो कि आपके पास पहुंच जाए।

0: और रेडियो तो बहुत ही सुलभ, सरल और सटीक माध्यम है आवाज पहुंचाने का। तो राम सिंह बौनजी, कैसा लग रहा है यहाँ आकर?
1: मैडम बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। सबसे अच्छा ये लग रहा है मुझे कि जिस स्टूडियो में गांधी जी सन 1947 में बैठे थे और उन्होंने अपना जो वक्तव्य दिया था, वहां पर मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए आकाशवाणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
0: हमने सुना है कि आपके पास बहुत सारे रेडियो सेट्स हैं, बहुत प्यार करते हैं आप रेडियो
1: जी
0: से।
1: मैडम जी मैडम,
0: इसके बारे में कुछ बताइए।
1: शौक तो मैडम जी मुझे वैसे पहला शौक जो मेरा रेयर बुक्स, डाक टिकट, सिक्के वगैरह इकट्ठे करने का है, और कभी कभी कोई रेडियो अच्छा मिलता है रेडियो भी उठा लाता हूँ। रेडियो सुनने का तो पहले से शौक है, क्योंकि यही माध्यम था, टेलीविजन हमारे जमाने हुआ नहीं करते थे। लेकिन शौक ये तब मेरा बढ़ गया और मुझे लग गया जब 3 अक्टूबर 2014 से माननीय प्रधानमंत्री मन की बात शुरू की, तब जो मेरा इसकी तरफ रुझान बढ़ा। सब माध्यम उन्होंने छोड़कर, संचार माध्यम छोड़कर, एक रेडियो को ही चुना, ये हमारे लिए और आकाशवाणी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। और आज मैं देख रहा हूँ जगह जगह लोग रेडियो नए भी खरीद रहे हैं, जो किसी पुराने थे वो भी रखे हैं। जैसे कि उन्होंने आह्वान भी किया कि कोई भी रेडियो क्या, कोई भी चीज जो अपने वो बेकार न समझे, और अपने घर में भी जो है सब लोग एक संग्रहालय स्थापित करें। तो इसी कड़ी में मैंने सोचा कि प्रधानमंत्री भी आह्वान कर रहे हैं रेडियो करने का, तो मैडम पूरे देश में मैं घूमा, मैंने विभिन्न संग्रहालय देखे, हर चीज का संग्रहालय मिला, लेकिन मैंने कहीं भी रेडियो संग्रहालय नहीं देखा, ना किसी व्यक्ति विशेष के पास, ना संस्था के पास। तो मेरे मन में विचार कौन था, ये जो रेडियो हमारे मानव जीवन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग रहा है, और जैसे लोग आज मोबाइल चिपके रहते हैं, मैंने खुद देखा अपने जमाने में लोग इससे भी चिपके रहते थे, खेत हो, खलियान हो, रसोई हो, घर हो, सब जगह रेडियो का बोलबाला था, रेडियो लोग ले जाते। कहीं ये भी देखा मैंने, जो रिश्तेदारी में जो लोग जाते थे तो रेडियो साथ ले जाते थे, और क्रिकेट के शौकीन, कब जब टेलीविजन तो हुआ नहीं करता था, क्रिकेट के शौकीन मैंने देखा छोटे छोटे पॉकेट रेडियो आते थे, जेमा रखे रहते थे, और कमेंट्री बड़े 104 से सुना करते थे
0: जी।
1: सबसे सस्ता माध्यम है, बस 2 सेल लगाइए ज्यादा ज्यादा 20 रुपए के, और 3 महीने आराम से सुनिए, और कहीं भी दूर में, दराज में, खेत खलियान में, रसोई में, आप बिस्तर में भी हैं तब भी रेडियो को जो सुन सकते हैं, और बहुत सरल माध्यम है
0: जी। और जो ये बात आप कह रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि हम आगे चलने से पहले क्यों ना कहीं भी सुन सकते हैं, तो अभी फिलहाल एक गीत सुन लेते हैं। तो कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे?
1: भारत को आजादी दे रही बिना खड़क बिन ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।
0: वाह, तो आइए सुनते हैं जागृति फिल्म का ये गीत
1: जी।

0: बहुत ही उम्दा गीत, बहुत ही सुंदर, मीठा, सुरीला और संदेश प्रद गीत आपने सुनवाया हमारे सुनने वालों को। जैसे कि रेडियो है हमारा, आकाशवाणी है, ये तो भारत का लोक प्रसारक तो है ही, जो कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।
1: आपका लोगो भी जो मैं देखता हूँ आकाशवाणी का, उसमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का ही लगा रहता है
0: जी। तो हमेशा जो यहाँ के कार्यक्रम होते हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है कि सबको कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा पहुँचे, लाभ पहुँचे। तो कभी आपको ऐसा लगा कि मैं सुनता हूँ, जुड़ा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ तो आनंद मिल रहा है, फायदा हो रहा है? फायदा मतलब ज्ञान विज्ञान की बातें सुनने को मिलती है।
1: रेडियो एक ऐसा सुलभ माध्यम है कि इससे किसी भी समय, जैसे मैं देहाती प्रोग्राम सुनता है तो 6:20 लगा लिया, वो टेलीविजन में सुलभ नहीं है। हमें रेडियो देहाती प्रोग्राम देता है, कृषि कार्यक्रम देता है और ज्ञान वर्धन के बहुत से कार्य, स्टूडेंट के लिए भी कार्यक्रम, मतलब कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है जो हमारे ज्ञान ज्ञान वर्धन न हुआ वो। और एक और बताना चाहूंगा, आज भी मैं ये मानता हूँ सबसे सटीक सच्ची और अच्छी खबर जो है वो रेडियो के माध्यम से आदमी को सुन सकता है, और खबरों में थोड़ा भ्रम हो सकता है लेकिन आकाशवाणी की खबरों में कोई, मैं रेडियो में भ्रम नहीं मानता।
0: हाँ, मतलब विश्वसनीय स्रोत,
1: विश्वसनीय खबरें जो है आज भी रेडियो की हैं, वो आपको अनवरत सेवाएं देता है। कहीं भी चले जाइए, पहाड़ में हो आप, कहीं भी बैठे हो आप, रसोई में हो, मतलब इतना सुलभ साधन है। हमने इसका वो जमाना देखा है कि जब ये टेलीविजन नहीं हुआ करता था तो बहुत महत्व था रेडियो का, हर घर में आदमी रेडियो रखता, जिस घर में रेडियो नहीं होता लोग कहते थे रेडियो नहीं तेरे पास।
0: अब तो रेडियो सेट्स भी हैं और साथ ही आकाशवाणी का मोबाइल ऐप भी है न्यूज ऑन एयर, और साथ ही तरह तरह के जो हम मोबाइल उपलब्ध हैं उसमें भी आकाशवाणी की जो प्रसारण है वो सुन सकते हैं और जुड़ सकते हैं।
1: मैं तो ये चाहूंगा जैसे आजकल विद्यार्थियों को जो मोबाइल दे रहे हैं और वो टेबलेट्स वगैरह दे रहे हैं या कर्मचारी दे रहे हैं, उन्हें ये भी देना चाहिए रेडियो, जिससे कि गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो सुन सकें, लोगों को बता सकें। क्योंकि टेलीविजन हर जगह ले जाना संभव नहीं, भले ही मोबाइल में टेलीविजन आ गया है लेकिन वो बात नहीं हो सकती जो मतलब रेडियो सीधा बोलता है।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही राम सिंह जी कि यदि हर व्यक्ति के पास, हर छात्र के पास छोटा सा रेडियो सेट मौजूद हो तो कहीं भी जाएं, जैसे हम मोबाइल रखते हैं छोटा सा सेट, कहीं भी जाएं, क्योंकि आकाशवाणी से छात्रों के लिए, हर व्यक्ति के लिए प्रोग्राम रहते हैं, समाचार रहते हैं, जो कि आपने कहा कि विश्वसनीय खबर वो रहती है। रेडियो के साथ आप जुड़े रहें तो हम कहेंगे कि आप संसार के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। और कई ऐसी घटनाएं भी हुई हैं कि कई ऐसे अवसर भी आए हैं कि कोई आपदा आई हो तो भी रेडियो ने बहुत काम किया है। जब सारे संपर्क के साधन टूट गए तो लोगों ने रेडियो सेट के जरिए समाचार सुने, रेडियो सेट के जरिए मदद पहुंचाई है, संदेश पहुंचाए हैं और परिवारों को जोड़ा है, ये भी हुआ है। एक बात आपने इससे पहले बहुत अच्छी कही थी कि आप देखते हैं जब, क्योंकि आप तो गजरौला में रहते हैं तो आसपास

0: पूरा कृषि का क्षेत्र भी है। और तो आप देखते हैं कि गांव देहात के लोग जो है आज भी खेतों में या चलते फिरते रेडियो से जुड़े रहते हैं, कृषि कार्यक्रम सुनते हैं, तो उसका अनुभव कैसा रहा है?
1: उसका अनुभव यह है मैडम, 7:20 पे आपका कृषि कार्यक्रम आता है।
0: जी
1: जब ये हरियाणा अपना देहाती प्रोग्राम खत्म हो जाता है, 7:20 पे चलता है, उसके बाद जो सीधा कृषि कार्यक्रम आता है, तो मैंने लोग बाग देखा है कि जल्दी जल्दी काम निपटाया या देखा, क्योंकि वो प्रसारण ऐसा प्रसारण टेलीविजन पर नहीं होता। तो ज्यादातर जो पुराने लोग हैं या जो मोबाइल वो नहीं करते, उस कार्यक्रम को जो अपना रेडियो सेट कर देते हैं, रखते हैं थोड़ा समय निकाल के, चाहे भले ही खाना खा रहे हो, तो सुनते हैं कार्यक्रम को और उससे बड़ी अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं।
0: हाँ देखिए, उसमें तो ये भी है ना कि आपको जरूरी नहीं कि एक जगह बैठ के कुछ देखना है या हाथ में कुछ होना चाहिए। आपने तो उसको ट्यून किया अपना मनपसंद चैनल और अपने काम में लग गए, है ना?
1: वो सुनाता रहेगा
0: जी,
1: टेलीविजन का वो बैठना ही पड़ेगा, तभी आप देख सकते, काम भी छूटेगा। लेकिन रेडियो के साथ ऐसा कुछ नहीं, आप अपना रसोई में काम भी कर रही हैं, जो सुनने वाले, रेडियो एक साइड में रखा है, आपको मनोरंजन करना है तो गाने बज रहे हैं उसमें, आपको देहाती प्रोग्राम सुनना होता है, महिलाओं का प्रोग्राम आता है रेडियो में बहुत अच्छा, वो टीवी पे नहीं आता, वो दोपहर में आता है, आपने देखा होगा।
0: हाँ,
1: महिलाओं
0: हाँ,
1: का प्रोग्राम आता है,
0: तो महिलाओं का आपने कहा, और महिलाओं को क्या, हम सबको भी गीत संगीत बहुत
1: गीत
0: पसंद
1: संगीत
0: है,
1: बता,
0: तो
1: हाँ।
0: हम अभी भी एक और गीत सुनवाते हुए चलते हैं, बताएं आपकी पसंद का गीत।
1: मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है,

0: बहुत सुरीला गीत था ये, हमने जो गीत सुना आपकी पसंद का
1: जी।
0: और अब वापस आते हैं आपके संग्रहालय पर
1: जी।
0: आपने बताया कि ये यात्रा तब शुरू हुई जब प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम मन की बात से आप जुड़े, तो आपके मन में ये विचार आया कि क्यों ना संग्रहालय बनाया जाए, तो इस यात्रा का अनुभव कैसा रहा उसके बारे में बताएं।
1: यात्रा करो ऐसा, जब जो के प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम शुरू किया मन की बात रेडियो से ही, तो लोगों में उत्साह बढ़ा और लोगों ने सोचने को मजबूर हुए कि भाई प्रधानमंत्री टेलीविजन तो बहुत अच्छा माध्यम है, रेडियो को ही क्यों चुना
0: जी।
1: इसमें जो है हमारे प्रधानमंत्री की सोच का सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री दूरदर्शी तो है ही, तो उन्होंने दूरदर्शन परिचय देते हुए टेलीविजन को या मोबाइल को ना वो करके रेडियो को ही सुना, क्योंकि आज भी रेडियो ज्यादातर सब जगह सुगम सुलभ है। कभी कभी बिजली नहीं भी आती है तो आपका टेलीविजन डिब्बा बना रखा रहेगा, वो कुछ नहीं कर सकते आप उसे, मोबाइल आपका चार्ज नहीं होगा डिब्बा बना रखा रहेगा, लेकिन इसके साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे सुलभ और बढ़िया माध्यम रेडियो है हमारा संचार का माध्यम।
0: अभी आपके पास कितने रेडियो सेट्स इस समय है?
1: मेरे पास मैडम इस समय तो वैसे 1400 रेडियो है।
0: अच्छा।
1: लेकिन 1100 डिफरेंट रेडियो, मतलब
0: अलग
1: अलग मॉडल के विभिन्न कंपनियों के हैं, मतलब हर देशों में जहाँ जहाँ रेडियो बनते थे जैसे जैसे हमें मिलता रहा वो मैं उन्हें इकट्ठा करता रहा।
0: और एक तो पहला रेडियो जो सेट था वो आपके पास कौन सा था, मतलब इस संग्रहालय का?
1: मेरा जो पहला मार्कोनी फोन है सन 1900 का है।
0: अच्छा।
1: हाँ
0: 1900 का
1: है मार्कोनी, जो कि हमारे यहाँ तो
0: यानी कि एक शताब्दी से भी पुराना।
1: हाँ, जब तो हमारे यहाँ आकाशवाणी शुरू भी नहीं हुई थी
0: जी,
1: या रेडियो शुरू भी नहीं हुआ, तो तब के क्योंकि विदेशों में अमरीका में बहुत पहले हो चुका था
0: जी,
1: तो वो 1900
0: सेट आपके पास?
1: हाँ वो सेट मेरे पास है। और जो एक सेट है मेरे पास अमिताभ बच्चन ने कुली फिल्म में यूज किया है।
0: अच्छा।
1: हाँ उसका मॉडल मेरे पास है, एक पीके में यूज किया गया है उनके द्वारा, वो भी सेट है। मतलब इस प्रकार के आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के सेट हैं।
0: हाँ, तो जब आपने 2014 में ये शुरुआत की तो आपके पास कितने रेडियो सेट उस समय मौजूद थे? मुझे लगता है उस समय भी काफी सारे रहे होंगे।
1: उस समय भी 100-200 रहे होंगे। उसके बाद तो मुझे ऐसा शौक लगा, प्रधानमंत्री ने एक लगा दिया शौक, एक तो हर महीने उनका आता तो बड़ा अच्छा लगता है, लोग जुड़ते हैं, मेरा पूरी परिवार देखता है और लोगों को मैं बैठाता हूँ, स्टूडेंट को बताता हूँ, तो बड़ा अच्छा,
0: यानी सब लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं।
1: क्योंकि मेरे पास काफी बड़ा है हॉल है
0: जी,
1: उसमें जो है 10-20 के 50 कुर्सी लग जाएंगी, वहाँ बैठ जाते हैं लोग सुनते हैं, तो रेडियो सेट है काफी बड़ा, उसकी आवाज बहुत अच्छी आती है, तो लोग बड़ा वो मानते हैं। और प्रधानमंत्री उसमें साथ में ये भी देखना पड़ता है, आजकल तो सर्वदस्य का जमाना है, टेलीविजन भी लगाना पड़ता है,
0: यानी कि दूरदर्शन भी लगा देते हैं। हाँ, और आकाशवाणी
1: भी चलता रहता है,
0: मतलब देखने वाले देखे, सुनने वाले सुने और दोनों माध्यमों का आनंद लेते
1: हो जाता है। हाँ।
0: जी तो
1: और कुछ लोग उस टाइम नहीं सुन पाते, तो आजकल ये भी सुविधा है, आपका ऐप लोड उसमें हो जाता है तो बाद में रात देख लेते हैं लोग, जो कुछ मोबाइल से देख लेते हैं, कुछ द्वारा टेलीविजन देख लेते हैं
0: जी।
1: हर संडे के आखिर उसको 11 बजे आता है, कोई नहीं है, कहीं बाहर चला गया, शौक है, जैसे मुझे शौक है मन की बात सुनने का, तो मैं शाम को सुनूंगा।
0: अच्छा।
1: या अगले दिन सुनूंगा, लेकिन ऐसा है कि उसके बिना नहीं सुनेंगे प्रोग्राम, ऐसा लगता है यार कुछ जो छूट गया आज तुमने सुना नहीं कुछ जो है।
0: हाँ,
1: तो वो सुनना एक जरूरी सा हो गया, बड़ा अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा ये लगता है जो हमारे प्रधानमंत्री लोगों से मन की बात करते हैं
0: जी,
1: और सामने उनसे रूबरू होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मतलब ये किसी उससे ना बात करके किसी अपने घर के सदस्य से ही बात कर रहे हूँ
0: जी।
1: तो ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का मन की बात नहीं बल्कि पूरे जनगण और पूरे देश की बात है
0: जी,
1: और इसमें जो है पूरे हमारे देश का हित छुपा हुआ है।
0: देखिए क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात जो रहती है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, वो तो अपने परिवार जनों से जुड़ते हैं, वो पूरे देश को ही अपना परिवार मानते हैं, और जब पूरे परिवारजनों के साथ वो जो जुड़ते हैं और उनके कल्याण की बातें करते हैं, अच्छा अच्छा जिन्होंने काम किया है उनसे बातचीत करते हैं, तो वो सुनकर हम सबको बड़ी प्रेरणा मिलती है। और आप भी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि सब जो गांव वाले हैं आसपास के लोग हैं बड़े हॉल में बैठते हैं सुनते हैं, तो ये तो बहुत एक अच्छा मुझे लगता है अनुभव रहता होगा,
1: सब लोग प्रेरित करता है, उसका इंतजार देखते भी, आज संडे आएगा लोग जल्दी काम धंधा देख कर वो करके समय निकाले 11 बजे जो है, ज्यादातर आज तो आप जानते हो टीवी के पास ही बैठ जाते हैं, टीवी में रेडियो ऐप है तो सर्व सुंदर हो जाता, लेकिन मैं अपने संग्रहालय में क्योंकि रेडियो संग्रहालय है तो वहाँ मैं रेडियो भी चलाता हूँ।
0: तो जो आपका संग्रहालय है इसमें

0: फीस वगैरह आप लेते
1: नहीं,
0: हैं?
1: नहीं, कोई निशुल्क है,
0: देखने वालों से
1: जनहित में निशुल्क काम है।
0: अच्छा, ये निशुल्क काम है,
1: निशुल्क जनहित में।
0: तो जो इसकी देखभाल वगैरह सब अपने जेब से खर्चा करते हैं?
1: करता हूं, जो मेरे रिटायरमेंट का फंड्स वगैरह वो मैंने सब इसमें लगाए हैं, क्यों खरीदारी हो चाहे उसका वो सब इसमें लगाता हूँ।
0: अच्छा, तो ये तो आप तो बहुत एक तरह से हम कहेंगे सेवा का काम आप कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। और आकाशवाणी जब आपसे जुड़ रहा है ये, तो हम समझ सकते हैं कि जन जन के मन में कितना प्रेम है आकाशवाणी के लिए, रेडियो के लिए। और क्योंकि आकाशवाणी तो हम कहेंगे कि देश की आवाज है, है ना, और ये आवाज के कहीं ना कहीं संवाहक हम कहेंगे आप भी बनते हैं।

0: आपने बताया कि आपके पास बहुत सारे रेडियो सेट्स हैं, तो ये सारे चलते हैं रेडियो सेट्स, आप सब सुनते हैं?
1: नहीं, मैं चेक करता रहता हूँ, अधिकतर तो उनमें चल ही रहे हैं
0: जी। बहुत बढ़िया,
1: क्योंकि रेडियो भी ये होता है कि ये अगर नहीं चलाओ कुछ दिन तो धूल से या सीलन से
0: जी
1: इनके वॉल्यूम जो है सर्किट वो हो
0: जाते
1: हैं।
0: वो तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ रहता ही है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो,
1: लेकिन अधिकतर मैं चलते ही रखता हूँ और सही पोजिशन में रखता हूँ, ये नहीं टूटे फूटे हो, मतलब देखने में सही लगा और उसमें सही लगा। अधिकतर मेरी कोशिश ये रहती है कि जो अच्छी किस्म का रेडियो लिया जाए जो देखने में भी अच्छा लगे।
0: सुनने वाले जब आते हैं आपके पास, जो रेडियो के चाहने वाले हैं, उनके साथ किस प्रकार की बातें होती हैं, कैसा अनुभव रहता है, वो लोग क्या कहते हैं जब आपका म्यूजियम देखते हैं?
1: अब लोग आते हैं पुराने तो वो अपनी यादों में खो जाते हैं।
0: अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं वो अपने पुराने समय में चले जाते हैं।
1: ये रेडियो तो हमारे पास था।
0: हाँ,
1: ये रेडियो हमारी माताजी ने खरीदा था, ये हमारे पिताजी ने खरीदा था, ये हमने खरीदा था, मतलब वो पुराने समय में खो जाते हैं। फिर जो याद करते हैं, ये रेडियो क्या हुआ करता था, ऐसा उपकरण था, ये सब लोगों को जोड़ता था। मैंने खुद देखा है, एक गांव में मुश्किल से दो चार लोगों के पास रेडियो हुआ करते थे, या एक बड़ा रेडियो होता था, गवर्नमेंट ने भिजवाए थे ग्राम पंचायत में।
0: रेडियो होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी।
1: तो ज्यादातर ग्राम पंचायत में एक बड़ा मशहूर कार्यक्रम है, देहाती कार्यक्रम, हरियाणा जिसे बोलते हैं, वो आता था शाम को 6:20 पे, शायद अब भी समय हुई है, हमारे टाइम पे भी 50 साल पहले भी समय हुई था उसका। तो देहात में उसे लोग बड़ा सुनते थे। मैंने देखा जल्दी जल्दी काम निपटाया, शाम को पशुओं को जो भी है या घर का निपटाया, भैया जो है हरियाणा कार्यक्रम आएगा, तो उसे लगाते थे। वो बड़ा सेट होता था लकड़ी में, और 10-20 क्या 50-100 सैकड़ों आदमी जो सुनने के लिए बैठ जाते थे उसे, जो तो 40 मिनट का प्रोग्राम आता था। आज भी वो प्रोग्राम आता है।
0: और तो आपने जैसे देहाती कार्यक्रम की बात की, वहाँ कृषि का किस प्रकार से है, जो गजरौला में
1: वो
0: कृषि का ही क्षेत्र,
1: ज्यादातर मेरा तो कृषि प्रधान क्षेत्र है पूरा जी, वैसे हालांकि
0: उपज वगैरह,
1: हालांकि गजरौला औद्योगिक क्षेत्र है, थोड़ी सी फैक्ट्रियां भी है, लेकिन वहाँ पर जो ज्यादातर कृषि का एरिया है पूरा, जो सब किसान है, गन्ना है, गन्ना है, गन्ना गोपदा से होता है, धान भी बहुत आज से होता है, गेहूं भी बहुत आज से होता है, मतलब पूरा मतलब क्षेत्र ऐसा है, किसी चीज की कृषि उपज कोई कमी नहीं है।
0: तो गन्ना मिल वगैरह भी होंगी मुझे लगता है।
1: गन्ना मिल भी है, बागवानी का क्षेत्र भी है।
0: हाँ, बागवानी का क्षेत्र है,
1: कृषि क्षेत्र भी
0: मशहूर है आपके तो।
1: और वहाँ उधर का अमरोहा गजरौला ये हसनपुर हो गया, हमारे धनुषवारी आम की बेल्ट है।
0: आप जैसे जो लोग हैं वो देश की धरती माटी से जुड़े हुए लोग हैं, है ना, और जो बार बार आप याद कर रहे हैं आकाशवाणी के कार्यक्रमों को, तो यही आकाशवाणी करती भी है कि जन जन तक वो बातें पहुंचाना, कि जिससे उनके जीवन में रोजमर्रा के काम में उनको लाभ पहुंचे, अच्छी बातें पहुंचाना, उनके हित के बारे में सोचना, यही आकाशवाणी का हमेशा से ध्येय रहा है। ध्येय वाक्य भी वही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।

0: चलते चलते राम सिंह जी क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को?
1: मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा सुनने वालों को, भाई प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि संग्रहालय की संस्कृति विकसित करें, रेडियो संग्रहालय बनाए अपने घरों में, थोड़ा थोड़ा और संग्रहालय बनाए, और भी नहीं किताब होती है तो आजकल लोग जो बेच देते हैं किताबों को, बेचैनी सुरक्षित रखें, ज्ञान वर्धन का बहुत ध्यान रहेगा आने वाली पीढ़ी के लिए, तो ऐसे अपने घरों में ही बनाए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे जो आह्वान किया है कि संग्रहालय संस्कृति को पुनर्जीवित करना होगा और हमें उनका संरक्षण करना होगा, तो मैं तो इसी संरक्षण और पुनर्जीवन का इसमें लगा हूँ।
0: संग्रहालय में आपने बताया था कि बहुत सारी पांडुलिपियां भी हैं
1: जी,
0: तो हम तो ये कहेंगे कि आपके लिए बहुत बहुत हमारी ओर से शुभकामनाएं आकाशवाणी परिवार की ओर से, गोल्ड चैनल की ओर से, आप इसी तरह से आकाशवाणी से जुड़े रहें, खूब सारे कार्यक्रम सुने और अपने सुझाव भी हम तक पहुंचाते रहें, और श्रोताओं के सामने आपको लाने का हमारा उद्देश्य भी यही था, क्योंकि हमें लगता है कि दूसरी तरफ से किस प्रकार का सोचना है वो सोच आपकी सामने आती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है मन की बात, जो जन जन की बात है, हाँ।

0: वो तो आकाशवाणी से हर माह के जो अंतिम रविवार में प्रसारित होता है 11 बजे और पूरा देश सुनता है। तो बहुत अच्छा लगा कि उस कार्यक्रम से आपको प्रेरणा मिली, इतना अच्छा म्यूजियम आपने बनाया, संग्रहालय बनाया। हम तो यही कहेंगे कि आप आकाशवाणी से हमेशा जुड़े रहें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे इस स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी बातचीत आपने हमारे श्रोताओं के लिए की।
1: इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। यहाँ आकर मुझे एक जो अनुभव मिला है, मैं उससे भावात्मक भी हो गया हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद राम सिंह जी आपका। और इसी के साथ हम समेटते हैं आज के मेहमान का ये अंक और विदा लेते हैं अपने सुनने वालों से और कहते हैं नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। उन्होंने उभरते क्षेत्रों में अधिक सहयोग का आह्वान किया।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत के स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रूपये की बढ़ोतरी की है।

0: दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80 रुपये 9 पैसे, गाजियाबाद और नोएडा में 88 रुपये 70 पैसे और गुरुग्राम में 85 रुपये 12 पैसे हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। यह घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का 6ठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति के जिलाधिकारी डॉ एस वेंकटेश्वर ने जिले के येरपेडू स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के जानिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 से खेला जाएगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a 2-day visit to Sweden. He will hold bilateral talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review cooperation in trade, green transition, AI, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defence, space, climate action and people-to-people ties. The two leaders will also address the European Roundtable for Industry alongside European Commission President Ursula von der Leyen. This visit is a third leg of Prime Minister Modi's UAE and European tour and his first to Europe since the India-EU Free Trade Agreement took effect in January 2026. Yesterday, in the second leg of the Prime Minister's tour, India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to a strategic partnership following talks between Prime Minister Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. India has strongly condemned attacks on commercial shipping in the Strait of Hormuz, calling them unacceptable. India's permanent representative to the UN, P. Harish, said targeting civilian crew and disrupting freedom of navigation cannot be justified. He was speaking at a special meeting of the United Nations Economic and Social Council on safeguarding global energy and supply flows.
2: Targeting of commercial shipping, endangering civilian crew, impeding freedom of navigation in the Strait of Hormuz are unacceptable. International law in this regard must be fully respected. Open and predictable trade flows must be preserved and fragmentation avoided. Coordinated efforts are needed to stabilize energy markets and support countries facing external and fiscal pressures. Strengthening multilateral financial support mechanisms will also be critical in this regard. This crisis underscores the importance of combining immediate response with long-term transformation.
1: Mr. Harish's remarks came days after an India-flagged commercial vessel was attacked off the coast of Oman. within

11:05 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज कार्यक्रम वो जिसका आपको रहता है बेसब्री से इंतजार पूरे सप्ताह तक। जी हाँ, आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम वो जो एक फिल्म थी। और आज आपके साथ हूं मैं आशीष, नमस्कार। आज की जो फिल्म है दोस्तों वो एक पारिवारिक फिल्म है और मानवीय मूल्यों से जुड़ी है, भारतीय संस्कृति से लबरेज है वो फिल्म। 1977 में ये फिल्म 1977 में रिलीज हुई, फिल्म स्वामी। फिल्म स्वामी का निर्माण किया जया चक्रवर्ती ने और निर्देशन किया बसु चटर्जी ने। अब अगर बसु चटर्जी की फिल्म है तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर वो पारिवारिक मूल्यों के इर्द गिर्द बुनी गई होगी। मनु भंडारी ने संवाद लिखे और लेखक थे बसु चटर्जी खुद और कहानी थी शरद चंद्र चटर्जी की। शबाना आजमी, गिरीश कर्नाड, विक्रम

दीपक कुमार ये थे मुख्य भूमिकाओं में। कैमरा पक्षपात संभाला के महाजन ने और संगीत दिया राजेश रोशन ने और सभी गीत लिखे अमित खन्ना ने। फिल्म की मकबूलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं दोस्तों के फिल्म फेयर पुरस्कार 25वें जो फिल्म फेयर पुरस्कार थे उसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला बसु चटर्जी को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री से नवाजा गया शबाना आजमी को और सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए शरद चंद को भी नवाजा गया इस फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए। इसके अलावा नॉमिनेशंस मिले सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जया चक्रवर्ती को, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राजेश रोशन और प्लेबैक सिंगिंग में यशुदास और लता मंगेशकर को। फिल्म की कहानी आपको बताएं क्यों ना, उससे पहले आपको ये बता दें कि कौन से कलाकार ने कौन सा किरदार निभाया। जानने के बाद कहानी सुनने में आनंद भी आता है और आसानी भी रहती है। शबाना आजमी थी सौदामिनी के रूप में, सौदामिनी या फिर घर का नाम होता है मिनी। गिरीश कर्नाड थे घनश्याम के किरदार में, उत्पल दत्त थे मिनी के चाचा के रोल में, विक्रम थे नरेंद्र के किरदार में और मिनी की मां का रोल निभाया था सुधा शिवपुरी ने, शशिकला ने रोल निभाया था घनश्याम की सौतेली मां का, प्रीति गांगुली थी चारू के किरदार में जो कि घनश्याम की सौतेली बहन होती हैं। इसके अलावा धीरज कुमार थे निखिल के किरदार में जो चारू के बड़े भाई हैं और घनश्याम के छोटे सौतेले भाई। इसके साथ अलग अलग किरदारों में थे शोभा के किरदार में थी ऋतु कमल और दीपक कुमार थे विनीता दत्त मुक्ता थी, मुखिया के रूप में थे केदारनाथ सैगल और अमोन सेन और कार्तिक दत्त और अतिथि भूमिका यानी गेस्ट अपीरियंस में थे हेमा मालिनी और धर्मेंद्र। एक नौटंकी का एक सीक्वेंस आता है जहां पर इन दोनों की भूमिका सामने नजर आती है। कहानी शुरू होती है गांव की कहानी से। सौदामिनी एक प्रतिभाशाली गांव की लड़की है, पढ़ने में बेहद रुचि है उसकी और कुछ करना चाहती है, बनना चाहती है और उसका साथ देते हैं उसके मामा, क्योंकि मामा को भी किताबों से बेहद लगाव है। मामा भांजी में बेहद प्यार है और मामा दिन रात मिनी को पढ़ने के लिए इंस्पायर करते रहते हैं, प्रेरित करते रहते, जो कि मिनी की मां को बिल्कुल भी नहीं भाता। वो ये कहती हैं कि हमारी ये भारत की नारी का रूप नहीं हो सकता, ये भारतीय नारी है, कल को अपने ससुराल जाएगी, अपना चौका चूल्हा संभालेगी, तो हालांकि इसको इस घर के काम आने चाहिए ना कि पढ़ाई लिखाई। लेकिन मामा जो हैं वो हंसकर अपनी बहन की बात हमेशा टाल देते हैं और मिनी का देते रहते हैं साथ। मिनी जो एक ही सपना देखती है पढ़ लिख कर कुछ बनने का और साहित्य और दर्शन में गहरी रुचि रखती है, उसके मामा उसके कदम कदम पर साथ देते हैं और साथ ही साथ मां बेटी के छोटे मोटे झगड़ों को भी सुलझाते रहते हैं। मिनी के पिता नहीं है, जो कुछ है मां और मामा ही है। गांव के जमींदार का बेटा है नरेंद्र जो कि कलकत्ता में पढ़ता है और वो अक्सर जब भी गांव आता है मिनी के मामा के लिए कई किताबें लेकर आता है, क्योंकि मिनी के मामा को किताबें पढ़ने का बेहद शौक है, लिहाजा वो नरेंद्र को हर बार एक नई फेहरिस्त एक नई लिस्ट दे देते हैं कि अब की बार आते हुए तुम मेरे लिए किताबें लेके आना। वो किताबें मामा भी पढ़ते हैं, मिनी भी पढ़ती है और इस बार भी नरेंद्र छुट्टियों में कलकत्ता से आया है और घर मिलने आया है मिनी से, उसकी मामा से, उसकी मां से। इस बार नरेंद्र जब आता है तो मिनी के लिए विक्टोरियन साहित्य लाता है और उसके साथ घंटों बातें करना उसे बेहद पसंद है, मिनी भी उसे बेहद पसंद करती है। दोनों घंटों एक दूसरे को देखते हुए निहारते हुए बागों में सैर करते हैं। हालांकि घर वालों को इस बात की भनक नहीं है लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे को चाहने लगते हैं। मिनी उम्र के उस पड़ाव पर है जहां पर उसका मन चंचल शोक बाला का तरह है, एक तितली की तरह है जो कि उड़ जाना चाहता है लेकिन नहीं जानता।

ऐसे ही एक दिन मिनी और नरेंद्र नदी किनारे घंटों बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, भविष्य के सुंदर सपने बुन रहे हैं। लेकिन तभी अचानक मूसलाधार बारिश होने लगती है और नदी में उफान आ जाता है। नदी पार करे तो आखिर करे कैसे, इस वजह से मिनी घर पहुंचने में हो जाती है उसको देरी। और जब देरी होती है तो माँ तो गुस्से से आग बबूला है। एक तो उसे वैसे ही नरेंद्र का यूं घर में बार बार आना पसंद नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लगता है कि नरेंद्र और मिनी के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं। वो पसंद नहीं करती क्योंकि एक तरफ नरेंद्र है।

बड़े जमींदार का बेटा और उसकी तो इकलौती बेटी है मिनी, जिसका सुखी संसार देखने की चाहत में ही मानो वो जी रही है। उसे लगता है कि इन दोनों का मेल संभव ही नहीं है। हालांकि मामा जो हैं वो मिनी के मन की बात को समझने लग गए हैं और वो यही चाहते हैं कि जिस चीज में मिनी की खुशी हो वही वो करे। इस बीच नरेंद्र जो है कलकत्ता वापस जाता है, लेकिन मिनी से वादा करके जाता है कि मैं जल्द वापस आऊंगा। दिन बीतते हैं और नरेंद्र को आने में होती है देर, और इस बीच मिनी की मां मिनी का रिश्ता तय करने के लिए अपने भाई को यानी मिनी के मामा को दूसरे गांव भेजती है। रिश्ता आता है घनश्याम का। घनश्याम जो कि मिनी से थोड़ा उम्र में बड़ा भी है और पहली बीवी उसकी स्वर्ग से धार चुकी है, ये उसकी दूसरी शादी होगी। अच्छा खासा अनाज का व्यापारी है, घर में सब कुछ है, लिहाजा मिनी की मां जबरदस्ती अपने भाई को वहां पर भेजती है रिश्ता तय करने के लिए। मामा जाते तो हैं बेमन से, क्योंकि वो जानते हैं कि मिनी की इसमें खुशी नहीं होगी, लेकिन फिर भी बहन के आग्रह पर, उसकी मजबूर करने पर वो जाते हैं। रिश्ता तय करने के बाद वहां पहुंचते हैं और जब वापस आते हैं लेकिन मन से खुश नहीं हैं, बीमार पड़ जाते हैं और इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो कुछ कहना चाहते हैं, मिनी की खुशियों के बारे में अपनी बहन को बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते। अब मिनी मानो अकेली पड़ गई। एक तरफ नरेंद्र का इंतजार रहता था उसे और दूसरी तरफ अब मामा भी नहीं रहे, लेकिन अब चूंकि रिश्ता तय हो चुका था लिहाजा उसकी मां मिनी की शादी घनश्याम से कर देती है। और उसके बीच नरेंद्र जब वापस आता है तो उसे देखने के बाद एक गहरा धक्का लगता है कि मानो उसकी दुनिया ही लुट गई।

नरेंद्र जान जाता है कि अब मिनी हो चुकी है पराई, और मिनी भी अपने तमाम सपनों की आहुति देकर पहुंच जाती है एक दूसरे गांव। दूसरे गांव घनश्याम की दुल्हन बनकर घनश्याम के घर। नए लोग, नया जीवन, नई गृहस्थी, नई चुनौतियां। क्या हैं ये चुनौतियां, क्या होता है मिनी के साथ, बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

12:35 और 55 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz कार्यक्रम वो जो एक फिल्म थी और आज की फिल्म है 1977 में रिलीज हुई फिल्म स्वामी। मिनी अपने प्यार को भुलाकर अपने सपनों की आहुति देकर पहुंच जाती है घनश्याम की दुल्हन बनकर उसके घर, लेकिन ये क्या, वहां पहुंचने पर सारी सच्चाई धीरे धीरे उसके सामने आने लगती है। वो देखती है कि घनश्याम दिन रात घर का बड़ा बेटा होने के नाते काम करता है, कमाता है, कोलू के बैल की तरह पिसा रहता है, लेकिन घर में जो मान सम्मान उसे मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। केवल दिखावे के लिए उसकी इज्जत करती है उसकी सौतेली माँ, बल्कि घर के सारे नौकर चाकर, यहां तक कि मां खुद भी सारा दिन निखिल और उसकी पत्नी शोभा के इर्द गिर्द घूमते हैं। शोभा जिसका मकसद केवल एक ही है कि अपने पति को खुश रखना, क्योंकि पति साहब जो हैं वो करते हैं नौकरी करते हैं, लिहाजा उनकी घर में इज्जत ज्यादा है। लेकिन बात दरअसल ये है कि कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में मां के ये भी है कि निखिल मेरा सगा बेटा है और घनश्याम मेरा सौतेला। निखिल जब गांव घर पहुंचता है अपने ऑफिस से, तो आगे पीछे लोग उसके होते हैं, कोई उसके हाथ धुला रहा है, कोई उसको गर्म चाय परोस रहा है, खाना कर रहे हैं, उसके ऊपर पंखा चल रहे हैं और यहां तक कि उसके कमरे में बिजली का पंखा तक लगाया गया है। मिनी धीरे धीरे ये बातें समझती है और घनश्याम जब घर आता है तो कोई उसे पानी तक नहीं पूछता, खाना भी उसे खुद ही लेना होता है। ये सब देखने के बाद मिनी के मन में कहीं ना कहीं रहकर ये फांस चुभती है कि घनश्याम का तो इस घर में तिरस्कार ही तिरस्कार है, सम्मान है ही नहीं।

लेकिन घनश्याम इन सब बातों को अनदेखा कर देता है। बड़े दिल वाला है, कहता है कि घर में शांति बनी रहनी चाहिए। और उधर मिनी है कि वो नरेंद्र को भूल नहीं पा रही और घनश्याम की बन नहीं पा रही, उसके साथ नजदीकियां बढ़ा नहीं पा रही। घनश्याम भी एक अच्छे पति का परिचय देते हुए उससे दूरी बनाए रखता है और कहता है कि जब तुम्हारा मन मेरे से मिल जाएगा तभी मैं तुम्हें अपनाऊंगा, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। ये देखकर मिनी की नजरों में घनश्याम का मान और भी बढ़ जाता है, लेकिन घर में उसका तिरस्कार उसे बर्दाश्त नहीं है। वो देखती है कि आए दिन निखिल के कमरे में उसके यार दोस्तों की महफिल जमती है, शोभा तरह तरह के पकवान वहां पर पेश करती है, मां भी खुशी से आवभगत करती है निखिल और उसके दोस्तों की, लेकिन कोई नहीं पूछता घनश्याम और मिनी के मन की बात को। आज शाम को फिर भी एक बार फिर घर में महफिल सजी है निखिल के कमरे में।

निखिल के गाने की आवाज रह रहकर मिनी के कानों में पड़ रही है और मानो उसके सामने उसका माजी, उसका अतीत एक बार फिर आकर खड़ा हो गया है। वो भूल नहीं पा रही है नरेंद्र को और उसके साथ खाई हुई कसमों को, लेकिन अब उसकी घर गृहस्थी दूसरी है। वो चाहती है कि वो भूल जाए नरेंद्र को और अपनी गृहस्थी में खो जाए, क्योंकि वो घनश्याम का बड़प्पन देखकर, उसका अपने प्रति प्रेम, समर्पण और मान देखकर उसे देवता की तरह पूजने लगी है। हालांकि घनश्याम ने उसे ये कहा है कि मुझे किसी देवता का दर्जा नहीं चाहिए, बल्कि मैं तुम्हारा पति हूं। जिस दिन तुम्हारा मन मेरे प्रति समर्पित होगा, उसी दिन मैं तुम्हें अपनाऊंगा। उसका यह बड़प्पन देखकर वाकई मिनी की नजरों में घनश्याम की इज्जत और भी बढ़ गई। उसने ठान लिया कि अब वो इस घर में घनश्याम को उसका वो स्थान, वो आदर दिलाकर ही रहेगी। लेकिन इसके लिए उसे क्या करना होगा? इसके लिए उसे बहुत कुछ सहना होगा, कड़वे घूंट पीने होंगे, लेकिन घनश्याम को उसका मान, उसका स्थान, उसकी इज्जत वो इस घर में दिलाकर रहेगी। और इसी के लिए मिनी ने काफी कुछ सोच भी लिया। आगे क्या होता है बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

12:48 और 30 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। कार्यक्रम वो जो एक फिल्म थी, और फिल्म है आज की 1977 में रिलीज हुई फिल्म स्वामी। अब ठान तो लिया मिनी ने कि घर में घनश्याम को पूरा मान सम्मान दिलाकर ही रहेगी, लेकिन क्या करे, सभी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। घनश्याम जैसे घर आता है, अगर नौकर उसे पानी नहीं पूछते, उसे हाथ मुंह धोने के लिए पानी नहीं देते, तौलिया नहीं देते, तो मिनी खुद भागकर ये काम करने लगी है। मां देख रही है, नागवार भी गुजरता है, लेकिन तुनक मिजाजी इतनी है कि कुछ बोलती नहीं। चौका चूल्हा जब होता है, सभी लोग खाना खाते हैं, लेकिन घनश्याम के लिए खाना रख दिया जाता है। लेकिन अब मिनी घनश्याम के लिए ताजा खाना, गर्म गर्म खाना लेकर परोसने लगती है। चारू भी देख रही है, शोभा भी देख रही है, और मां भी देख रही है कि मिनी में बदलाव दिन ब दिन आता जा रहा है। और इधर मां कोई ना कोई लड़ाई का बहाना ढूंढने लगती है मिनी को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन मिनी उनको कोई मौका नहीं देती। उसका तो केवल एक ही मकसद है कि घर में घनश्याम का मान सम्मान हो। इसी बीच मां घनश्याम को कहती है कि तुम्हें अपनी छोटी बहन की कोई चिंता नहीं है, शादी लायक हो चुकी है, और तुम उसके शादी के बारे में कुछ सोच नहीं रहे हो। तब घनश्याम भी कहता है, मैं क्या करूं, 10 जगह बाद चला चुका हूं, लेकिन इसका वजन इतना ज्यादा है, कोई इससे शादी नहीं करता। इसे देखने के बाद सभी मना कर देते हैं। हालांकि चारू को यह बात नागवार गुजरती है और रोती भी है, लेकिन हार कर घनश्याम एक और रिश्ता उसके लिए लेकर आता है। और तब चारू मिनी से कहती है कि अपने गहने, अपने साड़ियां उसे दे पहनने के लिए। तब मिनी भी देती है खुशी खुशी सब कुछ उसको, लेकिन जिस साड़ी पर वो हाथ रखती है वो नहीं देती, क्योंकि वो किसी समय विक्रम ने उसको दी थी, वो उसकी एक निशानी है। यानी आज भी मिनी विक्रम को नहीं भूल रही है। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता है और गृहस्थी में मिनी रमने लगती है। और इधर चारू का विवाह एक बार फिर होते होते रह जाता है। घर में मायूसी है, लेकिन घनश्याम कहता है कि मां तुम चिंता ना करो, मैं इसके लिए एक अच्छा वर ढूंढूंगा। दिन बीतते हैं, मिनी घर गृहस्थी में रम चुकी है, धीरे धीरे विक्रम को भी भूल चुकी है। लेकिन नियति का खेल देखिए कि एक दिन ऐसा आता है कि विक्रम उसी घर में सबके सामने अचानक आ जाता है। दरअसल वो निखिल का दोस्त है, और निखिल विक्रम को लेकर वहां पहुंचता है। मिनी देखकर बहुत चक्की रह जाती है कि विक्रम सामने कैसे आ गया। विक्रम जो उसके अतीत है, उसका माजी है, उसके सामने एकाएक आकर खड़ा हो गया। विक्रम तब मौका देखकर मिनी से कहता है कि मैं तुम्हें भूल नहीं पाया हूं, क्यों ना हम दोनों यहां से भाग जाएं और एक नई दुनिया शुरू करें। तब मिनी एक असमंजस की स्थिति में आ जाती है, करे तो आखिर करे क्या।

अमिनी कैसे दोराहे पर आकर खड़ी हो गई, तो करे क्या। दिल से आदर करती है, सम्मान करती है घनश्याम का, और अपनी गृहस्थी में रमने जा रही थी कि एक विक्रम, उसका अतीत, उसका माजी उसके सामने फिर आकर खड़ा हो गया। और इधर घर वाले उस रिश्ते से अनजान हैं जो मिनी और विक्रम का था। वो मिनी से कहते हैं कि तुम्हारे गांव का लड़का है तो क्यों नहीं तुम चारू के साथ इसके रिश्ते की बात चलाती। तब मिनी मना करती है तो मां आग बबूला हो जाती है। तब उन्हें सच्चाई पता चलती है कि आखिर इसका माजी जो है, इसका अतीत जो है, वो विक्रम के साथ बंधा हुआ था। जलीकटी सुनाती है और दिन रात रोती है मिनी। आखिर उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो सोचती है कि वो विक्रम के साथ इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। हालांकि घनश्याम सब जानता है लेकिन मिनी को जताता नहीं है। मिनी को सांत्वना देता है, ढाढ़स बताता है और कहता है कि घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन मिनी तो ऐसे दोराहे पर है, एक तरफ विक्रम उसे बुला रहा है और एक तरफ घर गृहस्थी, भारतीय संस्कार उसके पैरों में जकड़े हुए हैं। करे तो आखिर करे क्या। एक दिन ऐसा आता है कि विक्रम मिनी से कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं रेलवे स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार करूंगा और उम्मीद करता हूं कि तुम अपने पुराने प्यार की कस्मों को याद रखते हुए मेरे पास आओगी, हम एक नई दुनिया बसाएंगे। ये कहकर विक्रम चला जाता है और मिनी भी दोपहर के समय में अपना सामान लेकर भागी जाती है स्टेशन की ओर। घनश्याम घर आता है, मां बताती है कि मिनी घर छोड़कर भाग गई। घनश्याम कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप चला जाता है स्टेशन की ओर। वहां पर मिनी देखती है कि विक्रम एक छोर पर खड़ा है। ट्रेन आती है, उसके पांव मानो जकड़ से गए हैं, बढ़ नहीं रहे। वो करे तो करे क्या। उसे घनश्याम की एक एक बात, उसकी एक एक सीख याद आती है। तभी पीछे मुड़कर देखती है कि घनश्याम खड़ा है, उसका स्वामी। बस फिर क्या था, विक्रम को भुलाकर, विक्रम की ओर पीठ कर वो घनश्याम की हो लेती है और बढ़ चढ़ती है एक नई दुनिया की ओर। अब उसे समझ आ गया कि उसकी जिंदगी उसके स्वामी के साथ ही है। दोस्तों, ये थी फिल्म स्वामी की कहानी और उसके गीत। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार और 1:10 पर आपसे फिर भेंट होगी। कार्यक्रम होगा दिल ढूंढता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर श्री मोदी स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
1: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, एआई, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को उचित नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है।

इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक चलेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रूपये की बढ़ोतरी की है। इस सप्ताह की शुरूआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रूपये की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमरीका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के यानिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रूली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एक बजकर 11 मिनट और 6 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz रविवार के फुर्सत के पलों को और रुमानी बनाने के लिए प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहा हूं मैं आशीष और प्रोग्राम है दिल ढूंढता है। नमस्कार। फुर्सत के इन पलों को और भी यादगार बनाने के लिए किसी अपने के साथ अपने माजी में खो जाने के लिए और अपने दिन को दिल खुश करने के लिए दिल फरेब बनाने के लिए नगमों की सौगात है। शुरुआत है फिल्म हसीना मान जाएगी। गायक कलाकार मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी और गीतकार अख्तर रोमानी।

बेखुदी में अगर कदम उठ गए हैं तो दिल यही चाहेगा कि एक दूसरे के मन में रहें, एक दूसरे के दिल में यूं ही बसते रहें। कुछ ऐसा ही कहा गया है। फिल्म अनोखी अदा के इस गीत में गायक कलाकार मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

श्रोताओं का कार्यक्रम दिल ढूंढता है मैं आज के लिए केवल इतना ही। इजाजत दीजिए आशीष को, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz, क्योंकि कुछ ही पल में आप सुनेंगे संस्कृत साप्ताहिकी।

0: प्रिया श्रोतारः, संस्कृत साप्ताहिक्याः अङ्केऽस्मिन् भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। भवतां सहृदयानां मनोविनोदकरम् अङ्कम् आदाय उपस्थितोऽस्मि अहं दिव्यानन्द झाः। अयि सुधियः श्रोतारः, कार्यक्रमस्य शुभारम्भः सुभाषित रत्नेन क्रियते। अद्य उद्यमपरकं सुभाषितं प्रस्तौति मम सहयोगिनी ऋचा झाः। श्रूयताम् भवद्भिः।
1: उद्यमो मित्रवत् ग्राह्यः, प्रमादं शत्रुवत् त्यजेत्। उद्यमेन परा सिद्धिः, प्रमादेन क्षयो भवेत्। अर्थात उद्यम से परम सिद्धि मिलती है तथा प्रमाद से क्षय प्राप्त होता है। इसलिए उद्यम को मित्र की तरह ग्रहण करना चाहिए और प्रमाद को शत्रु की तरह त्याग दिया जाना चाहिए।
0: मित्राणि, सम्प्रति अग्रे सरामः प्रसंग प्रभागं प्रति। अद्य अस्मदीया सहयोगिनी साधना शर्मा सुमधुरेण स्वरेण प्रस्तौति वट सावित्री स्तोत्रम्।
2: श्री वट

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्वीडन के दो दिन के दौरे पर आज सहपहर गोथेनबर्ग पहुंचने वाले हैं, जहां वो स्वीडन के अपने हममनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक का जायजा लेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने बाहमी ताल्लुकात को क्लीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचा दिया है। अहम शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए गए। भारत ने अबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों की मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। आलमी सेहत तंजीम ने कांगो और युगांडा में एबोला बीमारी फैलने को बैन अलाक्वामी तशवीश की हामिल सेहत आम्मा की इमरजेंसी करार दिया है। मौसमियात महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। और नेपाल के कोहपेमा कामी रीटा शेरपा ने खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं मर्तबा माउंट एवरेस्ट को सर करके तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में स्वीडन के 2 रोजा दौरे पर गोथेनबर्ग पहुंचने वाले हैं। इस साल जनवरी में भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तिजारत का समझौता होने के बाद से जनाब मोदी का यूरोप का ये पहला दौरा है। वजीर आजम मुत्तहिद अरब अमारात और नीदरलैंड्स के दौरे के बाद स्वीडन जा रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: अपने इस दौरे में वजीर आजम मोदी स्वीडन के वजीर आजम उल्फ क्रिस्टेंसन से मुलाकात करेंगे, जिसके दौरान वो बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेंगे और दो तरफा तिजारत में इजाफे के लिए इश्तराक के नए रास्ते तलाश करेंगे। दोनों रहनुमा माहौलियात के लिए साजगार तवानाई की जानिब मुंतकली, मसनूई जहानत AI, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, स्टार्टअप्स, मजबूत सप्लाई चेन्स, दिफा, खला, मौसमियात के लिए इकदामात और अवाम से अवाम के राब्तों से मुतालिक शोबों में तावुन के बारे में भी तबादला ख्याल करेंगे। इसके अलावा दोनों वज़ीरे आज़म यूरोपीय कमीशन की सदर इज्जत माब मोहतरमा उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ यूरोप के मुमताज कारोबारी रहनुमाओं के एक क्लीदी फोरम यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री से भी खिताब करेंगे। पूरे स्वीडन के कारोबारी घरानों में वजीर आजम मोदी के इस दौरे से काफी जोश खरोश देखा जा रहा है और वो इस दौरे के नतीजे से बहुत पुरउम्मीद हैं। स्वीडन के शहर गोथेनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: वजीर आजम के दौरे के दूसरे मरहले में कल भारत और नीदरलैंड्स ने अपने बाहमी ताल्लुकात को क्लीदी साझेदारी की सतह पर ले जाने से इत्तेफाक किया था। नीदरलैंड्स के शहर हेग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के उनके हममनसब रॉब जेटेन के दरमियान बातचीत के बाद ये इत्तेफाक राय हुआ। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दीगर क्लीदी शोबों में इश्तराक बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए। दोनों उज़राए आज़म ने मगरबी एशिया की सूरत हाल, खासतौर पर आलमी तवानाई सप्लाई निज़ाम और तजारती नेटवर्क में रुकावट पड़ने से खित्ते और दुनिया के दीगर हिस्सों में पड़ने वाले इसके संगीन मुज़मिरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने मसनूई जहानत और डीप टेक को मुस्तकबिल की

0: के अहम सुतून करार दिया है। वो आज अहमदाबाद में एक कैंपस के इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। जनाब अमित शाह ने कहा कि भारत दुनिया के हर उभरते हुए शोबे में एक सरकर्दा मुल्क बन गया है।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: जनाब अमित शाह गुजरात के 2 दिन के दौरे पर गए हुए हैं। वो आज गांधीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के इनोवेशन और इंक्यूबेशन मरकज का इफ्तिताह भी करने वाले हैं। मर्दुम शुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत 5 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाके में मकानों की फहरिस्त तैयार करने और मकानों की गिनती के लिए घर घर जाकर फील्ड कार्रवाई का अमल शुरू हो गया है। इनमें राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन का इलाका शामिल है। पूरे मुल्क में जारी मर्दुमशुमारी के अमल के तहत ऐसा किया जा रहा है। इधर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन, दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी मुतल्लिका अहलकार घर घर जाकर मकानों की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने अबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों की सख्त मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि सिविलियन अमले को निशाना बनाए जाने और जहाजरानी की आज़ादी में खलल डालने को सही नहीं ठहराया जा सकता। वो आलमी तवानाई और सप्लाई निज़ाम के तहफ्फुज के बारे में अक्वामे मुत्तहिदा इक्तसादी और समाजी कौंसिल की खसूसी मीटिंग में इजहार ख्याल कर रहे थे। ओमान के साहिल के नज़दीक भारतीय परचमबरदार कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले के चंद रोज बाद जनाब हरीश का ये बयान सामने आया है। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने अवामी जमहूरिया कांगो और युगांडा में एबोला बीमारी के फूट पड़ने को अवामी सेहत से मुतालिक बैन अल-अक्वामी तशवीश वाली हंगामी सूरत हाल करार दिया है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधनोम गेब्रेसिस ने 300 मुश्तबह केसों और 88 अमवात की खबर मिलने के बाद इस फैसले का ऐलान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर WHO ने अलबत्ता इस बात की भी वजाहत की है कि एबोला फूट पड़ने का ये मामला COVID-19 आलमी वबा जितना मोहलिक नहीं है। इसके साथ ही उसने बैन अल-अक्वामी सरहदें बंद न करने की भी सलाह दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 134वां नशरिया होगा। आप भी टोल फ्री नंबर 1800-117800 के जरिए इस प्रोग्राम के लिए अपनी राय और तजवीज़ें भेज सकते हैं। इसके अलावा आप नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के जरिए भी अपनी तजवीज़ें ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ 1922 पर मिस्ड कॉल करके SMS के जरिए मौसूल होने वाले लिंक को फॉलो करते हुए अपनी तजवीज़ें सीधे वज़ीर आज़म को भेज सकते हैं। मन की बात के इस नशरिये के लिए तजवीज़ें इस महीने की 29 तारीख तक कबूल की जाएंगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG की कीमत में 1 रुपये का इजाफा किया है। इस इजाफे के बाद दिल्ली में अब 1 किलोग्राम CNG 80.09 रुपये की होगी, जबकि गाजियाबाद और नोएडा में इसकी कीमत 88.70 रुपये होगी। आज हाइपरटेंशन की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है मिलकर हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें, अपने ब्लड प्रेशर की बाकायदगी से जांच कराएं। ये दिन हाइपरटेंशन के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के महीने का एक हिस्सा है, जिसका मकसद ब्लड प्रेशर बढ़ने के बारे में आलमी सतह पर बेदारी बढ़ाना, इसकी रोकथाम, तशखीस और इसे कंट्रोल करने को बढ़ावा देना है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर, मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नेपाल के कोहपेमा कामी रीटा शेरपा ने रिकॉर्ड 32वीं मर्तबा माउंट एवरेस्ट को सर करके तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। 56 साला कोहपेमा ने दुनिया की बुलंदतरीन चोटी को सबसे ज्यादा बार सर कर

0: aiming to raise global awareness about high blood pressure, promote prevention, detection and control. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to reach Gothenburg this afternoon on a two-day visit to Sweden will hold talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review cooperation in trade, green transition, AI and defence. India and Netherlands elevate bilateral relationship to strategic partnership. 17 agreements signed to strengthen collaboration in key areas. India condemns attacks on commercial shipping in Strait of Hormuz as unacceptable, says disrupting freedom of navigation cannot be justified. World Health Organization declares Ebola outbreak in Congo and Uganda a public health emergency of international concern. IMD issues heavy to very heavy rainfall alert at isolated places over Andaman and Nicobar Islands, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And Nepali mountaineer Kamirita Sherpa creates history by climbing Mount Everest for 32nd time, breaking his own record. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
2: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
3: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूं, जहां लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
2: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, एआई, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की।

0: शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5,00,000 लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रूपये की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80.09 रूपये, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रूपये और गुरुग्राम में 85.12 रूपये हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रूपये की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटी

0: सेंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार यह फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की दो दिन

की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। आज प्रस्तुत है नाटक अलका क्या करेगी। इस नाटक के लेखक हैं राजीव शर्मा और निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक अलका क्या करेगी।

0: राम राम कृपाल भाई।
1: राम राम। ये लो शंभू भाई, मुंह मीठा करो।
0: मेवे वाला हलवा भाई, अब की कौन सा कमाल किया अलका बिटिया ने?
1: अलका बिटिया ने अपने स्कूल में वो क्या कहते हैं टॉप किया है 10वीं की परीक्षा में।
0: टॉप? भाई वाह, कमाल की छोरी है। रेड़ी रिक्शा चलाने वाले के घर माँ सरस्वती का रूप है वो। कुछ तो बहुत ही अच्छा किया होगा कृपाल भाई तुमने पिछले जन्म में। अच्छा लाओ थोड़ा और दो। अरे अरे अरे, डिब्बे का ढक्कन क्यों बंद कर रहे हो?
1: लो लो लो, ये लो। अरे और लो।
0: कृपाल भाई, आगे क्या सोचा है, अलका क्या करेगी?
1: शंभू भाई, अलका के अलावा कोई नहीं जानता कि अलका क्या करेगी। भाई हमें उस पर पूरा विश्वास है कि वो जो भी करेगी सोच समझ कर करेगी, बाकी प्रभु इच्छा। भाई अब जाऊं, गांधीनगर में सामान पहुंचाना है।
0: हाँ हाँ, सुनो हमारा आशीर्वाद दे देना अलका बिटिया को।
1: ठीक है।
0: और भौजी को कहना कि हलवा थोड़ा ज्यादा बनाया करें।
1: राम राम।
0: राम राम, राम राम।
2: अरे मेकअप वाला कहाँ है? अभी तक मेकअप वाला नहीं आया। What nonsense this is? नहीं मुझे कार।
3: Hey प्रिया, तुझे बॉस बुला रहे हैं, शायद कुछ अर्जेंट है।
2: ओह ओके थैंक्स, चल आती हूँ मिलकर।
4: यस यस प्रिया, आओ बैठो। देखो तुम्हें अभी एक इंटरव्यू करने जाना है।
2: जी।
4: एक लड़की है जिसका नाम है अलका सोनी।
2: ओ, कोई स्पेशल स्टोरी है सर?
4: हाँ काइंड ऑफ। आज से 5 साल पहले मेन मार्केट के चौराहे पर ठेला लगाकर दाल बाटी चूरमा बेचने से शुरुआत की थी उसने, और आज 3 दुकानें हैं, कम से कम 17-18 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी दे रखा है। इस बार महिला दिवस पर जिन लोगों को ऑनर किया गया है उसमें इनके टक्कर की कोई नहीं है। एक सीरीज शुरू कर दो, उन लड़कियों और औरतों की कहानियां चलाते हैं जो अपने दम पर अपनी पहचान बना रही हैं या बना चुकी हैं, लेकिन रिकॉग्निशन नहीं मिला है उनको।
2: जी।
4: टाइटल बाद में सोच लेंगे, बढ़िया सा प्रोफाइल करते हैं सबका, ठीक है?
2: ओके सर। बाय द वे, मैं ही नहीं मेरी माँ जो

0: खुद बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, वो भी अलका के यहाँ की दाल बाटी चूरमा की फैन है सर।
1: ग्रेट, यू नो हर?
0: यस सर, अलका का इंटरव्यू लूंगी ना तो सबसे ज्यादा तो मेरी माँ ही खुश होंगी, वो कई बार बोल चुकी हैं उसका इंटरव्यू करने के लिए।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है प्रिया
0: जी।
1: पर तुम अब देर मत करो
0: जी,
1: अलका वक्त की बहुत पाबंद है, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी, अभी तो तुम फौरन निकलो। और हाँ, ये लो उसका फोन नंबर, निकलने से पहले उससे फोन पर बात जरूर कर लेना।
0: श्योर सर, आई विल। थैंक यू सो मच सर। एक बात पूछना चाहती हूँ सर। सर, ये प्रोग्राम कौन एंकर कर रहा है, सुधीर सर या देविका?
1: तुम कर रही हो। नागो, मैंने बोल दिया है, कैमरा टीम तैयार बैठी है, सतीश जा रहा है तुम्हारे साथ, फटाफट निकलो। ऑल द बेस्ट।
0: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।
2: आ गई प्रिया, ले चाय पी। हाँ, बड़ी खुश लग रही है, चाय ले।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं।
2: क्या खबर है प्रिया मैम, काहे की अर्जेंसी थी?
0: एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, उसके लिए एक इंटरव्यू करना है।
2: और
0: मैं एंकर करूंगी वो शो।
2: मतलब तेरा सपना पूरा होने वाला है। नई जिम्मेदारी मिली है तुम्हें। अभी कहाँ भाग रही है तुम?
0: अरे, मुझे अलका सोनी का इंटरव्यू करना है डियर। सो सो सो सो सो वेरी हैप्पी। अच्छा, कैमरा यूनिट का नंबर क्या है?
2: 132।
0: सतीश जी, मैं प्रिया, बस 2 मिनट में आ रही हूँ मैं।
2: वाह प्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें।
0: थैंक यू सो मच। चल, शाम को मिलते हैं। बाय बाय
2: बाय बाय।

0: गुड मॉर्निंग अलका जी।
1: कौन?
0: मैं प्रिया राजपूत, सिटी टीवी से। ओ, आपका इंटरव्यू करना है, हमारे ऑफिस में आपकी बात
1: हुई होगी। जी जी जी हाँ, मुझे आपके ऑफिस से कल कॉल आया था। हाँ जी,
0: मैं आपके पास आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी, कोई परेशानी तो नहीं ना?
1: अरे नहीं नहीं, आप आइए ना जी, बिल्कुल आइए। लेकिन गोकुल धाम वाले पते पर आना होगा।
0: जी हाँ जी हाँ, पता है आपका मेरे पास, तो आती हूँ मैं कैमरा टीम के साथ।
1: ओके।
2: प्रिया
0: जी हाँ, और ये हैं सतीश जी।
2: हेलो
3: हेलो,
2: आइए ना, आइए आइए, आप लोग अंदर आइए
0: जी,
2: आइए आइए बैठिए
0: जी। 5 मिनट में सतीश जी कैमरे की सेटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम इंटरव्यू शुरू करते हैं।
2: ठीक है
0: ठीक है। ये फ्रेम ठीक रहेगा सतीश जी?
3: परफेक्ट। ये फ्लावर पॉट इधर रख सकता हूँ?
2: हाँ जी, कर लीजिए।
3: थैंक यू।
2: अच्छा बताइए, आप लोग क्या खाना पीना पसंद करेंगे?
0: जी अभी तो सिर्फ एक ग्लास पानी।
2: बस?
0: बस नहीं, इंटरव्यू के बाद आपका मशहूर दाल बाटी चूरमा।
2: वो तो है ही ऑब्वियस।
3: ओके रेडी रोलिंग।
0: अलका सोनी, इस नाम से देश भले ही ठीक से परिचित ना हो, लेकिन इस शहर के सभी लोग खूब परिचित हैं। सब माने सब, बच्चे बूढ़े और जवान।
2: धन्यवाद
0: अलका जी। इस बार महिला दिवस पर राज्य की ओर से आपको सम्मानित किया जा रहा है, सबसे पहले तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बहुत बधाई।
2: जी धन्यवाद
0: अलका जी।
2: जी,
0: दाल बाटी चूरमा के ठेले लगाकर आपने अपने स्टार्टअप की शुरुआत की, और अब आपके पास 3 दुकानें हैं जहां आपकी स्पेशल दाल बाटी चूरमा के चहेतों की भीड़ लगी रहती है, 30 लोगों को रोजगार भी दे रखा है, आप ट्यूशन सेंटर भी चलाती हैं जहां गरीब लड़कियों के लिए कोई फीस नहीं है।

0: और घर पर माँ के साथ कपड़े सिलने में भी मदद करती हैं। अलका क्यों और कैसे कर लेती है सब कुछ?
1: अलका क्यों और कैसे कर लेती है? अब देखिए, इस सवाल का जवाब शायद इस बात में छुपा है कि अलका क्या करेगी।
0: मतलब?
1: प्रिया जी, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा क्यों ना, उस अंधेरे को खत्म करने के लिए कोशिश तो करनी ही होगी। हम ठहरे अभावों और मुश्किलों के बीच पैदा हुए लोग, छोटी सी खुशी के लिए भी ना लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है। जब चारों तरफ रेगिस्तान हो और जोर की प्यास लगी हो तो पानी की तलाश इंसान खुद कर ही लेता है, लेकिन ये तलाश, ये कोशिश आसान नहीं होती।
0: अलका के अंदर ये जज्बा कब पैदा हुआ?
1: शायद जब से होश संभाला तब से। सबसे पहले किताबों से दोस्ती की, खुले दिमाग से सोचना और खुली आंखों से सपने देखने शुरू किए, बिना हार माने रास्ते और मंजिल तय किए, और यहाँ हूँ आज।
0: अब आगे क्या?
1: जब तक कोई ना कोई मुझसे पूछता रहेगा कि अलका क्या करेगी, तब तक मैं चलती रहूंगी, नई मंजिलों की तलाश में फिरती रहूंगी। मुझे याद है जब मैंने 10वीं की परीक्षा में स्कूल में टॉप किया था तो मेरी चाची ने कहा था कि पढ़ लिख कर कौन सा तीर मार लेगी अलका। कई दिनों तक मैं भी सोचती रही कि अलका क्या करेगी, फिर कुछ तय किया और आगे बढ़ी। आज से 5 साल पहले की बात है, जिस दिन मेरा 12वीं का रिजल्ट आया था, घर वालों को ही नहीं आस पड़ोस वालों को भी मेरे रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार था।
2: अरे बहुत देर हो गई। अरे सुनती हो, देर हो रही है।
3: आ रही हूँ जी, चाय ला रही हूँ, शांति रखो।
2: अरे एक सरोजी काफी है, शांति को भी रख लिया तो मैं कहाँ जाऊंगा भगवान।
3: तुमको तो कहीं नहीं जाने दूंगी, लेकिन उस शांति को तो नमक लगाकर रेत में गाड़ दूंगी। चाय पियो और जल्दी निकलो।
2: सरोज, जल्दी जाकर भी क्या होता है, कौन सा सवारी हमारा इंतजार कर रही होगी। आजकल तो वैसे भी आने जाने के लिए सबके पास कुछ ना कोई साधन है, इच्छा को कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। सोचता हूँ ठेले रेडी का काम शुरू कर दूँ, सवारी से ज्यादा काम तो बाजार में सामान ढोने का मिल जाएगा।
3: अच्छा अच्छा ठीक है, ज्यादा सोचने चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब जल्दी से चाय बिस्कुट खा लो, मुझे भी आज एक सूट सिल कर देना है दोपहर तक।
2: अरे मुझे पता है तुम कर लोगी। अरे भगवान, तुम्हारी चाय कहाँ है भाई? तुम्हारा दिन तो चाय के बिना शुरू ही नहीं होता।
3: आपकी लाडली अलका अपना 12वीं का रिजल्ट देखने गई है, माता रानी से कहा है कि उसका रिजल्ट आने के बाद ही कुछ खाऊंगी पीऊंगी।
2: माता रानी की बड़ी कृपा है अपनी बिटिया पर।
3: हाँ।
2: अरे मुझे पता है, अलका बिटिया जैसे 10वीं बोर्ड में अच्छे नंबर लाई थी ना, ऐसे ही अच्छे नंबरों से 12वीं पास भी होगी।
3: हाँ।
2: अरे सिर्फ शहर ही नहीं, पूरे राज्य में नंबर एक हो हमारी अलका। अरे लो, आ गई तुम्हारी लाडली।
3: ये देखो मेरा रिजल्ट, 93% आए।
2: माता रानी की कृपा। अरे लाओ मुझे दिखाओ, मुझे मालूम था मेरी बेटी कमाल करेगी कमाल। अरे भगवान हलवा बना देना, खूब सारा मेवा डालकर।
3: हाँ हाँ जरूर बनाऊंगी, मैंने तो पहले से ही सूजी और थोड़े से बादाम काजू रखे हैं हलवे के लिए।
2: ठीक है, जीती रहो बेटी, खूब नाम रोशन करो, आगे बढ़ो। अच्छा बिटिया, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो गई।
3: ठीक है, मेरी बच्ची, माता रानी ने हमारी सुन ली, हमारी इज्जत रख ली।

0: सोचते हैं। मम्मी पापा ने कभी पढ़ाई के अलावा कुछ और सोचने ही नहीं दिया। मेरा भी सपना था कि मैं पढ़ लिख कर किसी अच्छी नौकरी में जाऊं, ताकि मम्मी पापा के सपनों को पूरा कर सकूं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन शाम को वो हुआ जो हम में से किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या हुआ? रात को जब मेरे पापा काम से लौट रहे थे तो एक गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी। उनका रिक्शा पलट गया और बहुत चोट लगी। उनका पैर पूरी तरह से जख्मी हो गया। कुछ लोग सहारा देकर उन्हें घर तक छोड़ गए। प्रिया, हम गरीब लोग ना जन्म से डॉक्टर होते हैं। फायदा हो या ना हो, हर बीमारी तकलीफ के 36 इलाज होते हैं हमारे पास। अरे मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगा। ये बोल बोलकर पापा ने डॉक्टर को नहीं दिखाया, हल्दी का लेप लगाते रहे। लेकिन जब 20-25 दिन बाद भी पापा बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे थे, तब हम उन्हें डॉक्टर को दिखाने सरकारी अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि उन्हें भर्ती करना होगा, क्योंकि उनके पैर में अंदरूनी जख्म है और इन्फेक्शन हो गया है। 4 हफ्ते तक पापा का इलाज चलता रहा और एक दिन जब मैं अस्पताल पहुंची,
1: वार्ड नंबर 15 की तरह
2: जोर से सांस लीजिए।
0: मम्मी,
3: हाँ।
0: पापा ने दवाई खाई?
3: हाँ, दवाई ली है और इंजेक्शन लगा है, अब सो रहे हैं। डॉक्टर आए थे, तुम्हें बुलाया है बात करने के लिए।
0: अच्छा, मैं मिलकर आती हूँ।
3: हाँ बेटा।
0: डॉक्टर साहब नमस्ते, आपने बुलाया मुझे।
4: हाल का बेटा, तुम्हारे पापा डायबिटिक है, इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, गैंग्रीन बन गया है अंदर का घाव, ठीक होने का चांस नहीं है।
0: क्या?
4: बढ़ता ही जा रहा है।
0: डॉक्टर साहब प्लीज कुछ कीजिए, पापा के अलावा हमारा और कोई सहारा नहीं है, घर, मेरी पढ़ाई सब।
4: अलका बेटा, हमें बिना देर किए उनका दायां पैर नीचे से काटना होगा।
0: कैसे सब कुछ बदल गया था। मेरे पापा बुरी हालत में थे और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उस समय ना तो पापा से और ना मम्मी से मैं कुछ बात कर पा रही थी। सारी रात मेरे दिमाग में सिर्फ ये चलता रहा कि अब क्या होगा, मेरे 2 छोटे भाइयों की पढ़ाई का क्या होगा, मेरी मम्मी कैसे संभालेंगी सब कुछ। मेरी मम्मी हमेशा एक बात कहती है कि इस दुनिया में एक ही चीज चलती है और वो है पैसा, और पैसे का काम सिर्फ पैसे से ही होता है, पैसे से। बस उनकी यही बात गूंज रही थी मेरे दिलो दिमाग में। उस वक्त तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस रात ना तो नींद आई और ना ही कोई रास्ता दिखाई दिया। एक बार फिर मैं मुसीबतों की बारिश में भीग रही थी। एक बार फिर वही सवाल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, अलका क्या करेगी?
3: और अलका ने क्या किया?
0: मेरी टीचर है सुशीला मैम, वो मेरी दुर्गा भी है। जब भी दोराहे पर होती हूँ ना, उन्हीं के पास जाती हूँ। मैं बस सुबह होने का इंतजार कर रही थी। सुबह होते ही मैं अपने स्कूल की टीचर से मिलने गई।
5: अलका, रो मत, यही जीवन है। देखो, जैसे तुम 10वीं और 12वीं में सबसे आगे रही, तुम्हें इस इम्तिहान में भी अव्वल आना ही होगा।
0: मेरी तो कुछ

0: समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
1: अलका, तुम एक बहादुर लड़की हो, तुम वो सब कुछ कर सकती हो जो तुम चाहती हो।
0: मैं अकेले कैसे संभाल पाऊंगी सब, पापा की दवाई का खर्चा, मेरे दोनों छोटे भाइयों की पढ़ाई का खर्चा, घर का किराया, राशन, ये सब कहां से होगा मैम?
1: हिम्मत नहीं हारो अलका, हौसला बनाए रखो, जीत तुम्हारी ही होगी। अच्छा एक काम करो, सबसे पहले ना तुम अपना ग्रेजुएशन का प्राइवेट फॉर्म भर दो, सबके साथ साथ तुम्हारी पढ़ाई भी जरूरी है।
0: ओके जी मैम।
1: और साथ ही तुम बच्चों की ट्यूशन भी ले लो।
0: ट्यूशन?
1: हाँ, इससे तुम्हें थोड़ी सी मदद हो जाएगी। देखो मैथ्स और साइंस में तुम सबसे अच्छी हो, तुम यही दो सब्जेक्ट्स पढ़ाकर कुछ कमा लोगी, है ना?
0: हाँ।
1: मुझे पूरा भरोसा है तुम पर और तुम्हारी काबिलियत पर, तुम कर लोगी।
0: जी मैम। मैम आपने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है, आप सही कह रही है, मैं सही करूंगी।
1: अलका
0: जी,
1: एक काम और है जो तुम कर सकती हो।
0: क्या मैम?
1: देखो तुमने बहुत बार अपने हाथों से बनी दाल बाटी चूरमा मुझे और बाकी टीचर्स को खिलाया है।
0: जी,
1: तो तुम इसका स्टॉल क्यों नहीं लगा लेती?
0: क्या?
1: शाम को 3-4 घंटे के लिए। मुझे पता है तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, और तुम्हारी सबसे अच्छी बात यह है कि तुम एक मेहनती लड़की हो।
0: पर मैम ये सब कैसे होगा मैम? कहाँ लगाऊंगी स्टॉल, बाकी सब इंतजाम कैसे होगा मैम ये?
1: अरे बाबा सब हो जाएगा, चिंता मत करो। देखो स्टॉल के लिए कुछ पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगी, बाद में जब कमाने लगोगी तो वापस दे देना मुझे। हाँ
0: जी।
1: अच्छा अब चुप हो जाओ, चल शाबाश, गुड गर्ल, गुड गर्ल, दैट्स लाइक माय अलका, वेरी गुड।
2: प्रिया जी, कई बार हम अचानक ऐसे गिर जाते हैं कि रास्ता दिखाई देना बंद हो जाता है, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए, मैंने भी नहीं मानी। अगली सुबह माँ से आशीर्वाद लेकर मैंने सबसे पहले ग्रेजुएशन का प्राइवेट फॉर्म भरा, सुशीला मैम के स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और साथ ही बच्चों की ट्यूशन शुरू की। जब ये सब व्यवस्थित हो गया तो 1 महीने बाद मैंने पापा का रिक्शा बेचकर एक ठेला खरीदा और दाल बाटी चूरमा का स्टॉल लगाना शुरू किया। शुरू शुरू में कुछ दिक्कत आई, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होता गया। जहां कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया तो वहीं कुछ लोगों ने तारीफ की, सहायता भी की।
3: हिम्मत हो, लगन हो तो रास्ता बन ही जाता है।

0: ਓਏ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਵੀ ਖਿਲਾ ਦੇ ਭਾਈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਲੈ ਲੈ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ
1: अच्छा भाई क्या बात है, स्वाद है, पैसे ज्यादा नहीं इसके, बिल्कुल सही है। मैं तो बताऊं
2: ले भाई ले,
3: सस्ता बढ़िया टिकाऊ है, सच्ची बहुत मजा आया।
0: हां बहुत बढ़िया जीता ना जीता।
4: प्रमोद भैया
1: जी,
4: ये दो थाली का ऑर्डर उधर गाड़ी में पहुंचा दो और ये तीन थाली पैक कर दो इनके लिए।
1: जी।
5: अरे भाई कुछ भी कहो, ऐसा दाल बाटी चूरमा मैंने कभी खाया ही नहीं।
1: सही कह रहा हो, मजे ही आ जावे खाकर, न आत्मा तृप्त सी हो जावे। हाँ। एक प्लेट और खाएगा?
5: ना ना।
6: और आपका काम चल पड़ा।

0: का डीबीसी, ये डीबीसी क्या है?
1: डीबीसी माने दाल बाटी चूरमा।
2: थोड़ा सा मॉडर्न टच दे दिया है भाई।
1: लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। शुरू में दो लोगों को साथ काम पर रखकर एक ठेला चलाया। जब काम बढ़ा तो अपने नाम से ही इसी काम के और ठेले लगाए। जब मेरा दाल बाटी चूरमा का काम बढ़ा तो ऑनलाइन ऑर्डर्स भी आने लगे। मम्मी और सुशीला मैम ने हर कदम पर सहायता की और फिर मैं स्कूल छोड़कर इसी काम पर पूरा ध्यान देने लगी। ट्यूशन सेंटर पर अपने साथ 5 और टीचर्स रख लिए जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं।
0: अलका जी, कमाल की फाइटिंग स्पिरिट है आप में। आप जैसी लड़कियां ही सोसाइटी में लड़कियों का मान बढ़ाती हैं। मैं समझती हूँ इस इंटरव्यू में इतना काफी होगा। मुझे एक एपिसोड के लिए भरपूर कहानी मिल चुकी है, तो पैकअप करते हैं। अब मुझे लगी है भूख और मैं बेशर्म होकर कहूंगी कि अलका डीबीसी का स्वाद लिए बगैर जाऊंगी तो पाप लड़ेगा।
1: बिल्कुल।
0: आओ, आओ।
1: प्रिया जी, ये मेरे मम्मी पापा हैं।
0: नमस्ते अंकल।
3: नमस्ते आंटी।
4: नमस्ते,
0: जीती रहो बेटी। बैठो बैठो। जी एक मिनट। सतीश भाई, इनको भी फ्रेम में ले लीजिए। जी अंकल, अब आपका पैर कैसा है?
3: अब तो ठीक है जी। अलका बिटिया ने जयपुर से मेरे लिए ये पैर बनवाया है।
0: हाँ।
3: जिससे मुझे कहीं भी आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती जी।
0: हाँ। जी ऐसे तो बड़ा घिसा पिटा वाक्य है अलका जी, लेकिन कहे बगैर रहा नहीं जा रहा। आपकी जैसी बेटी हर माँ बाप को मिले।
1: अरे
0: हाँ। जो लोग ये समझते हैं कि लड़की बस घर का चूल्हा चौका ही संभालने के लायक है, उन्हें आपकी कहानी नई समझ देगी, नई सोच देगी।
1: अच्छा तब हो जाए दाल बाटी चूरमा।
0: हाँ। बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ अलका डीबीसी। वैसे यहाँ तक का सफर तो हो गया, आगे क्या सोचा है?
1: हम ठहरी लड़कियां, जमाना भले बहुत बदल गया है लेकिन लड़कियों को अब भी हर कदम पर सवालों का सामना करना पड़ता है। मैं तैयार हूँ सवालों के लिए, परेशानियों से लड़ने के लिए, सपने देखने और उन्हें सच करने के लिए, और यही हर लड़की की कहानी होनी चाहिए। वैसे इस सीरीज का टाइटल क्या होगा प्रिया जी?
0: अलका क्या करेगी?
1: पर इसमें तो अलग अलग लड़कियों की स्टोरीज आप दिखाएंगे ना, तो फिर
0: हाँ वो तो है। पहले मैं सिर्फ इमोशनल सी स्टोरी दिखाना चाहती थी। अब मेरा पर्पस होगा हर लड़की के भीतर उस अलका को ढूंढना जिसमें साहस, समझ और जिगरा है, जो जानती है कि क्या करना है, क्या कहना है जब कोई पूछे। अलका क्या करेगी?

अलका क्या करेगी। अभी आप राजीव शर्मा का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। अलका की भूमिका में थी कुमकुम जैन, प्रिया किरण शिवपुरी, कृपाल कीमती आनंद, शंभु ब्रजमोहन यादव। बॉस और डॉक्टर की भूमिका में थे अशोक मलकानी, सरोज ममता मलकानी और सुशीला की भूमिका में थी सुनीता शाहबादी। नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोतेनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और जर्मी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: सरकार ने कहा है कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं कक्षा के परिणामों पर आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता पर प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता जताई। सचिव ने बताया कि सीबीएसई ने इस वर्ष ऐसी प्रणाली लागू की है जिससे मूल्यांकन में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। सचिव ने कहा कि सीबीएसई ने पुनर्मूल्यांकन का शुल्क कम कर दिया है। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार यह फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया कि इबोला का संकट कोविड-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं छत्तीसगढ़ में चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले श्री रामचंद्र गोडबोले और श्रीमती सुनीता गोडबोले के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं नरेश मिश्रा।
2: छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा के घने जंगल और दुर्गम क्षेत्र के कई गांव आज भी ऐसे हैं जहां बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। वहां एक दंपत्ति बीते 3 दशक से निस्वार्थ भाव से स्वास्थ्य सेवा की अलख जगा रहा है। ये कहानी है डॉक्टर रामचंद्र त्रयंबक गोडबोले और सुनीता गोडबोले की। उनके इस सराहनीय कार्य को देखते हुए सरकार ने इस बार पद्मश्री सम्मान के लिए उन्हें चुना है। उनके इस प्रेरक सफर की कहानी आइए जानते हैं उनकी ही जुबानी। सबसे पहले तो रामचंद्र सर और सुनीता मैडम, मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आप दोनों को बहुत बहुत बधाई पद्मश्री सम्मान के लिए चुने जाने के लिए।
3: धन्यवाद
2: रामचंद्र सर। आप ये बताइए कि आप बस्तर कब पहुंचे और कैसे आपके मन में ये प्रेरणा आई कि आपको बस्तर के क्षेत्र में या आदिवासी क्षेत्र में काम करना है?
4: मैं रहने वाला सतारा महाराष्ट्र का हूँ और जब मैं BAMS डॉक्टर कोर्स के लिए जब पढ़ाई कर रहा था तो एक डॉक्टर अल्बर्ट श्वाइटजर करके एक डॉक्टर था, यूरोप में उसका जन्म हुआ लेकिन वो अफ्रीका में चला गया और वहां से आदिवासियों के लिए उन्होंने जीवन भर काम किया। तो डॉक्टर अल्बर्ट श्वाइटजर की ये जो कहानी है वो मैं कहीं किसी समाचार पत्र में पढ़ा था, उसका जीवन ही उसके आत्मकथन है। वो मुझे अंग्रेजी में एक छोटा सा किताब मिला, वो मैंने पढ़ने के बाद वो मेरी थोड़ी सी प्रेरणा हुई। उसके बाद मैं डॉक्टर प्रकाश आमटे जो गढ़चिरौली में काम करते हैं वहाँ कुछ साल के लिए काम में जाने का मैंने विचार किया, वहाँ मिला मैं उनको लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ लेप्रसी का कोई मैं कोर्स नहीं किया था इसलिए मैं ज्वाइन नहीं हो पाया। लेकिन बाद में ये एक वनवासी कल्याण आश्रम करके एक संस्था है, उन लोगों को मालूम हुआ कि ये आदमी कहीं तो आदिवासी क्षेत्र में जाके कुछ काम करने का सोच रहा है तो वो मेरे से संपर्क उन्होंने किया और उन्होंने मुझे ये किया कि आप नासिक और डांग डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात का है उस बॉर्डर में आप काम कर सकते हो। तो वहां मैंने 4 साल भिल्ल आदिवासियों के बीच में काम किया और वो उनका जो जीवन है उनकी जीवन की कठिनाई, स्वास्थ्य की उनकी असुविधा इतनी सारी, ये सब देखने के बाद मेरे अंदर से प्रेरणा जागृत हो गई कि ये हम काम कर सकते हैं और वही से मेरा धीरे धीरे ऐसा लगता है कि मुझे मन की तैयारी हो गई कि मैं लंबे समय के लिए आदिवासी क्षेत्र में काम करूंगा। फिर हमारे संस्थाओं ने हमको बताया कि भाई महाराष्ट्र के बाहर ज्यादा समस्या है, वहां जाके काम करना चाहिए। तो फिर मेरे मन में यह हो गया कि मैं महाराष्ट्र के बाहर जाने के लिए तैयार हूँ। मैं जाके अधिकारियों को बताया, 89 की बात है ये। हाँ तो फिर 90 में हमारा शादी हो गई और 10 दिन के अंदर हम दोनों बस्तर में बारसूर में आ गए हम लोग।
2: सुनीता जी, आमतौर पर ऐसा होता है कि शादी के बाद लोग कुछ समय खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं और ये बड़ी रोचक बात है कि डॉक्टर रामचंद्र जो है उनका कमिटमेंट अलग था, उससे पहले से आपने एक कमिटमेंट कर रखा था अपने जीवन को लेकर के। आपके जीवन में ये चुनाव कैसे तय हुआ?
3: हाँ, इसका 2 प्रमुखता से मुझे लगता है कारण है ये विचार मेरे मन में आने का, क्योंकि मेरे घर में जो वातावरण है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए मेरा मामा था जो ज्यादा रूप से काम करता था और बाकी भी घर के सदस्य कोई कुछ ना कुछ छोटा बहुत थोड़ा बहुत काम करते थे, तो उसके कारण और पुणे का एक जो सांस्कृतिक और सामाजिक सब वातावरण है उसका भी असर हमारे सभी के ऊपर पड़ता है, जो संवेदनशील है उनके ऊपर तो होता ही है। तो बहुत सारे जो सामाजिक सुधारों का इतिहास है पुणे शहर को, उसके यहाँ जो काम करने वाले समाज सुधारक थे उनके कारण, वो भी हम पाठ्य पुस्तकों में पढ़ ही रहे थे जब पढ़ाई चल रही थी शालेय जीवन में।

0: महाविद्यालय जीवन में मेरा संपर्क अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या छात्र संगठन से संपर्क आया। उसके कारण मुझे अपने भारत में जो भी इस प्रकार से समाज है अलग अलग, और उनकी अवस्था क्या है, हम किस प्रकार से जीना जी रहे हैं, और उनको कितने छोटी छोटी बातों का भी सामना करना पड़ रहा है रोज के जीवन में, ये सब हमको हमारे जो ज्येष्ठ कार्यकर्ता प्राध्यापक कार्यकर्ता भी हमारे साथ काम करते हैं विद्यार्थी संगठन में, तो वो सब बताते थे और वो हमेशा यह आह्वान करते थे हमें एक छात्र के रूप में ये सभी समस्याओं को जानना चाहिए। और हमारे साथ साथ कुछ छात्र भी ऐसे थे कि जो मास्टर डिग्री कर रहे थे लेकिन पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में विद्यार्थी परिषद का काम करते थे, तो उनका भी वो सब देख के मेरे मन में विचार आया। बहुत लोगों को फिर पता चला कि भाई इसके मन में ऐसा कुछ काम करने का है। तो वैसे ही हमारे जो मैं जहाँ रहती हूँ, मेरा मायका का घर है, वहां ही एक वनवासी कल्याण आश्रम की फाउंडर मेंबर रहती थी नंदाताई करके, तो उन्होंने मुझे बताया कि अरे तुम्हें तो गांव में जाके कुछ काम करना है, तो तुम्हें फिर आओ हमारे साथ, अपना जो संगठन का काम है वो ऐसे ही वनवासी क्षेत्र में है, आदिवासी क्षेत्र में काम है। फिर वो संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत हुई, फिर उन्होंने मुझे कुछ जगह भेजा, नासिक जिले में भेजा, रायगढ़ जिले में भेजा, ठाणे जिले में भेजा, जहां जहां मतलब काम चलता है अभी भी वहां पर भेजा, और वहां के कार्यकर्ताओं से मैंने बातचीत किया, कुछ गांवों में घूमी, तब जाके मुझे ये मेरा विचार पक्का हो गया कि नहीं मैं ऐसा काम कर सकती हूँ।
1: डॉक्टर रामचंद्र, ये बताइए कि जब आप बस्तर पहुंचे तो आपने बारसूर में रहना शुरू किया और फिर यहां से गतिविधियां शुरू की, कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए और कैसे आप लोगों ने इन चैलेंज का सामना किया?
2: अबुझबाड़ में जाना आना तो काफी कठिन ही था उस समय, फिर भी हमारे साथ कुछ माड़िया आदिवासी लड़कियां थी, तो वो 8-10 लड़कियां पहले से रहती थी, उनके साथ ही हम लोग जंगल जाते थे, उनके साथ ही अबुझबाड़ में गए थे। और इतना दूर से पेशेंट आते हैं तो हमको कुछ ना कुछ अपने प्रिंसिपल्स हमको पक्के करने हैं, बिना नाम लिखने के पहले ही पेशेंट को ट्रीटमेंट चालू कर देना, पैसा नहीं पूछना, और उसको जहां ठीक हो जाए वहां तक ले जाके उसको ठीक करवा के लाना। हम अबुझमाड़ में इतना दूर मेडिसिन के लिए नहीं जा सकते थे, ले जाके पेशेंट हमारे यहाँ आते थे, तो उनका आना ही इतना कठिन था। ये सब देखने के बाद मेरे अंदर इतनी प्रेरणा जागृत हो गई, आपको आश्चर्य लगेगा कि 20 किलोमीटर गिदम है, 4-4 महीना में गिदम नहीं आता था, मैं बारसूर में बैठा रहता था, क्योंकि सेरेब्रल मलेरिया की केस है, निमोनिया की केस है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस का बहुत डेंजरस केस है, ऐसी केसेस जब आएगी उस समय आपको उसके साथ रहना ही है। अगर मैं यहाँ ट्रीट नहीं कर सकता हूँ, ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, तो महारानी अस्पताल जगदलपुर में ट्रांसफर करना है, तो एम्बुलेंस ड्राइवर डीजल हम पक्का तैयार करके रखते थे। इतना ही नहीं, इतवार को जो पेशेंट रुकते थे वो पेशेंट के लिए सवेरे जो भी ट्रीटमेंट करना है सब करना है, तो एक ऐसा लगता है कि इतवार को मैं थोड़ा जंगल घूमने के लिए जाऊंगा, इंद्रावती घूमने के लिए जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा, तो मैं घूमने के लिए जाऊंगा तो भी मैं आश्रम में बोल के जाता था कि मैं इस इलाके में हूँ, अगर जंगल का पेशेंट आए तो तुरंत मुझे बुलाना है। कठिनाई भाषा के प्रश्न था, लेकिन हमारे साथ माड़िया महिलाएं थी इसलिए वो भाषा का प्रश्न हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं आया।
1: मैडम आप बताइए कि महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा हमेशा प्रश्न रहता है, शहरी समाज में भी है, फिर आप तो अबुझमाड़ और बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में काम कर रही हैं, वहाँ आपने क्या देखा और वहाँ के समाज की महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर किस तरह की चुनौतियां हैं?
0: वो क्षेत्र ही पूरा बुनियादी सुविधाओं से वंचित था, इसीलिए किसी को भी आना और वो जैसे डिलीवरी के लिए आना है या कोई बच्चा बीमार है या बार बार, अभी तो हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात करते हैं कि भाई अस्पताल में डिलीवरी हो सभी महिलाओं, लेकिन उस समय ये सब संभव ही नहीं था क्योंकि उन तक वो पहुंचती ही नहीं थी, उनको वो समझ में भी नहीं आती थी। अच्छा, वो डिलीवरी की अगर कोई महिला है, मतलब प्रेग्नेंट गर्भवती महिला है, तो उसको 6-7 घंटा चला के लाना, मतलब वो खुद पैदल चल के नहीं आएगी, यानी उसको ताकत खटिया पर डाल के वैसा सब लाना है, तो उसके लिए बाकी लोगों का जुगाड़ करना पड़ता है। फिर अगर वो बाकी लोगों का जुगाड़ करना है तो उनको भी कुछ देना पड़ता है कभी कभी, कम से कम दाल चावल दे दो, तब जाके लोग तैयार होते हैं। तो ये सभी दिक्कतें हमको धीरे धीरे समझ में आई, तो हम लोग महिला चेतना शिविर जो लेते थे, सब जा जाके बता के, हमारी दो दो जो बहनें थी उनको हमने प्रशिक्षित करके ऐसे हम 8 सब सेंटर चलाए, और उसके आजू बाजू के 15-16 गांवों में ये बहनें जाती थी, वहां पर ये सभी बातें बताती थी। उसके कारण ये बात हुआ कि जल्द से जल्द पेशेंट को लाना है, बारसूर ले जाना है और ठीक ठाक करना है।
1: डॉक्टर रामचंद, आपको कैसा अनुभव रहा अबुझमाड़ क्षेत्र में जब आप गए, तो सबसे बड़ा चैलेंज जागरूकता ही था, सबसे बड़ी चुनौती लोगों को जागरूक करना ही था स्वास्थ्य के लिए?
2: जागरूक करना ये सबसे बड़ी बात है, वो कि हमको जो बीमारी आई है वो बीमारी ठीक हो सकती है, ये इनके दिमाग में नहीं है, तो बीमारी है तो शरीर है तो बीमारी रहती ही जाएगी, ये कौन सा बड़ी बात है, अरे लेकिन ये बीमारी तो ठीक हो सकती है,

0: लोगों ने अभी भी दर्शन कर रहे हैं, अभी भी कुपोषण का कार्यक्रम लोग ले रहे हैं ना। तो बच्चों को 10 दिन का चिक्की देने के बाद 3 दिन के बाद जाते हैं तो पूरी चिक्की खत्म हो गई। कौन खाया? बोला हमारा एक साला है, दूर से आया, अबूझमाड़ से वो आया है, वो देखा और वो चार पांच के वही खा लिया। अरे ऐसा मत करो, बच्चों को बीमारी से मुक्त करने के लिए सब अभियान चल रहा है और वो चिक्की अब दूसरे लोग खा रहे हैं। अबूझमाड़ में आपको काम करना है तो इस समस्या से आपको जूझना पड़ेगा कि कोई भी चीज गंभीरता से नहीं लेते, उनको गंभीरता लानी पड़ेगी, चेतना जागृति, उसके बाद ये सारे कार्यक्रम। तो अबूझमाड़ में अपने मेडिकल सर्विसेज पहुंचाना आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है।
1: जी, आपने देखा महिलाएं काफी ज्यादा एनेमिक होती हैं, खासतौर पर आदिवासी समाज में सिकल सेल की भी समस्या है, इसको आप लोगों ने कैसे एड्रेस किया?
2: वही बात मैं फिर से बताऊंगी कि जो अभी भी पहुंच विहीन गांव है, आपको रोड साइड के गांव में जहां तक ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की सब सुविधाएं अभी पहुंच रही है, वहां की महिलाएं जागरूक हो रही है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कर रही है, मितानिन जो बता रही है उसको समझ रही है, आगे अपने जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनका भी वो सुनती है, कुछ कुछ टीकाकरण है वो सब करती है, लेकिन अंदर में अभी भी दुनिया का ही प्रभाव है। और वो अगर आते भी है तो भी बूढ़े लोग वहां पर है। अभी जैसे हमारा नारायणपुर रोड पर जो बोतली घोटिया हरा कोडेर वगैरह गांव है, वहां पर ये चलता है उनके जो, क्योंकि वो तो बस्तर जिला पड़ता है वहां से, लेकिन फिर भी वहां से नर्स और ये लोग आते हैं, वेलनेस सेंटर करके आजकल जो कल्पना सरकार ने ये की है, तो उनके पास गोली वगैरह मांगने, लेकिन वही पुराने ही, मतलब जो बुजुर्ग, पुराने नहीं बुजुर्ग जो है वही बार बार आते हैं। मेरे बच्चे को वहां पर समय पर ले जाना चाहिए और ये करना चाहिए, ये बहुत ही कम होता है। बस कुछ गांवों में हमारे कारण जो है वो ये हुआ है, चलो भाई कम से कम मलेरिया जो जांच है वो तो करो। आपको लगता है ना कि बच्चे का मलेरिया, उसको कैसा हो रहा है, उनको समझाया हमने और वो वेलनेस सेंटर में आके कम से कम वहां पर ये करते हैं, नहीं तो पहले तो वो उसके लिए भी दुनिया के पास ही जाते थे।
1: डॉक्टर रामचंद, आप लोग इसके अलावा कुपोषण एनीमिया के लिए भी एक अभियान चला रहे हैं इस क्षेत्र में?
0: हाँ, हम लोगों ने माल न्यूट्रिशन एनीमिया एलिवेशन स्कीम, मास नाम से अलग स्कीम बनाई है। उसमें हम लोग जो जंगल का क्षेत्र एकदम अबूझमाड़ या अबूझमाड़ में 5-6 गांव में हमने चालू किया और बाकी क्षेत्र में भी है, जैसे इंद्रावती किनारे का सब इलाका है, वहाँ हम लोग एक गांव के 20 बच्चों को चुनते हैं जिनका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम परसेंटेज के नीचे है, उन बच्चों को हम चुनते हैं, उनकी पूरी जांच बाल रोग तज्ञ से उसकी पूरी जांच करवा लेते हैं, उसके बाद उसके अदर जो डिसीजेस है वो सब कंट्रोल करने के बाद फिर कृमि का गोली, फिर मलेरिया की ट्रीटमेंट, मलेरिया प्रतिबंधन जो है वो, उसके बाद फलीदाना गुड़ और काला तिल इसका चिक्की और एक चिवड़ा बनाते हैं देते हैं, उसके बाद हम लोग दाल तेल और बाकी मिरी और हल्दी सब कुछ है। तो ये सारा उनको हम देते हैं, तो मध्यान्ह भोजन उनको करना है, उनका घर का चावल और हमारा दाल और तेल दिया वाला उसका उनको रोज खिलाना है बच्चों को, तो ये कार्यक्रम चलता है। सब्जी बीज भी देते हैं कि सब्जी उगा के वो अपने रोज का जो भोजन है उसमें सब्जी पन्ना डाले, हरे पन्ने का सब्जी डाले, मच्छरदानी लगाते हैं कि नहीं ये भी देखते हैं, क्योंकि मलेरिया के कारण भी खून टूट रहा है। तो उस गांव में भी एक मॉनिटर करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं और हम इतना तक बोलते हैं कि रात को 10 बजे जाके देखो कि वो बच्चा मच्छरदानी में सोया है कि नहीं सोया है। हम लोगों ने अभी तक 24-25 गांवों में ये कार्यक्रम चलाया, 400 के ऊपर बच्चों को हम लोगों ने इसमें ठीक करवाया है। एक समय हम लोग 1-2 गांव लेते हैं, इस बार हम लोगों ने 4 गांव लिए हैं, माने 80 बच्चों के लिए हमारे कार्यक्रम चला रहे हैं हम लोग। तो ये हम लोग प्रोग्राम अभी लगातार चल रहा है, 2021 से हम लोग कुपोषण के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं और इसका मैंने विचार बदलो तो नसीब बदलेगा ऐसा बोलते हैं। तो स्कूल में जाके इसी सारे अनुभव हम स्कूल में जाके बच्चों को सुनाते हैं।
1: तो ये थे सुनीता गोड़बोले जी और डॉक्टर रामचंद्र, जिन्होंने अपना पूरा जीवन निस्वार्थ भाव के आदिम समुदाय की सेवा में बिताया है और उनकी इस प्रेरक बातचीत के जरिए आपने जाना कि हमारी शिक्षा का, हमारी जो जीवन शैली है उसके क्या दायित्व है परिवार और समाज के लिए।
3: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी छत्तीसगढ़ में चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले श्री रामचंद गोड़बोले और श्रीमती सुनीता गोड़बोले के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे नरेश मिश्रा।
4: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।

लीजिए सुनिए नगमा फिल्म कारवां से, स्वर है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और समय हो गया है प्रोग्राम रेडियो किड्स का। मैं वंश दलाल और मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त।
1: मैं काशवी आहूजा।
2: मैं आशना पुरी।
3: मैं शिवांश राय।
4: मैं रिद्या शाह।
5: मैं सौम्या सिंह।
6: मैं राध्या शर्मा।
7: मैं निविता छेत्री।
8: मैं लक्षिता शर्मा।
9: मैं अनाया जैन।
10: मैं सौम्या।
11: मेरा नाम चिराग गुप्ता है।
12: मेरा नाम काविड शर्मा है।
13: मेरा नाम अयान जैन है।
14: मेरा नाम तुषार अत्री है।
15: मेरा नाम आर्यन कुमार है।
16: मेरा नाम अतिक्ष राजपूत है।
17: मेरा नाम खुशी शर्मा है।
18: मेरा नाम अव्युक्त अग्रवाल है।
19: मेरा नाम अंशपाल है।
2: अगर आप इस वक्त चाय पी रहे हैं, काम के लिए रेडी हो रहे हैं या ट्रैफिक में फंसकर सिग्नल का वेट कर रहे हैं तो बस एक मिनट के लिए रुक जाइए, क्योंकि कुछ पल सिर्फ शुरू नहीं होते, वो दिन बना देते हैं, वो वाइब सेट कर देते हैं। और आज बिल्कुल वैसा ही एक खास पल है।
0: मैं हूँ आराध्या। आज का ये प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज रेडियो स्टेशन पर कब्जा है हम बच्चों का।
1: बिल्कुल सही कहा आराध्या। और हम सिर्फ बच्चे नहीं हैं, हम हैं CRPF पब्लिक स्कूल रोहिणी के छात्र।
5: आज हम बात कर रहे हैं उस देश की जिसे आजाद हुए 89 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आजादी की ज्वाला 150 वर्ष पहले ही वंदे मातरम के रूप से धधकना शुरू हो गई थी।
2: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ, जिसमें यह गीत पहली बार आया था, वो 18वीं सदी के सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित था। यानी वह गीत महज एक कविता नहीं, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक सशस्त्र क्रांति की गूंज थी। हैरानी की बात यह है कि अंग्रेज इस गीत से इतना डर गए थे कि उन्होंने इसके गाने और छपने दोनों पर बैन लगा दिया था। उस दौर में अगर आप सड़क पर वंदे मातरम बोल देते तो सीधे जेल की हवा खानी पड़ती। पर कहते हैं ना, जिस चीज पर पाबंदी हो उसका क्रेज और भी ज्यादा बढ़ जाता है। क्रांतिकारियों ने तो विदेशों में तिरंगे झंडे पर वंदे मातरम लिखवा दिया। यह महज एक नारा नहीं, आजादी का विजुअल सिंबल बन गया था। अब आते हैं 24 जनवरी 1950 की उस ऐतिहासिक दिन पर, जब संविधान सभा बैठी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साफ लफ्जों में कहा कि भले ही जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है, लेकिन वंदे मातरम को भी उसके बराबर का सम्मान दिया जाएगा। इसलिए आज इसे हमारा राष्ट्रगीत कहा जाता है।

0: दोस्तों, अब हम बात करेंगे वर्ल्ड कम्युनिकेशन डे की, जिसने 7 समुंदर पार बैठे लोगों को भी हमारे ड्राइंग रूम तक पहुंचा दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? तो चलिए आज मैं आपको एक अमेजिंग सी बात बताती हूँ। आज हम 5G के युग में हैं, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन का असली जन्म आज से 161 साल पहले यानी 17 मई 1865 में हुआ था। उस वक्त ना इंटरनेट था, ना कोई स्मार्टफोन, सिर्फ एक तार के जरिए संदेश भेजे जाते थे, जिसे आज हम टेलीग्राफ कहते हैं। इसी दिन पेरिस में इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन की नींव रखी गई थी, जो आज दुनिया की सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से एक है। तो अब तुम बताओ राध्या, क्या कहना चाहती हो?
1: सोचो रिद्या, उसे छोटे से तार से शुरू हुआ सफर आज सैटेलाइट और ऑप्टिकल फाइबर तक पहुंच गया है। आज दुनिया सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है, और इसमें हमारा रेडियो भी एक बहुत बड़ी कड़ी है, जो बिना किसी डाटा पैक के आप तक हर जानकारी और मनोरंजन पहुंचाता है। तो आज अपने फोन या रेडियो को एक थैंक यू जरूर बोलिएगा, क्योंकि वही तो वो जरिया है जिसने हमें अकेला नहीं होने दिया।

0: अब समय है एक सुंदर और गर्व से भरी प्रस्तुति का। अगली प्रस्तुति लेकर आ रही है काशवी, कविता के साथ जिसका विषय है मेरा प्यारा भारत। ये कविता हमारे देश की एकता, संस्कृति और शान को दर्शाती है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए काशवी का।
1: मेरी कविता का नाम है मेरा प्यारा भारत अपना। इस संसार की अद्भुत रचना, इस संसार की अद्भुत रचना मेरा प्यारा भारत। इस भारत की धरती से निकला, इस भारत की धरती से निकला अप्रतिम ज्ञान प्रकाश, अप्रतिम ज्ञान प्रकाश। ऋषियों मुनियों की तपोभूमि, ऋषियों मुनियों की तपोभूमि और मानवता का आस। वेद उपनिषद पुराणों ने दिया, वेद उपनिषद पुराणों ने दिया विश्व को ज्ञान भंडार। योग आयुर्वेद बना हर मानव के लिए अनुपम उपहार, योग आयुर्वेद बना हर मानव के लिए अनुपम उपहार। जीवन जीने की कला को गीता ने दिया आधार, जीवन जीने की कला को गीता ने दिया आधार। शांति हो त्रिभुवन में, शांति हो त्रिभुवन में, प्रकृति के कण कण में, प्रकृति के कण कण में। जल में शांति, थल में शांति, शांति हो अंतरिक्ष गगन में। जल में शांति, थल में शांति, शांति हो अंतरिक्ष गगन में। यही है चिंतन, यही है सपना मेरा प्यारा भारत अपना। यही है चिंतन, यही है सपना मेरा प्यारा भारत अपना। तेन पूंजिता हमें उपनिषद ने सिखलाया, महावीर और बुद्ध ने करुणा दया का मार्ग बतलाया। अहिंसा के पुजारी बन गांधी ने सत्य का मार्ग बतलाया। अब्दुल कलाम हो या मदर टेरेसा ने मानवता को समझाया, अब्दुल कलाम हो या मदर टेरेसा ने मानवता को समझाया। विचार भेद हो सकता है, विचार भेद हो सकता है लेकिन मन भेद नहीं करना है, लेकिन मन भेद नहीं करना है। यही भारत भूमि का सपना है मेरा भारत अपना है। यही भारत भूमि का सपना है मेरा भारत अपना है। धन्यवाद।

0: तो दोस्तों अब प्रस्तुत है राजा राम मोहन रॉय पर एक स्किट।
1: नहीं नहीं, मुझे चिता पर नहीं बैठना।
2: यही हमारा धर्म है, इस विधवा को अपनी पति की चिता पर बैठना ही होगा, यही संस्कार है।
3: नहीं, ये संस्कार नहीं, ये हत्या है। कौन सा धर्म एक निर्दोष की बलि मांगता है? शास्त्रों का ज्ञान कीजिए, वो प्रेम सिखाते हैं, क्रूरता नहीं।
2: तुम हमें सिखाओगे? तुमने अंग्रेजी पढ़ ली तो क्या धर्म भूल गए?
3: मैंने अंग्रेजी पढ़ी ताकि मैं दुनिया को जान सकूं, और उपनिषद पढ़े ताकि अपने मूल को पहचान सकूं। तर्क ही मेरा ईश्वर है।
4: राजा राम मोहन रॉय ने सिर्फ सती प्रथा का ही विरोध नहीं किया, बल्कि ब्रह्मो समाज की भी स्थापना की, बाल विवाह का विरोध किया और महिलाओं के लिए शिक्षा का द्वार खोला। उन्हें मॉडर्न इंडिया का जनक भी कहा जाता है।
5: वाह, क्या व्यक्तित्व था। दोस्तों क्या तुम्हें पता है, राजा की उपाधि उन्हें मुगल सम्राट ने दी थी। वो कई भाषाओं के विद्वान थे, संस्कृत, पर्शियन, अरबिक और इंग्लिश। आज CRPF स्कूल रोहिणी के छात्र इस किट के माध्यम से बस यही बताना चाहते हैं कि बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है।
4: राजा राम मोहन रॉय ने हमें सिखाया कि तर्क के बिना कोई भी परंपरा सिर्फ एक बोझ है। उनकी विरासत आज भी हमें एक बेहतर समानतावादी समाज बनाने की प्रेरणा देती है।
5: तो दोस्तों कैसा लगा हमारा छोटा सा सफरनामा?

बोलता।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। उन्होंने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा है। फाइनल में इस जोड़ी को इंडोनेशिया के लियो रॉली कॉर्नाडो और डेनियल मॉर्थिन की जोड़ी ने 12-21, 23-25 से हराया। आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 7 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 75 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: लीजिए सुनिए फिल्मी नगमा, फिल्म नमक हलाल से, स्वर है किशोर कुमार का।
1: बुजुर्गों ने

नमस्कार, मैं डॉक्टर शोभना नारायण, कथक नृत्यांगना, गुरु एवं कोरियोग्राफर हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं आकाशवाणी से कई दशकों से जुड़ी हुई हूँ और मैंने देखा है कि आकाशवाणी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह मंच कलाकारों के लिए अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम रहा है, जिसने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जन जन तक पहुंचाया है। कथक जैसी समृद्ध नृत्य परंपरा को भी आकाशवाणी ने अपनी तरंगों के माध्यम से देश विदेश में पहचान दिलाने में योगदान दिया है। मैं कामना करती हूँ कि आकाशवाणी इसी प्रकार कला, संस्कृति और समाज को जोड़ते हुए नई ऊंचाइयों को छूता रहे। एक बार फिर मैं आकाशवाणी परिवार को 90 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।

0: graduate diploma project engineer on a tenure basis in mechanical and chemical engineering disciplines. A total of 13 vacancies available, including posts reserved for UR, OBC, SC, ST and EWS categories. Candidates should possess a BE, BTech or diploma in mechanical or chemical engineering along with apprenticeship experience in manufacturing or handling ammunitions and explosives. The age limit is 18 to 30 years as on the closing date, with relaxations of 5 years for SC, ST candidate and 3 years for OBC, NCL candidates. Applications must reach within 21 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Complete details and application procedure is available on the website, that is at www.ddpmod.gov.in. The Engineering Department Chandigarh Administration has invited applications on deputation basis for the post of Superintending Engineer Civil. The vacancy is open to officers working in central, state governments, PSUs, autonomous bodies and statutory organizations. The post carries level 13 pay scale. Eligible officers must send their applications through proper channel along with APARS, vigilance clearance and supporting documents. The last date for submission is 16th June 2026. Detailed eligibility conditions and application format is available on the official website. Kindly visit www.chandigarh.gov.in. The Department of Fertilizers has invited applications for the post of Assistant Commissioner Shipping in pay level 11 as per the 7 CPC. On deputation or short-term contract, there is just one vacancy. Eligible officers from central or state governments, PSUs, autonomous bodies and research institutes with experience in shipping, charting, port operations and administration can apply. A bachelor's degree is essential, with a diploma or fellowship in shipping is desirable. Applications must be sent through proper channel within 45 days. Kindly refer to the website for details, that is at www.fert.gov.in. The Department of Fisheries has announced two vacancies for the post of Assistant Commissioner Fisheries in pay level 11 as per the 7 CPC on deputation or short-term contract basis. Eligible officers can apply through proper channel within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Detailed qualifications and application forms are available on the department's website. Kindly refer to https://dof.gov.in. I repeat, https://dof.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: Samachar Seva Prabhag prastut karta hai Rozgar Samachar. नमस्कार, रोजगार समाचार के साथ हाजिर हूँ मैं विनीता। आइए कुछ जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित।
2: अर्नेट इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था है। अर्नेट इंडिया नियमित आधार पर कुछ पदों को भरना चाहती है। पद का नाम वरिष्ठ प्रबंधक समूह क, एक स्थान अति पिछड़ा वर्ग के लिए स्तर 13 के अंतर्गत, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी समूह क, एक स्थान अनारक्षित स्तर 10, तकनीकी सहायक समूह क, एक स्थान अति पिछड़ा वर्ग स्तर 6, सहायक समूह क, एक स्थान अति पिछड़ा वर्ग स्तर 6, निजी सहायक समूह क, एक स्थान अनारक्षित स्तर 6। आवेदन इस विज्ञापन के प्रसारण के 30 दिनों के अंदर पहुंच जाना चाहिए। कोई भी संशोधन परिवर्तन अर्नेट वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा।
1: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अंसारी नगर नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली नियम के तहत अनुमत पात्र भारतीय अन्य नागरिकों से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में विभिन्न विषयों के सहायक प्रोफेसर के 26 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। उपलब्ध पदों, निर्धारित भर्ती नियमों और इन पदों के लिए सामान्य नियम एवं शर्तों के बारे में विस्तार में जानकारी अगर आपको चाहिए तो एम्स नई दिल्ली की दो वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, www.aimsexams.ac.in, www.aims.edu।
2: इस संबंध में अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो भी आप वेबसाइट विजिट करें। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम

0: तारीख होगी 11 जून 2026। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में विकास स्कंध में निदेशक इंजीनियरिंग का एक पद को प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक अनुबंध सहित द्वारा भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो कि 7वें सीपीसी के अनुसार लेवल 12 एक सामान्य केंद्र सेवा समूह क राजपत्रित पद है। ये आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक क्वालिफिकेशन अनुभव इससे संबंधित विवरण पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर करियर लिंक के अंतर्गत आपको मिल जाएगी। इच्छुक एवं पात्र अधिकारियों के आवेदन इस प्रसारण के 60 दिनों के अंदर उचित माध्यम से अवर सचिव प्रशासन पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय कमरा संख्या 439 परिवहन भवन 1 संसद मार्ग नई दिल्ली 110001 को भेजें। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान IRGIPT तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। RGIPT संविदात्मक पदों में नियुक्ति के लिए उच्च प्रेरक और पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। पद का नाम है सहायक कार्यपालक अभियंता सिविल कैंपस जॉयस। रिक्ति 1 होगी। अधिकतम आयु सीमा होगी 45 वर्ष की और उन्हें समेकित वेतन मिलेगा 90,000 का। सहायक अभियंता सिविल शिवसागर और बेंगलुरु ये है कैंपस। रिक्ति है 2 और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष। इन्हें मिलेगा समेकित वेतन 50,000 रूपए। योग्य उम्मीदवारों के लिए उच्चतर वेतन पर विचार किया जा सकता है। सहायक कार्यपालक अभियंता सिविल के लिए BE BTech सिविल में प्रथम श्रेणी 7वें निर्माण में कम से कम उन्हें 3 साल का अनुभव होना आवश्यक है। हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो। सहायक अभियंता सिविल में BE BTech सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी 7वें निर्माण में कम से कम 3 वर्ष हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव या फिर प्रथम श्रेणी डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग 7वें निर्माण कम से कम 5 वर्ष हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 8 वर्षों का अनुभव। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं rgipt.ac.in/en/page/nts-contractual-position। किसी भी पूछताछ के लिए ईमेल भी उपलब्ध है, जो है recruitment_nts@rgipt.ac.in। साथ में हम जानकारी ये दे दें कि आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तारीख है वो है 31 मई 2026। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाई द न्यूज सर्विसेज डिविजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा।

श्रोताओं, आज 17 मई है और आज का दिन भारतीय संगीत की दुनिया के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज जयंती है उस फनकार की जिन्होंने गजल को बड़े बड़े दीवान खानों और महफिलों से निकाल कर सीधे आम आदमी के स्टीरियो और वॉकमैन तक पहुंचा दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मखमली आवाज के शहंशाह पद्म भूषण पंकज उदास जी की।

आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम पंकज उधास के साथ साथ अन्य कई प्रमुख हस्तियों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर, लेकिन सबसे पहले आज के डेटलाइन में हम चर्चा करेंगे हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन की। आज हाई ब्लड प्रेशर दिवस

0: है। हर साल 17 मई को दुनिया भर के लोगों में हाई ब्लड प्रेशर के प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कार्यक्रम परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती, और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। हेलो अभिषेक।
1: हेलो जया। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द न्यूज मैगजीन प्रोग्राम ऑन 100.1 FM गोल्ड। I am Abhishek Mukhopadhyay, and with me today is, of course, my co-host Jaya Bharti.

0: And today we of course celebrate his birth anniversaries, and like also Jaya was mentioning, we have a lot to look forward to in a program, and we will of course talk about Pankaj Udas later in a program. But first we begin with the news headlines at this hour.
1: बिल्कुल अभिषेक, तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्नस के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे।
0: India Netherlands elevate bilateral relationship to strategic partnership, 17 agreements signed to strengthen collaboration in key areas.
1: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं।
0: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्स इबोला आउटब्रेक इन कांगो एंड युगांडा अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। एंड आईएमडी इश्यूज हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल अलर्ट एट आइसोलेटेड प्लेसेस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम टुडे।
1: और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने आज अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा।
0: And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about World Hypertension Day. Well, Ajaya, every year on 17th of May, the world comes together to observe World Hypertension Day. The day is about a health condition that quietly enters millions of lives without warning, without pain, and often without symptoms.
1: बिल्कुल, और हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है चिकित्सा जगत में, क्योंकि कई सालों तक इसके कोई चेतावनी संकेत नहीं दिखाई देते हैं। ना कोई दर्द, ना कोई साफ साफ बेचैनी, और ना ही कोई ऐसा संकेत जिससे कि पता चले कि कुछ गड़बड़ है।
0: बट व्हेन द ब्लड प्रेशर राइजेस डेंजरसली हाई, योर बॉडी में स्टार्ट सेंडिंग डिस्ट्रेस सिग्नल्स लाइक सीवियर हेडेक्स, chest pains, dizziness, blood vision, seizures or confusion. And if your BP shoots up to extremely high levels along with these symptoms, it could be a hypertensive emergency and needs immediate medical attention.
1: लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई चीज इतनी खतरनाक है तो भी इतने सारे लोग उसे नजरअंदाज क्यों करते हैं? अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचिए। वो अंकल जो जब भी कोई उनसे हेल्थ चेकअप करवाने को कहता है तो कहते हैं मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, और वो ऑफिस जाने वाले फ्रेंड्स आपके जो चेकअप हेल्थ नहीं करवाना चाहते हैं क्योंकि उसे काम ज्यादा जरूरी लगता है, और हम सबकी माँ जो सबकी सेहत का ध्यान रखती है लेकिन कभी अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाती।
0: बिकॉज व्हाट इफ द बिगेस्ट हेल्थ रिस्क इज द वन दैट स्टेज कंप्लीटली साइलेंट। दिस ईयर्स थीम फॉर वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेज इट क्लियरली, कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन टुगेदर, चेक योर ब्लड प्रेशर रेगुलरली, डिफीट द साइलेंट किलर. And that word together matters deeply because controlling hypertension

0: प्रोटेक्शन इज नॉट ओनली अ डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी।
1: बिल्कुल, तो इसकी शुरुआत घर से ही होती है। डाइनिंग टेबल पर, सुबह की सैर के दौरान, काम करने की जगहों पर यानी वर्क प्लेस पर, स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों पर और उन छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों में जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं।
0: एंड टुडे नियरली 1.4 बिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड आर लिविंग विद हाइपरटेंशन, येट मेनी डोंट इवन नो दे हैव इट। सम डिस्कवर इट ओनली आफ्टर हार्ट अटैक, अ स्ट्रोक और अ सीरियस किडनी प्रॉब्लम।
1: और सबसे अच्छी बात यह है ना कि ब्लड प्रेशर की जांच में बस कुछ ही मिनट लगते हैं, लेकिन ये कुछ मिनट जिंदगी के कई साल बचा सकते हैं। गांव में एक साधारण स्क्रीनिंग कैंप, काम की जगह पर एक नियमित स्वास्थ्य जांच
0: और अ डिजिटल बीपी मॉनिटर एट होम, एंड दिस स्मॉल एक्शंस कैन प्रिवेंट लाइफ चेंजिंग कॉम्प्लिकेशंस। बट लिसनर्स, द गुड न्यूज इज दैट हाइपरटेंशन कैन बी प्रिवेंटेड एंड कंट्रोल्ड, एंड दैट टू नॉट थ्रू कॉम्प्लिकेटेड रूटीन्स, नॉट थ्रू एक्सपेंसिव सॉल्यूशंस, बट थ्रू स्टेडी प्रैक्टिकल हैबिट्स।
1: बिल्कुल, और ये जो प्रैक्टिकल हैबिट्स है ना, बहुत छोटे छोटे हैं, बिना किसी खर्च के, जैसे कि कम नमक का खाना, ज्यादातर घर का बना हुआ खाना चुने, लंबे समय तक बैठे रहने के बजाय रोज पैदल चलना सीखें, तंबाकू से बचे और शराब का सेवन सीमित मात्रा में करें, और डॉक्टर द्वारा बताई गई जो दवाएं हैं ना वो भी नियमित रूप से ले लें। और ये जो छोटे छोटे कदम है ना, इनसे ही हम अपनी जीवन को बचा सकते हैं। लेकिन जब हम एक साथ मिलते हैं और ये तो ये दिल, दिमाग और जो किडनी के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बन जाते हैं।
0: एंड टेक द एग्जांपल ऑफ अ स्कूल टीचर इन लेट 40s। शी कॉन्स्टेंटली फेल्ट टायर्ड बट ब्लेम्ड इट ऑन अ बिजी शेड्यूल, एंड डूइंग अ रूटीन कम्युनिटी हेल्थ कैंप हर ब्लड प्रेशर टर्न्ड आउट टू बी डेंजरसली हाई। विद रेगुलर मेडिसिंस, मॉर्निंग वॉक्स एंड सम डायट्री चेंजेस, हर कंडीशन केम अंडर कंट्रोल विद इन मंथ्स।
1: और एक हेल्थ चेकअप ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। लेकिन बीमारी का पता चलने के बाद क्या होता है? क्योंकि हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना कोई एक बार का काम नहीं है, इसके लिए जिंदगी भर की देखभाल, रेगुलर फॉलोअप, सस्ती दवाएं और लगातार मदद की जरूरत होती है। किसी भी मरीज को दवाएं खरीदने और घर के खर्च चलाने के बीच किसी एक को चुनने की मजबूरी नहीं होनी चाहिए।
0: Indeed, a person living in a rural area should not struggle to access basic blood pressure screening. Healthcare must reach everyone equally, and that is why strengthening primary healthcare systems is so important.
1: और विश्व हाइपरटेंशन दिवस सिर्फ जानकारी फैलाने के बारे में नहीं है, या कुछ करने के बारे में है। ऐसा काम जो परिवारों को एक दूसरे को हेल्थ चेकअप की याद दिलाने के लिए प्रोत्साहित करे, ऐसा काम जो समुदायों को ब्लड प्रेशर की जांच के कैंप लगाने के लिए प्रेरित करे, ऐसा काम जो लोगों को यह समझने में मदद करे कि नॉर्मल महसूस करने का मतलब हमेशा स्वस्थ होना नहीं होता है।
0: सो टुडे आस्क योरसेल्फ, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू चेक्ड योर ब्लड प्रेशर, एंड मे बी मोर इम्पोर्टेंटली, Have you reminded your parents, your friends or your loved ones to check theirs?
1: क्योंकि इस खामोश कातिल को हराने की शुरुआत जागरूकता से होती है, तो यह नियमित निगरानी के साथ जारी रहता है और यह तब सफल होता है जब हम सब मिलकर काम करते हैं।
0: So to conclude our discussion today on World Hypertension Day, Jaya, this World Hypertension Day, let us not wait for symptoms to speak. Let us listen before the body is forced to cry for help. Check your blood pressure regularly. Encourage others to do the same, because a small habit today can protect countless tomorrows.
1: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या कुछ खास है।
0: Yes, PM Narendra Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to India. And well, India and Sweden are in different hemispheres of the globe, but a very common and simple tradition connects them. That is the love for the beloved beverage. And it is chai for India and coffee for Sweden. And it is not a beverage, but a ritual to bridge the barriers and to have a warm conversation. We have a report.
2: Tea is not just a drink for Indians. We serve those who visit us. We offer tea to those with whom we talk, discuss and share things. There is no time decided for it. It may be just a drink, but big decisions are built over a cup of tea. Same, but with a coffee. And we are witnessing the fika culture of Sweden. Fika in Sweden is not just about coffee and snacks, but a cultural ritual of slowing down and spending meaningful time with others. Whether in the office, homes or cafes, fika is considered an important part of social and professional life. Cafe will be bursting with chatters and people joining in for conversations everywhere. The best part is that fika is institutionalized, encouraging employees to step away from work briefly to refresh and reconnect. A representative

0: Representation of shared warmth, inclusion and togetherness. India's chai culture and Sweden's fika may come from different parts of the world, but both reflect a shared philosophy, taking time to connect, pause and build relationships over a warm beverage. With Sakshi Singh's report from Sweden's Gothenburg, Subhadra Ramachandran for Parikrama.
1: और अब चलते हैं मध्य प्रदेश के धार जिले में, जहां स्थित भोजशाला परिसर को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। हिंदू पक्ष से मां सरस्वती का मंदिर मानते हैं तो मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद। इस विवाद पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। पूरी जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने धार की भोजशाला को मां सरस्वती यानी मां वागदेवी का मंदिर मानते हुए हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने 15 मई को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि इस परिसर का धार्मिक स्वरूप मां सरस्वती के मंदिर के रूप में है और वक्त के साथ यहां हिंदू पूजा की परंपरा कभी नहीं टूटी। अदालत ने ऐतिहासिक साहित्य, पुरातात्विक सबूतों और अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के तय सिद्धांतों को आधार बनाते हुए यह नतीजा निकाला। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने संपत्ति का प्रबंधन और प्रशासन केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को दिया है। मुस्लिम पक्ष, जो इस जगह को कमाल मौला मस्जिद मानता रहा है, उसे कोर्ट ने कहा है कि अगर वे धार जिले में मस्जिद या नमाज की जगह के लिए जमीन चाहते हैं तो राज्य सरकार से आवेदन कर सकते हैं। फैसले के बाद धार और इंदौर में प्रशासन अलर्ट पर है और दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा,
3: मैं अपनी ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई भी देता हूं। स्थान को और अच्छे ढंग से गौरवान्वित करेंगे। जो वागदेवी की प्रतिमा विदेश में है, हम यथायोग्य प्रकार से कानून सम्मत तरीके से उसको लाने का भी प्रबंधन करेंगे।
2: भोजशाला ASI के संरक्षण में एक ऐतिहासिक परिसर है। साल 2003 से चली आ रही व्यवस्था के तहत हिंदुओं को मंगलवार को पूजा और मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज की इजाजत थी। 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस सहित कई याचिकाकर्ता हाईकोर्ट पहुंचे और 2024 में ASI ने 98 दिनों तक परिसर का वैज्ञानिक सर्वे किया। इसके बाद कई दिनों तक कोर्ट में बहस हुई और आखिर में 15 मई को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी भोपाल से अभिनव गोयल।
4: Prime Minister Narendra Modi's clarion call urging citizens to rethink non-essential foreign travel is expected to boost tourism in Odisha, which is known for its rich cultural heritage, spiritual legacy and pristine beaches. Stakeholders of Odisha's travel and tourism industry are hopeful of a sharp rise in domestic tourist arrivals. We have more from a correspondent.
5: Tourism stakeholders believe the appeal could particularly benefit destinations such as Puri, Konark Sun Temple, Chilka Lake, Simlipal National Park, Satkosia Tiger Reserve and Bhitarkaringa National Park. Commenting on the opportunities, Benjamin Simon, founder of Odisha-based Travel Link, says,
6: The recent clarion call by the Honorable Prime Minister asking Indians to skip foreign travel for a year due to the uncertainty prevailing around the globe is an opportunity for the tourism and hospitality industry to take it in a positive note and promote tourism within the state, which has the fascinating beauty of our natural and cultural heritage that can be showcased to our own people to explore the backyard and have their the travel experience fulfilled. So I see a very positive growth for this, for all the segments.
5: Odisha is widely known for its religious heritage and cultural tourism. Coastal and marine tourism have also emerged as a high growth sector, supported by Odisha's diverse seascapes, heritage sites and adventure tourism potential. Tourism contributes nearly 13% to the state's gross domestic product and supports thousands of livelihoods linked to hospitality, transport and allied services. In a bid to strengthen its tourism identity, the State Tourism Department has recently unveiled a new brand tagline, Think India, Think Odisha. With 378 tourist destinations spread across all 30 districts, Odisha offers visitors a unique blend of pristine beaches, majestic temples, waterfalls, forest and vibrant tribal culture. The Odisha Tourism Amendment Policy 2026 also aims to transform the state into a leading eco and cultural tourism hub in Asia by 2047, with a target of attracting 5 crore domestic tourists and 7 lakh foreign tourists annually. As more tourists look to discover the beauty of our own country, Odisha stands ready with its timeless heritage, natural wonders and warm hospitality to welcome travelers from across the nation. For Parikrama, Nirmalya Behra for Akashvani Katak.

0: और कटक से चलते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 21 मई को गोडावण दिवस मनाया जाएगा। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में इस अवसर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को इस पक्षी के संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। विलुप्त होते इस पक्षी के संरक्षण के लिए राज्य सरकार कई प्रयास कर रही है, सुनते हैं रिपोर्ट।
1: विलुप्त प्राय पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। जैसलमेर डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित ब्रीडिंग सेंटर में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और वन विभाग के संयुक्त प्रयासों से द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या में इजाफा हो रहा है। जैसलमेर के रामदेवरा और सम में बने इन प्रजनन केंद्रों में नेचुरल मेटिंग और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तकनीक के जरिए नए चूजे पैदा हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की मदद से अब तक 26 चूजों का जन्म हो चुका है। इसके साथ ही इनकी संख्या 86 हो गई है। भविष्य में इन्हें प्राकृतिक आवास में छोड़ने की तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में गोडावण संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने इनकी संख्या में बढ़ोतरी पर खुशी व्यक्त की थी। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर से माधुरी वशिष्ठ।
0: अब उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का कल शिलान्यास किया। 393 करोड़ रुपए की लागत से यह स्टेडियम गोरखपुर के ताल नदौर में बनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्टेडियम के बगल में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की भी घोषणा की है। यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लगभग 60 एकड़ भूमि में बनेगा। एक रिपोर्ट।
2: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहां 46 एकड़ भूमि में 30,000 दर्शकों की क्षमता का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तो बनेगा ही, इसके बगल की 60 एकड़ भूमि पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। इसमें हर तरह के इंडोर गेम्स की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यहां हॉकी और अन्य आउटडोर गेम्स भी हो सकेंगे। श्री योगी ने कहा कि स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आसपास होटल, रेस्तरा और बाजार की नई श्रृंखला विकसित की जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से देश और प्रदेश में एक नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि गोरखपुर का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम युवाओं के सपनों और संभावनाओं को नई दिशा देगा। ताल नदौर में बनाए जा रहे इस स्टेडियम में डे नाइट क्रिकेट मैच भी हो सकेंगे। स्टेडियम निर्माण का कार्य लगभग 2 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार गोरखपुर से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: और अब बात करते हैं कुछ खेल खबरों की। थाईलैंड ओपन के पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में जोड़ी को इंडोनेशिया के लियो रॉली कोर्नाडो और डेनियल मार्थिन की जोड़ी से 21-12, 25-23 से हार का सामना करना पड़ा।
3: And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru were 170 for 3 in 16.2 overs against Punjab Kings in Dharamshala when reports last came in. Earlier, Punjab Kings won the toss and opted to field. In another match, host Delhi Capitals will face Rajasthan Royals this evening. The match will begin at 7:30 p.m.
0: श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
4: We remember freedom fighter Daulat Rao Naik, who was killed by the British police on the 17th of May 1879. He was an active member of the Ramoshi group founded by legendary Marathi freedom fighter Vasudev Balwant Phadke.
5: Daulat Rao Naik hailed from Satara, Maharashtra. He joined Vasudev Balwant Phadke's Ramoshi revolutionary group in 1879. He participated in several operations on British businessmen in Pune to obtain funds for managing the revolutionary activities. Daulat Rao Naik was killed in a skirmish with the British police at Talegaon on the 17th of May 1879. We salute the great martyr. We also remember martyr Sher Muhammad Khan, who participated in the First War of Indian Independence in 1857. He also organized a group of independence activists to attack the British establishments for seizing their properties and arms. He was caught by company troops in an encounter. In charge

0: charged with plundering the government properties and rebellion against the British. He was sentenced to imprisonment for life with hard labor and irons. Sher Muhammad Khan died at the cellular jail in the Andaman Islands on the 17th of May, 1858. We salute the great son of the soil.
1: The Treaty of Salbai, which ended the First Anglo-Maratha War, was signed on the 17th of May, 1782, between the British East India Company and the Marathas. Salbai is situated in Gwalior district, Madhya Pradesh.
0: Maratha ruler Mahadaji Sindhya made an agreement with the English in October 1781, by which he agreed to negotiate with the Pune Council for a treaty with the English. The negotiations started in early 1782. According to the terms of the treaty, the English retained Salseth, an island in Maharashtra. Mahadaji Sindhya got back all his territory west of the river Yamuna, and that both parties returned each other's territory conquered during the course of war in South India.
1: The Treaty of Salbai formed a turning point in the history of English rule in India. While the English only gained the island of Salseth, it emboldened the British as they had gained the upper edge against the strongest power in India at that point of time.
2: इसके साथ ही हम याद कर रहे हैं भारत के अत्यंत प्रतिष्ठित और प्रख्यात मूर्तिकार रघुनाथ कृष्ण फड़के को. आज उनकी पुण्यतिथि है. उन्हें मूर्तियों में जीवंतता फूंकने यानी कि बोलती हुई मूर्तियां बनाने के लिए याद किया जाता है. कला के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1961 में प्रतिष्ठित पद्मश्री से अलंकृत किया था. उनकी बनाई प्रतिमाएं आज भी कई शहरों के मुख्य चौराहों पर और सार्वजनिक स्थलों की शोभा बढ़ा रही है. और सबसे खास बात यह है ना कि फड़के केवल एक मूर्तिकार नहीं थे, बल्कि वे कला के अन्य रूपों में भी पारंगत थे. वे एक कुशल चित्रकार थे और लेखक थे. वे एक बेहतरीन तबला वादक और संगीत विशेषज्ञ भी थे.

0: Yes, Mario Benedetti passed away on this day in 2009. He was a celebrated Uruguayan journalist, novelist, and poet, regarded as one of Latin America's most influential and beloved writers of the late 20th century. A key voice of Uruguay's intellectual generation of 45, he authored over 80 books, spans poetry, drama, fiction, and essays. While his colloquial, accessible writing style garnered massive commercial success and sell-out crowds across the Spanish-speaking world, his work remains less widely known in English.
1: आज का दिन हिंदी भाषा के साहित्य के इतिहास के लिए भी एक महापर्व है। आज जयंती है हिंदी भाषा विज्ञान के जनक, महान इतिहासकार, साहित्यकार और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पहले विभागाध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी की। श्रोताओं, जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो अक्सर कवियों और कहानीकारों को याद करते हैं, लेकिन भाषा को एक वैज्ञानिक आधार देना, उनका इतिहास लिखना और उसे दुनिया के सब सामने एक प्रामाणिक के रूप में पेश करना कितना मुश्किल काम है, यह हमने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी के काम को देखकर समझ आता है। 1897 में उत्तर प्रदेश के बरेली में जन्मे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि फ्रांस के पेरिस विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि पाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का मान बढ़ाया। साल 1933 में आई उनकी किताब हिंदी भाषा का इतिहास आज भी भाषा विज्ञान के छात्रों के लिए एक पवित्र ग्रंथ की तरह है।
0: Yes, and we're also remembering Johnny Guitar Watson, who passed on this day in 1996. He was an American musician and singer-songwriter whose prolific 40-year career bridged the worlds of blues, rhythm and blues, R&B, soul and funk. A flamboyant showman, Watson was both a virtuosic guitarist and a skilled pianist. He is widely celebrated as a massive influence on modern music, inspiring generation of artists ranging from Frank Zappa and Jimi Hendrix to Prince and the pioneers of hip-hop. Let's listen in to a hit track of his.

0: Yes, and Prakash Mehra passed away on this day in 2009. He was a legendary Indian film director and producer, often regarded as a pioneer of the Bollywood masala film. He is best known for his highly successful collaborations with Amitabh Bachchan, which famously established Bachchan's iconic angry young man persona. Let's listen a dialogue. Listen into a dialogue from the film Namak Halal.
1: बाबू जी हम चीज नहीं है, हमारा नाम अर्जुन सिंह वल्द भीम सिंह वल्द दशरथ सिंह है। लखनपुर गांव के रहने वाले, इंटर पास है गांव में, सबसे अपन नंबर आए थे। हमारे गांव में हमारे दद्दू और मैं ही सबसे ज्यादा पढ़े, बाकी कोई चौथी पास नहीं। खैर में आने से पहले हमारे दद्दू ने हमको तीन बातें सिखाई। पहली बात, पराई औरत पराई दौलत में हाथ नहीं रखना। हाँ, दूसरी बात, जिसका नमक खाओ उसकी नमक हलाली करना। तीसरी बात, अन्याय के सामने सर नहीं झुकाना। बोलो हमारे दद्दू।
2: आज बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा की भी जयंती है जिन्होंने अपने जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और प्यारी से मुस्कान से 70 और 80 के दशक में सिनेमा घरों में खूब ठहाके लगवाए। जी हां, मैं बात कर रही हूं हिंदी सिनेमा के पितामह अशोक कुमार यानी कि दादा मुनि की लाडली बेटी और बेहतरीन कॉमेडियन प्रीति गांगुली जी की।

क्या बात है, फिल्म खट्टा मीठा का नाम आते ही सबसे पहले चेहरा याद आता है, वह गोल मटोल और चुलबुली लड़की फ्रेनी सेठना का। श्रोताओं, प्रीति जी के खून में ही एक्टिंग और एंटरटेनमेंट था। हालांकि उन्होंने कभी अपने परिवार का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपनी प्रतिभा के दम पर खेल खेल में चोर के घर और दामाद आहुति जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया।

0: बिल्कुल, इस गाने ने हर भारतीय के घर घर में अपना जगह बनाया और गजल को महफिलों से निकालकर आम जनता तक पहुंचाने वाले पंकज उदास जी को आज हम याद कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी मखमली आवाज से संगीत के सफर का 4 दशकों से अधिक लंबा समय बिताया।
1: So with that, we wrap up this edition of Parikrama. Thank you so much for being with us. From Jaya Bharti and me, Abhishek Mukhopadhyay. Bye and
0: Namaskar. Namaskar. Aakashvani Samachar ke saath, main Vaishnavi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया है।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि

0: के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रैमी सिटी कैंप्स का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। उन्होंने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज दिल्ली सरकार द्वारा विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर ETF को 25% से घटाकर 7% करने के निर्णय की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में इस कदम की प्रशंसा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि ऐसे समय में जब विमानन क्षेत्र वैश्विक परिचालन और लागत संबंधी दबावों का सामना कर रहा है, राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए ऐसे सक्रिय कदम एयरलाइनों और किफायती हवाई यात्रा के लिए मदद है। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये जलडमरू मध्य विश्व ऊर्जा व्यापार के लिए एक प्रमुख समुद्री मार्ग है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन की 3 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान अमरीका और चीन ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने और होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन खुला रखने पर सहमति व्यक्त की। संयुक्त अरब अमीरात में आज आबूधाबी स्थित बरकाहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। आबूधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 19 ओवर में 3 विकेट पर 208 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ, यूं ही गाते गुनगुनाते इस सफर पे आपके साथ एक बार फिर से हम हैं मुखातिब, लेकर बहुत ही प्यारे प्यारे तराने आप सबके लिए। मैं हूँ शिव प्रकाश, स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आगाज जिस नगमे से हम करने जा रहे हैं, वो नगमा हमने लिया है फिल्म नाम से, और उसमें खास बात

रहेगी आज की। आज इसके जो गायक हैं पंकज उधास, उनका आज जन्मदिन है। और इनका जो जन्म हुआ था वो गुजरात के राजकोट शहर में जन्म हुआ था। और इन्होंने बहुत सी गज़लें गाई, फिल्मी नगमे गाए और बहुत पसंद किए गए, बहुत ही ज़्यादा पसंद किए गए। इन्होंने एक मील का पत्थर स्थापित किया। इनको पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो आइए हम आप तक पहुंचाते हैं उनकी आवाज में फिल्म नाम का ये नगमा, जो 1986 में फिल्म आई थी और सितारे थे संजय दत्त और कुमार गौरव। बहुत ही प्यारी फिल्म। इस फिल्म का ये नगमा पंकज उधास साहब की आवाज में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर आप सबके लिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जी हाँ, गाते गुनगुनाते के इस सफर पे आपके साथ हूं मैं शिवप्रकाश, और आप तक पहुंचा रहे हैं वो तराने जो आपको बेहद पसंद हैं। फिल्म चमत्कार से अगला डंगबा हमने लिया है। फिल्म में सितारे थे नसीरुद्दीन शाह, शाहरुख खान, उर्मिला मातोंडकर, शमी कपूर, और फिल्म का संगीत तैयार किया था अनु मलिक ने। बहुत ही प्यारा ये नगमा है। ज्यादा बात ना करते हुए आप तक ज्यादा से ज्यादा गीत संगीत पहुंचाने की हमारी कोशिश। बने रहे एफएम गोल्ड के साथ।

तो जी जनाब, अब हम उस दौर की तरफ पहुंच रहे हैं कि जब हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होने वाला है, तो चलते चलते आखिरी नगमा हम आप तक पहुंचा देते हैं। स्वर है अलका याग्निक और कुमार सानू का, और फिल्म का नाम है हम है राही प्यार के। बेहद अच्छी फिल्म, फिल्म का संगीत तैयार किया था नदीम श्रवण ने, कलाकार थे आमिर खान, जूही चावला, कुणाल खेमू, और फिल्म के निर्देशक थे महेश भट्ट। इसी फिल्म का ये नगमा आप सबके लिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

0: तो श्रोता बने रहे आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। अब होगी पूर्वोत्तर डायरी आप सबके लिए।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति।
1: पूर्वोत्तर डायरी।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको मणिपुर की कला से रूबरू करवाने जा रहे हैं। मणिपुर की कला राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमा रही है और हाल ही में वाशिंगटन डीसी में एक खास प्रदर्शनी में मणिपुर की पुरातन कला को प्रदर्शित किया गया, जहां पर बहुत से आगंतुकों ने मणिपुर की कला को जाना। तो किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मणिपुरी कला अपना जादू बिखेर रही है, हमारी इस खास रिपोर्ट में आइए सुनिए।
3: मणिपुर की एक पारंपरिक कला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बन रही है। वाशिंगटन डीसी में आयोजित द रिवाइवल ऑफ द फॉरगॉटन आर्ट ऑफ मणिपुर एन एग्जीबिशन ऑफ मॉडर्न सुबिका आर्ट नामक प्रदर्शनी में राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिनमें मणिपुरी समुदाय के लोग, कला प्रेमी और सांस्कृतिक हस्तियां शामिल हैं। आयोजकों के अनुसार कई मणिपुरी परिवारों ने खुशी जताई कि मणिपुर की इस पारंपरिक कला को वाशिंगटन डीसी में प्रदर्शित और समझाया जा रहा है। इससे लोगों में अपनी संस्कृति से जुड़ाव की भावना मजबूत हुई है। प्रदर्शनी में आए लोगों ने चित्रों को ध्यान से देखा और उनके साथ दिए गए विवरणों को भी पढ़ा। इन विवरणों में चित्रों का इतिहास, पौराणिक कथाएं और सांस्कृतिक महत्व बताया।

0: गया है, जिससे दर्शकों को कला को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली। इस प्रदर्शनी में कलाकार डॉक्टर युमनाम सापा की 20 से अधिक कलाकृतियां प्रदर्शित की गई। प्रदर्शनी का क्यूरेशन वांगम सोमोरजीत ने किया। इसका आयोजन द कलर बॉक्स द्वारा इम्फाल स्थित एडवांस्ड रिसर्च कॉन्सोर्टियम लाइब्रेरी एंड आर्काइव्स यानी ARCLA के सहयोग से किया जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य सुबिका कला के प्रति लोगों की रुचि को फिर से बढ़ाना है। इसके लिए इस पारंपरिक कला को आधुनिक रूप में प्रस्तुत किया गया है, जबकि इसकी मूल परंपरा और पहचान को भी सुरक्षित रखा गया है। इन कलाकृतियों में स्थानीय पौराणिक कथाओं, इतिहास, सांस्कृतिक यादों और क्षेत्र के महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाया गया है। ये प्रदर्शनी वॉशिंगटन DC के गैलरी 1610 में आयोजित की जा रही है और 19 मई 2026 तक चलेगी। उत्पल की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए शक्ति सिंह।
1: श्रोताओं, सिक्किम लगातार अपने नाम कई रिकॉर्ड दर्ज करता जा रहा है, चाहे पहले ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में सिक्किम का नाम दर्ज होना हो या स्वच्छता के मामले में भी सिक्किम में की जा रही कई पहल हो। इसी तरह से एक और पहल के माध्यम से सिक्किम पहला वो राज्य बना है जिसमें न्यायालयों में कार्रवाई पेपरलेस तरीके से होगी। तो आइए इस खास रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं कि किस तरह से सिक्किम में अब पूरी न्याय व्यवस्था, न्याय प्रक्रिया पेपरलेस होने जा रही है, यानी डिजिटल होने जा रही है।

सिक्किम ने डिजिटल न्याय की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है। इस घोषणा की जानकारी भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने गैंगटॉक के चिंतन भवन में आयोजित कॉन्क्लेव ऑन टेक्नोलॉजी एंड जुडिशियल एजुकेशन सम्मेलन में दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी मौजूद थे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि भारत की न्याय व्यवस्था तेजी से डिजिटल बदलाव के दौर से गुजर रही है। उन्होंने सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ए मोहम्मद मुस्ताक को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक खासकर पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों में लोगों के लिए न्याय तक पहुंच को आसान बना रही है। अब मामलों की सुनवाई और प्रक्रिया बिना कागजी दस्तावेजों के आगे बढ़ सकती है और लोग तकनीक के माध्यम से अदालतों से आसानी से जुड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने इसे सिक्किम के लिए ऐतिहासिक और गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि राज्य की डिजिटल गवर्नेंस और न्यायिक सुधारों के प्रति वचनबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पहल पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन सकती है और सभी लोगों के लिए न्याय व्यवस्था को अधिक सरल और सुलभ बनाएगी। भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने कहा कि डिजिटल युग में न्याय तक पहुंच की परिभाषा बदलनी होगी। उन्होंने कहा कि तकनीक और संस्थागत सुधारों का उद्देश्य लोगों को वास्तविक और प्रभावी न्याय दिलाना होना चाहिए। सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ए मोहम्मद मुस्ताक ने कहा कि ये पहल सिर्फ डिजिटलीकरण तक सीमित नहीं है, इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर बदलाव लाना, काम का बोझ कम करना और लोगों के लिए न्याय व्यवस्था को अधिक आसान बनाना है। कानूनी समुदाय के सदस्यों ने भी इस पहल का स्वागत किया। सिक्किम हाई कोर्ट और अधीनस्थ अदालतों के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ताशी राप्तेन बार फोंगपा ने इसे राज्य के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि शुरुआत में वकीलों को ई कोर्ट प्रणाली को लेकर संकोच था, लेकिन समय के साथ इसकी कार्यक्षमता बढ़ने पर लोगों ने इसे अपनाया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल अदालतों से पारदर्शिता बढ़ती है और दूर दराज के पहाड़ी इलाकों के लोग भी ऑनलाइन सुनवाई और केस फाइल कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता जोरगे नामका ने कहा कि ये उपलब्धि सिक्किम के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, वकीलों और सरकार के सहयोग से ये बदलाव संभव हो पाया है। इस उपलब्धि के साथ सिक्किम ने भारत में एक अधिक पारदर्शी, आधुनिक और तकनीकी आधारित न्याय व्यवस्था की दिशा में खुद को आगे स्थापित किया है। उत्पल की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए निखिल कुमार।

दोस्तों, पिछले 2 वर्षों से नागालैंड में पोटैटो फेस्टिवल आयोजित किया जाता रहा है और इस बार इस फेस्टिवल का ये 3रा संस्करण था। बीते 15 मई को नागालैंड में पोटैटो फेस्टिवल का आयोजन किया गया और इस फेस्टिवल में जहां एक तरफ किसान अपनी फसलों के साथ अपने

बाजार को तलाशते हैं, वहीं आने वाले लोग भी आलू की अलग अलग किस्मों से यहाँ परिचित होते हैं। तो किस तरह से आयोजित हुआ इस बार का पोटैटो फेस्टिवल, हमारी संवाददाता असुनो की इस विशेष रिपोर्ट में जानते हैं।

0: नागालैंड पोटैटो फेस्टिवल 2026 का तीसरा संस्करण 15 मई को कोहिमा जिले के जाखामा गांव के स्थानीय मैदान में एग्री ट्रेड पोटेंशियल विषय के साथ आयोजित किया गया। इस उत्सव का उद्देश्य कृषि को लाभदायक और टिकाऊ क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देना था, ताकि किसानों को बाजार, नई तकनीक और व्यापार के अवसरों से जोड़ा जा सके। कोहिमा जिले के जाखामा गांव में आयोजित पोटैटो फेस्टिवल में हजारों लोग शामिल हुए और इसने नागालैंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के बढ़ते महत्व को उजागर किया। जाखामा विलेज काउंसिल द्वारा आयोजित इस उत्सव में गांव के सभी 8 खेलों के लोगों ने सक्रिय भागीदारी की। इसके अलावा आसपास के गांवों के लोग भी इसमें शामिल हुए। मोकुकचुंग और फेक जिलों से आए किसान और प्रदर्शक भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस उत्सव का उद्देश्य आधुनिक खेती को बढ़ावा देना और जागरूकता कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों तथा प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से कृषि उत्पादन बढ़ाना था। कार्यक्रम में कृषि विभाग, पर्यटन विभाग, भूमि संसाधन विभाग, मेडफिजेमा स्थित बायो फर्टिलाइजर लेबोरेटरी, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन और नागालैंड इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत कई सरकारी विभागों और संस्थाओं ने भाग लिया।
1: This year we'll be having a number of seminars, demonstration on usage of biofertilizers by BioLab Medzipema. A group of experts from UNET will be there and give training on how to give access to government schemes and financial benefits. ATMA under Agriculture Department will be giving a demonstration on banana chips. A workshop on coffee plantation and economic point of view by the Land Resources Department, and Entrepreneurship Awareness Program with special reference to CMMFI by IDEN.
0: इस वर्ष कुल 64 स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें जैविक उत्पाद, पारंपरिक खाद्य सामग्री, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पाद प्रदर्शित किए गए। उत्सव के दौरान लगभग 20,000 किलोग्राम आलू प्रदर्शन और बिक्री के लिए लाए गए थे। आयोजकों के अनुसार इस कार्यक्रम में करीब 5,000 से 7,000 लोगों ने हिस्सा लिया। उत्सव में पारंपरिक खेल और प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गयी, जिनमें विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। इससे कार्यक्रम में सांस्कृतिक रंग भी देखने को मिला। फेस्टिवल के पहले संस्करण में किसानों ने आलू बिक्री से लगभग 32 लाख रुपए की कमाई की थी। वहीं पिछले वर्ष सूखे मौसम के कारण खराब फसल होने से कमाई घटकर लगभग 15 लाख रुपए रह गई थी। हालांकि इस बार अच्छी बारिश होने से किसानों को बेहतर फसल और ज्यादा बिक्री की उम्मीद रही। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए ये उत्सव किसानों, उद्यमियों और स्थानीय समुदायों के लिए कृषि व्यापार और टिकाऊ खेती के नए अवसर तलाशने का एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ। कोहिमा से आसनो की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए वैष्णवी।
2: श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ओर से एक खास आयोजन में उड़ने दो नाम का एक नाटक प्रस्तुत किया गया था और अगरतला में हुई इस प्रस्तुति का आगंतुकों ने आनंद लिया और इस नाटक की प्रस्तुति से भाव विभोर हुए। तो हमारे संवाददाता सुमन भट्टाचार्य ने इस नाटक की प्रस्तुति के संबंध में एक खास रिपोर्ट हम तक पहुँचाई है, आइए आपको सुनवाते हैं।
3: बचपन में हम सब उड़ना चाहते थे। कोई आसमान में उड़ना चाहता था, कोई अपनी कल्पनाओं में और कोई अपने ही दिल की गहराइयों में। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम धीरे धीरे ये भूल जाते हैं कि हम अब भी सितारों से बातें कर सकते हैं, बादलों पर कहानियां लिख सकते हैं और एक छोटा सा दिल भी पूरी दुनिया बदल सकता है। इसी भूले हुए सपने को रंग, संगीत, भाव और अर्थ दिया है उड़ने दो नाम के नाटक ने, जिसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के थिएटर इन एजुकेशन विंग त्रिपुरा द्वारा अगरतला में प्रस्तुत किया गया। ये निमंत्रण सबके लिए था, स्कूल के बच्चों के लिए, माता पिता और अभिभावकों के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए

0: और रंगमंच से प्यार करने वाले हर व्यक्ति के लिए एक ऐसा निमंत्रण जो सोच की नई खिड़की खोलता है। थिएटर की रंगीन दुनिया में उड़ने दो एक भावनात्मक संदेश लेकर सामने आता है, एक ऐसी अपील जो इंसान के मन को खुलकर उड़ने देने की बात करती है। उस दुनिया में जहां हर तरफ प्रतियोगिता, तेज रफ्तार और एक जैसी सोच का दबाव बढ़ता जा रहा है, अगरतला में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के थिएटर इन एजुकेशन विंग द्वारा तैयार किया गया ये नाटक फ्रांसीसी लेखक एंतवान द सेंट एग्जुपेरी की मशहूर किताब द लिटिल प्रिंस से प्रेरित है। इसका हिंदी रूपांतरण रंगकर्मी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की पूर्व छात्रा श्वेता श्रीवास्तव ने किया है। प्रकाश परिकल्पना, संगीत, अभिनय और मंचीय गतिविधियों के माध्यम से युवा रंगकर्मियों की टीम ने मंच को एक जादुई और भावनात्मक दुनिया में बदल दिया। इस प्रस्तुति का निर्देशन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर अरुणा कुमार मलिक ने किया है। वे सपनों के एक संदेश वाहक की तरह दर्शकों को इस अनोखी यात्रा का हिस्सा बनने का निमंत्रण देते हैं। अरुणा कुमार मलिक, निर्देशक, उड़ने दो। कहानी कुछ इस तरह है। एक छोटा सा राजकुमार था। वो एक दूर के छोटे से ग्रह पर रहता था जहां तीन ज्वालामुखी थे और एक अकेला गुलाब। ऊपर से ये कहानी बहुत सरल लगती है, लेकिन इसके भीतर गहरे अर्थ छिपे हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये हमें प्यार, अकेलेपन, दोस्ती और उस मासूमियत की याद दिलाती है जिसे हम बड़े होने के साथ खो देते हैं। और अंत में ये नाटक दर्शकों को एक गहरी भावनात्मक उड़ान के साथ छोड़ जाता है। अगर कभी सितारों के बीच तुम्हें किसी की हंसी सुनाई दे तो समझ लेना कि मैं अब भी उड़ रहा हूँ। उड़ने दो सिर्फ एक नाटक नहीं है, ये एक याद दिलाने वाला संदेश है कि सपने आज भी मायने रखते हैं, कल्पनाएं आज भी जरूरी हैं और हर बड़े इंसान के भीतर कहीं ना कहीं एक बच्चा आज भी उड़ने का इंतजार कर रहा है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं मनोज।
1: श्रोताओं, हिमालयी राज्यों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार लगातार विशेष अनुदान का आवंटन करती रही है और इसी के तहत एक विशेष पहल केंद्र सरकार के द्वारा की जाती रही है, प्राइड ऑफ हिल्स। और प्राइड ऑफ हिल्स पहल के तहत हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को भी लगभग 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। तो निश्चित रूप से इस पहल के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे में इससे मदद मिलेगी, जिसका अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी आभार व्यक्त किया है। तो आइए अपने संवाददाता मनोज से खास रिपोर्ट सुनते हैं कि किस तरह से प्राइड ऑफ हिल्स से अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे में मदद मिलने जा रही है।
2: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। ये आभार केंद्र सरकार द्वारा राज्य को 4,900 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने के बाद व्यक्त किया गया। यह आवंटन हाल ही में शुरू की गई प्राइड ऑफ हिल्स पहल के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य हिमालयी और पहाड़ी राज्यों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और विकास संबंधी कमियों को दूर करना है। मुख्यमंत्री ने इस आवंटन को अरुणाचल प्रदेश के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। विशेष रूप से दूर दराज और दुर्गम इलाकों में कनेक्टिविटी में सुधार, बुनियादी ढांचे के निर्माण और दीर्घकालिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में अधिकारियों ने बताया है कि प्राइड ऑफ हिल्स स्पेशल डेवलपमेंट असिस्टेंट फॉर हिल स्टेट्स पहल इस साल की शुरुआत में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार के राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता SASCI फ्रेमवर्क के तहत शुरू की गई थी। इसके तहत 9 पहाड़ी और हिमालयी राज्यों के लिए कुल 25,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश को सबसे ज्यादा फायदा मिला है, जिसके तहत 4,900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश को 3,920 करोड़ रुपए और नागालैंड को 3,880 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। इससे पहले मार्च में इस योजना की घोषणा के बाद केंद्र के फैसलों का स्वागत करते हुए श्री खांडू ने इस पहल को समय और दूरदर्शी कदम बताया। उन्होंने पहाड़ी राज्यों के सामने आने वाली चुनौतियों को भी स्वीकार किया, जिनमें मुश्किल इलाका, कम आबादी, कमजोर कनेक्टिविटी और राजस्व कमाने की सीमित क्षमता शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस आवंटन से राज्य को अपनी वित्तीय स्थिरता बेहतर बनाने के साथ ही राजस्व कमाने

0: वाली संपत्तियां बनाने में और निवेश करने में मदद मिलेगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस योजना को पहाड़ी राज्यों में होने वाली ढांचागत और भौगोलिक दिक्कतों को दूर करने के लिए बनाया गया है। इन दिक्कतों में इंफ्रास्ट्रक्चर की ज्यादा लागत, कम जनसंख्या, मुश्किल इलाका और कमजोर वित्तीय संकेतक शामिल है। पहल का उद्देश्य इन इलाकों में पूंजीगत खर्च को बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, कनेक्टिविटी को मजबूत करना और लंबे समय तक चलने वाली आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना है। अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि मौजूदा SASCI प्रावधानों के अलावा किया गया ये अतिरिक्त आवंटन पहाड़ी राज्यों को बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करने, सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने, तय परियोजनाओं को पूरा करने और कुल मिलाकर विकास की गति को तेज करने में मदद करेगा। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा।
1: श्रोताओं, हाल ही में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का सिक्किम दौरा रहा और इस दौरे में विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया। आइए हमारी सहयोगी श्रेया और हमारे सिक्किम संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा की इस बातचीत में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस दौरे के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं।
2: केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के हालिया सिक्किम दौरे में पर्यटन, कनेक्टिविटी और विकास परियोजनाओं पर खास फोकस देखने को मिला। दौरे के दौरान उन्होंने कई अहम परियोजनाओं का निरीक्षण किया और सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में भी हिस्सा लिया। इस पर अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा के पास। मानस जी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने सिक्किम दौरे के दौरान कई पर्यटन और विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। सबसे पहले हमें बताइए कि इस दौरे को राज्य के विकास के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
3: जी सर, जैसे आपने बताया डोनर मिनिस्ट्री से स्वयं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी 3 दिन के सिक्किम दौरे पर आए और इसी समय उन्होंने यहाँ शिक्षा के व्यवस्था को लेकर, पर्यटन को लेकर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस मुद्दे पर ध्यान दिया और यहाँ पे वो बहुत सारे चीजें देखने के। जैसे अगर मैं बताऊं कि नामची जिले में वो गैंगटॉक जब बागडोगरा से होके पहले वो नामची जिले में आए थे और नामची जिले के कई सारे परियोजना का उन्होंने एनालिसिस किया, रिव्यू किया। उसमें से कोई एक तो खास था जो वहां का स्टेट यूनिवर्सिटी, कांचनजंगा स्टेट यूनिवर्सिटी जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, वो देखने गए और वहां पे क्या प्रोग्रेस है उसका जायजा लिया। उसके बाद जो हम सब जानते हैं सिक्किम जिसके लिए मशहूर है तेमी टी स्टेट, जो पूरा देश भर में मिलते हैं तेमी चाय के पत्ती, तो वो तेमी टी स्टेट देखने गए और वहाँ कैसे काम करते हैं, लोगों से भी बातचीत किया जो चाय पत्ती तोड़ते हैं, वहाँ पे काम करने वाले महिलाओं से भी बातचीत किया, वहां से भी बहुत चीजें जाने। और उन्होंने ये भी कहा कि तेमी टी को GI टैग वो भी मिलना चाहिए। के बाद जो हम जानते हैं जो सिक्किम जिसके लिए पूरे देश भर में जाना जाता है पर्यटन क्षेत्र के लिए, वहां पे एक टूरिज्म सर्किट बन रहा है वो जो नामशी, तेमी और रावांगला के बीच, जो रावांगला है वहां पे एक बुद्ध पार्क है, वो भी बहुत से सैलानी वहां भी देखने आते हैं। तो नामशी, तेमी, रावांगला को जोड़ के जो डोनर मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया जा रहा है उसको बेसिकली पूरा उसको कहते हैं हिमालयन सेंटर फॉर एडवेंचर एंड इको टूरिज्म। और उसी के साथ ये पर्यटन का क्या स्थिति है उसको देखने के लिए वहां गए और वहां भी वरिष्ठ अधिकारी से मिलकर उन्होंने वहां का जायजा लिया और उसी को उन्होंने देखा। और उसके बाद अगर हम बताए कि सिक्किम फुटबॉल के लिए भी जाने जाते हैं, जो अभी नामची में सिक्किम प्रीमियर लीग चल रहा था और जो स्टेडियम है वो वाइसुंग भुटिया के नाम से है, वो सिक्किम प्रीमियर लीग में भी गए और वहां से खिलाड़ियों से बातचीत किया, खेल की फिट इंडिया के बारे में बातचीत किया। उसके बाद वो एक काईवॉक प्रोजेक्ट है वहां पे नामसी जिले में ही जो PM दिव्यांग स्कीम के तहत बन रहा है और उसमें डोनर मिनिस्ट्री का लगभग 200 करोड़ रुपया का लागत से ये बनाया जा रहा है और ये 3200 मीटर पर है, तो वो स्काईवॉक परियोजना का भी उन्होंने वहां पे रिव्यू किया। तो इस तरह से कई चीजें वो देखे। और कल जैसे हम जानते थे कि सिक्किम का स्टेटहुड दिवस था, 51 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड डे स्थापना का दिवस है सिक्किम का, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति भी आए थे, वहां भी उन्होंने शिरकत किया। और उससे पहले जो गैंगटॉक में मैं बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री जो यहां आए थे उन्होंने भी वो ऑर्किडियम पार्क देखा था, वहां भी गए, वहां पे कई सारे ऑर्किड है तो वो भी देखने के लिए गए। तो इस तरह से कई सारे चीजों को देखा जाना और पूरे इस दौरे पे जो सिक्किम प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ के लोग थे, तो एक जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसके तहत कह सकते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके ये कई सारे परियोजनाओं को काम कर रहे हैं। और ये मंत्री का ये दौरा निश्चय ही ये कह पाएंगे कि जो काम हो रहा है उसमें डेफिनेटली उसमें तेजी लाने

0: एक काम होगा।
1: जी, जैसा कि आपने स्काई वॉक प्रोजेक्ट की बात की, तो केंद्रीय मंत्री ने नामची पर्यटन सर्किट भालेडूंगा और स्काई वॉक प्रोजेक्ट भी, जैसा आपने बताया भी, और कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़े पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जायजा लिया। इन परियोजनाओं से सिक्किम में पर्यटन और स्थानीय रोजगार को किस तरह बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: जैसे मैं पहले ये बताना चाहूंगा, ये जो नाथुला का प्रोजेक्ट था मानसरोवर, वो किसी कारण जा नहीं पाए वहाँ पे, लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस साल जून महीने से, अगले महीने से फिर नाथुला से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होने वाली है, और पिछले साल लगभग 5-6 साल के एक गैप के बाद इस रूट से फिर से शुरू हुआ, इस बार भी होना है और इसके लिए काम चल रहा है। वहाँ जो पर्यटक जो आते हैं या जो कैलाश मानसरोवर के लिए जो यात्री आते हैं पूरे देशभर से, तो उनका रहने का एक व्यवस्था है वहाँ पे, क्योंकि जो दूर से आते हैं और कि वो बहुत ही हाई अल्टीट्यूड पे है, तो इसके परिस्थिति से उनको रूबरू किया जाता है कि कैसे हो आप, कैसे सांस ले, कैसे आप नॉर्मल खाए पिए, तो एक्लेमेंटेशन के लिए यह बनाया गया है जैसे आपने जिक्र किया। और जो भालूडंगा जो नामची में स्काई वॉक है, ये 3200 मीटर पर वहां पे होगा, और एक बार ये बन जाए तो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ और एक पेलिंग बोल के जगह है सिक्किम में, गेजिंग जिले में, वो पेलिंग में एक स्काई वॉक है ही, तो वहां भी वो स्काई वॉक भी देखने के लिए लोग आते हैं। और ये दूसरा बन जाएगा नामची, तो नामची में जो भालेडूंगा स्काई वॉक है, मैंने बताया पीएम डिफेंस स्कीम के तहत है, ये भी अगर बन जाए तो डेफिनेटली लोग फिर और ज्यादा लोग यहाँ देखने के लिए आएंगे, और ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का और एक बिंदु होगा यहाँ पे। तो जैसे हम जानते हैं, ये सिक्किम में बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल है जो लोग देखने आते हैं, लेकिन हम लोग मोटा मोटी 8-10 जगह को ही जानते हैं, लेकिन उसके अलावा भी और जैसे जिसको हम कह सकते हैं आंतरैप, तो वहां भी बहुत सारे पर्यटन के क्षेत्र हैं पूरे प्रदेश भर में जो देखने के लिए आ सकते हैं, और लोग आते भी है। हालांकि हाँ, सबसे ज्यादा फोकस वो 8-10 जगह होते हैं जो हम लोग जिसमें ज्यादा सरसाए होती है, तो ये एक बार बन जाए स्काई वॉक तो बहुत लोग डेफिनेटली को देखने के लिए लोग आएंगे।
1: और मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की मौजूदगी में कई पूर्वोत्तर के विकास से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ, इस मौके पर केंद्र और राज्य सरकार ने विकास को लेकर क्या खास संदेश दिया?
0: देखिए, यही है कि जैसे बताया मोदी जी आए थे तो प्रधानमंत्री ने भी यही कहा था, सिक्किम किसके लिए जाने जाते हैं, सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट है, यहाँ के क्लीनलीनेस के लिए जाने जाते हैं, यहाँ लोग खेल कूद में सबसे आगे हैं। इसी को बढ़ावा देकर आज भी डोनर मिनिस्ट्री के तरफ से कई सारे परियोजना का उद्घाटन किया गया, शिलान्यास रखा गया सिक्किम स्थापना दिवस के अवसर पर। तो ये इसको हम कहेंगे ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ मिलकर, और निश्चय ही जो ये प्रोजेक्ट होगा इसमें सिक्किम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होना और जरूरी है। हालांकि ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस जैसे बोलेंगे, जितने भी आप काम करेंगे लोगों को चाहिए कि और इसमें जोड़े, तो ये जो काम है जो कल सिक्किम स्थापना दिवस पर ये उद्घाटन किया गया या शिलान्यास रखा गया, आने वाले दिनों में यहाँ के लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए, सैलानियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, जो यहाँ के स्टूडेंट भी है और बाहर से भी जो स्टूडेंट है पढ़ने के लिए, सबके लिए बहुत काम आने वाले हैं। और जैसे भारत सरकार ने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और जितने भी केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ अधिकारी दौरे पे आते हैं, तो जो कहते हैं कि पूर्वोत्तर को सिक्किम से जोड़ के पूर्वोत्तर को कहते हैं अष्टलक्ष्मी के विकास, जो सतत विकास के लिए केंद्र सरकार प्रयत्त है, और इसी को हम इसी कड़ी में जोड़ के देखना चाहेंगे। ये एक सतत कार्य है जो आने वाले दिनों में भी होता रहेगा और यहाँ के लोगों की विकास के लिए बहुत बड़ा मुद्दा होगा।
1: विकास परियोजनाओं से जुड़ी जो खास फोकस हमें देखने को मिल रहा है सिक्किम में, उसके बारे में जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओं, उम्मीद है आज का अंक आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक लगातार पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

हर सप्ताह हम आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे पूर्वोत्तर डायरी के इस कार्यक्रम के माध्यम से, पूर्वोत्तर राज्यों की गतिविधियों से आपको अवगत करवाते रहेंगे। आप भी अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के साथ हमसे जुड़े रहिए और अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी शाम 5:30 बजे रविवार को। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। गोथेनबर्ग रवाना होने से पहले नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन स्वयं एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी को विदाई दी। नीदरलैंड्स की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउटाइक बांध का भी दौरा किया। ये यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंबात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर

0: मीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि एनआईडी जैसे संस्थान युवाओं को नवाचार और कौशल विकास के लिए सही मंच प्रदान करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के दो पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi arrived in Gothenburg, Sweden this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. He was received at the airport by the Swedish Prime Minister Ulf Kristersson. During his two-day visit to Sweden, Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart and review the entire gamut of bilateral relations. The two sides are also expected to explore new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. The two prime ministers will also jointly address the European Round Table for Industry, a leading pan-European business forum, along with the President of the European Commission, Ursula von der Leyen. Before departing for Gothenburg, Dutch Prime Minister Rob Jetten personally came to Amsterdam Airport to bid farewell to Prime Minister Modi. During his two-day visit to the Netherlands, Prime Minister Modi held bilateral talks with his Dutch counterpart. The two countries signed 17 agreements to strengthen cooperation in defence, critical minerals and other key sectors. Both leaders also expressed deep concern over the situation in West Asia and its implications for global energy supplies and trade networks. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today inaugurated the Innovation and Incubation Centre at the National Institute of Design NID in Gandhinagar, Gujarat. Speaking on the occasion, Mr. Shah highlighted the importance of the National Institute of Design, saying it is an institution that connects creativity with entrepreneurship. He said institutions like NID provide youth with the right platform for innovation and professional development. Mr. Shah, who's on a two-day visit to Gujarat, also

नमस्कार, स्वागत है आपका उस संगीत महफिल में जहां वक्त ठहर जाता है और यादें गुनगुनाने लगती हैं। सदाबहार गीत, वो नगमे जो बरसों पहले रचे गए मगर आज भी यूं लगता है मानो दिल की धड़कन के साथ ही चलते हैं, धड़कते हैं। हर गीत में छुपी है कभी किसी की हंसी, कभी किसी की तन्हाई, किसी का अफसाना, किसी की पहली मोहब्बत की खुशबू। ये गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि जिए जाते हैं। तो आइए आज सुरों के साथ यादों की चाय बनाते हैं, जिसमें प्यार की मिठास, एहसास की टी लीव्स और अरमानों के चाय मसाले को सलीके से खोलते हैं और उन गीतों को सुनते हैं जो कभी पुराने नहीं होते, जिनकी ना आदत पड़ जाती है, ठीक वैसे ही जैसे चाय पीने की, कॉफी पीने की हमें आदत सी पड़ जाती है। सच तो यह है कि ये गीत शायद बदल जाएं मगर एहसास कभी नहीं बदलते। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं नूपुर और ये गीत आप तक पहुंचा रही हूं। फिल्म है दिल तेरा दीवाना, गीत को गाया मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने।

साक्षी सिंह, बटरफ्लाई गर्ल ऑफ इंडिया, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर बधाई देती हूँ। मेरी बहुत ही खास मेमोरी है आकाशवाणी के साथ। जब मैं कॉलेज जाती थी पापा के साथ गाड़ी में, हमेशा आकाशवाणी पे न्यूज बुलेटिन सुनते हुए जाती थी और मैं बहुत ही ध्यान से सुनती थी क्योंकि मुझे मालूम था न्यूज बुलेटिन खत्म होते ही पापा मुस्कुराते हुए बोलेंगे, अच्छा समराइज करके बताओ। ये जो वहीं से आदत मेरी शुरू हुई थी न्यूज को पढ़ के हर दिन अपडेटेड रहने की, और ये जर्नी मेरी अभी तक चली आ रही है। मैं एक बार फिर से आकाशवाणी को 90 इयर्स कंप्लीट होने पे बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ। आप एक आवाज ही नहीं, एक पहचान है।

बिल्कुल, और इसी आकाशवाणी से आप जुड़े हुए हैं। पहुंच रहा है आप तक ये सदाबहार ड्यूएट मुकेश और सुमन कल्याणपुर के स्वरों में फिल्म साथी से। गीत के बाद ठीक शाम 6:20 पर सुनिएगा संस्कृत में समाचार।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वीडन देशस्य द्विदिवसीय यात्रायां गोथेनबर्ग नगरं सम्प्राप्तवान्। सः स्वीडन देशस्य प्रधानमन्त्रिणा उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यनेन सह व्यापार हरित परिवर्तन एआई तथा रक्षा क्षेत्रेषु सहकारस्य समीक्षायै वार्तालापं करिष्यति। भारत नीदरलैंड्स देशौ द्वैपाक्षिक संबंधान सामरिक सहभागित्वेन वर्धितवन्तौ। प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहयोगं सुदृढं कर्तुं 17 सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। होर्मुज जलसन्धौ वाणिज्यिक नौकायानस्य उपरि आक्रमणानि अस्वीकार्यानि इति भारतेन निन्दितम्। कांगो युगांडा देशयोः इबोला प्रकोपः अंतर्राष्ट्रीय चिन्तायाः सार्वजनिक स्वास्थ्य आपत्कालेति विश्व स्वास्थ्य संघटनेन घोषितम्। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य श्रेयांसी वालिसेटी इत्येषा बावोजी चाइना मास्टर्स स्पर्धायां महिला एकल क्रीडायां रजत पदकं विजितवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतस्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गोथेनबर्ग नगरं सम्प्राप्तवान्। नीदरलैंड्स देशस्य स्वीयां यात्रां समाप्य असौ अद्य सायंकाले स्वस्य पञ्चदेशानां यात्रायाः तृतीये चरणे स्वीडन देशं सम्प्राप्तवान्। स्वीडन देशस्य स्वीयायां द्विदिवसीय यात्रायां श्रीमोदी अद्य स्वीडिश प्रधानमन्त्रिणा उल्फ क्रिस्टर्सनेन सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति तथा द्विपक्षीय संबंधानां सर्वेषां पक्षाणां समीक्षापि विधास्यति। उभयोः पक्षयोः व्यापारः हरित परिवर्तनं कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्टार्टअप्स सुदृढ आपूर्ति श्रृंखलाः

0: जनाः नमो ऐप इति चलदूरभाषीयतन्त्रांशे माई जी ओ वी ओपन फोरम इत्यत्र अथ च 1800011780 अनेन दूरभाषसंख्यामाध्यमेन च कार्यक्रमस्य विषये स्वीय प्रतिक्रियां दातुं शक्नुवन्ति। आगामी संस्करणाय परामर्शाः अस्य मासस्य 31 दिनांकपर्यन्तं स्वीकृताः भविष्यन्ति। होर्मुज जलसंध्यां वाणिज्यिक नौकासु कृतं होर्मुज आक्रमणम् अस्वीकार्यम् इति कथयन् संयुक्तराष्ट्रसंघे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः पर्वतनिनी हरीशः उक्तवान् यत् नागरिक नौकाचालकानां लक्ष्यकरणं तथा नौवहन स्वातन्त्र्यस्य बाधा केनापि प्रकारेण न्यायोचितं न भवितुमर्हति। सः वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रवाहस्य सुरक्षा विषये संयुक्तराष्ट्रस्य आर्थिक सामाजिक परिषदः विशेष सभायां भाषणं कुर्वन् आसीत्। श्रीहरीशस्य एषा टिप्पणी ओमान तटस्य समीपे भारतीय ध्वजयुक्तायां वाणिज्यिक नौकायां जातस्याक्रमणस्य कतिपय दिनानन्तरम् आगता। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः एआई तथा डीप टेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्यस्तम्भौ इति वर्णितवान्। अद्य गुजरातस्य अहमदाबाद नगरे मिलियन माइंड्स टेक पार्क फेज वन तथा ग्रैमी सिटी कैंपस इत्येतयोः उद्घाटनं कुर्वन् सः अवदत् यत् भारतं विश्वस्य प्रत्येकस्मिन् उदयोन्मुख क्षेत्रे अग्रणी अभवत्।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: केन्द्रीय नवीकरणीयोर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी अवदत् यत् भारत देशेन एकस्मिन्नेव दिने 4.6 गीगावाट परिमिता अभिलेखीय उच्च विद्युत आवश्यकता सफलतया पूरिता। एकस्मिन् निजी आंग्ल समाचारपत्रेण सह वार्तालापे श्रीजोशी महोदयः उक्तवान् यत् विद्युत आवश्यकतायाः प्रायः 33% नवीकरणीयोर्जा स्रोतैः पूरितम्। तेनोक्तं यत् भारतस्य विद्युत संरचना अधुना अधिका सुदृढा, भविष्याय च सज्जा अस्ति। मंत्री अग्रे उक्तवान् यत् एतत् परिवर्तनम् ऊर्जा क्षमतायाः तीव्र विस्तारं, विद्युतिकीय सुदृढीकरणं तथा च राष्ट्रस्य विकासपथे स्वच्छोर्जायाः वर्धमानं योगदानं प्रदर्शयति। त्रिवेन्द्रम न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस रेलयानस्य पृष्ठभागे जातस्य अग्निकाण्डस्य उच्चस्तरीयान्वेषणस्य आदेशः रेलमन्त्रालयेन प्रदत्तः। अद्य प्रातः प्रायः 5:15 कोटा संभागस्य नागडा क्षेत्रस्य समीपे त्रिवेन्द्रम न्यूदेल्ही राजधानी इत्यत्र एकः गार्डकोचः, एकः एसी थ्री टियर इत्येतयोः द्वयोः कोचयोः अग्निप्रकोपः अभवत्। मन्त्रालयः अवदत् यत् कोचमध्ये सुरक्षा व्यवस्थायाः तत्क्षणमेव कार्यं कृतम्, रेलयानं च स्वयमेव स्थगितम्। रेलचालकदलेन तत्क्षणमेव प्रभावितौ उभौ कोचौ पृथक् कृतम् तथा च अस्यां घटनायां यात्रिणः क्षतेः कापि सूचना नास्ति। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन इबोला महामार्याः घोषणा कृता। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य तथा युगांडा देशयोः प्रसृतं कोरोना विषाणोः प्रकोपं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपत्कालरूपेण घोषितमस्ति। विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य महानिदेशकः टेड्रोस अधानोमा घेब्रेयसस इत्यनेन 300+ संदिग्ध प्रकरणानां तथा 88 मृत्यूनां विवरणानन्तरं एषा निर्णयः प्रदत्तः। डब्ल्यूएचओ संस्थया सामाजिक अन्तर्जालीय पटले प्रकाशिते संदेशे स्पष्टतया उक्तं यत् अयं प्रकोपः कोविड-19 इव वैश्विक महामारी आपत्कालस्य श्रेण्यां नागच्छति।

0: Good evening, listeners, and welcome to this Sunday edition of Market Mantra, the program in which we bring to you all the important economic news of the day. And listeners, next 30 minutes completely dedicated to you, as besides news, today being Sunday, we'll also be taking calls from our listeners on any queries that you may have on mutual fund and related matters. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Along with my co-anchor Subodh Mishra, I am Sarabjit Kaur.
1: धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। इससे पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता। आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
2: जी, बहुत धन्यवाद।
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर।
0: Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review cooperation in trade, green transition, AI and defence. In Indian bullion market, gold and silver prices log weekly gains of around 4%. And domestic investors to focus on core industries data, corporate earnings and geopolitical developments for Q's next week.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यापार, हरित परिवर्तन, एआई और रक्षा पर सहयोग की समीक्षा के लिए स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेशन से बातचीत करेंगे। भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में पिछले हफ्ते लगभग 4% की बढ़त और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा कोर इंडस्ट्रीज के आंकड़ों, कंपनियों की आमदनी और वैश्विक घटनाओं पर।
0: And Subodh, before we go any further in the program, let's once again remind our listeners that the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And meanwhile, I can see our first caller has already connected from Amritsar. Manohar ji, swagat hai aapka, sawal poochhe.
3: Namaskar market mantra ki puri team ko. Main ye puchna chahta hoon ki abhi jo is samay global scenario hai political aur jiske karan

0: बड़ी उथल पथल हो रही है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो ऐसे समय, और ये भी कहा जा रहा है कि बैंकिंग सिस्टम में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आ सकती है, तो क्या कोई इन्वेस्टर अपने टोटल फंड का 20-25% एफडी से निकालकर धीरे धीरे स्टॉक मार्केट की तरफ इन्वेस्ट करे, और यदि हाँ तो वो किन किन म्यूचुअल फंड्स में उसे लॉन्ग टर्म रेंज के लिए करना चाहिए? थैंक यू
1: जी। तो पहले तो मैं आपको सलाह दूंगा, देखिए जब भी मार्केट में कभी उठा पटक का माहौल देखा गया है, एक क्राइसिस अगर ग्लोबल लेवल पे कंट्री लेवल पे अनफोल्ड होता है, तो उसके साथ साथ कुछ मार्केट में पैनिक होता है, कुछ उसके साथ साथ बहुत सारी र्यूमर्स अफवाहें फैलती हैं। तो मेरी राय आपको ये होगी कि पहली बात तो जिस चीज़ का एक बहुत बेसिस नहीं है, आप उसको थॉरली अंडरस्टैंड नहीं करते, तो बैंकिंग सिस्टम में कुछ लिक्विडिटी क्राइसिस ये सब अफवाहों पर ना जाएं, इनका कोई बेसिस नहीं है और इनके ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो बिल्कुल ही ना निर्धारित करें। दूसरा, आपने पूछा कि 20-25% पैसा क्या एफडी से निकालकर स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, तो देखिए अपनी निजी परिस्थिति या इन्वेस्टमेंट नीड के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट अपना जारी रखिए। जी हाँ, मार्केट में थोड़ा तनाव है, थोड़ा करेक्शन हुआ है, तो जनरली एक अपॉर्चुनिटी शायद मार्केट में है, लेकिन बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक होकर अपना पैसा ना लगाएं। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ सरप्लस है जो एफडी में रखा है, आप चाहते हैं कि लंबे समय में थोड़ा वेल्थ क्रिएशन के लिए इसको यूज करें, तो बिल्कुल आप एक या दो फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड्स का चुनाव कर उनमें पैसा एसआईपी के जरिए कम से कम 6 महीने में स्प्रेड कर लगाएं। अगर ये राशि धनराशि बहुत बड़ी है आपकी जिंदगी में, जो भी आपने ये अमाउंट है ये काफी मायने रखता है, इंपॉर्टेंट पैसा है, तो कम से कम 1 साल पे स्प्रेड करें।
2: जी, अगले कॉलर हैं चेन्नई से अमरेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
3: Thank you. See, at this time, given the fact the rupee is one of the at its lowest point, and the fact that India has a capital deficit as well as a current account deficit, would you agree that divestment of public sector enterprises is important, and what are the steps being taken? Because I hardly hear about it these days.
1: Well, that's not my core brief, you know, on this topic. But I'd say that, you know, divestment is a much broader topic and not just, you know, solely dependent upon, you know, the current state of the economics or, you know, macroeconomic, you know, variables look from the prism of just current account deficit or fiscal deficit. So, you know, leave those topics aside. You know, we have a very capable government and a very capable finance ministry to you know decide on those parameters, and don't really try too hard to base your individual investment decisions on what happens with the disinvestment program.
4: और ए जे मुल्ला जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से, अपना सवाल पूछें।
5: हेलो
4: जी,
5: मेरा सवाल है कि म्यूचुअल फंड में सिंगल इन्वेस्टमेंट वन टाइम या एसआईपी किया, इसमें कौन सा अच्छा रहता है और कौन से इसमें प्रॉफिटेबल रहता है?
1: जी देखिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट और एसआईपी में फर्क इतना ही है कि वन टाइम में आप एक साथ अगर अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए, और अगर उसके बाद मार्केट में भारी गिरावट होती है तुरंत आपके लगाने के बाद, तो वो एक साइकोलॉजिकली या बिहेवियरली एक स्टेट ऑफ पैनिक क्रिएट कर सकता है इन्वेस्टर में। तो वन टाइम या एसआईपी में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है एक अपने साइकोलॉजिकली अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर पाना। तो उस लिहाज से अगर आप मार्केट के उतार चढ़ाव से बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं हैं, तो मैं कहूँगा एसआईपी ही चुनें, एसआईपी से अपना पैसा लगाएं, चाहे 6 महीने साल भर में उसको स्प्रेड करके लगाएं। लेकिन उससे होता यह है कि आपका पैसा धीरे धीरे जब मार्केट में लगता है उतार चढ़ाव के माहौल में वो पैसा इन्वेस्ट होता है, तो एक पर्टिकुलर मार्केट लेवल से आप एंकर नहीं होते हैं, और आपके पैसा लगाने के बाद अगर मार्केट गिरती है तो उससे आप खासा ही निराशाजनक नहीं होते हैं, और साइकोलॉजिकली ये काफी मैटर करता है लंबे समय तक मार्केट में बने रहने के लिए।
2: जी, अगले कॉलर है जयपुर से जितेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
6: हाँ धन्यवाद। हाँ सर, बहुत दिन हो गया, आजकल जितेंद्र जी नहीं आते, हम लोग मिस करते हैं उनको, ऐसे सभी लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ सर, एक मेरा दो प्रश्न है छोटा छोटा। एक तो इक्विटी सेविंग फंड जो है वो किनके लिए

0: जरूरत होता है वो कैसे लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। एक दूसरा प्रश्न है कि जैसे इंडेक्स फंड हमको ईटीएफ में मिल जाता है तो एक्टिव मैनेज फंड भी क्या ईटीएफ के रूप में मिल जाएगा, जैसे फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप टाइप का कोई फंड?
1: जी, पहला सवाल आपका इक्विटी सेविंग्स फंड्स को लेकर। देखिए, इक्विटी सेविंग्स फंड कुछ इस तरह कॉन्फिगर्ड होते हैं कि आपका करीब एक तिहाई पैसा या 30% या 40% तक वो पैसा इक्विटी मार्केट में निवेश करते हैं, एक तिहाई पैसा आपका डेट में लगाया जाता है और करीब एक तिहाई पैसा ही आर्बिट्राज में, जो डेरिवेटिव्स में इक्विटी और डेरिवेटिव मार्केट्स में आर्बिट्राज किया जाता है उसमें लगाया जाता है। तो आप मोटा मोटा इस प्रोडक्ट को ऐसे समझिए कि आपका 35-40% पैसा इक्विटी में रहता है और बचे हुए पैसे से आपको डेट फंड जैसे रिटर्न मिलते हैं। लेकिन ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि मात्र 35-40% इक्विटी में होने के बाद भी इनको टैक्स ट्रीटमेंट इक्विटी वाला मिलता है, जो जिसमें कि कम टैक्स लगता है। तो एक टैक्स को ध्यान में रखते हुए इन प्रोडक्ट्स को कॉन्फिगर किया गया है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स जो कि इक्विटी मार्केट में निवेश करना चाहते हैं लेकिन उसके उतार चढ़ाव से थोड़ा उनको घबराहट होती है, उनके लिए अच्छे प्रोडक्ट हैं क्योंकि 30-40% पैसा ही इक्विटी में लगता है। दूसरा, आई थिंक रिटायरीज जिनको रेगुलर इनकम की नीड है उनके लिए भी ये ठीक ठाक काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं ये प्रोडक्ट, क्योंकि इक्विटी कॉम्पोनेंट उनको ग्रोथ प्रोवाइड कर पाता है और डेट इतनी स्टेबिलिटी दे पाता है कि एक अपना मॉडरेट मॉडेस्ट रेगुलर इनकम प्लान उस पर माउंट कर पाए। तो इन जरूरतों के लिए इक्विटी सेविंग्स फंड अच्छे हैं। एक्टिव फंड्स जी नहीं, एक्टिव फंड्स ईटीएफ स्ट्रक्चर में आपको नहीं मिलेंगे। ईटीएफ स्ट्रक्चर में आपको वही फंड्स मिलते हैं जो इंडेक्स किसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। तो एक्टिव फंड्स के लिए आपको जो कन्वेंशनल मेन स्ट्रीम इक्विटी फंड्स आते हैं उन्हीं की तरफ जाना होगा।
2: और मंगेश जी जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से, सवाल पूछे।
3: नमस्ते सर।
2: जी नमस्ते।
3: मेरा आईसीआईसीआई नैस्डैक 100 इंडेक्स के बारे में पूछना है। इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे आप और एसआईपी भी नहीं ले रहे, लेकिन मेरी पुरानी एसआईपी हर मंथ कट रही है, इसमें बने रहे या रिडीम करें? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन अब ये नई इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं ले रहे इसके बारे में पूछना है।
1: जी देखिए, फंड अच्छा है आपका आईसीआईसीआई नैस्डैक 100, मेरे लिहाज से आप इसमें बने रह सकते हैं। अभी आप इस बात से चिंतित ना हो कि ये पैसे और क्यों नहीं ले रहा है। देखिए, वो आरबीआई की लिमिट्स हैं, आरबीआई मैंडेट करता है कि भारतीय म्यूचुअल फंड बाहर विदेशी बाजारों में कितना पैसा निवेश कर सकते हैं और मैक्सिमम सारे फंड्स अपनी वो लिमिट हिट कर चुके हैं, तो लिमिट के चलते वो और पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे फंड तो एग्जिस्टिंग एसआईपी भी का भी पैसे पे उन्होंने रोक लगानी पड़ी है। कुछ फंड्स हैं जिनमें एग्जिस्टिंग एसआईपी कंटिन्यू हो रहा है, अगर आपका चल रहा है तो आप बने भी रह सकते हैं इसमें।
4: जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से योगेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
5: जी आप सभी को नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि जब सेंसेक्स गिरने लगा है और हमारी एसआईपी चल रही है मार्केट में, तो क्या एसआईपी के साथ में कुछ लमसम जब डालते हैं तो सेंसेक्स जैसे प्राइस अर्निंग देखा जाता है कि कितना पीई लेवल है, तो सेंसेक्स का पीई अभी 20.2 दिखा रहा है, तो कितना आपके हिसाब से जस्टिफाइड पीई या फिर कोई पीबी रेशियो वगैरह होना चाहिए कि जिसके हिसाब से फिर हम कुछ कुछ लमसम भी साथ में डाल पाए ताकि थोड़ा डीपली वैल्यू बाइंग हो पाए? दूसरा एक सवाल ये है कि जैसे कुछ म्यूचुअल फंड लमसम नहीं लेते हैं, एसबीआई स्मॉल कैप उनमें से एक है जो लमसम नहीं ले रहा है, तो बाकी सब फंड में हमने कुछ कुछ लमसम टॉपअप कर दिया है जैसे मार्केट गिरी है पर उसमें नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका पोर्शन मेरे पोर्टफोलियो में बहुत कम हो गया है, सिर्फ 10% मेरे पोर्टफोलियो का रह गया है, तो ऐसे में ऐसे फंड का क्या करना चाहिए?
1: जी, पहला सवाल आपका सेंसेक्स का पीई, देखिए अगेन बहुत ज्यादा टाइमिंग ना करिए, अगर आप अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग करने भी चाहते हैं तो फर्स्ट इज अपने लिए कोई रूल बनाएं कि मार्केट में अगर एक्स परसेंट की गिरावट होगी तो आप अपना 5-10% पैसा जो आपका सरप्लस अवेलेबल है उसको आप इन्वेस्ट करेंगे। थोड़ा अपना एक क्वांटिफाइड रूल रखें, क्योंकि सिंपली आप बिहेवियर के बेसिस पे अगर टाइम करने की कोशिश करेंगे तो काफी बार वो उल्टा पड़ता है। सेंसेक्स का पी 20 देखिए, लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से देखें तो अपनी लॉन्ग टर्म एवरेजेस के की रेंज में है, और ऐसा देखा गया है कि जब मार्केट में बुलरन आता है तो ये 20 के एंकर से ऊपर भी चला जाता है, लेकिन आज की डेट में मैं ये कहूँगा कि अपनी लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है। लेकिन जरूरी ये है, जैसा मैंने कहा, कि आप अपना अगर पीई रेशियो से भी आप एंकर होके करना चाहते हैं तो कोई ग्राउंड रूल अपना सेट करें कि किस पीई लेवल पे आप कितना पैसा लगाइएगा, और ये सारा ही कुछ आप अपने 10-15% पैसे के लिए अगर इस तरह की ऑपर्चुनिस्टिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करिए। अ बल्क ऑफ योर मनी 80-85-90% स्टिल आपके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत SIP के तहत लगना चाहिए, ना कि ऑपर्चुनिस्टिक बाइंग के थ्रू। SBI स्मॉल कैप आपने बताया लमसम इसमें बंद है जी, बिल्कुल, क्योंकि फंड का साइज काफी बड़ा हो गया है तो फंड कंपनी ने गेट लगा दिए हैं। इसका आपको कुछ नहीं करना है, आपके लिए अब ये इन्वेस्टमेंट का विकल्प नहीं है, आप दूसरे स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरे अच्छे फंड्स का चुनाव करें और इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में जैसे बना हुआ है बने रहने दीजिए जब तक आपको लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट वर्दी है।
2: All right, Ashutosh, with that vibrant interaction with our listeners, let's update with the important news of the day. Prime Minister Narendra Modi arrived in Gothenburg, Sweden this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. We have more details on this from our correspondent.
6: During the Sweden visit, Prime Minister will hold bilateral talks with the Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review the entire gamut of bilateral relations and explore new avenues of cooperation to enhance bilateral trade. They are also expected to hold discussions on avenues of collaboration in green transition, AI, emerging technologies, startup, resilient supply chain, defense, space, climate action and people-to-people ties. The two Prime Minister will also address the European Roundtable for Industry, a leading pan-European business leaders forum, along with Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen, President of the European Commission. The business and industries across Sweden are excited with the visit of Prime Minister and hold high hopes regarding the outcome of the visit. Sakshi Singh, Akashwani News, Gothenburg, Sweden.
4: जी, और सरबजीत इसी पर एक और खबर भी है, नीदरलैंड्स के अपनी दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग से रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने डच प्रधानमंत्री से बात की। दोनों देशों ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और अहम अन्य क्षेत्रों में सहयोग के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की हालत और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार नेटवर्क पर इसके प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपनी नीदरलैंड यात्रा पूर्ण की। इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार और तकनीक से जुड़ी प्रमुख डच कंपनियों के सीईओ से भी बातचीत की। इसमें मुख्यतः सेमीकंडक्टर तकनीक और इनोवेशन, बुनियादी ढांचा, लॉजिस्टिक और समुद्र क्षेत्र, ऊर्जा एवं कृषि क्षेत्रों के बारे में भारत के लिए प्रपोजल रखे गए। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
2: और दिल्ली से विशाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विशाल जी, अपना सवाल पूछे।
8: नमस्कार मार्केट मंत्रा जी, मेरा एक सवाल है। मेरा फ्रेंड म्यूचुअल फंड और क्या कहते हैं शेयर मार्केट में लगातार दिव्यांग है वो, तो उसके टैक्सेस में कोई छूट मिल सकती है इसे?
1: जी नहीं, म्यूचुअल फंड की टैक्सेशन अगर इक्विटी फंड्स हैं, एक साल से ऊपर का पैसा जो कैपिटल गेन्स हैं वो 12.5% पे टैक्स होता है। पहले 1,25,00,000 रुपए जो आपके गेन के होंगे वो टैक्स एग्जेम्प्ट होंगे। तो ब्रॉडली जो म्यूचुअल फंड्स से जुड़े टैक्स ट्रीटमेंट है वही उनके ऊपर भी अप्लाई होगा।
4: जी, और देखे PI का क्या हाल रहा। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों, FPI ने मई में अब तक 27,048 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेच दिए हैं। इस साल अब तक भारतीय शेयर बाजार से FPI की कुल बिकवाली 2,19,000 करोड़ रुपए को पार कर गई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार FPI ने मई में अब तक भारतीय ऋण बाजार से भी 57 करोड़ रुपए निकाले हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते में भारतीय ऋण बाजार से FPI की बिकवाली की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। आर्थिक विकास की चिंताओं, दुनिया के अहम इलाकों में बढ़े हुए तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में जारी उतार चढ़ाव की वजह से विदेशी निवेशक जोखिम लेने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं।
2: In the Indian bullion market, gold and silver prices extended their upward trajectory last week, largely driven by hiked import duties. At the multi-commodity exchange, silver futures for the July contract jumped 3.8% over the week to close at 2,71,886 rupees per kilogram.
4: जी, और आपने चांदी का जो भाव बताया उसका सोने का हाल यह है, जून अनुबंध के लिए सोना वायदा सप्ताह के दौरान 3.9% की बढ़त आई और ये 1,58,547 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी का रुख कुछ अलग रहा। अमेरिका में ट्रेजरी यील्ड्स और डॉलर में तेजी की वजह से कीमती धातुओं में

0: गिरावट आई है। पश्चिम एशिया के संघर्ष के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति से ब्याज दरों में बढ़त की आशंका भी हावी है। जून वायदा का कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर 3.5% गिरकर $4,561.90 प्रति ट्रॉय अंस पर बंद हुआ, जबकि जुलाई वायदा की चांदी 4.1% गिरकर $77.55 प्रति ट्रॉय अंस पर आ गई।
1: Within days of levying high customs duties on precious metals, government has imposed import curbs on silver. The Directorate General of Foreign Trade in a notification said the import policy for silver, including silver plated with gold and platinum, are revised from free to restricted with immediate effect. The golds under restricted category needs government license for imports.
0: अभी आशुतोष, अभी हमने सोने चांदी का हाल देखा है और ये पिछले कुछ सालों से निवेशकों को काफी लुभाता भी रहा है, लेकिन अभी की हालत देखकर लोग क्या करें ऐसी हालत में?
2: जी, तो देखिए, सोने का जहाँ तक रोल पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी लाने का है, उसको बहुत ज़्यादा आप वेल्थ जनरेटिंग, हालांकि उसने कुछ रीसेंट ईयर्स में काफ़ी बढ़िया रिटर्न जनरेट किया और दैट इज़ वाई बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हुए हैं, लेकिन आप बहुत रीसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर या पिछले और उसके बाद इस साल की शुरुआत में देखा गया कि थोड़ी गिरावट भी उसमें आई, तो ये चलता रहेगा। लेकिन आपके निवेश में आपको देखना है कि किसी पर्टिकुलर एसेट क्लास का रोल क्या है आपके पोर्टफोलियो में। सोने का वो रोल है एक स्टेबिलिटी लाना, क्योंकि जब भी इक्विटी मार्केट में, इकोनॉमी में कुछ तनाव होता है, कुछ क्राइसिस का माहौल होता है, उस वक्त देखा गया है कि सोना अच्छा परफॉर्म करता है। तो सोना एक अच्छा काउंटर वेट है आपके लॉन्ग टर्म इक्विटी पोर्टफोलियो में, जो कि वेल्थ जनरेटिंग पोर्टफोलियो है। तो अपना 5-10% पैसा आप अगर सोने में निवेशित रखना चाहते हैं तो रखिए, लेकिन ये लंबे समय का आपका स्ट्रेटेजिक एलोकेशन होना चाहिए। ये इस पर निर्भर नहीं करना चाहिए कि पिछले महीने या पिछले साल या पिछले 3 साल में सोने ने कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर आप इस तरह से एक डिसिप्लिन तरीके से सोने का एक कांस्टेंट एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे, तो आपको उसके उतार चढ़ाव से या सडन चेंज इन डायरेक्शन से निराशा नहीं होगी, कोई हताशा नहीं होगी।
1: So indeed, some amount of patience and a balanced approach is, I think, a key to investment, you know, ambitions and key goals.
2: Absolutely.
1: All right, may we just remind our listeners that you are listening to your very own favorite program, Market Mantra. There are three lines dedicated: 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. You can connect with us on these numbers, and today being Sunday, you are welcome to pose questions related to mutual funds.
0: जी, और अगली खबर पर चलते हैं हम। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस वृद्धि के बाद दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में IGL ने CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी।
1: और सुबोध भोपाल से शंकर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शंकर जी, सवाल पूछें।
3: नमस्ते मार्केट मंत्र टीम। सर, मेरा सवाल है कि मैं फोकस इक्विटी फंड को क्या एज ए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देखा जाए, क्योंकि उसमें छोटी पोर्टफोलियो होती है और रिस्की होती है पर रिवार्डिंग होती है। तो जो इन्वेस्टमेंट हैं, हम जैसे कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर दें और फिर उसमें फिर वो रिस्क हो जाती है, तो उससे बेटर है फोकस में जाया जाए, थोड़ा पैसा फोकस में अलोकेट किया जाए। अगर कोई अच्छा इन्वेस्टर जिसमें एक्सपीरियंस है, तो वो अपने फोकस फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और स्मॉल एंड मिड कैप, इनका प्रोपोर्शन बता दीजिए।
2: जी देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फोकस्ड फंड्स नॉर्मल मेन स्ट्रीम फ्लेक्सी कैप फंड से थोड़े ज्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि फोकस्ड फंड का जो मैंडेट है उसमें ये 30 से ज्यादा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते हैं। तो थोड़ा फ्लेक्सी कैप फंड से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो इनका होता है। उस वजह से अगर फंड मैनेजर की कॉल्स अच्छी जा रही हैं, तो ये फंड्स काफी बढ़िया रिटर्न देने में सक्षम होते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी देखा गया है कि अगर फंड मैनेजर की कॉल्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, तो वहीं ये पलटकर थोड़े निराशाजनक भी हो जाते हैं। तो ये थोड़े ज्यादा रिस्की, थोड़े ज्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फोकस्ड इक्विटी फंड का चुनाव करने के लिए जरूरी है कि आप किसी ऐसे फंड मैनेजर, यहां पर फंड मैनेजर का रोल ज्यादा हो जाता है, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन बहुत जरूरी हो जाता है। आप 30 स्टॉक्स का कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाने चले हैं, तो यहां फंड मैनेजर का रोल जो ज्यादा है, आप फोकस

0: इक्विटी फंड का चुनाव करने में कोई ऐसे फंड मैनेजर के साथ जाएं जिनको बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन में मंझे हुए हों और उनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो इन इस टाइप की स्ट्रैटेजी रन करने के लिए। और ओवरऑल एलोकेशन में मैं बोलूंगा कि अपना फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड मल्टी कैप, ये काफी सिमिलर टाइप के कोर इक्विटी प्रोपोर्शन जो एलोकेशन है आपके पोर्टफोलियो का उसके लिए होते हैं। तो इनमें आप मेरी राय में करीब अपना कोई भी इक्विटी पोर्टफोलियो में 60 से 70% पैसा इन इस टाइप के फंड्स में रह सकता है। और अगर आप 10-15% एलोकेशन इक्विटी मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए रखें तो मेरे ख्याल एक एग्रेसिव इक्विटी इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पोर्टफोलियो के लिए ब्रॉडली इस टाइप की एलोकेशन आप क्रिएट कर सकते हैं।
1: जी, अगले कॉलर है मुंबई से अमित। स्वागत है अमित, सवाल पूछिए।
2: धन्यवाद सर। मुझे एक्सपर्ट से सवाल ये है कि प्लीज जरा समझाइए, हाइब्रिड फंड, मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड, ये जो तीन फंड के अलग अलग प्रकार है, इसमें क्या फर्क है सर? प्लीज जरा डिटेल में समझाइए तो औरों को भी थोड़ा मालूम होगा मेरे से।
0: जी, तो फ्लेक्सी कैप फंड्स वो होते हैं जो आपका सारा पैसा इक्विटी मार्केट में ही निवेश करते हैं। जैसा कि नाम है इनका फ्लेक्सी कैप, तो फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के पास है वो किस साइज की कंपनियों में इन्वेस्ट करें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें, वो उनको एलोकेशन कहां करनी है वो पूरी छूट है। लेकिन पैसा आपका सारा 100% इक्विटी मार्केट में लगता है। तो ये हो गए फ्लेक्सी कैप फंड। फिर आपने बात करी हाइब्रिड। हाइब्रिड का जैसा नाम बताता है कि ये हाइब्रिड फंड्स होते हैं जिनमें डेट और इक्विटी का मिश्रण होता है। अब हाइब्रिड कई प्रकार के होते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड होते हैं जो आपका 25% पैसा डेट, 75% इक्विटी में लगाते हैं। वहीं बैलेंस्ड होते हैं जो 50-50 दोनों में लगाते हैं। और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स होते हैं जो 75% तक आपका पैसा इक्विटी में लगाते हैं और शेष पैसा डेट में लगाते हैं। तो ये वो फंड्स हैं जो आपको ऑटोमेटिकली दो एसेट क्लास का एक्सपोजर देते हैं। आप कितने एग्रेसिव या कितने कंजर्वेटिव हैं उसके लिए आप ये अलग अलग फंड्स में से चुनाव कर सकते हैं। मल्टी कैप आपने तीसरा बोला। मल्टी कैप फंड्स भी ऑल इक्विटी फंड्स हैं लेकिन इनमें एलोकेशन थोड़ी ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है। जैसे कि मैंने बताया कि फ्लेक्सी कैप फंड में आपका फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है। मल्टी कैप का मैंडेट ये होता है कि कम से कम 25-25% पैसा आपका लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में करना ही होगा। बचे हुए 25% का चॉइस होता है फंड मैनेजर के पास, लेकिन इन फंड्स में कम से कम 25% आपका पैसा लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों कैटेगरी के स्टॉक्स में लगेगा ही। तो ये कुछ फर्क है इन तीनों टाइप के फंड्स में।
3: आशुतोष, आई वॉज लिसनिंग वेरी केयरफुली टू द यू नो द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दैट यू शेयर्ड विद द लिसनर्स। सो वन क्वेश्चन विच केम टू माई माइंड दैट ऑफ लेट वी हैव सीन इन्वेस्टर्स इंक्रीजिंगली टर्निंग टू डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज अमिड वोलेटाइल मार्केट कंडीशंस एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैव अट्रैक्टेड बिग टाइम इनफ्लोज। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस?
0: Yes, so you know hybrids are a good category. It's a very hands-off category. The whole point of investing in a mutual fund is that you are hiving off the job of deciding investments to a professional fund manager.
3: Correct.
0: Hybrids take that concept one step further, where the allocation automatically the rebalancing happens between equity and debt. So it makes the job of investing even more hands-off. But I'll take the recent numbers about increasing inflows in hybrid funds as a pinch of salt. Because a lot of those inflows are driven by categories like multi-asset and arbitrage. Now, arbitrage funds give you returns which are very similar to liquid funds. So they are not really a wealth creation category. And the other category that has attracted a lot of attention is multi-asset. Perhaps one of the reasons is because these are the funds which combine three asset classes, at least in their portfolios, which is equity, debt, and commodities, and often that third leg is provided for by gold. And given the rising interest in gold in the recent years, multi-asset funds have attracted a fair share of inflows. But multi-asset itself is a very very heterogeneous category. Different funds have very different allocations, so that is something you have to be mindful of.
3: Great. After snapping a two-week rising streak, domestic markets are likely to focus on economic data, corporate earnings and rupee movements for Qs in the week ahead. Investors will also closely monitor geopolitical developments, foreign investor flow trends and global equity performance for direction. On the macroeconomic front, core industries data will remain in focus. Additionally, market participants will continue to monitor the March quarter earnings season as more than 500 companies are scheduled to announce their results. Elsewhere in Asia, Japan's April Consumer Price Index and first quarter GDP data will be released next week. In the United States, the minutes of the US FOMC, Federal Open Market Committee, April meeting are scheduled to be released on Wednesday. Globally, geopolitical developments will remain a key overhang. Crude oil prices will continue to be a crucial factor, with ongoing concerns around the Strait of Hormuz remaining in the spotlight.
1: आज वक्त इतना ही है आशुतोष कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी बहुत धन्यवाद
3: Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review cooperation in trade, green transition, AI and defence. In Indian bullion market, gold and silver prices log weekly gains of around 4%. And domestic investors to focus on core industries data, corporate earnings and geopolitical developments for Q's next week. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों के सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा होगी। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन के साथ यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। नीदरलैंड्स की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और नीदरलैंड्स की मित्रता आने वाले समय में और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रॉब येटेन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउड डाइक बांध का भी दौरा किया। यह यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंभात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने इस महीने की 14 तारीख को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि यह एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। श्री जोशी ने बताया कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
6: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
7: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
5: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई

0: के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की काफी लंबे समय से लंबित मांगे पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 230 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में पंजाब ने ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 6 विकेट पर 172 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi arrived in Gothenburg, Sweden this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. He was received at the airport by the Swedish Prime Minister Ulf Kristersson.

0: सुर्खियों में
1: नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध मिश्र और आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा और द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिलने पर। भारत और यूरोप के बीच रणनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा सहयोग लगातार बेहतर हो रहा है और प्रधानमंत्री की यह यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत जी। अनिल जी, आपका आकाशवाणी में हार्दिक स्वागत है।
2: जी नमस्कार।
1: आज की चर्चा शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं कि नीदरलैंड्स में भारत के वर्तमान राजदूत कुमार तुहिन ने क्या कहा है।
2: तो मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी की नीदरलैंड्स की यात्रा बहुत ही सक्सेसफुल रही है। इस यात्रा में जो इसका कंटेंट था और जो इसके जो आउटकम थे, अगर सबको देखें तो इतनी रिच कंटेंट और इतनी बढ़िया बातचीत जो यहाँ के नेताओं से हुई है, इतनी अच्छी बात मुझे लगता है कि बहुत ही समय में ऐसी कभी नहीं हुई होगी। इसको अगर मैं विस्तार से बताना चाहूँ तो सबसे पहले तो जब यहाँ के किंग से और क्वीन से उनकी बात हुई, उनके प्रधानमंत्री जी के आदर में उन्होंने एक लंच भी आयोजित किया वहाँ पे बहुत ही विस्तार से और कई विषयों को टच करते हुए बात हुई। और यहाँ के जो किंग और क्वीन है उन्होंने लंच में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित किया ताकि उनसे विस्तार से हर विषय को, जिसमें कि कला भी है और संस्कृति है, जिसमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी है, यहाँ के कुछ कंपनी के काफी बड़े सीईओ को बुलाया गया था और पूरा का माहौल जो था वो बहुत ही बढ़िया और काफी इनफॉर्मल और ऐसा माहौल था जिसमें कि बहुत ही डिटेल में बात हो सकी उसमें। उसके बाद जो उनकी बातचीत यहाँ के प्रधानमंत्री से हुई, उसके पहले दो बड़े महत्वपूर्ण काम हुए यहाँ पे। पहला तो ये हुआ कि जो चोला की जो प्लेट्स हैं उन प्लेट्स का रेस्टिट्यूशन, और इसके बारे में आपने सारी डिटेल देख ली होगी। ये बहुत ही ऐतिहासिक चीज है और सबसे बड़ी चीज है कि ये एक तरह समझिए कि दोनों देशों के बीच में एक तरह से सांस्कृतिक संबंधों को एक और मजबूत तरीके से ले आने का एक आधार खुल गया है बिना किसी कंडीशन के। और ये भी जानते हुए कि जो चोला की प्लेट्स हैं एक प्राइवेट कलेक्शन में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी लाइडन की है वहां पड़ी हुई थी, उसके बाद भी उन्होंने एक कमीशन को रेफर किया और उसकी प्रोवेनेंस तय करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसे में हमें भारत को रिस्टिट्यूट करना है। और ये इसके बाद में ASI और लाइब्रेरी उनके बीच में आगे जाकर के और रिसर्च करने के लिए और डेटा एक्सचेंज करने के लिए, मेटा डेटा बदलने के लिए, इन सब के ऊपर में काम करने का एक बहुत मजबूत आधार बन गया है। दूसरी चीज हुई कि ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में उन्होंने एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत है, क्योंकि अगर आप देखें कि ASML अपनी तरह की एक अनूठी कंपनी है और इस कंपनी की जो खासियत यह है कि वो ऐसी मशीनें बनाते हैं जिन मशीनों को बनाने वाली कोई कंपनी दूसरी दुनिया में है ही नहीं, जिनसे कि सेमीकंडक्टर फैब बनती है। और ये हमारे यहाँ जो ढलेरा में प्लांट बन रहा है उसमें हमारी शुरुआत करने के लिए बहुत ही मजबूत आधार देगा। और यही नहीं बल्कि जो सेमीकंडक्टर का जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम में एक बड़ी अच्छी शुरुआत हो सकती है हमारे आने की। जो उनकी बातचीत यहाँ के प्रधानमंत्री से हुई उसमें भी कंटेंट बहुत ही रिच था और संबंध के सारे आयामों पे, जिसमें ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, कल्चर है, पॉलिटिकल है, डिफेंस है, मैरिटाइम सिक्योरिटी है, हेल्थ है, हर विषय पर बात हुई और साथ साथ विश्व में जो अभी आर्थिक स्थिति है वहां भी बात हुई। और इसके बाद आपने जो हमारी वेबसाइट पर देखा है कि एक बहुत ही लंबी लिस्ट निकली है सारे जो अग्रीमेंट्स कंक्लूड हुए हैं, और ये अग्रीमेंट्स आपको इनके जो रेंज है और इनकी जो डेप्थ है ये आपको एक आपको एहसास कराएगी कि जो वार्ता हुई और वार्ता की जो सफलता है वो कितनी गहरी है और कितनी व्यापक है। और अंत में मैं ये कहूंगा कि इसके बाद यहाँ के प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री जी के आदर में एक रात्रि भोज किया था, उसमें भी बहुत ही सहज माहौल था जिसमें दोनों देश के नेताओं ने आपस में उन्होंने, जो कि उनकी पहली मुलाकात थी फॉर्मल तरीके से, काफी बढ़िया और क्लोज बात की, बहुत विषयों बात की। और यही नहीं, इसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री और बाकी भी उच्च अधिकारी उनको भी मौका मिला अपनी अपनी बात करने का। और मुझको ये लगता है कि इससे हम दोनों देशों का जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश हुई है उसको आगे ले जाने के लिए, उसको और कंटेंट को डेवलप करने के लिए एक बहुत ही मजबूत हमारा एक आधार बन गया है। और कल एक हमारी प्रोग्राम का एक पार्ट और भी है, वो ये है कि प्रधानमंत्री जी जाने वाले हैं, यहाँ आफ्सलाउट डाइक है जो कि वाटर मैनेजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। और यह प्रोजेक्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इसकी जो सीख है, इसके जो कुछ लेसन्स हैं, उस लेसन्स को हम लोग अपने यहाँ भारत में भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में हम लोग लगा पाए, और जिसमें से एक है कल्पसार। इस पर भी एक लेटर ऑफ इंटेंट पर इसमें भी एक समझौता हुआ है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में इसको भी हम लोग आगे ले जा पाएंगे। तो ओवरऑल मैं बहुत ही खुश हूँ, और मुझे लगता है कि ये एक ट्रूली माइलस्टोन विजिट रही है प्रधानमंत्री जी की, और इससे हमारे दोनों देशों के बीच में हिस्टोरिक टाइज एस्टैब्लिश होने वाले हैं। धन्यवाद
1: अनिल जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को भारत यूरोप संबंधों और खासकर स्वीडन जैसे देशों के संदर्भ में आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
0: देखिए, यूरोप हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी पार्टनर रहा है। सब डेमोक्रेसीज हैं, भारत सबसे बड़ी दुनिया की डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, और सबसे बड़ा देश है आज की डेट में, बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो उन लोगों का भी एक इंटरेस्ट है। जहां तक हम लोगों का सवाल है, उसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर बहुत उथल पुथल मची हुई है, कई तरह की ब्लैक स्वान इवेंट साइमल्टेनियसली काम कर रही है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यूरोपियन देशों के ऊपर और दूसरे देशों के ऊपर हो रहा है। अब ये मिडिल ईस्ट का जो ईरान यूएस इसराइल का वॉर है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, और अभी तक पूरी तरह से पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट था वो भी खत्म नहीं हुआ है, नई तरह के वायरस भी आने लगे हैं। तो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के हो, टेररिज्म के हो, इनोवेशन के हो, रिसर्च और डेवलपमेंट के हो, उन सब में हमारा यूरोप के साथ में जो कोलैबोरेशन है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। और इस वर्ष जैसा आपको पता है कि भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है, और इसी तरह से कुछ पांच देशों के साथ में यूरोपियन यूनियन के ही है, लेकिन उसमें अलग से भारत ने एक और ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। उन दोनों के अंतर्गत हमारे जो दिशाएं हैं एक दूसरे के साथ काम करने की और भी ज्यादा प्रगतिशील होंगी। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो ये विजिट इस वक्त हो रही है वो उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है। और अभी देखिए, स्वीडन और बल्कि चारों देश जो बाकी हैं, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड, ये जो पांच देश हैं, इनको हम नॉर्डिक कंट्रीज के रूप से कहते हैं। तो प्रधानमंत्री इस बार स्वीडन और नॉर्वे की यात्रा कर रहे हैं। आज वो स्वीडन पहुंचे हैं, नीदरलैंड्स में काफी अच्छी यात्रा रही वहां पर, जैसा कि आपने वहां के एम्बेसडर, जो हमारे एम्बेसडर हैं कुमार तोहिन, की बात से बताया, और प्रधानमंत्री ने भी कहा है। देखिए, वहां करके एक बात कही कि WAH, जैसे वाटर एग्रीकल्चर एंड हेल्थ और ग्रीन शिपिंग, ग्रीन कॉरिडोर, डिफेंस सिक्योरिटी में माइक्रोचिप्स, कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर्स, और हमारे एक और चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है, इस बार उन्होंने 11th सेंचुरी की जो चोला डायनेस्टी के टाइम की जो कॉपर प्लेट्स थी, इस पे काफी कुछ लिखा है, उनको उन्होंने वापस किया है, भारत को सौंप दिया, और एक रोडमैप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए तैयार हुआ है, जिसके चलते और भी हमारे रिश्ते उनके साथ घनिष्ठ होंगे। अब स्वीडन एक ऐसा देश है जिससे मैं समझता हूँ 100 साल से ज्यादा पुरानी हमारी मित्रता है,

0: 1922-23 में मैं समझता हूं कि वहां की जो बड़ी बड़ी कंपनी स्वीडिश मैच और ये सब भारत में आई थी, खासतौर से पुणे में एक जगह है जहां पर उनका पूरी सारी कंपनीज, चाहे वो अल्फा लवाल हो या स्वीडिश मैच हो, इन सब के ऑफिसेज और एस्टेब्लिशमेंट थे वहां पर। मुझे याद है जब मैं वहां स्वीडन में था तो एरिक्सन के जो सीईओ थे और एक वहां के ट्रेड मिनिस्टर थे लेफ पग्रोस्की, उन्होंने मुझसे कहा कि 95% जो इंडिया का टेलीकम्युनिकेशन फ्रेमवर्क है वो एरिक्सन के द्वारा दिया गया। तो बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं वहां पर 50 से ज्यादा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर्स हैं। छोटे से देश हैं लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में, R&D के मामले में और क्लाइमेट चेंज के मामले में हो, वाटर मैनेजमेंट के लिए हो, उन सब ने बहुत अग्रिम भूमिका निभाई है दुनिया में। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो लोग इस बात पे करते हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर में सबसे ज्यादा खुश देश माने जाते हैं दुनिया के अंदर, लीस्ट करप्शन माना जाता है वहां पे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ये विन विन सिचुएशन होती है दोनों के लिए, इतना बड़ा मार्केट, और वो लोग अब भारत की तरफ पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। नॉर्वे में इस बार जो है ये इंडो नॉर्डिक जो समिट स्टार्ट हुई थी उसका ये तीसरा एडिशन होगा। पहली बार स्वीडन में हुई, दूसरी बार डेनमार्क में, और तीसरी बार जो है यहाँ हो रही है। लेकिन ये समिट जो है ऐसे वक्त में है जबकि हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट का वॉर चल रहा है और रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है जिसका इम्पैक्ट उनके ऊपर भी काफी है। तो इसलिए इन सब बातों के ऊपर बड़ी डिस्कशन होगी और खास तौर से किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे नए आयाम को लेकर के, चाहे वो इनोवेशन है टेक्नोलॉजी के रूप में हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रूप में हो, एजुकेशन में हो, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस के बारे में हो, या और कुछ नए दिशाएं अगर दी जाएंगी इसको, तो मैं समझता हूँ रोड मैप जो है स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का उसको और ऊपर ले जाया जाएगा।
1: जी, आपने लगभग सभी आयामों पर शुरुआती रोशनी तो डाली। अब कुछ क्षेत्रों पर हम बारीकी से बात करें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं कि भारत में नॉर्वे की राजदूत मे एलन स्टेनर ने प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बारे में क्या कहा है।
2: नॉर्वे और भारत के बीच में संबंध बहुत अच्छे हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी जी नॉर्वे में स्वागत है।
1: अनिल जी, जैसे आपने पहले उल्लेख किया था व्यापार समझौते की बात है, तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो FTA है, ये दोनों पक्षों के भविष्य के आर्थिक संबंधों को आकार देने में अब आगे और कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
0: देखिए, जैसा आपको मालूम है कि लगभग 18 सालों से हमारा इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर में डिस्कशन चल रहा था और मार्केट एक्सेस के कुछ बिंदुओं को लेकर के वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था, लेकिन चूंकि इस वर्ष में हुआ है तो एक बड़ी अचीवमेंट मैं कहूंगा इस बारे में, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक हमारा, अगर हम सबको एक साथ ट्रेड में रखें तो बायलैटरल तो है ही है, वहां पर बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हमारे, लेकिन अगर कलेक्टिवली देखें तो हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो जाता है ऑलमोस्ट। और टेक्नोलॉजी के रूप में भी हमारे जो भारतीय वहां पर काम करते हैं इतने सारे, और उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी कंपनीज हैं यहाँ पर, तो अब यह है कि सबको थोड़ा कहीं ना कहीं आजकल मार्केट चाहिए और मार्केट के साथ साथ टेक्नोलॉजी की बड़ी आवश्यकता है। तो भारत ने जो ये उनके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, और ये एग्रीमेंट में दोनों साइड्स को फायदा होगा लेकिन भारत की कंपनियों को काफी बड़ा फायदा होगा जैसा पता लग रहा है। दूसरी तरफ से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फ्री मूवमेंट मोबिलिटी का चांसेस है क्योंकि हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं भारत से बहुत ज्यादा होते हैं, खाली गुड्स एंड का ही एक्सपोर्ट नहीं होता है, तो उनको हमें एक बड़ा मार्केट जो है जिसको कहते हैं कॉमन मार्केट, उसमें पूरी एक्सेस मिल जाएगी हमारी कंपनीज को। लेकिन ये बात सच है कि यूरोपियन यूनियन का जो ढांचा है और उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो आसान नहीं है, लेकिन अब चूंकि एक तरह से आपको एक एडवांटेज मिल गया है मार्केट एंट्री के लिए, तो मैं समझता हूं कि ये हमारी भारतीय कंपनियों के लिए काफी अच्छा होगा। देखना पड़ेगा 1-2 साल में कितना लाभ इससे होता है और कितनी हमारी मार्केट एक्सेस बढ़ी है, लेकिन जो अभी तक के इंडिकेशंस हैं, ये दुनिया की जो समस्याएं हैं उस सब के बावजूद भी मैं समझता हूँ वो काफी आशाजनक है।
1: जी, और अंत में संक्षेप में जानना चाहेंगे कि रणनीतिक हितों की दृष्टि से क्या इसके दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं।
0: देखिए, इसमें काफी सारे जो देश हैं जैसे फ्रांस है, यूके है, इटली है, जर्मनी है, यूरोप के खास देश और नॉर्डिक कंट्रीज जिसके स्वीडन नॉर्वे जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वो लोग भी डिफेंस और सिक्योरिटी में, शिपिंग के अंदर, ग्रीन कॉरिडोर्स के अंदर में, ग्रीन शिपिंग के अंदर और ग्रीन टेक्नोलॉजीज में, फाइनेंस में, एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में, रिन्यूएबल्स के लिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें ये सारे आयाम आ जाते हैं। खाली मिलिट्री सिक्योरिटी नहीं आती है, आजकल साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, तो इन सब में ये

नमस्कार और स्वागत है प्रोग्राम सांझ ढले में। और ये वक्त है शाम का, जो एक ऐसा समय है जो अगर आप सोचें समझें ना तो कुछ कहता है हमें। कहता यह है कि दिन की थकान को पीछे छोड़िए और एक सुकून और नई ऊर्जा को आने दीजिए अपने पास। ठीक वैसे ही जैसे सूरज अपनी रोशनी को धीरे धीरे एक क्षितिज पर छोड़ देता है, वैसे ही हमें भी दिन की कठिनाइयों को धीरे धीरे पुला देना चाहिए जब शाम आ जाती है। तो शाम हमें यह सिखाती है कि चाहे दिन कितना भी संघर्ष भरा क्यों ना हो, उम्मीद जगाए रखना बहुत जरूरी है। शाम का समय होता है अपने भीतर की शांति को महसूस करने का, अपने सपनों और लक्ष्यों के बारे में सोचने का और अपने हौसले को फिर से जगाने का। इसीलिए बैठिए, गहरी सांस लीजिए और शाम की ठंडक में खुद को तरोताजा कीजिए। याद रखिए, हर रात के बाद एक नया सूरज उगता है, नई सुबह आती है, हर संघर्ष के बाद हमें नई ताकत मिलती है। तो शाम की इस सीख को जो लोग अपनाते हैं वो हर दिन नए दिन का स्वागत पूरी ऊर्जा और विश्वास के साथ करते हैं। हम भी पूरी ऊर्जा और विश्वास के साथ शुरू करते हैं ये सफर सांझ ढले का। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सांझ ढले लिए साथ हूं मैं नुपुर और पहुंचा रही हूं आप तक उदित नारायण जी की आवाज में ये गीत फिल्म अनमोल से, जो कुछ वही कह रहा है जो अभी मैंने कहा, पैगाम दे रही है ये शाम ढलते ढलते।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आशा ताई का प्यारा सा स्वर फिल्म शौकीन से गीत आपने सुना, जिसने वाकई रिचार्ज कर दिया, क्योंकि ये शाम का जो समय होता है ना, ये वैसे भी रिफ्लेक्शन, रिचार्ज और रिकनेक्ट का बेस्ट कॉम्बो होता है। शाम दिन और रात के बीच का वो समय है जब आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्टिव कर

0: रखते हैं, रिलैक्सेशन, फन, क्रिएटिविटी, फिटनेस, इन सबको भी मिक्स कर सकते हैं आप. कैसे भाई? एक प्याली चाय या कॉफी के साथ आप स्टडी कर सकते हैं या कोई फेवरेट बुक पढ़ सकते हैं, मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, दिन की थकान को दूर कीजिए, बहुत प्यार से शांति से आराम से बैठकर सनसेट वॉचिंग कीजिए, सॉफ्ट म्यूजिक सुनिए, खासकर शाम के मूड के हिसाब से बहुत अच्छे प्यारे प्यारे से आप गीत सुन सकते हैं और आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल अपने वॉकमैन पर अपने मोबाइल में आप ट्यून इन करके रख सकते हैं और सुन सकते हैं हमारे साथ साथ, इंजॉय कर सकते हैं प्यारे प्यारे से गाने, इवनिंग वॉक, जॉगिंग, साइकिलिंग, थोड़ी हल्की सी एक्सरसाइज, योगा, फ्रेंड्स या फैमिली के साथ चिट चैट, गॉसिप, स्ट्रीट फूड खाना, मार्केट में घूमना, राइटिंग, स्केचिंग, पेंटिंग, कुकिंग, बेकिंग, रात के डिनर की तैयारी करना, अगले दिन की प्लानिंग करना, टू डू लिस्ट बनाना, ईमेल्स को चेक कर लीजिए, कोई ऑनलाइन कोर्स, ट्यूटोरियल या क्रिएटिव स्किल सीखने की शुरुआत कर दीजिए, नेचर को ऑब्जर्व कीजिए और थोड़ी और रात हो जाए तो फिर आप स्टार गेजिंग प्लान कर सकते हैं, अपने प्लांट्स या गार्डन की देखभाल कर सकते हैं. कितना कुछ है करने को शाम के वक्त, मगर सच तो यह है कि शाम का सबसे बेहतरीन काम वो होता है जो दिन की थकान को दूर करे, मन को एक सुकून दे और फिर कल के लिए हमें रेडी कर दे, रिचार्ज कर दे. तो चुनिए वो काम जो आपको रिलैक्स करता है और लीजिए शाम का आनंद. फिलहाल हम और आप मिलकर आनंद लेते हैं इस गीत का जो कह रहा है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो यहाँ पर किसने जाना.
1: जिंदगी

किशोरदा के निराले अंदाज में फिल्म मंदा से गीत आपने सुना। सांझले की आखिरी पेशकश अब से कुछ ही पलों बाद सुनेंगे। प्रादेशिक समाचार सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: दी, ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
2: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: आई नो ना।
4: आरबीआई कहता है,
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
5: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
6: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
6: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
7: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
8: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। दिल्ली सरकार महिला स्टार्टअप्स और स्व सहायता समूहों को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने जनकपुरी क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की। मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली मेट्रो 6 अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार महिला स्टार्टअप्स और स्व सहायता समूहों को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। श्रीमती गुप्ता ने यह घोषणा उत्तर पश्चिम दिल्ली रोहिणी वेस्ट स्थित यूनिटी वन मॉल के पास आयोजित 2 दिवसीय मेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप मेला के उद्घाटन समारोह के दौरान कही।
9: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के दृष्टिकोण को देश के सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए यह मेला महिलाओं द्वारा तैयार स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन देने और उन्हें बाजार से जोड़ने का सशक्त प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार चाहती है कि राजधानी की प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़े और अपना उत्पाद तैयार करे तथा उसे बाजार तक पहुंचाए। उन्होंने कहा कि सरकार बैंकों के माध्यम से महिलाओं को आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी प्रयास कर रही है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस मेले में विभिन्न बैंकों को भी शामिल किया गया है, जिससे स्वयं सहायता समूह की बैंकिंग और वित्तीय पहुंच मजबूत हो सके। इस मेगा मेला में लगभग 24 स्वयं सहायता समूह ने भाग लिया। मेले में हस्तशिल्प, खादी, घरेलू उत्पाद, खाद्य सामग्री और अन्य हस्त निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी और बिक्री की गयी। साथ ही उत्तर पश्चिम जिले के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हस्तशिल्प को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
8: शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज जनकपुरी के ब्लॉक ए में लगभग 30 लाख रुपए और असलादपुर में जनकपुरी में लगभग 71 लाख की लागत के कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी को अधिक विकसित और सुविधायुक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
10: इन विकास कार्यों में जनकपुरी के ब्लॉक ए में विभिन्न सड़कों और बैंक लेन निर्माण कार्य शामिल हैं। वहीं असालतपुर जनकपुरी में सड़क, नाली निर्माण, पार्क सौंदर्यकरण और बाउंड्री वॉल जैसे महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि बेहतर जुड़ाव, स्वच्छता और मजबूत बुनियादी ढांचे के माध्यम से क्षेत्रवासियों के जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में लगातार कार्य जारी है। इसके अलावा शहरी विकास मंत्री ने चंद्रनगर और नारंग कॉलोनी में भी विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इनमें बेहतर सड़कें, सुगम आवागमन और पार्कों का सौंदर्यकरण शामिल है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह की।

0: वोट के साथ अक्षित कुमार।
1: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली सरकार आगामी सप्ताह से दिल्ली में राशन कार्ड बनाने का कार्य शुरू करने जा रही है। श्री सचदेवा ने कहा कि इस पहल के माध्यम से दिल्ली की भाजपा सरकार 2025 का अपना एक और चुनाव संकल्प पूरा करेगी। उन्होंने कहा है कि 8 वर्ष से अधिक समय के बाद राजधानी में लगभग 2 लाख नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। साथ ही राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन भरे जाएंगे। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहब सिंह ने आज घिटोरनी गांव में नवनिर्मित तरला मोहल्ला चौपाल और वाल्मीकि बस्ती चौपाल का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह चौपाल सामाजिक समरसता, जनसुविधाओं और स्थानीय नागरिकों के संवाद का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली के गांव, देहात और हर वर्ग के विकास के संकल्प को भाजपा सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है। इस अवसर पर सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, विधायक करतार सिंह तंवर, निगम पार्षद सहित अनेक कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रूपये की बढ़ोतरी की है। इस वृद्धि के बाद दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रूपये, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रूपये और गुरुग्राम में 85.12 रूपये हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रूपये की वृद्धि की थी। सरकार ने कहा है कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं के परिणामों पर आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता व्यक्त की है। सचिव ने बताया कि सीबीएसई ने इस वर्ष ऐसी प्रणाली लागू की है जिससे मूल्यांकन में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। सचिव ने कहा कि सीबीएसई ने पुनर्मूल्यांकन शुल्क कम कर दिया है। उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय परीक्षण गृह एनटीएच की उत्तरी क्षेत्र इकाई में अत्याधुनिक जूता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रयोगशाला से एमएसएमई, निर्माता, निर्यातक, उपभोक्ता और नियामक संस्थाओं को भरोसेमंद और उच्च गुणवत्ता वाली फुटवेयर परीक्षण सेवाएं मिल सकेंगी। मंत्रालय के अनुसार ये सुविधा तेजी से बढ़ रहे फुटवेयर क्षेत्र के लिए देश की गुणवत्ता जांच व्यवस्था को मजबूत करेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 6 अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार इन ट्रेन का संचालन कल से प्रत्येक सोमवार को किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि अन्य दिनों भी जरूरत पड़ने पर आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त ट्रेन चलाई जाएंगी। दिल्ली मेट्रो ने यह भी कहा है कि यह फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। साथ ही इस क्षमता का विस्तार का उद्देश्य बढ़ती यात्री संख्या के दौरान निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करना और यात्रियों का सुचारू प्रबंधन करना है। रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। आज सुबह करीब 5:15 बजे कोटा रेल मंडल के नागदा के पास त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 डिब्बों में आग लग गई, जिनमें एक गार्ड का डिब्बा और एक AC 3 टायर डिब्बा शामिल था। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। दोनों डिब्बों को तुरंत अलग किया गया और घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ है। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: राजधानी में 12 से 15 अगस्त तक भारतीय व्यापार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कल भारतीय व्यापार महोत्सव की वेबसाइट का शुभारंभ करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
0: ये भारतीय व्यापार महोत्सव के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करने और भारतीय व्यापार को घरेलू तथा वैश्विक अवसरों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस महोत्सव को इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसके माध्यम से देश को वैश्विक व्यापार, संसाधनों, विनिर्माण और उद्यमिता का प्रमुख केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से भी निहित है, जिसके अंतर्गत देश भर के व्यापारियों, उद्यमियों, एमएसएमई, नवाचार कारीगरों तथा स्वदेशी उद्योगों को सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं आकर्षिता सिंह।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले पहले नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। सुझाव इस महीने की 29 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कनाडा की नागरिकता दिलाने की एवज में लगभग 1,80,00,000 रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक अप्रवासन सलाहकार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने एक महिला से कनाडा की नागरिकता दिलाने का झूठा वायदा कर यह रकम हड़पी थी। पुलिस ने आरोपी के पास से एक लैपटॉप बरामद किया है, जिसमें महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत, वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड, प्रवास से संबंधित दस्तावेज, सोशल मीडिया चैट और मामले से संबंधित अन्य जानकारी होने की आशंका है। वहीं एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस के बाहरी जिला की एक विशेष इकाई ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लगभग 8 किलोग्राम का मादक पदार्थ बरामद किया है। मामले की जांच जारी है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 58 रन बना लिए हैं। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद दिल्ली के लिए यह मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले आज एक अन्य मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। और राजधानी में आज भी गर्मी का प्रकोप जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल मौसम साफ रहेगा। हालांकि कल का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार महिला स्टार्टअप्स और स्व सहायता समूहों को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने जनकपुरी क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत वाले कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की। मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली मेट्रो 6 अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये देख कैसे?
4: हैप्पी बर्थडे भाई।
3: देखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर
4: हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना।
6: आरबीआई कहता है,
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
8: ओह लवली, वेल डन।

0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
0: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
1: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
0: आप कौन?
2: आरबीआई कहता है
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभर प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा होगी। दोनों यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। नीदरलैंड्स की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और नीदरलैंड्स की मित्रता आने वाले समय में और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रोब येटन के साथ प्रसिद्ध अपस्लाउटाइक बांध का भी दौरा किया। ये यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंबात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने इस महीने की 14 तारीख को वी डी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। श्री जोशी ने बताया, देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
1: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
2: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगी। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन द्वारा किया गया ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सरगेई सोब्यानिन ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हो गए। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 75 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi arrived in Gothenburg, Sweden this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. Swedish Gripen fighter jets escorted Prime Minister Modi's aircraft as it entered the country's airspace. Upon arrival at Gothenburg Airport, Prime Minister Modi was accorded a warm welcome and was personally received by his Swedish counterpart Ulf Kristersson. During his two-day visit to Sweden, Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart and review the entire gamut of bilateral relations. The two sides are also expected to explore new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. The two prime ministers will also jointly address the European Roundtable for Industry, a leading pan-European business forum, along with President of the European Commission, Ursula von der Leyen. Before departing for Gothenburg, Dutch Prime Minister Rob Jetten personally came to Amsterdam Airport to bid farewell to Prime Minister Modi. The new Keralam government, led by Congress leader V.D. Satheesan, will be sworn in tomorrow in Thiruvananthapuram. 20 other ministers will also be sworn in along with the chief minister. Congress had announced Satheesan as the next chief minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today inaugurated and laid the foundation stone for development works worth over 700 crore rupees in Gandhinagar, Gujarat. Mr. Shah, who is on a two-day visit to the state, launched projects worth over 600 crore rupees for Gandhinagar Municipal Corporation. He also inaugurated a newly built milk processing plant of Madhur Dairy in the city, built at a cost of around 128 crore rupees. Earlier in the day, Mr. Shah inaugurated the Innovation and Incubation Centre at the National Institute of Design in Gandhinagar. Union Minister of New and Renewable Energy Prahlad Joshi said India has now successfully managed a record peak power demand of 256.4 gigawatt in a single day. In a conversation with a private English news daily, Mr. Joshi said nearly 33% of the power demand met through renewable energy sources. He said India's power infrastructure has become stronger, more resilient and future ready. Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw today virtually flagged off a new express train service between Bengaluru and Mumbai, boosting rail connectivity between Karnataka and Maharashtra. Speaking on the occasion, Mr. Vaishnaw said the long-pending demands of people in South and North Karnataka are now being fulfilled. He also announced that the Vande Bharat sleeper service between Bengaluru and Mumbai is expected to begin soon. In Russia, four persons were killed, including an Indian worker, in the largest Ukrainian drone attack on Moscow and nearby regions in more than a year. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said at least 12 people were injured in the overnight strikes, while Russian authorities claimed that 81 drones targeting Moscow were intercepted. Ukrainian President Volodymyr Zelensky confirmed the drone strikes, calling it entirely justified. Meanwhile, Embassy of India and Russia, in a statement on social media, said an Indian worker was killed and three others were injured in a drone strike that hit Moscow region. In the United Arab Emirates, a drone strike triggered a fire outside the Barakah nuclear power plant in Abu Dhabi today. According to the Abu Dhabi Media Office, the blaze broke out in an external electrical generator located outside the plant's perimeter. Authorities said there were no injuries and no impact on radio.

नमस्कार और स्वरों की इस मधुर संध्या में आपका हार्दिक स्वागत। मधुरिमा एक ऐसा संगीत सफर है जहां हर राग एक भाव है और हर भाव एक कहानी। भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग केवल स्वरों का क्रम नहीं होते, राग समय, प्रकृति और मनः स्थिति के सूक्ष्म संवाद सरीखे होते हैं। कभी भोर की ताजगी, कभी सांझ की उदासी, तो कभी रात की गहन शांति रागों के माध्यम से हमारे मन के भीतर उतर आती है। आज के मधुरिमा के इस अंक में हम रागों की उस दुनिया में प्रवेश करेंगे जहां स्वर बोलते हैं और ताल बन जाती है हृदय की धड़कन। तो आइए दिन भर के शोरगुल से कुछ पल दूर स्वरों की इस मधुरिमा में हम और आप मिलकर अपने मन को विश्राम दें, क्योंकि अब संगीत बोलेगा और हम सिर्फ सुनेंगे, महसूस करेंगे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुरिमा, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम लिए आज की शाम साथ हूं मैं नूपुर, और हमारा साथ देगा आज राग गारा। ना बहुत गम ना बहुत खुशी, बस दिल की एक मीठी सी रवानी, कुछ ठहरी यादों की सरगोशी, कुछ अनकही मोहब्बत की कहानी। ऐसी है कुछ राग गारा की कहानी। हर सुर में जैसे रेशम बोले, हर तान में ख्वाब सफर जाए, जब राग गारा दिल को छू ले तो मानो सूने लम्हे भी महक जाए। सुनते हैं फिल्म काइट से मोहम्मद रफी साहब का स्वर, और इस गीत के लिए संगीत को रचा गया राग गारा ताल दादरा को आधार बनाकर बनाया SG बर्मन साहब ने, और गीतकार शैलेंद्र थे।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल, प्रोग्राम मधुरिमा, साथ मैं नूपुर। सांझ के आंचल में जब स्वर चुपके से उतरते हैं तब राग गारा दिल को गहरे तक छू जाता है। कोमल धैवत की थरथराहट में बिच्छू की आह छुपी है और हर सुर में मानो एक अधूरी कहानी सिमटी हुई है। ये राग यानी राग गारा किसी ठहरी हुई प्रतीक्षा जैसा है, जहाँ शब्द मौन है और भाव स्वयं ही गीत गाते हैं। गारा ना रोता है ना हंसता है, बस स्मृतियों की धूप में धीरे धीरे डूबता जाता है। राग गारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक भाव प्रदान और कोमल राग है, एक मधुर और रोमांटिक राग है। अपने भीतर विरह, करुणा और सौम्यता का गहरा भाव समेटे हुए होता है। और ये राग जो है, ये इसका प्रयोग जो है विशेष रूप से ठुमरी, दात्रा और भावपूर्ण बंदिशों में किया जाता है। बहुत कुछ है बताने को राग गारा के बारे में और बहुत पसंद किया जाता है इसे फिल्मी गीतों में भी और गीतों का संगीत बनाने में भी। इसकी पहचान इसके नाजुक, रोमांटिक और लोक सुगंध वाले भाव से होती है। आमतौर पर इसे खमाज थाट से संबंधित माना जाता है, लेकिन इसकी प्रकृति जो है वो मिश्र है, यानी कि इसमें अलग अलग स्वरों का और अलग अलग आप कह सकते हैं कि रागों का प्रयोग मिलता है, जिसमें हम नाम ले सकते हैं कभी खमाज, पीलू और कभी कभी काफी की झलक इस राग में हमें महसूस होती है। इसीलिए इसे मिश्र रंग वाला राग कहते हैं और इसकी असली पहचान इसके चलन और भाव से बनती है। और इसके जो प्रकृति है वो मैंने आपको बताया, श्रृंगार रस लिए है, नजाकत और चंचलता लिए है, हल्की विरह भावना है, इसमें पुरानी यादों की भरपूर मिठास है। 60 के दशक का एक गीत पहुंच रहा है आप तक फिल्म मुलजिम से मोहम्मद रफी साहब के स्वर में, और गीत भी कुछ ऐसा ही नाजुक सा भाव हम तक पहुंचा रहा है। दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए।

राग गारा की जाति अक्सर संपूर्ण संपूर्ण मानी जाती है, लेकिन व्यवहार में बहुत लचीला राग है। और इसकी सबसे विशेष बात है कि इसमें दोनों कंधार और दोनों निषाद, इन दोनों का ही प्रयोग सुनने को मिल जाता है, जो इसे एक नाजुक रंगीन और चंचल व्यक्तित्व प्रदान करता है। वादी संवादी पर मतभेद हैं, अलग अलग घरानों में भिन्न भिन्न मान्यताएं मिलती हैं। कोई संगीतक के गंधार और निषाद को महत्वपूर्ण मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं। राग गारा को गाने का समय आमतौर पर रात्रि का दूसरा प्रहर, मतलब लगभग देर शाम से रात उपयुक्त माना जाता है। हालांकि उपशास्त्रीय संगीत में समय का बंधन जो है वो इतना सख्त नहीं होता, इस राग को हम कभी भी गा और बजा सकते हैं। ये राग उपलब्धि की खुशी और संतुष्टि की भावना को व्यक्त करता है। और इसके साथ साथ ना मजे की बात यह है कि ये राग ना खोने के दुख को भी दर्शाता है, तो ये जीवंत और रोमांटिक राग कहलाता है। इस राग का उपयोग ठुमरियों और पुरानी फिल्मी गीतों में हुआ है, विशेषकर वहां जहां बहुत सॉफ्ट रोमांटिक, शराफत, नफासत ये सब दर्शानी हो, वहां पर राग गारा को संगीतकार लेकर आते हैं। ऐसा ही एक गीत आप तक पहुंचा रही हूं जिसमें राग गारा का बहुत ही खूब इस्तेमाल किया गया। फिल्म है लाल पत्थर, आवाज रफी साहब की एक बार फिर, और गीत बहुत ही प्यारा सा, उनके ख्याल आए तो आते चले गए। और गीत के बाद आप सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, क्योंकि 8:30 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ विजय लोकपल्ली। विजय, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स जोड़ी ने थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में रजत पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। भारत ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 1 रजत और 9 कांस्य पदक के साथ अपने अभियान का समापन किया और देश के विभिन्न शहरों में संडे ऑन साइकिल का 74वां संस्करण आयोजित किया गया। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने रजत पदक अपने नाम किया। फाइनल में इस भारतीय जोड़ी को इंडोनेशिया के लियो रॉली कॉर्नेडो और डैनियल मार्थिन से 12-21, 23-25 से हार का सामना करना पड़ा। एक रिपोर्ट।
2: भारत की शीर्ष पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को थाईलैंड ओपन में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। आज खेले गए फाइनल मुकाबले में शुरुआती गेम में सात्विक और चिराग लय हासिल करने के लिए जूझते दिखाई दिए और इंडोनेशियाई जोड़ी ने पहले गेम को 21-12 से अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी ने दूसरे गेम में जोरदार वापसी की और गेम को आखिर तक खींचा, जहां लगातार 5 चैंपियनशिप पॉइंट बचाने के बाद वे आखिरकार 23-25 से हार गए। इससे पहले सात्विक चिराग ने सेमीफाइनल में मलेशिया के गुह सेफेई और नूर इजुद्दीन को हराकर 2026 सीजन के अपने पहले फाइनल में जगह बनाई थी। सात्विक और चिराग तीसरी बार थाईलैंड ओपन के खिताबी मुकाबले में पहुंचे थे। इससे पहले वे साल 2019 और 2024 में इस खिताब पर कब्जा जमा चुके हैं। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: शायद उतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी खिताब जीतने पे होती, लेकिन कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पे एक शानदार टूर्नामेंट और एक शानदार प्रदर्शन भारतीय स्पेयर की तरफ से।
1: शक्ति, ये तो जीतना चाहिए था। दो कारण, एक तो फॉर्म में थे और टॉप सीडेड हैं, सो बस का मतलब कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी उम्मीद थी ये जो है ये जोड़ी जीतेगी और उनकी तैयारी भी अच्छी थी। हालांकि टॉमस कप में ब्रॉन्ज मिला, बट फिर भी इस वक्त मैं कहूँगा कि एक अच्छी बैडमिंटन खेल रहे हैं दोनों। पर हाँ, आप इस जो क्रूशियल मुकाबला था उसमें पीछे रह गए।
0: जी, पीछे रह गए, क्योंकि हमने इस जोड़ी के साथ देखा पिछला वर्ष भी जिस तरह का रहा, एक फाइनल था खाली, लेकिन इंजरीज ने एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे एक रोल अदा किया है, क्योंकि चिराग शेट्टी या साईराज में से कोई भी एक खिलाड़ी जब इंजर्ड होता है तो फिर पेयर बिगड़ता है और वो टीम का बैलेंस कहीं ना कहीं जाता है। तो कह सकते हैं कि इंजरी जो पिछले साल हुई इन खिलाड़ियों के साथ लगातार, जिसने साथ नहीं छोड़ा, वो कहीं ना कहीं अभी भी लय तलाशने में दिक्कत कर रही है।
1: हाँ, पर वापसी तो हो ही गई थी। टॉमस कप में परफॉर्मेंस अच्छा था, तालमेल भी अच्छा था, पर ये आपने बात सही कही कि जब आप इंजरी से वापस आते हैं तो आपके मन में एक वो डर रहता है कि फिर से इंजर्ड ना हो जाऊं, क्योंकि उस लेवल पे इंजर्ड होना और इंजरी से वापस आना बहुत कठिन होता है।
0: जी बिल्कुल, और ये तो डबल्स की बात रही। अगर हम सिंगल्स की बात करें इसी प्रतियोगिता में, पीवी सिंधु शुरुआत में बहुत अच्छी लय में नजर आई, एक अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन एक अच्छे एंड में कन्वर्ट नहीं कर पाई, चाहे वो लक्ष्य सेन हो सेमीफाइनल तक पहुंचना और फिर बाहर होना। सिंगल्स में वो किताबों का सूखा काफी हद तक नजर आता है, क्योंकि एक दौर आया बीच में भारत में जहां भारतीय खिलाड़ी लगातार पार्टिसिपेट करते थे और टाइटल्स लेकर के आ रहे थे, लेकिन अब टाइटल्स के नंबर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और पूल तो बड़ा है लेकिन वो मेडल्स में कन्वर्ट होता नहीं दिख रहा है।
1: जी हाँ, डबल्स में आप देखिए ना, 2024 में जीते थे जी। यही जोड़ी, और आपने ये बात सही कही, सिंधु तो बहुत निराश कर रही हैं। उनको अपने गेम के बारे में डिसाइड करना पड़ेगा कितना और खेलना चाहेंगी वो, क्योंकि बार बार हारना मतलब उनके रेपुटेशन के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि भारतीय महिलाओं में अगर आप देखें, नेहवाल और सिंधु, इन्होंने इंडियन बैडमिंटन को एकदम कहां से कहां पहुंचाया है। फिर जब वो शुरुआत में हार जाती है पहले दौर में दूसरे दौर में, तो बहुत खराब लगता है। और लक्ष्य सेन तो खिलाड़ी हैं इसमें जो जो पिछले मान लीजिए 10 साल में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी उभर के आए हैं। ऑल इंग्लैंड जीतना चाहिए था,

0: ओलंपिक में चूक गए, पर वो यंग है अभी, उनके साथ उम्र है, सो आप उम्मीद रख सकते हैं इस सीजन में अपनी लय पालेंगे।
1: जी बिल्कुल, हमने सीनियर्स खिलाड़ी की बात की, अब कुछ बात नए उभरते खिलाड़ियों की भी हो, जहां भारत की श्रेयांशी वल्लीशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता है। इस सुपर हैंडेड प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेम में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। तो एक अच्छा टूर्नामेंट, सुपर हैंडेड टूर्नामेंट है बहरहाल, लेकिन इस युवा खिलाड़ी के लिए काफी कुछ देके जाएगा, यहां से
0: सीखा होगा बहुत, क्योंकि आप ये एक समझ लीजिए शक्ति कि वर्ल्ड बैडमिंटन में चाइनीज हमेशा स्ट्रांग होते हैं, चाहे किसी भी लेवल पे हो, जूनियर हो, सीनियर हो, सिंगल हो, डबल्स हो, और यहाँ पे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नो डाउट।
1: जी बिल्कुल, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और एक जो नई पौध इंडियन बैडमिंटन की यहाँ पे खड़ी हो रही, जिसमें उन्नति शर्मा है, जिसमें उन्नति हुड्डा, तन्वी शर्मा, ऐसे उन्हीं सूची में अपना नाम दर्ज कराती हुई श्रेयांशी भी। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी।
2: धर्मशाला में आज क्वालिफिकेशंस का औपचारिक मार्ग हासिल करने की उम्मीद लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना पंजाब किंग्स से हुआ। पहले बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलोर ने वेंकटेश अय्यर की 40 गेंदों पर नाबाद 73 रन और विराट कोहली के 37 गेंद पर 58 रन की बदौलत 4 विकेट खोकर 222 रन का विशाल स्कोर बनाया। हरप्रीत बरार ने पंजाब के लिए सर्वाधिक 2 विकेट लिए। 223 रन का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने 19 रन के स्कोर पर 3 विकेट खो दिए। इसके बाद भी विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। टीम के लिए शशांक सिंह ने 27 गेंदों में 56 रन बनाए, जबकि मार्कस स्टोनिस और कूपर कॉनली ने 37-37 रन का योगदान दिया। लेकिन ये पारी पंजाब को विजय लक्ष्य तक पहुंचाने में नाकाम रही। आरसीबी के लिए रसिक डार ने 3 और भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेट अपने नाम किए। ये पंजाब की सीजन में लगातार 6ठी हार है, जबकि आरसीबी ने 13 मैचों में 9 जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है और औपचारिक तौर पर प्लेऑफ का टिकट कटा लिया है। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 13वें ओवर में 2 विकेट पर 145 रन बना लिए हैं। दिल्ली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था, लेकिन अधिक बात की जाए पहले मुकाबले पे, ये जो प्लेऑफ की 4 सीटें हैं, इस पे एक सीट पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बैठ गई है, अब 3 के लिए दावेदारी है,
0: जिसमें मुझे लगता है हैदराबाद और गुजरात को आप गिन सकते हैं, मतलब रेस में तो है ही हैं, और राजस्थान को भी जीतने पड़ेंगे दोनों मैच। लेकिन आप शक्ति, आप सोचिए कि पंजाब इतनी बेहतरीन शुरुआत और एकदम जो है जो डिक्लाइन आया है कि आप 6 मैच हारते हैं लगातार उस लेवल पे, जब आपके फैंस आपसे उम्मीद रख रहे हैं और टीम की कॉम्बिनेशन भी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, आपके पास एक बहुत अच्छा कप्तान है, पर कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ये 6 मैच लगातार आप हारते गए?
1: जी बिल्कुल, और जिस तरह की शुरुआत हुई थी, पंजाब सीजन में फेवरेट्स मानी जा रही थी, अपने 6 मैच खेले, एक बारिश के कारण धुला, लेकिन 5 में आपकी जीत और अब 6 हार, कहीं ना कहीं टीम के प्रदर्शन पे अब सवाल उठने खड़े हो गए हैं। और धीरे धीरे, जब तक आपकी 5 हार थी आप टॉप 4 में थे, लेकिन आज आपने वो टॉप 4 का स्थान भी गंवा दिया है। आज के अभी के मुकाबले की बात की जाए, दिल्ली कैपिटल्स डू और डाई मैच है, नो डाउट। राजस्थान रॉयल्स शुरुआत से एक ऐसी टीम रही है जो सितारों को नहीं लेती है, सितारे बनाती है, एक टीम से बढ़कर एक एकेडमी है, और युवा खिलाड़ी जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये टीम उस रेस में कितनी करीब और कितनी दूर पाई जाती है जो प्लेऑफ के लिए जारी है?
0: प्लेऑफ के लिए तो रेस में तो है राजस्थान, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे हमने कहा कि अगर वो जीत जाती है अपने मैचेस तो टॉप 2 में आ जाएगी, उम्मीद रख सकते हैं। और फिर वही बात, उनके पास बैटिंग, बड़ी एक्सप्लोसिव बैटिंग है राजस्थान के पास, सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी है जो अपने दम पे निकाल देता है मैच, और कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर है टीम का, सो मैं समझता हूँ ये बहुत ही क्रिटिकल मैच होगा दिल्ली के साथ।
1: जी बिल्कुल, और दिल्ली भी उम्मीद करेगी कि इतना जल्दी अपने सफर को समाप्त ना होने दिया जाए और इस मुकाबले में जीत दर्ज कर अपनी संभावनाओं को आगे के लिए जिंदा रखा जाए। अहमदाबाद के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत ने 1 रजत और 9 कांस्य पदक के साथ अपने अभियान का समापन किया। एक रिपोर्ट।
2: प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत के लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में पांचवा स्थान हासिल किया। उन्होंने कुल 386 किलोग्राम का भार उठाया।

0: इसे स्नैच में 174 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 212 किलोग्राम का भार शामिल था। चैंपियनशिप में भारत के लिए पदकों की शुरुआत कोमल कोहर ने महिला वर्ग के 48 किलोग्राम के क्लीन एंड जर्क और कुल भार में 2 कांस्य पदक जीतकर की थी। इसके बाद ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम में स्नैच में रजत और कुल भार में कांस्य पदक अपने नाम किया था। हरजिंदर कौर ने महिलाओं के 69 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया था, जबकि कल संजना ने 77 किलोग्राम भार वर्ग में स्नैच, क्लीन एंड जर्क और कुल भार में 3 कांस्य पदक जीते थे। पुरुष वर्ग में अजीत नारायण भारत के लिए पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी रहे। उन्होंने पुरुषों के 71 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क और कुल भार में 2 कांस्य पदक जीते। जया भारती, स्पोर्ट्स कैन।
1: एक बहुत लंबे इंतजार के बाद गुजरात को भारत को मेजबानी मिली थी, क्या इससे प्रदर्शन कुछ और बेहतर हो सकता था? बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है भारतीय खिलाड़ियों का, 10 पदक हमारी झोली में आए। मीराबाई चानू नहीं थी इस दल का हिस्सा, इतनी बड़ी खिलाड़ी, लेकिन उसके बाद भी क्या, क्योंकि होम कंडीशंस थी, चीजें काफी हद तक आपके लिए पक्ष में थी, कई बड़े देश कंपटीशन से बाहर थे, क्या और बेहतर की उम्मीद थी?
2: आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि ईरान जो सुपर हाउस पावर हाउस माना जाता है वेटलिफ्टिंग का, उनकी 2 ही एंट्री थी जिन कारणों से मालूम है आपको वॉर सिचुएशन पर। भारत ने 10 मेडल जीत के अच्छा ही किया है, कम से कम आप आगे देख सकते हैं गर्व के साथ। और अजीत ने तो मतलब बहुत समय के बाद 2011 के बाद भारत को एक जो है मेडल दिलाया है। और मैं समझता हूँ लवप्रीत का जो 5वां स्थान है वो आप अगर फील्ड देखेंगे जो उनका ग्रुप था उसमें बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय है। और मैं ये आगे के लिए आपकी अच्छी तैयारी है जो जिससे उम्मीद की जा रही थी। आप देखिए मीराबाई नहीं थी, शुरू में एक बड़ा एक झटका लगा था भारत को, पर जो उम्मीद थी बाकियों से वो उस पर पूरे खरे उतरे।
1: जी बिल्कुल, उम्मीदों पे खरे उतरे। और एक सकारात्मक संदेश इस दिशा में भी देखा जा सकता है कि काफी युवा खिलाड़ियों जैसे कोमल का जिक्र किया जाए, बेहद कम उम्र की खिलाड़ी हैं, मीराबाई की जगह पर आई और एक पदक लेकर के जा रही हैं, 2 पदक, और कई नेशनल रिकॉर्ड्स हमने टूटते हुए देखे हैं या इस प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से। तो कह सकते हैं कि आने वाले जो भी टूर्नामेंट्स हैं उसके लिए एक बेहतर उम्मीद जगी है इस आयोजन से।
2: बिल्कुल जगी है। और देखिए ये सब ओवरनाइट नहीं है, तैयारी हो रही है, जाके बहुत इनकी ट्रेनिंग होती है, बाहर भी जाके कैंप करते हैं, भारत में इतनी मेहनत करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा संकेत है और आप उम्मीद रख सकते हैं इन खिलाड़ियों से।
1: जी बिल्कुल, उम्मीद होगी आने वाले बड़े आयोजनों में जहां पे खिलाड़ी कुछ और पदकों के साथ देश का नाम रोशन करते हुए नजर आएंगे। देशभर में फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आज फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल के 74वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश के विभिन्न शहरों में लोगों ने साइकिल चलाकर फिटनेस और पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। दिल्ली में जीएसटी और कस्टम विभाग के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। जीएसटी के अतिरिक्त निदेशक और फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आपको जहां भी जब भी मौका मिले साइकिल जरूर चलाएं।
3: हम लोग हर संडे से ऑर्गेनाइज करते हैं। साइकिल आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जहां हमें न केवल फिटनेस पे ध्यान देना है बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि हमें ईंधन भी बचाना है, तो साइकिल न केवल हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी है बल्कि देश की इकोनॉमी के लिए भी अच्छी है। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, साइकिलिंग जरूर करें।
1: तो नए नए आयाम खुलते हुए नजर आ रहे हैं साइकिल से कि पर्यावरण, इकोनॉमी और फिटनेस एक साथ कई सारे निशानों पे तीर साधती हुई है साइकिल।
2: जी हाँ, और शक्ति मुझे तो याद आता है समय कि जब बहुत साइकिलें देखने को मिलती थी सड़क पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं था लेकिन लोग साइकिल करते थे। जैसे अभी हमने सुना फिटनेस के लिए जरूरी है, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी है, तो एक अच्छी आदत है और ये तो बहुत लोकप्रिय हो गया है। जो संडे साइकिलिंग है पूरे भारत में बहुत ही लोकप्रिय है ये।
1: जी बिल्कुल, और संडे की सुबह सुबह शहर की सड़कों पे लोग अपनी नींद और बिस्तर को छोड़ के साइकिल लेके उतरते हैं और अच्छे संदेश के साथ अपनी सेहत के लिए भी कुछ बेहतर करते हुए नजर आते हैं। अब बात करते हैं स्क्वाश की, जहां तीसरी नेशनल डबल स्क्वाश चैंपियनशिप में विलवन सेंथिल कुमार और जोशना चिनप्पा ने दोहरी जीत हासिल की। उन्होंने अपने अपने जोड़ीदारों के साथ कल पुरुष और महिला डबल्स के खिताब जीतने के बाद एक साथ मिक्स्ड डबल्स का खिताब भी अपने नाम किया टॉप सीड वाली जोड़ी ने। अभय और सेंथिल कुमार ने लगातार तीसरी बार मेंस डबल्स का खिताब अपने नाम किया, जबकि सेंथिल कुमार और जोशना ने मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीता और जोशना राधिका ने महिलाओं के महिला डबल्स का खिताब अपने नाम किया। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी तमाम खबरों के साथ। विजय, आप स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर आपने हमसे बातचीत की।

0: फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: धन्यवाद।
0: और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक, जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
2: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
5: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700

0: करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इन्क्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
1: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब एनआईडी की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
2: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
3: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है।

इस रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वलीशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।

0: ये है मेरा कूपे। जूडिस का प्रोग्राम अचानक बदल गया, मैं उसका टिकट वापस करने जा रहा था। आपको आपत्ति न हो तो?
1: मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके साथ तो 10 दिन तक साधना केंद्र में रही हूँ। एक अजनबी आदमी के साथ सफर करना मुझे बुरा नहीं लगता।
0: कूपे में भी?
1: क्यों, कूपे में क्या है? 2 बर्थ है, उन पर कोई भी 2 यात्री सफर कर सकते हैं। 2 स्त्री 2 पुरुष या 1 स्त्री 1 पुरुष।
0: जी हाँ, 1 स्त्री और 1 पुरुष 2 ही होंगे इस कूपे में। अच्छा सफर कटेगा।
1: हाँ, नींद अच्छी आएगी या शायद बिल्कुल नहीं आएगी।
0: आप में जीवट है, लेकिन 10 दिनों तक तो आप
1: वहाँ सबको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए था जैसा मैंने किया। साधना करने आए थे हम लोग।
2: अच्छा, मैम साहब आ गई, आप तो कह रहे थे।
0: सुनो कंडक्टर, 2 कप कॉफी मिलेगी? लेकिन रुको, सांत्वना जी, अब तो डाइनिंग कार में चलने का वक्त हो गया है।
1: मैं नहीं जाऊंगी, रात को मैं नहीं खाती। कंडक्टर, मेरे लिए केवल 1 कॉफी।
2: जी हाँ मैम साहब, कॉफी आ जाएगी।
0: मैं तो डाइनिंग कार में जाऊंगा। 10 दिन तक मन और तन दोनों ही भूखे रहे। ना ना, अब मन को नहीं मार सकता।
1: तुमने मारा ही कहा है, मारने का ढोंग किया। अच्छा जाओ, मैं ध्यान करने के बाद कुछ देर काम करूंगी।
0: ओके, लौट कर बातें होंगी।
1: ओके।
2: मैम साहब, ये रही कॉफी, कुछ और चाहिए?
1: नहीं शुक्रिया। अब जरा एकांत मिला। सोने से पहले अपनी डायरी लिख लो। गुरुजी दूसरे महात्माओं से कितने भिन्न हैं। वो न प्रभाव डालने के हथकंडे जानते हैं, न दूसरों पर छा जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने एक सहज सत्य का आविष्कार कर लिया है, क्योंकि उनमें एक मोहिनी शक्ति पैदा हो गई है। वही शक्ति देश विदेश के नाना प्रकार से त्रस्त व्यक्तियों को अपने पास खींच लेती है। अज्ञात शांति की खोज में भटकते ये व्यक्ति कैसे सहज विश्वास से अपने जीवन की कहानी खोल कर रख देते हैं इनके सामने। वो जूडिथ जिसकी नीली आंखों में गहरे आकाश की झलक है, जिस सहज भाव से खिलखिलाती है, उसी सहज भाव से अपने मन की सारी परतें खोल कर रख देती है। उस दिन वो अपनी प्यारी प्यारी सी बच्ची के लिए मेरे पास से गुजरी तो मैंने मुस्कुराकर कहा, हेलो जूडी, कितनी प्यारी है तुम्हारी बच्ची, कल बहुत देर तक मुझसे बातें करती रही।
3: ये जिसके पास जाती है उसी की हो जाती है, मेरी तरह। अब गुरुजी के पास सोने की जिद कर रही।
1: अच्छा,
3: मानती ही नहीं, इसीलिए इसके पिता के पास ले जा रही हूँ।
1: क्या तुम्हारे पति भी यहाँ आए हुए हैं?
3: मेरी शादी नहीं हुई है।
1: क्या?
3: लेकिन इसके पिता बहुत सुंदर हैं, ऊपर की मंजिल में ही तो ठहरे हैं। उनसे ही इस लंबी यात्रा में मैंने ये सुंदर बच्ची प्राप्त की है।
1: आप कितने दिन से घूम रही हैं?
3: कई वर्ष हो गए।
1: आपके बहुत मित्र हैं?
3: स्वाभाविक है, अनेक देशों के अनेक युवकों के संपर्क में आई हूँ। उनको समझा परखा है, प्यार दिया है, पाया है।
1: बुरा तो नहीं मानोगी, तुम ग्रास, डोप, चरस, LSD आदि का सेवन करती हो?
3: करती हूँ, उनसे मुझे आनंद मिलता है, उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकती। वो अनुभव करने की वस्तु है, जैसे जैसे स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, प्रतिभा मुक्त हो जाती है।
1: तो फिर वो क्या है जो तुम्हें खाए जा रहा है? क्या है जो तुम्हारे जैसे युवक युवतियों को दर दर भटकने के लिए विवश करता है? साधुओं, महात्माओं, योगियों के पास तुम क्या पाना चाहते हो?
3: बहुत दिनों तक ये सब करते करते मैंने अनुभव किया है कि नशे में जो आनंद मिलता है वो जैसे मैकेनिकल, जैसे उद्धार का आनंद है। एक महात्मा है जो दैहिक सेक्स के द्वारा समाधि की ओर ले जाने का दावा करते हैं, लेकिन मैं बिना किसी की सहायता से अपने ही अंतर में से स्वर्ग जाने का मार्ग खोल लेना चाहती हूँ। सुना था भारत के योगी इस मार्ग को जानते हैं, इसलिए भटकती हूँ।
1: जितने लोगों से मैंने बात की है वो सभी इन अनुभवों से गुजर चुके थे। सेक्स, नशा, सब कुछ उनके लिए सहज है। फिर भी वो भटक

ये आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा नाटक कूपे।

0: कितनी सच्ची है उनकी ये भटकन। कुछ है जो परिवार के शासन से परेशान है, कुछ को आज के शोषण की राजनीति त्रस्त करती है। वो उद्योगीकरण से प्राप्त ऐश्वर्य और विलास से ऊब चुके हैं। ये यांत्रिक और कृत्रिम जीवन उनको खोखला कर रहा है और वो उस आनंद की तलाश में है जो उन्हें शांति के स्वर्ग द्वार के भीतर पहुंच जाने की शक्ति दे। आती हूँ।
1: बाहर भी वर्षा होकर चुकी है, मौसम कितना सुहावना कितना प्यारा है।
2: अरे आप एक लिखे जा रही हैं? कैंप के अपने अनुभव लिख रही हैं शायद, देख सकता हूँ?
0: ये मेरी डायरी है।
2: तब नहीं देखूंगा, डायरी चोरी करके पढ़ने की चीज है।
0: बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हैं।
2: समझदारी की बातें तो अब आरंभ होंगी।
1: खिड़की खोल दूं, वर्षा से भीगी हवा आने दो।
2: मैं आपके पास बैठ सकता हूँ?
0: सब काम पूछकर ही करते हैं आप।
2: थैंक यू। मेरे पास स्कॉच है, 10 दिन से इसे छुआ ही नहीं। आप पीती हैं?
0: पीती तो नहीं, पर प्रतिज्ञा भी नहीं की।
2: तो मेरा साथ दीजिए, थकान भी तो उतारनी है।
0: मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ।
2: प्लीज साथ देने के लिए एक पैक।
0: जी नहीं, आप ऊपर जाकर पीजिए।
2: और अगर मैं यहीं बैठकर पीऊं तो?
0: पीजिए।
2: बुरा मान गई। प्लीज, बात यह है कि मैं साथी के बिना रह ही नहीं सकता। बहुत घूमा हूँ हिप्पियों के साथ, जिप्सियों के साथ। कितनी मुक्त और सहज है ये विदेशी युवतियां, बड़े मजे के साथ कह सकती हैं लॉट्स ऑफ बॉयफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ सेक्स। मैं भी कह सकता हूँ लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ।
0: मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ।
2: नहीं है तो हो जाएंगी। मुझे किसी के साथ एकाकार होते देर नहीं होती। दुई का भाव मुझे सुहाता ही नहीं। एक ओंकार, एक सत्ता, एक चेतना।
0: काफी गहरे उतर चुके हैं आप।
2: गणित विज्ञान और आध्यात्म की तरह नशे सेक्स और योग की मंजिल एक ही है, ब्रह्मानंद सरोवर में डुबकी लगाना। प्लीज, मैंने कहा ना अकेले पीते अच्छा नहीं लगता। छोटा पैक लीजिए मेरे लिए, इस सुहावने मौसम के लिए।
0: मिस्टर सिंह, आप ऊपर नहीं जाना चाहते तो मैं जाती हूँ।
2: आप ऊपर कैसे जाएंगे?
0: जी हाँ, वो अधिकार तो जैसे आपका ही है, आप पुरुष है ना। मैं कहती हूँ ऊपर जाइए।
2: ना, ना, ना, ना, ना, ना, नाराज ना होइए। अच्छा मैं अब और नहीं पीऊंगा, आपके साथ बातें करूंगा। आप डाइनिंग कार में नहीं गई, वहां डिक था, वही जूडिथ के बच्चे का बाप। आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, आना चाह रहा था, लेकिन जब उसे पता लगा कि हम कूपे में हैं तो मुस्कुराकर लौट गया। अरे अब फिर नाराज हो रही हैं? प्लीज।
0: मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, जरा थोड़ा पीछे हटिए ना, मैं लेटना चाहती हूँ, फिर अपना भाषण जारी रख सकते हैं आप। आप तो जूडिथ के साथ बहुत रहे हैं।
2: बहुत से देशों में साथ साथ घूमा हूँ। We have made love many times. लेकिन वहां गुरुजी का आदेश था 10 दिन तक कुछ नहीं होना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण मौन। फिर दिख भी तो यही था, लेकिन उसे जरा भी ईर्ष्या नहीं हुई। जूडिथ को पूरी स्वतंत्रता है, वो किसी के साथ रहे।
0: इसलिए शायद वो तुम्हारे साथ आकर भी लौट गई।
2: उसके लौट जाने से मुझे दुख हुआ था, लेकिन तुम मिल गई तो मुझसे भी आकर्षक हो, सबसे आकर्षक। तुम्हारी मांसल देह, तुम्हारी चमकती आंखें, तुम्हारे लंबे सुनहरी बाल।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। 10 बज चुके हैं।
2: प्लीज अभी कुछ देर और बैठूंगा।
0: बैठे रहो।
2: तुम्हारी डायरी पढ़ सकता हूँ?
0: नहीं।
2: तुम्हें छू सकता हूँ?
0: नहीं।
2: मेरी प्रेम कहानियां सुनोगे?
0: नहीं।
2: क्यों?
0: क्योंकि सब एक जैसी होती हैं। वैसे ही जैसे तुम सब पुरुषों का व्यक्तित्व एक जैसा होता है। सोने का समय हो गया, जाओ सो जाओ और स्वप्न देखो।
2: मेरा मन तो तुमसे बातें करने को करता है।
0: बातें मुंह से की जाती हैं, हाथों से नहीं।
2: सांत्वना, सांत्वना, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ सांत्वना।
0: मुझसे प्रेम करने वालों में एक और का इजाफा हुआ। लेकिन सरजीत, तुम सचमुच प्रेम करते होते तो जतलाते नहीं। प्रेम निर्लज्ज नहीं होता।
2: यानी नैतिक होता है। शरीर को बचाने के मुंह में तुम अच्छे तर्क कर लेती हो।
0: शरीर को बचाने का मुंह मुझे कभी नहीं रहा, परंतु वो मन से जुड़ा हुआ है। प्रेम का अर्थ केवल तन का मिलन नहीं है। जिन जूडिथ, मार्था और लिजा के लिए तन का मिलन सहज रहा है, वो भी मन के मिलने के लिए भटकती फिर रही है। न जाने कितनी गांठें पड़ी हैं उनके मन में। माँ बाप से विद्रोह, समाज से विद्रोह, अपने से विद्रोह, व्यवस्था को तोड़ने के लिए वो ड्रग का सेवन करती हैं। स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने
2: वही वही वही तो आनंद का मार्ग है। तुमने कभी अनुभव किया है उसे, उस आनंद को? मेरे पास है, पियोगी?
0: सरजीत, तुम सीमा को लांघते जा रहे हो, अब चले जाओ।
2: और न जाऊं तो? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज प्लीज सांत्वना, प्लीज।
0: नहीं नहीं, पीछे हटो, हटो पीछे।
2: मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगा। किसी स्त्री ने मुझे आज तक पीछे नहीं हटाया।
0: लेकिन मैं हटा दूंगी। मर्द है तो उसे औरत चाहिए।
2: प्लीज
0: मत तेज पूंछ है, औरत उसके तेज को छेड़ने वाली है।
2: देखो,
0: ये दलीलें अब बासी हो
2: चुकी हैं।
0: तुम्हारे लिए नारी केवल एक वेश्या है।
2: अब मैं नहीं,
0: मैं कहती हूँ शिक्षा लौटकर चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं।
2: नहीं,
0: जाते हो या नहीं?
2: सांत्वना,
0: कौन है, क्यों आए हैं इस समय?
3: क्षमा कीजिए, आप ठीक तो हैं?
0: बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही बीमार नजर आते हैं जो दूसरों के कंपार्टमेंट में झांकते फिरते हैं। कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो जाइए यहाँ से।
3: माफी चाहता हूँ, बराबर के कंपार्टमेंट में हूँ, लगा जैसे आपके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन यहाँ तो आपके पति का अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं देता।
0: तो फिर जाइए अपने कंपार्टमेंट में।
3: देखिए, मुझे नींद कम आती है, आप लोग शोर मचाएंगे तो बेवश होकर मुझे।
0: क्या मतलब है आपका?
3: आप सब समझती हैं, इस डिब्बे में केवल आप दोनों ही नहीं हैं, आप जैसे जोड़े बहुत देखे हैं। इस उम्र में इतना आवेश नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ मुझे फिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडक्टर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग आराम से सो सके।
4: सचमुच मैम साहब, मैं तो डर गया था, कभी कभी फालतू आदमी भी चढ़ाते हैं।
0: मेहरबानी करके आप लोग चले जाइए। मैं माफी चाहती हूँ।
3: ठीक है, मैं जाता हूँ, गुड नाइट।
4: दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए, कोई बात हो तो मैं पास ही में हूँ।
2: मुझे बहुत दुख है दरअसल।
0: चुप रहो, ऊपर जाकर अपनी सीट पर बैठो।

0: सरजीत का इसमें कोई दोष नहीं है। उसका संबंध जूडेथ, मार्था और लिजा जैसी नारियों से रहा है, जिनके लिए देह है, सब कुछ है। लेकिन फिर विद्रोहियों का बाना पहने इधर उधर क्यों भटक रही है? अंतर में कहीं न कहीं खोज की वो चाह है जो इन्हें स्थूल आनंद से ऊपर उठाती है। मैंने मार्था से पूछा था, मार्था बुरा तो न मानोगी, एक बात पूछूं?
1: खुशी से पूछो।
0: तुम माँ बनने वाली हो ना?
1: हाँ।
0: इसके पिता कौन है?
1: मेरे लिए जानना जरूरी नहीं है, मैं भी पुरुष की तरह प्यासी हूँ, मुझे भी तृप्ति चाहिए। पुरुष कोई भी हो, वो सर्वजीत भी हो सकता है, शायद वही है। लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो?
0: मैं जानना चाहती हूँ कि मुक्त साहचर्य और देह भोग के साथ सच्चे सुख की तलाश कैसे चल सकती है।
1: मुझे तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता। शरीर के अस्वीकार की बात तुम लोगों में ही है, हम लोगों में समर्पण की प्यास है। समर्पित होकर हम पूर्णता का अनुभव करते हैं। तुम्हारे लिए प्रेम एक बना बनाया सांचा है, विवाह किया और वो सांचा ओढ़ लिया।
0: नहीं, मैंने भी प्रेम विवाह किया था, उसी का परिणाम है मेरे दो बच्चे, उन्हीं के लिए मैं दूसरी बार विवाह नहीं कर रही।
1: लेकिन इससे क्या तुम्हारी देह की प्यास बुझ गई? इतने सारे वर्ष तुमने इस छद्म को पालने में लगा दिए। मैंने गुरुजी से बहुत बहस की है इस बारे में।
0: क्या उत्तर दिया उन्होंने?
1: देह की प्यास से उन्हें इनकार नहीं है, वो तो चाहते हैं कि साधना के इन 10 दिनों में परहेज किया जाए, उसके बाद जैसा अनुभव हो।
0: इसका अर्थ समझी?
1: समझी। वो कहना चाहते हैं जैसे जैसे साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, देह भोग की प्यास वैसे वैसे शांत होती जाती है। सांत्वना, मैं नहीं जानती क्या होगा, मुझे चिंता नहीं कि वो प्यास शांत होती है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा अवश्य लगता है कि सच्चे सुख के प्राप्त हो जाने पर वो प्यास असंगत हो रहेगी।
0: फिर भी तुम कहती हो कि शरीर के अस्वीकार की बात हम ही लोगों में है।
1: अस्वीकार करने और असंगत हो रहने में अंतर है, क्या नहीं है?
0: कभी सोचा भी न था कि मुक्त देह मिलन के उपासक ये लोग इतनी गहराई में उतर सकते हैं। अस्वीकार करने और असंगत हो रहने का अंतर ही हम भूल चुके हैं, इसलिए अत्यधिक निषेध से परेशान होकर देह मिलन के लिए पागल हुए जा रहे हैं। मैंने भी जब चाहा है देह की प्यास बुझाई।
2: देह की इस प्यास को क्या तुमने अब भी बुझाना नहीं चाहा था?
0: कौन हो तुम?
2: मैं कौन हूं ये पूछने का साहस है तुमने? अपने अंतर में झांक कर देखो, वहीं से बोल रही हूं। बार बार दूसरों के अंतर में झांकती हो पर अपने को नहीं खोजती। विधवा हो, संतान के प्यार के आदर्श में बंधी तुम देह की प्यास को छिपाए फिरती हो। लेकिन क्या सर्वजीत के साथ तुम्हारा मुक्त व्यवहार तुम्हारी देह की प्यास के ऊपर ही आधारित नहीं था?
0: अगर ऐसा था तो मुझे रोकने वाला कौन था?
2: तुम्हारा अपना अहम, जबरदस्ती शहीद बनने की लालसा।
0: शब्दों के मायाजाल में फंसने की चेष्टा मत करो, ये ठीक है, छोटी उम्र के अपने दोनों बच्चों को मैं किसी की दया पर छोड़ने को तैयार नहीं थी, पर देह के मिलन को मैं अस्वीकार नहीं करती। शर्त केवल एक ही है कि दूसरों की वासना का शिकार होना मैं नहीं चाहती, वो देह का अपमान है।
2: लेकिन तब तुम साधना केंद्र में क्यों गई थी? क्या वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम भी अशांत हो? तुम्हें देह को बचाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बचाने को विवश भी हो, इसी द्वंद से तुम पीड़ित हो। तीव्र निषेध मन की चाह में से ही पैदा होता है। तुम्हें स्पष्ट कह देना चाहिए था कि सर्वजीत तुम्हारा पति नहीं है, ये मेरा छद्म है, इस छद्म को उतार फेंको।
0: ये छद्म है, छद्म। सुनो, कहां गई तुम? बोलो। कहीं कोई नहीं, ये मैं अपनी ही आवाज सुन रही हूं। सचमुच मुझे सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए था कि सरजीत मेरा पति नहीं है। मैं डर गई। कंडक्टर और सहयात्री मुझे व्यभिचारी नहीं समझते और शायद स्टेपल से उतर जाने को विवश करते, या फिर कैसी है ये भूल भुलैया, कैसे मुक्ति मिलेगी इससे? क्या इसी मुक्ति की खोज में मैं साधना केंद्र में नहीं आई? इतने सहज होकर भी ये लोग भटक रहे हैं, द्वंद में फंसी मैं भी भटक रही हूँ। क्या इस भटकन का अंत देह के मिलन नहीं है? कहाँ है सत्य? कौन सचक इन तर्कों को ठगे हुए है? कैसे मिलेगी इस द्वंद से मुक्ति?
2: छद्म, ये छद्म है, इस छद्म से मुक्ति पाओ। सहज होने में ही मुक्ति है। मुक्ति, मुक्ति।
3: बहुत देर हो गई तुम्हें लिखते हुए, अब सो जाओ। जो कुछ हुआ उसके लिए लज्जित हो।
0: नहीं सरजीत, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं।
3: तुम बहुत अच्छी हो।
0: सच?
3: मैंने प्रतिज्ञा की थी कि सच बोलूंगा, केवल सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ न बोलूंगा।
0: अच्छा, अब सो रही हूँ। गुड नाइट।
3: गुड नाइट।

0: मम्मा मम्मा तुम आज बहुत देर से आई हो। कॉलेज तो कभी का बंद हो चुका था।
1: हाँ, कमल अंकल के घर चली गई थी।
0: इतनी रात तक क्या वहाँ कोई उत्सव था? हमें क्यों नहीं ले गए?
1: कुछ ऐसी बात थी बेटे, गंभीर बातें करनी थी ना, हड़ताल होने वाली है।
0: बहुत देर हो गई थी इसलिए मुझे डर भी लगा। भैया ने वहाँ फोन भी किया था लेकिन हर बार अंगेज मिला, शायद खराब था।
1: हाँ शायद, असल में हम बहुत जरूरी बातें कर रहे थे, शायद तुम्हारे अंकल ने रिसीवर उतार कर रख दिया था।
0: हाँ, यही जवाब हमें भी मिला था, हमने कंप्लेंट की थी। खाना खाओगे मामा?
1: मैं तो खाई बेटा, लगता है तुम लोगों ने अभी तक नहीं खाया। बड़े दुष्ट हो तुम, मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। बुलाओ अपने भैया को।
2: पढ़ने का नाटक कर रहा है लेकिन सुन रहा है हमारी बातें। इधर आओ बाबा।
1: माँ को जरा भी मुक्ति नहीं दोगे? मुक्ति तो मैं ही उन्हें नहीं दे पा रही, मैंने ही तो उन्हें अपने ऊपर निर्भर कर लिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बड़े हो गए हैं, सब कुछ समझते हैं, मुझे उनसे सब कुछ कह देना चाहिए, कहीं उनके किशोर मन में काट ना पड़ जाए। स्वयं मैं भी तो नहीं झेल पाती इस सर्वग्रासी एकांत को। क्या मैंने ही जानबूझकर इसे अपने ऊपर नहीं लाद लिया है? क्या इसे मुक्ति पालूं? क्या वो मुक्ति होगी?
3: सांत्वना? सांत्वना, तुम सो गई?
1: तुम्हारा स्पर्श पाकर मुझे नींद आ ही जाती है।
3: सांत्वना, हम ये लुका छिपी का खेल बंद कर देना चाहिए।
1: हाँ, कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे लिए तो फिर कोई और मार्ग नहीं रह जाएगा।
3: तुम शादी कर लो।
1: शादी नहीं कर सकती विनोद, जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती।
3: धोखा तुम आप दे रही हो।
1: मैं धोखा नहीं दे रही, अपनी इच्छा से जो चाहती हूँ करती हूँ।
3: इच्छा मेरी भी तो हो सकती है, जैसे तुम चाहती हो कि तुम किसी का शिकार न बनो, वैसे ही क्या मैं नहीं चाह सकता कि मैं तुम्हारा शिकार न बनू?
1: शिकार? तुम क्या कह रहे हो विनोद?
4: सांत्वना, क्या है सांत्वना, किसे पुकार रही हो?
1: कुछ नहीं, सपना देख रही थी।
4: या अपने प्रेमियों की याद कर रही थी? विनोद, कमल।
1: तुम्हें ईर्ष्या होती है?
4: स्वाभाविक है, सारी रात यहाँ ऊपर के बर्थ पर लेटा लेटा।
1: तुम सब पुरुष एक जैसे होते हो। उनके एक मित्र थे, एक बार उनके साथ भी इसी तरह कूपे में सफर किया था। सारा समय तुम्हारी तरह न जाने क्या क्या बकते रहे, अपनी प्रेम कहानियां सुनाते रहे। बेचारे परवर्टेड।
4: अगर मैं यूरोपियन होता तो इस समय तुमसे पूछता, क्या उस रात उसके साथ तुमने प्रेम किया था?
1: आप नहीं पूछोगे?
4: बेकार है, हिंदुस्तानी प्रेम करना ही नहीं जानता।
1: ताने मत दो, मैं न तब समर्पित हुई थी और न अब हो सकूंगी।
4: जी में आता है कि नीचे उतर कर तुम्हारे शरीर को झंझोर डालू और
1: फिर रुक क्यों गए?
4: जागने की राह देखता रहा, अब नहीं मानूंगा।
1: तुमने और उस पुलिस इंस्पेक्टर में अंतर ही क्या है जिसने सवेरे सवेरे दूध लेने जाती हुई एक औरत के साथ बलात्कार किया?
4: तर्कों की ये ढाल तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगी।
1: जब दो शरीर सैकड़ों मीलों की मानसिक दूरी के साथ मिलते हैं तो उस अर्थहीन मिलन में न सौंदर्य होता है न सत्य, वो न तन को बांध पाता है न मन को। इसी को कहते हैं अपवित्र होना।
4: पवित्र अपवित्र की मुझे चिंता नहीं, चिंता तुम्हारी है। सारी रात तुम अपने से लड़ती रही हो, तुम्हारा यही छद मैं उतार फेंकना चाहता हूँ। सांत्वना, प्लीज।
1: इसे हटा, मैं कैसे हूँ एक कदम भी आगे न बढ़। कौन आया अब? कौन हो तुम? क्या चाहते हो?
5: मैं सरजीत से मिलना चाहता हूँ। हेलो सरजीत। तुम्हारा नाम देखा तो आश्चर्य हुआ, विलायत से कब आए, कैसे हो? और मार्था? ओह, ये मार्था तो नहीं है?
1: मेरा नाम सांत्वना है।
5: ओ, देखता हूँ तुमने शादी कर ली है सरबजीत भाई, बधाई हो।
4: निगम, इनसे मिलो, यह है श्रीमती सांत्वना थापर। मैंने अभी तक शादी नहीं की है। तुम कहो कहाँ कहाँ रहे, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो।
5: हाँ, वो तो है, पर तुम हो भाग्यशाली, अभी तक तो विदेशी नारियों की चर्चा ही तुम्हारे पत्रों में रहती थी, अब भारतीय नारी भी आ गई। बधाई दूंगा, चुनाव एक्सीलेंट है, वाह। माफ कीजिएगा मिसेस थापर, हम बहुत गहरे दोस्त हैं। यहाँ बैठ सकता हूँ ना सर जी?
1: ये कूपे है मिस्टर निगम, और अभी रात बीती नहीं है।
5: आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि कूपे में तीसरे के लिए स्थान नहीं होता।
1: मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी, तब आप आ सकते हैं। अब आप
5: जा रहा हूँ, खेद है मैंने आपके एकांत में खलल डाला। पर सरजीत एक बात याद रखो, ये भारत है, यहाँ शोर नहीं मचाना चाहिए, वो बाहर वाले को भी खींच लेता है।
1: दरवाजा खुला रहने दो।
5: क्यों?
1: मेरी इच्छा।
4: कूपे में एक की इच्छा नहीं चलती।
1: तो आप में भी समझने की शक्ति है। स्टेशन आ रहा है, मैं यहीं उतरूंगी।
4: अभी तो अंधेरा है, बाहर बूंदाबांदी हो रही है, और ये स्टेशन भी बहुत छोटा सा है।
1: बड़ी सुंदर जगह है।
4: सुंदर तो तुम हो, जगह नहीं, ये तो क्रूर है, विछो का स्थान।
1: तुम्हारा ऐसा सोचना भी क्या एक छद्म ही नहीं है? जो तुम्हारी दृष्टि में विछो का स्थान है, वो किसी के लिए मिलन का भी हो सकता है। तुम्हारे साथ फिल्मी डायलॉग के आदान प्रदान से तो यहाँ उतरना हजार गुना अच्छा है। अच्छा, जा रही हूँ, बुरा ना मानना। प्यार का तुम्हारे लिए एक ही अर्थ है, औरत की देह का उपभोग। अच्छा, नमस्कार। क्या सोच रहे हो, जवाब भी नहीं दोगे?
4: नमस्कार। तुम भाग रही हो सांत्वना, कब तक भागती रहोगी?
1: कंडक्टर, मैं यही उतर रही हूँ, जरा बक्सा उतारने में मदद करो।
6: जी अभी आया। लाइए,
4: मैं उतारे देता हूँ, आप उतरिए।
1: ये लीजिए।
5: गई, अब तो मैं आ सकता हूँ, खूब बातें करेंगे दोनों। सामान ले।
4: क्या मेरी दशा उस मछुए जैसी नहीं है, जो एक तूफानी समुद्र में अपना जाल भी खोकर खाली हाथ लौट आया था? लेकिन इसी लेकिन के कारण तो मैं भी साधना केंद्रों की खाक छानता फिर रहा हूँ।

कूपे। अभी आपने श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा यह नाटक सुना। निर्देशक थे श्री दीनानाथ। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री जैमिनी कुमार वीरेंद्र, मंजू मैनी, सरल नांगिया, शर्मिला मलखानी, हरि मेहता, अरुण माथुर, बीएल टंडन, दीपा पांडे और नरेश कुमार सूरी। ये कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथनबर्ग पहुंच गए हैं।

0: स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक समीक्षा की वार्ता की। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसरों पर संभावनाएं तलाशने के लिए भी विचार किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। स्वीडन का रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ 31वां वैश्विक सम्मान है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचातानी और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांग अब पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन की एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिछा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से अधिक मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। रूस में ड्रोन हमलों में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सरगोई सोबियानिन ने बताया कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने ड्रोन हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमलों में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाना तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया में चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा कि यह दावा पूरी तरह फर्जी है। भारत की श्रियांशी वलिशेट्टी ने चीन के बाउजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रियांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेम में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Swedish counterpart, Ulf Kristersson, in Gothenburg. The two sides

0: उनके साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। संयुक्त अरब अमीरात के अल-धाफरा क्षेत्र में बरकाह परमाणु संयंत्र पर ड्रोन हमला, विकिरण रिसाव की कोई खबर नहीं। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। और बैडमिंटन में भारत की श्रेयांसी वलिशेट्टी ने बाओजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावना पर विचार किया। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। स्वीडन का यह सम्मान किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह प्रधानमंत्री मोदी की को प्राप्त हुआ 31वां वैश्विक सम्मान है। अधिक ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री राब येटे ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक, जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाते हुए जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, नवाचार, रक्षा, सतत विकास और गतिशीलता के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करते हुए भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने गर्मजोशी भरे आतिथ्य और व्यक्तिगत रूप से हवाई अड्डे पर आकर उन्हें विदाई देने के लिए प्रधानमंत्री जेतन को धन्यवाद भी दिया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त अरब अमीरात के अल-धाफरा क्षेत्र के बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बाहरी सीमा पर आज एक ड्रोन ने हमला किया, जिससे संयंत्र के एक विद्युत जनरेटर में आग लग गई। अबुधाबी के अधिकारियों ने बताया है कि कोई घायल नहीं हुआ और कोई विकिरण रिसाव नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि घटना के बाद संयंत्र के चार रिएक्टरों में से एक को कुछ समय के लिए चलाया गया। संघीय परमाणु विनियमन प्राधिकरण ने कहा कि सभी आवश्यक प्रणालियां स्थिर रहीं और सभी रिएक्टर इकाइयां सामान्य रूप से काम करती रहीं। यह संयुक्त अरब अमीरात के एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर पहला हमला है। ईरान ने घोषणा की है कि वे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह जलडमरू मध्य विश्व ऊर्जा व्यापार के लिए एक प्रमुख समुद्री मार्ग है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा

0: शरीफ ने कहा कि पहले ईरान ने इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है, जो ईरान के खिलाफ ही प्रयोग किए जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। कल ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा कि ये तंत्र केवल वाणिज्यिक जहाजों और ईरान के साथ सहयोग करने वाले देशों को ही अनुमति देगा। उन्होंने कहा कि अमरीका की कथित स्वतंत्रता परियोजना से जुड़े ऑपरेटर को प्रस्तावित मार्ग प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। दर्पण के लिए समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। सरकार ने सोशल मीडिया के उस पोस्ट को खारिज किया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। इसके अलावा तेल शोधन कारखानों के पास भी भंडारण है। पीआईबी ने नागरिकों को नहीं घबराने की सलाह दी है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। इसे पिछले एक वर्ष के आसपास मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन द्वारा किया गया सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियाने ने बताया कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हो गए, जबकि रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने ड्रोन हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। दूतावास ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय कर सहायता उपलब्ध करा रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 लोगों की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट कोविड-19 जैसे महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेर्पा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेर्पा हैं। भारत की श्रेयांसी वलुशेट्टी ने चीन के बाउजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन ने सीधे गेम में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। संयुक्त अरब अमीरात के अल धाफरा क्षेत्र में बरकाह परमाणु संयंत्र पर ड्रोन हमला, विकिरण रिसाव की कोई खबर नहीं। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। और बैडमिंटन में भारत की श्रेयांसी वलुशेट्टी ने बाउजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 10:31 और 5 सेकंड, और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम सदाबहार गीतों का हर सिंगार। और हर सिंगार के इस दिलकश महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं, यानी आपका अपना अजीज दोस्त फिरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। कैफ भोपाली साहब कहते हैं कि तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है। और बात जब चेहरे की हुई है तो आज की इस महफिल का आगाज भी ऐसे ही बेहद खूबसूरत एक नगमे से करेंगे, और वो नगमा है फिल्म रूठा ना करो से। ये फिल्म आई थी 1967 में। दोस्तों कहते हैं कि जब कोई चेहरा महज चेहरा नहीं होता, वो एक जज्बात बन जाता है, एक ख्वाब, एक तसव्वुर बन जाता है, तो फिर हम सब के जहन में ऐसे ही अल्फाज निकल कर अपनी जबान से निकलते हैं। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो नजरों में बस जाते हैं और फिर दिल से उतरते ही नहीं। आज की इस शाम को एक ऐसे ही चेहरे के नाम करते हैं जो खूबसूरती का तर्जुमा है और मासूमियत का आईना। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं वही नगमा 1969 की फिल्म रूठा ना करो का, वो नगमा जो आपके कानों से होता हुआ सीधे दिल में उतर जाता है, और दिल की बात तो सिर्फ दिल से ही हो सकती है। इस गीत को लिखा है हजरत जयपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है सी रामचंद्र साहब ने। आवाजें हैं मोहम्मद रफी साहब और आशा जी की।
1: दिल में तो सिर्फ प्यार ही प्यार है, चारों तरफ दूर दूर तक। एक दिन वो सारा प्यार एक जगह सिमट कर इकट्ठा हो गया। मैंने पास जाकर गौर से जो देखा तो वो तुम थी।
2: ये तुम बिल्कुल सच कह रहे हो?
1: सच, सिर्फ सच, सच के सिवा कुछ नहीं।
2: तब ठीक है,

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल हर सिंगार सदाबहार नगमों की, वो रोमांटिक महफिल जिसमें आपको हम लेकर चलते हैं एक ऐसे ही दौर में, एक ऐसे ही नगमों की तरफ जो हमेशा आपके दिल के करीब रहे हैं। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 10:40 और 42 सेकेंड। दोस्तों कहते हैं कि वो महकता एहसास जो हर सुबह की तरह दिल को सुकून देता है और हर रात की तरह दिल की गहराइयों को छू जाता है, ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं। वो फूल जो रात के अंधेरे में खिलता है और सुबह होते

जमीन पर बिखर जाता है, कुछ अधूरे ख्वाबों की तरह, कुछ मीठी यादों की तरह। आज के इस हर सिंगार की महकती शाम में चलिए यादों के उस दरीचे को खोलते हैं जहां इश्क मासूम होता था और दिल बस धड़कता था, वो भी बिना किसी खास वजह के। आज के सफर में हम आगे बढ़ेंगे एक और बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ, जिसे सुनकर आज भी दिल वही मासूमियत महसूस करेगा, वो एहसास जो खामोशी में भी बोल उठता है और जिसे अल्फाज की जरूरत नहीं होती। तो चलिए इस जादुई सफर के अगले हिस्से में हम बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत नगमा फिल्म आपकी कसम से। आवाजें हैं किशोर कुमार साहब और लता जी की। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है राहुल देव बर्मन साहब ने।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज़ आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपनी पसंदीदा महफिल हर सिंगार में। सदाबहार गीतों की वो महफिल जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं, बार बार गुनगुनाना चाहते हैं। ये वो सदाबहार नगमे हैं जो हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। उन्हीं नगमों में से हम आपके लिए चुन कर लाते हैं उन खास गीतों को जो आपके दिल के बेहद करीब है। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही नगमे की जो सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि एक एहसास है, एक पुकार है उस दिल की जिसे मोहब्बत ने छू लिया हो। दरअसल साल था 1967 का और स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, वो नाम था देवानंद। साथ थे खूबसूरत वैजंती माला और फिल्म थी जल थिप, और इस फिल्म ने उस दौर के थ्रिलर सिनेमा को एक नई पहचान दी। हालांकि इस फिल्म में और भी कलाकार थे जिसने इस फिल्म को और भी खूबसूरत अपनी अदाकारी से बना दिया। उनमें थे अशोक कुमार साहब, तनुजा, हेलन फरियाल, अंजू महेंद्रू, नाजिर हुसैन, प्रतिमा देवी, सप्रू, जगदीश राज और सचिन वगैरह। यह फिल्म बेहद खूबसूरत फिल्म थी और इसके नगमे भी बहुत ही प्यारे थे, लेकिन इस फिल्म में जिस तरीके से चीजों को दिखाया गया वो शायद बार बार आप नहीं देख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात थी इस फिल्म की कि इसके नगमे बड़े प्यारे थे और वो नगमे ऐसे थे जो सीधे दिल को छू गए। उन्हीं नगमों में से एक नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं। तकरीबन इस फिल्म में 8 नगमे हैं, उनमें से ही एक नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं, दिल पुकारे आ रेया। इस गाने को अपनी आवाज दी लता मंगेशकर जी ने और मोहम्मद रफी साहब ने, जिनकी आवाज मानो सीधे कानों से उतरते हुए

दिल में उतर जाती है। संगीत दिया था एसडी बर्मन साहब ने, जिनका हर सुर जादू की तरह असर करता है, और इस गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने, जो मोहब्बत को अल्फाज देने का हुनर जानते थे। तो आइए उसी नगमे को हम आपको सुनवाते हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हर सिंगार के इस दिलकश महफिल में ये बेहद खूबसूरत नगमा लता जी और रवि साहब की आवाज़ों में आपके लिए।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हर सिंगार की। हर सिंगार की इस बेहद खूबसूरत महफिल में अगला नगमा आपके लिए बेहद खूबसूरत फिल्म गुमनाम से। यह फिल्म आई थी 1965 में। इसमें इस गीत को गाया है लता जी ने।

गुमनाम फिल्म के इस नगमे को गाया था लता मंगेशकर जी ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन साहब ने और इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने। इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत हर सिंगार के इस महफिल से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार और समाचारों के बाद आप सुनेंगे ठीक 11:10 पर खास प्रोग्राम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मन के बात कार्यक्रम का फॉलो अप प्रोग्राम होगा पोस्ट बॉक्स नंबर 111। तो सुनना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग

0: स्वागत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने पांच राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को दो दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल दो दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलीशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. The two sides also explored new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defence, space, climate action and people-to-people ties. Meanwhile, Sweden conferred the Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, upon Prime Minister Modi. Sweden's Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, is the utmost recognition and honour that can be conferred upon a head of government. This is the 31st global honour for Prime Minister Modi. Mr. Modi reached Gothenburg this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands.

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, हम सब जानते ही हैं कि ये कार्यक्रम मन की बात का फॉलो अप प्रोग्राम है, मन की बात का विस्तार है। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में पवन ऊर्जा का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, भारत की बदलती और मजबूत होती स्थिति क्या है और क्या नए बदलाव हो सकते हैं, उसका उल्लेख किया है। आइए, हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वही हिस्सा जिसमें पवन ऊर्जा का उल्लेख है।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आज मैं एक ऐसी शक्ति की बात करना चाहता हूं जो अदृश्य है, लेकिन जिसके बिना हमारा जीवन एक पल भी न चले। यही ताकत भारत को आगे बढ़ा रही है। यह हमारी पवन शक्ति है, हमारे

0: प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, वायुर्वा इति व्यष्टिः, वायुर्वै समष्टिः, अर्थात वायु सिर्फ एक तत्व नहीं है, यह जीवन की ऊर्जा है, यह समष्टि की शक्ति है। साथियों, आज यही पवन शक्ति भारत के विकास की नई कहानी लिख रही है। भारत ने हाल ही में पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब भारत का विंड एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी 56 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। पिछले एक साल में ही करीब 6 गीगावाट नई क्षमता जुड़ी है। विंड एनर्जी में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया भी हमारी तरफ देख रही है। साथियों, आज भारत विंड एनर्जी कैपेसिटी में दुनिया में चौथे स्थान पर है। यह हमारे इंजीनियरों की मेहनत है, यह हमारे युवाओं का परिश्रम है, यह देश की सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। साथियों, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, देश के अनेक राज्य इस सेक्टर में अपना परचम लहरा रहे हैं। गुजरात के कच्छ, पाटन, बनासकांठा जैसे क्षेत्र जहां पहले सिर्फ रेगिस्तान नजर आता था, आज वहां बड़े रिन्यूअल एनर्जी पार्क बन रहे हैं। इसका लाभ युवाओं को मिल रहा है, नए अवसर बन रहे हैं, नई स्किल विकसित हो रही है, रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं। साथियों, भारत के विकास के लिए सौर और पवन ऊर्जा जरूरी है। ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, ये हमारे भविष्य की सुरक्षा है। इसमें हम सब की भूमिका है। हमें बिजली बचानी है, हमें स्वच्छ ऊर्जा क्लीन एनर्जी अपनानी है। देश में हर स्तर पर ऐसे प्रयास जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं से बड़ा बदलाव आता है।
1: तो इन प्रेरक शब्दों के बाद आइए पवन ऊर्जा को थोड़ा और समझते हैं, इस बारे में अपनी जानकारी बढ़ाते हैं। और इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे विशेषज्ञों को। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर प्रबीर कुमार दास, आप वैज्ञानिक हैं, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में, साथ ही आप पवन ऊर्जा विभाग के निदेशक भी हैं। डॉक्टर प्रबीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद, धन्यवाद।
1: और साथ ही हमारे हैं यहाँ पर अतिथि ओम तनेजा जी, आप उद्यमी हैं और आपका अनुभव जो है पवन ऊर्जा क्षेत्र में है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय रूप से आप शामिल रहे हैं और भारतीय पवन टर्बाइन निर्माता संघ से जुड़े रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है ओम जी।
3: धन्यवाद।
1: जब हम पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में होते हैं, जिसमें से कुछ तकनीकी प्रश्न हैं, कुछ व्यवहार से जुड़े हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत के लिए हम यही जानना चाहेंगे कि हवा से तो हम सबका रिश्ता है, लेकिन हम इसे ऊर्जा क्यों कहते हैं, पवन ऊर्जा का सही अर्थ क्या है, और ये मैं जानना चाहती हूँ प्रबीर जी आपसे।
2: ऊर्जा हम उसी को कहते हैं जो हमारे लिए कोई भी काम को सहज कर दे या कोई भी काम को करने में हमारा सहायता करे
1: जी,
2: तो उसमें पवन ऊर्जा एक प्रमुख ऊर्जा है। और इनफैक्ट ये बहुत ही पुराने हैं। अगर हम मानव के इतिहास में देखें कि कौन सा ऊर्जा को हम पहले इस्तेमाल करना सीखे, तो पवन उसमें से अग्रणी है। पुराने जमाने में पहले पवन के माध्यम से हमारा जहाज चला करते थे, पवन के माध्यम से पवन चक्की चलाया करते थे जिसमें उन्होंने ग्राइंडिंग करना शुरू किया। बट अभी मॉडर्न एज में हमने वही पवन को इस्तेमाल करके उससे हम बिजली बनाते हैं, और बिजली ऊर्जा हमारा क्या सहायता करता है ये शायद हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के समय में हर घर में प्रति क्षण हम बिजली का उपयोग करते हैं
1: जी।
2: तो वही बिजली हम पवन से बनाते हैं, तो वही ऊर्जा फिर हमारा प्रति काम में हमें सहायता देती है
1: जी। इसलिए हम पवन की जो शक्ति है उसको पवन ऊर्जा कहते हैं जी। हमने अक्सर वीराने में विशाल पंखे घूमते हुए देखे हैं, और कई बार मन में सवाल आता है कि ये कैसे काम करते हैं, यहाँ एकदम वीराने में सुनसान जगह में इनकी देखरेख कैसे हो रही है, ये यहाँ पर क्यों है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी ओम जी, जो शुरुआत है पवन ऊर्जा की वो कैसे होती है, जिन्हें हम टर्बाइन कहते हैं या विशाल पंखे कहते हैं, ये कैसे काम करते हैं।
3: अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कि ये पवन ऊर्जा कब से कहां से शुरू हुई है। ये असल में 1960 के दशक से ये कुछ हमारे साइंटिस्ट थे CSIR के और नेशनल एरोनॉटिक लेबोरेटरीज के, जिन्होंने शोध करके हमारे यहाँ पवन

0: या कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे उसके ऊपर कार्य किया जाए, उसमें किया था। तो पवन संसाधन जो है उसके लिए हमारी एक साइंटिस्ट थी अन्ना मनी जी, जिन्होंने बहुत कार्य करके और पूरा उसका जो है एक संकलन किया है, और उस संकलन को उन्होंने 5-6 वॉल्यूम्स में डाल के और जो आज के दिन हमारे लिए एक किस्म से बाइबल जिसे कहते हैं वो है। पर उसके बाद उसके ऊपर बहुत काम हुए हैं, वो अलग चीज है, बट एक शुरुआत का जो था वो उनका था। हमारे यहाँ गुजरात में सबसे पहला जो है 1985 में एक पवन ऊर्जा का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, प्रारंभ किया गया, और समय के साथ सरकार ने इसमें कई बदलाव किए। हमारे यहाँ पर एक डिपार्टमेंट बना था जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अंदर था, उसके बाद उसका नाम बदल के हमने एमिनियस किया, और उसके बाद आज के दिन वो MNRE कहलाता है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी उसका नाम है। ये 2006 से इसका नाम ये प्रचलित है। अब भारत में इस नवीनकरणीय ऊर्जा जिसे रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, इसका विकास बहुत तेजी से हुआ है
1: जी।
0: पवन ऊर्जा का जनरली फॉसिल फ्यूल या जिसे बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, जैसे कोल हुआ
1: जी।
0: या और इस तरह के जो उनके साथ मिलते जुलते हैं, इनके आयात और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का एक प्रभावी समाधान माना गया है। पवन ऊर्जा एक स्वच्छ, गैर प्रदूषणकारी और सस्ती ऊर्जा स्रोत है जो ईंधन और परिवहन पर निर्भरता को कम करती है और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी या हरित बिजली उत्पादन को बढ़ावा देती है। इसमें एक खास बात है कि हमें इसके अंदर पानी का उपयोग भी बहुत कम करना पड़ता है। पानी का उपयोग जो है खाली कुछ एक कार्यों के लिए ही किया जाता है, सफाई वगैरह के लिए। अब इसका जो नीतिगत विकास हुआ है वो 1993 में हमारे मंत्रालय ने एक फिक्स टैरिफ बनाया था 2.25 रुपए का, जिसमें प्रति वर्ष 5% वृद्धि का प्रावधान था, और उसके साथ साथ ही एक एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन जो एक ऐसा था कि आप जो भी कमाई करते हैं उसके अंदर जो उनको टैक्स बेनिफिट मिल जाता था वो 80% तक का था उस समय, और उसमें जो है पहले 100% था, फिर उसको 80% कर दिया गया था, और जिसके लिए खुदरा निवेशकों को जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको आकर्षित किया। पवन ऊर्जा जनरेशन के लिए या उसके उत्पादन के लिए हम ये विंड टर्बाइन्स का इस्तेमाल करते हैं
1: जी।
0: जो हमारे उस जगह पर जहां हमें हमारी स्टडी या हमारे एक किस्म से उसका अध्ययन किया जाता है
1: जी।
0: जो ये बताता है कि किस जगह पे हमें हवा का पवन का ज्यादा जोर मिलेगा
1: जी,
0: जिससे हम ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न कर पाए
1: जी।
0: तो हमने एक स्टडी करते हैं, उस स्टडी के हिसाब से जगह ढूंढते हैं कि किस जगह पर हमें इसको लगाना
1: जी।
0: अब आप जब लगाना चाहते हैं तो उसके लिए विंड टर्बाइन्स जो बनाते हैं उनसे संपर्क करते हैं, और उनके हिसाब से कि हमें किस जगह पर कितना जनरेशन मिलेगा इसका अध्ययन पूरा उसका किया जाता है, जिसके लिए एक अच्छी खासी साइंटिफिक स्टडी
1: जी। तो इस बारे में हम और भी जानेंगे। अब ये बताइए कि आप हमारे श्रोताओं को कौन सा गाना सुनवाना चाहते हैं?
0: आई थिंक मेरे हिसाब से हवा के साथ साथ
1: जी, हम पवन ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो बहुत प्यारा सा गाना आपने चुना है, यही गाना हम सुनवा रहे हैं।
2: हवा के साथ साथ,
3: अरे रे रे,
2: घटा के संग संग,
3: संभलना।
2: हवा के साथ

0: तो गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा की और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में, जो बता रहे हैं पवन ऊर्जा कैसे हासिल होती है, इसका महत्व क्या है और बदलते दौर में किस प्रकार से हम अपने काम करने के तरीकों को और भी अच्छा बना रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रबीर कुमार दास, आप वैज्ञानिक हैं, पवन ऊर्जा विभाग के डायरेक्टर भी हैं, और साथ हैं ओम तनेजा जी जो उद्यमी हैं और पवन ऊर्जा क्षेत्र में आप कार्य करते रहे हैं। तो प्रबीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं पवन ऊर्जा की तो हमने अक्सर बड़ी बड़ी टर्बाइन्स को देखा है, मन में सवाल आता है कि वीराने में ये खड़ी हैं, कैसे काम करती हैं, एक पूरा तंत्र क्या है, हम चाहेंगे कि आप हमें इस बारे में बताएं।
1: धन्यवाद नीलिमा जी, इसको मैं समझाने के लिए मैं आपको आपके बचपन की तरफ ले जाना चाहूंगा।
0: जी,
1: शायद आप अपने बचपन में कागज से छोटे छोटे पंखे बना के उसको कहीं पे जहाँ पे हवा चलता है वहाँ पे रखे होंगे तो वो घूमते हुए नजर आए होंगे।
0: जी,
1: इनफैक्ट मैंने अपने बचपन में बरगद के जो पत्ते होते हैं उसको दोनों साइड से एक विशेष भाव से काट के उसके अंदर एक दिन आप उसको
0: तीली लगा के रखिए हैं।
1: तो ये अपने आप घूमने लगता है जब आपका हवा चलता है। तो इसे पीछे का जो विज्ञान है वो ये है, उसको एरोडायनामिक्स बोलते हैं इंग्लिश में।
0: जी,
1: जो आपने अक्सर इवन हवाई जहाज का पंखों में वो देखा होगा वो शेप, तो उसी शेप में ये जो विंड टर्बाइन्स होते हैं उसको हम ब्लेड बोलते हैं, जो पंखा आप बोलते हैं, उन्होंने तीन पंखे होते हैं उसमें, ये तीन ब्लेड उसी संरचना के साथ बनते हैं जो हवाई जहाज के पंखे होते हैं। तो ये कि उसको एक विशेष एरोडायनामिक शेप देता है जिसके वजह से जब हवा चलता है वो ये हवा का जो शक्ति है वो इसको घुमाने लग जाते हैं।
0: जी,
1: और कभी भी बिजली पैदा करने के लिए हमें जो जनरेटर है उसी जनरेटर के अंदर जो स्टार्टर है या रोटर है उसी को घुमाने के लिए आपको शक्ति चाहिए। वो पंखा जब घूमता है तो वही घुमावट का जो शक्ति है वो जनरेटर में जाता है और जनरेटर से बिजली पैदा होता है, फिर वही बिजली को फिर हम ग्रिड से कनेक्ट कर देते हैं। तो फिर वही शक्ति हमारा घर पे बिजली बन के हमारा जो आमतौर के जिंदगी में हमारा डेली लाइफ में हमारे लिए, चाहे आपका लाइट हो, घर का पंखा हो, फ्रिज हो, टीवी हो,
0: जी,
1: वो हर जगह पे काम करता है।
0: जी, तो ये जो पवन चक्कियां हैं अल्टीमेटली ये बिजली आपूर्ति हमारे घरों में कर रही हैं और इसके पीछे जो है एक बहुत बड़ी टीम काम करती है और मंत्रालय जो है इससे जुड़ी हुई नीतियों को देखता है। मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर टर्बाइन्स जो हैं, पवन चक्कियां जो हैं, इसमें प्राइवेट क्षेत्र काम करना चाहे तो किस तरह की सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं, क्या नीतियां हैं?
1: बहुत ही अच्छा सवाल है और इनफैक्ट आज अंदर प्राइवेट सेक्टर ही इसको ड्राइव करता है।
0: जी,
1: शुरुआती दिनों में जैसे तनेजा जी ने भी बताया, हमारा बहुत सारे इंसेंटिव स्कीम जहाँ पे गवर्नमेंट से सहायता दी जाती है वो तकनीकी रूप से हो या आर्थिक सहायता के रूप से हो, तो मंत्रालय के जो शुरुआती दिनों थे, मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, उस समय पहले जब ये टेक्नोलॉजी बहुत ही नया था तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत थी कि ये काम करेगा नहीं करेगा, वेदर इट विल बी ए प्रॉफिटेबल बिजनेस और नॉट, तो उसी समय मंत्रालय उसको आर्थिक सहायता भी देता था। फिर कुछ नीतिगत सहायता मिला, उसको हम जीबीआई कहते हैं, जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव। जैसे आप एक जेनरेटर है तो जितना यूनिट आप ग्रिड को देंगे हर यूनिट के लिए आपको कुछ ना कुछ सहायता मिलेगा, बट ये सब सहायता 2017 के बाद बंद हो चुके हैं क्योंकि तब तक विंड एनर्जी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में उभर चुका था। तो 2017 के बाद आज के डेट पे जो नीति है गवर्नमेंट का उसको हम बिडिंग रेजिम कहते हैं।
0: जी,
1: मतलब इट इज ए मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। जितना हमें बिजली चाहिए होता है मंत्रालय के तरफ से हमारा चार, हम उनको रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कहते हैं, जिसमें हमारा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, एसजेवीएन है, तो वो अपने प्रतिवर्ष बिडिंग लेके आते हैं कि उनको कितना मेगावाट का या कितना गीगावाट का पवन ऊर्जा चाहिए। देन जो प्राइवेट सेक्टर है वो उस बिडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो हमें लो टैरिफ सबसे ऑफर करता है
0: जी
1: वो प्रोजेक्ट उन्हीं को ही मिलता है। तो इसके कारण होता क्या है कि हमें बिजली सस्ते से सस्ते

0: चेन्नई में स्थित है
1: जी।
0: तो इसका जितने भी टेक्निकल काम है या मंत्रालय को जो टेक्निकल सहायता है वो उसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से होता है। और कौन सा क्षेत्र में पवन ऊर्जा का शक्ति ज्यादा है, जो वहाँ पे हमें पवन ऊर्जा या पवन चक्की बिठाने के लिए उपयुक्त है कि नहीं, उसको पता करने के लिए हम उसको बोलते हैं रिसोर्स असेसमेंट, जो कि मिनिमम एक साल का काम होता है। तो वहाँ पे हम मास्ट लगाते हैं, विंड मास्ट, जिसमें बहुत सारे सेंसर्स लगा हुआ होते हैं, जैसे आपका एनीमोमीटर होता है विंड का स्पीड को मेजर करने के लिए, विंड वेन होते हैं जो विंड का डायरेक्शन को मेजर करता है। और जब भी कोई पवन चक्की का प्रोजेक्ट लगता है तो उसमें जो दूसरा एटमोस्फेरिक पैरामीटर से, जैसे कि आपका रेन गेज है, प्रेशर गेज है, क्योंकि एयर का कितना डेंसिटी है वो भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है, तो ये सबका मेजरमेंट होता है एक साल तक
1: जी।
0: फिर उसी बेसिस में हमें पता लगता है कि इस साइट पे अगर हम पवन चक्की लगाते हैं तो हमें कितना उत्पादन होगा बिजली का
1: जी।
0: और उसी हिसाब से प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा कि नहीं होगा। बट ये तो मैंने बहुत ही टेक्निकल रूप से समझाने की कोशिश किया। अगर एक लेमैन लैंग्वेज में भी हम पता कर सकते हैं, जैसे ये कहाँ पे मास लगाएंगे, उससे पहले हम देख के भी बता सकते हैं कि कोई जगह यहाँ पे पवन है या नहीं है।
1: तो यानी जहाँ हवा का बहाव बहुत तेज होता है,
0: तेज होता
1: जहाँ
0: है।
1: हम महसूस कर पाए कि अक्सर यहाँ हवा चलती है और कोई ऊंचा जो है वो कंस्ट्रक्शन नहीं हो, आसपास खुली जगह हो, तो उस हिसाब से हम जगह का चुनाव कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। जैसे मास्क लगाने से पहले हमारे इंजीनियर्स वहाँ पे जब जगह का भ्रमण करते हैं वो इसी चीज को ध्यान में रखते हैं, इवन पेड़ का भी शेप को देखते हैं
1: जी।
0: जहाँ पे कंटिन्यूअस विंड होता है आप वहाँ पे देखेंगे जो पेड़ होते हैं
1: वो
0: एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में झुका हुआ रहता है, तो वो एक प्राइमरी साइन है
1: जी।
0: किसी
1: उससे
0: भी
1: हवा की दिशा पता चलती है कि किस दिशा में प्रवाह ज्यादा होता है, तो फिर वो चक्कियों को उसी दिशा में लगाया जाता है जी। बहुत अच्छे से हमें एक छवि आपने दी है, बचपन से लेकर वैज्ञानिकों तक आप लेकर गए। अब ये बताएं कि कौन सा गाना आप सुनवा रहे हैं।
0: तो हम पवन की बातें करते हैं तो हमारा पवन का उत्पादन सबसे ज्यादा सावन के महीने में ही होता है
1: जी।
0: ये शायद आपके श्रोताओं को जानकर एक अच्छी जानकारी होगी कि पवन हमारा जो चार महीना होता है
1: जी
0: सावन का, उसी समय सबसे तेज चलते हैं और सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन करते हैं।
1: वाह,
0: तो सावन का महीना
1: जी, सावन का महीना।

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में स्वागत है। और अब हम ये समझ गए हैं कि सावन के महीने में पवन करे शोर, तो ये जो शोर है पवन का, ये ऊर्जा उत्पादन के बहुत काम आता है और हमारे विशेषज्ञों ने हमें ये आज बताया है। क्योंकि कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा की, और कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रबीर कुमार दास, आप पवन ऊर्जा विभाग के निदेशक हैं, और साथ ही ओम तनेजा जी हैं जो कि उद्यमी हैं, पवन ऊर्जा क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ से जुड़े रहे हैं। ओम जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि अभी प्रबीर जी ने बताया कि ये आज तो एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस हम मान सकते हैं, लेकिन जब आपने शुरुआत की थी तब आपको क्या प्रेरणा मिली कि आप पवन ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े, और उस वक्त क्या चैलेंजेस आपके सामने थे?
1: उस समय हम लोगों ने ये सोचा कि ग्रीन एनर्जी की तरफ,
0: जी,
1: हरित एनर्जी की तरफ जाना जरूरी है। क्योंकि जिस संस्थान में मैं कार्यरत था वहाँ थर्मल पावर प्लांट जो कोयले से चलते थे, उसके बाद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो पानी से चलते थे, इन पर कार्य हो रहा था। तो हमारे एक निदेशक मंडल ने कहा कि हम लोगों को पवन ऊर्जा या सोलर ऊर्जा पे भी कार्य करना चाहिए।
0: जी।
1: तो उस समय पवन ऊर्जा पे हमने कार्य करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया, उसमें किया, और ये देखा कि पवन ऊर्जा एक समय तक, लगभग जिसे कह सकते हैं कि 5 या 6 वर्ष के अंदर, हमें जो उस समय इसके टैरिफ थे, उस समय चीजें थी, 5 से 6 वर्ष के अंदर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमने किया हुआ है, उसको हम वापस प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी।
1: तो देखिए, कोई भी एक उद्यमी रहता है उसको अपना प्रॉफिट और ये भी देखना होता है। तो ये एक ऐसा उस समय उद्यम था जिसमें हमें लगा कि हम इसके अंदर कार्य करके दो तरह के काम कर रहे हैं। एक तो हम जो है जिस जगह अपना विंडमिल या ये लगा रहे हैं,
0: जी,
1: उस क्षेत्र का विकास बहुत अच्छा होगा, जो हमारा एक किस्म से CSR एक्टिविटीज हो जाती है।
0: जी।
1: उसी के साथ साथ ही हमें जो है और पवन ऊर्जा का जो है लाभ भी मिलेगा, और हम जो है इसको, और इसी विषय पे, इसी के प्रेरणा को साथ में रखते हुए हमने पवन ऊर्जा के अंदर कार्य शुरू किया।
0: जी।
1: और इसके अंदर हम लोगों ने कुछ 60-70 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट लगाए। पावर प्रोजेक्ट लगाने में हमें थोड़ा समय लगा।
0: जी।
1: पर जो मंत्रालय या और जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनकी सहायता से हमने बहुत जल्दी ही इस कार्य को प्राप्त कर लिया। और उस समय हमें जो है विभिन्न सरकारों के, उनका भी अच्छा हमें साथ मिला। मंत्रालय की जो उस समय की योजनाएं थी, जो एक किस्म से हम लोगों को फैसिलिटी थी, बेनिफिट्स थे, उन सब का भी हमें जो है भरपूर उपयोग किया, और हमने पाया कि हम जो है इस चीज के ऊपर अच्छा कार्य कर सकते हैं और कर रहे हैं, और शायद साथ साथ हम देश में जो है अपने प्रदूषण की समस्या का भी एक निदान ढूंढ रहे हैं।
0: जी बिल्कुल। जहां हम अभी कार्बन उत्सर्जन को लगातार कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं, दूसरा जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर कम हो, हम कम से कम आयात करें, ऐसे में हमारे पास जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जिसे अक्षय ऊर्जा हम कहते हैं, ऐसी ऊर्जा जिसका कभी क्षय नहीं होगा, जो कभी खत्म नहीं होगी, उस पर हमारी डिपेंडेंसी रहे, ये लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद जितना हम समझ पा रहे हैं कि पवन ऊर्जा एक ऐसी चीज है जहां लगातार आपकी उपस्थिति की जरूरत नहीं है, कैश फ्लो आप देख सकते हैं, वो मैनेज करना है, ऐसे में अगर कोई नया उद्यमी जुड़ना चाहे तो वो किस तरह से इस क्षेत्र में काम कर सकता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे?
1: जैसा डॉक्टर प्रबीर ने बताया कि आजकल जो है
0: जी
1: बिडिंग का
0: जी
1: एक तरीका अपनाया जा रहा है, जिससे प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, जो उद्यमी हैं, वो उसमें भाग लेते हैं।
0: जी।
1: इससे पहले मैं आपको बताऊं, लगभग 70% तक

0: जो इन्वेस्टमेंट हुई है एक छोटे उद्यमियों की रही है। इवन उसमें कुछ जो है ना इंडिविजुअल भी है, अकेले भी हैं। जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा कि कई कलाकारों ने अपना ये जो है इस क्षेत्र के अंदर अपना
1: इन्वेस्टमेंट
0: किया है। और वो जिसका 25 वर्ष तक जो है उनको फायदा हो रहा है, उनके अपने इनकम टैक्स में फायदा हुआ है जो स्कीम वगैरह थी
1: जी।
0: और इसकी वजह से जो आसपास के क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र या जिन जगह पे लगा, वहाँ भी बहुत ज्यादा अच्छा उत्थान हुआ है। बहुत अच्छी उस जगह का प्रोत्साहन मिला है। वहाँ अच्छे खासे जो है लोगों का, जिसे बोलते हैं नौकरियां या उनका कार्य करने का क्षेत्र बना है
1: जी, उन्हें रोजगार मिलता है।
0: रोजगार
1: इसकी
0: मिलता
1: से।
0: रहा है। पवन ऊर्जा जहाँ कहीं भी लगती है, आपको मैं बताऊं चारों तरफ से मेन रोड से हर एक पवन चक्की के ऊपर चलने का एक रास्ता बनाया जाता है
1: जी।
0: और जो है उस रास्ते में लगभग कई बार वो रास्ता एक एक डेढ़ डेढ़ किलोमीटर का भी हो जाता है। तो रास्ते में कई उनको उद्यम जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनको कुछ ना कुछ काम में मिल जाता है। उसके आसपास का क्षेत्र अच्छा डेवलप हो जाता है, अच्छा उसके अंदर उत्थान हो जाता है
1: जी। हम डिपेंडिंग इंडस्ट्रीज जिन्हें बोलते हैं, जो किसी एक मुख्य काम से जुड़ी रहती हैं परोक्ष रूप से, यानी पवन ऊर्जा की वजह से जहां टर्बाइन्स लगेगी वहां पहुंचने का रास्ता कोई तैयार करेगा, रास्ते में खाने पीने का सामान भी मिलेगा, फिर उस रास्ते पर वाहन भी आए जाएंगे, तो इसकी वजह से, परिवहन व्यवस्था की वजह से कई लोग जो हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, ये आप कह रहे हैं जी। तो बहुत ही अच्छी जानकारी ये है हमारे लिए। मैं अब प्रवीर जी आपसे ये जानना चाहूंगी, पवन ऊर्जा आपने बताया कि पवन चक्कियां चलती हैं और उससे हम बिजली उत्पादन करते हैं, लेकिन क्या इन पवन चक्कियों को कभी पवन की वजह से ही नुकसान होता है? कभी ऐसा होता है कि आंधी तूफान में पवन चक्की अपने स्थान से उखड़ गई या उनके ब्लेड्स प्रभावित हुए और उसके बाद बिजली उत्पादन कम हो गया, क्या ऐसा भी कभी होता है?
2: बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसा लगता है बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो पवन चक्कियां हैं वो ऐसे ही डिजाइन होता है ताकि वो जो आंधी तूफान को भी झेल जाए
1: जी।
2: तो आंधी तूफान में भी वो गिरे ना। बट हाँ, बिजली उत्पादन थोड़ी देर के लिए शायद बंद हो सकता है
1: जी।
2: क्योंकि जो पवन चक्की काम करता है उसमें ये ऑटोमेटिक कंट्रोल है कि जब पवन एक गति से आगे हो
1: जी
2: तो उसको वो बंद कर देता है ताकि वो सुरक्षित रहे, गिरे ना
1: जी।
2: तो फिर जैसे पवन आंधी तूफान चला गया तो फिर वो अपना काम करना शुरू कर देता है
1: जी।
2: तो थोड़ी देर के लिए बंद हो सकता है, बट अभी तक आपको जान के खुशी होगी कि जो हमारा चक्रवात आया था अरबियन सी में, तो उसमें भी हमारा एक भी पवन चक्की नहीं गिरा था
1: जी।
2: तो वो ऑलरेडी डिजाइन में इनबिल्ट है। बट हैविंग सेड सो, ये जब मैं बोलता हूँ तो आपको ये भी शायद ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे भारत जैसा देश है जहाँ पे हमारा जो पवन है उसका गति इतना भी ज्यादा नहीं है जितना यूरोप में होता है। क्योंकि हम जो इक्वेटोरियल कंट्रीज होते हैं, हमारा यहाँ पे पवन जो है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज आपने सुना होगा
1: जी,
2: कि दिन में जो भूमि है वो जल्दी गर्म हो जाता है और हमारा जो समुद्र है वो थोड़ा ठंडा रहता है
1: जी।
2: जैसे कि हम सबको पता है कि भारत जो है हमारा इक्वेटोरियल रीजन में हम रहते हैं, ट्रॉपिकल कंट्री है। तो ट्रॉपिकल कंट्री में होता क्या है कि हमारा पवन का गति इतना ज्यादा नहीं होता है, हमें सिर्फ सावन के महीने में जो हमारा मानसून होता है उसी समय ही हमें पवन का गति ज्यादा रहता है
1: जी।
2: बाकी सब महीनों में सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के कारण ही हमारा हवा तेज होता है। इसीलिए हमारे जो ज्यादातर पवन की संभावनाएं हैं वो कोस्टल स्टेट्स में ही है। तो ज्यादातर आज के डेट पे जो भारत में लगे हुए हैं पवन ऊर्जा की प्रोजेक्ट्स वो 8 ही स्टेट में ही सीमित है
1: जी।
2: अभी एक दो स्टेट में और अभी काम चल रहा है, जैसे कि उड़ीसा, तो वहाँ पे भी शायद अगले एक दो साल में आपको दिखेगा कि वहाँ पे भी लगा हुआ है
1: जी।
2: लग जाएगा।
1: ये कौन से 8 स्टेट हैं?
2: ये है हमारा सबसे आगे तो हमारा गुजरात है आज के डेट पे, उसके पीछे है तमिलनाडु, उसके पीछे है महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और देन मध्य प्रदेश
1: जी।
2: तो यही सब स्टेट्स है जहाँ पे ऑलरेडी अभी पवन ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। तो जो हम बात कर रहे थे साइक्लोन, तो हमारा इंडिया जैसे कंट्री में क्या है कि पवन जो है ये मॉडरेट है, ऐसा नहीं है कि कम है, ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा है। तो हमारे यहाँ पे जो एवरेज विंड स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकेंड से लेके 7-8 मीटर पर सेकेंड तक होता है, तो इसको हम एक्चुअली मॉडरेट मानते हैं। तो ये विंड में हम टेक्निकली बोलते हैं कि क्लास 1, क्लास 2 या क्लास 3 साइड से, तो जो क्लास 1 होता है वो सबसे बेहतर साइड्स होते हैं जहाँ पे पवन की गति बहुत ज्यादा है, और क्लास 3 साइड्स होते हैं जहाँ पे मॉडरेट है। तो हमारा जो विंड के साइड से वो मॉडरेट है, एट द सेम टाइम हमें साइक्लोन भी देखना पड़ता है
1: जी।
2: तो हमारे जो पवन चक्कियों को उस हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है। तो उसका परिणाम होता क्या है कि हमें थोड़ी सी वो जो डिजाइन है उसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा आएगा
1: जी।
2: बोलने का मतलब कि हमारा जो उसका टावर हो, गियर बॉक्स हो, ब्लेड हो, ये सब कंपोनेंट्स होते हैं पवन चक्की का, वो सब एकदम

0: मजबूत बननी चाहिए ताकि वो साइक्लोन को देख पाए, वो साइक्लोन में गिरे ना।
1: ये जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं, क्या इसके लिए हम मशीनरी आयात करते हैं या ये भारत में निर्मित है सर?
0: बहुत ही अच्छा सवाल है और मुझे बहुत खुशी होगी इस बात को बताते हुए आपके श्रोताओं को कि भारत शायद विश्व में 5 या 6वां कंट्री है जहाँ पे ये सारे के सारे कंपोनेंट इंडिया में ही बनते हैं
1: जी।
0: और इनफैक्ट हम आयात नहीं करते, हम निर्यात करते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर जो मेरे पास डाटा है, हम 12,000 करोड़ से ज्यादा कि पवन चक्की या पवन चक्की का कंपोनेंट भारत से बना के अलग कंट्री को निर्यात करते हैं, और जिसमें यूरोप भी है, यूएसए भी है, हम उस कंट्री को निर्यात करते हैं। बट ऐसा नहीं कि हम आयात नहीं करते, तो इसको बनाने के लिए जो कुछ कंपोनेंट या इनपुट मटेरियल है, रॉ मटेरियल्स है, तो वो सब हम कुछ आयात भी करते हैं
1: जी। तो एक तरह का संतुलन इसमें बना हुआ है और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ रही है जी। मैं यहाँ ये भी आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हम सौर ऊर्जा से अगर तुलना करें तो सौर ऊर्जा के लिए हम हर किसी को प्रेरित करते हैं कि वो अपनी ओर से योगदान करें, और उनके पास जो भी स्थान है, छोटा स्थान भी हो, घर की छत है या खेत है, वहां से वो सौर ऊर्जा जो है उसमें योगदान कर सकते हैं, सोलर पैनल्स वहां लगा सकते हैं। क्या पवन चक्की के लिए भी ऐसा कुछ संभव है कि छोटे स्तर का कुछ उत्पादन वो कर पाएं?
0: बिल्कुल संभव है, बट ये सोलर के तरह जितना सोलर अभी हर घर में आपको देखने को मिल जाएगा, शायद पवन चक्की का जो छोटा संरचनाएं है वो आपको नहीं मिलता देखने के लिए। उसका बहुत सारे कारण है, बट जो सबसे प्रमुख कारण होगा वो यही है कि कितना कॉस्ट पे आपको मिल रहा है। जैसे अगर सोलर और विंड, जाहिर सी बात है कि हर कोई तुरंत कंपेयर करेगा कि मेरे पास अगर कुछ पैसा है तो वो पैसा से मैं सोलर लगाऊं या विंड लगाऊं। अगर आप सोलर लगाते हैं तो आपको जेनरेशन ज्यादा होता है, अगर विंड लगाते हैं तो कम होता है, तो आपका नेचुरल जो प्रेफरेंस है वो सोलर की तरह चला जाता है। बट ऐसा नहीं है कि विंड से नहीं हो सकता। इनफैक्ट अगर जो छोटे छोटे विंड टर्बाइन्स भी मार्केट में उपलब्ध है, जो 1 किलोवाट से लेके 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 10 किलोवाट तक, इवन 100 किलोवाट भी आता है, 500 वाट, 200 वाट, ये सब छोटे छोटे पवन चक्के भी मार्केट में उपलब्ध है। बट इसको जब आप सोलर के साथ कंपेयर करेंगे थोड़े महंगे लगेंगे
1: जी।
0: बट अगर मान लो आप रिमोट एरिया में है जहाँ पे आपको मेन ग्रिड नहीं मिलता है या मेन ग्रिड से बिजली जो है कंटिन्यूअसली नहीं मिलता है, तो उस क्षेत्र में अगर आप पवन चक्की, सोलर और बैटरी, ये तीनों को लगा देते हैं तो आपको शायद ग्रिड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब आप अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाएंगे बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में अपने ही घर के लिए, तो ये संभव है। बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस जगह पे है, आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं और आप कितना बड़ा अच्छा सिस्टम घर पे बनाना चाहते हैं
1: जी। ओम जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जो ये संघ है आपका, भारतीय पवन टर्बाइन निर्माता संघ, ये किस प्रकार से काम करता है, क्या भूमिका है इसकी?
2: ये एक संस्था है
1: जी,
2: जो जितने भी हमारे टर्बाइन के निर्माता हैं उन सबको आपस में जोड़ के रखे हुए है। समय समय पर जो उनके परेशानियां या चीजें हैं उनको मिनिस्ट्री के साथ या इन सब से साथ मिलके या और जगह पे मिलके, जैसे डिस्कॉम्स हैं, तो इन सब के साथ मिलके एक उसका सोल्यूशन या एक निकालते हैं
1: जी।
2: इसमें जितने भी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सभी जुड़े हुए हैं
1: जी।
2: मैं आपको, जैसे प्रवीर जी अभी बता रहे थे, मैं आपको एक चीज और बता दूं, लगभग 70-80% तक चीजें जो है कंपोनेंट और ये सब है
1: जी,
2: हम यहाँ भारत में ही निर्माण कर रहे हैं, और उसका स्टैंडर्ड भी जो है ना बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है। ताकि जो अभी बता रहे थे कि ज्यादा हवा चल रही है तो सब में कैसे उसको रोका जा सके, तो ये सारी चीजें जो है ना, हम इन सब को अपने मंत्रालय के दिशा निर्देशों अनुसार हमारे जो एक मशीन्स हैं उनका टेस्टिंग और उनकी जो एक टाइप टेस्ट रहते हैं
1: जी,
2: जो हम बताते हैं कि ये सब चीजें हमारे यहाँ इस्तेमाल हों, और इस वजह से कम उसके अंदर जो है हमारा दुर्घटनाएं हों। मंत्रालय जो है हमारे ऊपर एक नजर रखता है कि हम जो है इस चीज को, ये टरबाइन जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसके पूरा जो है इसकी पूरी हिस्ट्री हमारी मैन्युफैक्चरिंग की और इन सब के ऊपर नजर रखता है
1: जी।
2: और समय समय पर वो उसमें बदलाव भी देता रहता है ताकि एक विश्व के मानक या हमारे अपने भारतीय मानकों के हिसाब से ये चलता रहे।
1: क्या कभी लैंड एक्विजिशन को लेकर किसी तरह की कोई समस्या हुई है भूमि अधिग्रहण को लेकर?
2: ये वाकई ही एक प्रश्न ऐसा है जो एक दुविधापूर्ण रहता है हर एक जो भी पवन ऊर्जा का उद्यम लगाना चाहता है। क्या होता है कि पवन ऊर्जा की या पवन चक्कियां जो है इकट्ठी

0: इस साथ साथ जैसे आप सौर ऊर्जा को देखते हैं लगातार लगे हुए हैं
1: जी,
0: ये लगातार नहीं होते, इनके बीच में कुछ दूरी रखी जाती है ताकि एक का ब्लेड चलने से और दूसरे के चलने से उन दोनों के हवा का टकराव ना हो, और उन दोनों के टकराव को रोकने के लिए उसके बीच में कुछ डिस्टेंस रखा जाता है। इसके भी मानक बने हुए हैं
1: जी,
0: और जो मानक हमारे सिस्टम से या बहुत प्रयोग करके या बहुत उसके ऊपर जो है स्टडी करके बनाए गए हैं, तो उसमें जितना हमारा ब्लेड का डायामीटर या उसका व्यास रहता है उसके 3 गुना या 5 गुना दूरी उससे रखनी पड़ती है, ताकि दोनों ही टर्बाइंस का आगे पीछे सामने साइड में कहीं पर भी हमारा इसका आपस में हवा का टकराव ना हो और उसकी वजह से एक बवंडर ना पैदा हो
1: जी।
0: क्योंकि बवंडर पैदा होने से हमारी मशीन जो एक लिमिट तक जो घूम सकती है वो थोड़ी सी हो जाती है और हमें वो मशीन को रोकना पड़ता है
1: जी। तो इसके लिए फिर जमीन भी काफी ज्यादा चाहिए होती है।
0: हाँ देखिए, हर टर्बाइन जो है लगभग 2 से 2.5 हेक्टेयर के बीच में एक लगता है, उसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ दी जाती है जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगला भी उसी तरह से, पर ये 2.5 हेक्टेयर जो जगह है ये ऐसे नहीं, इसके ये किस साइज की या कितनी बड़ी हम टर्बाइन लगा रहे हैं उनके ऊपर, और आजकल जो है इसके बीच के दूरी के ऊपर कई लोगों ने सौर ऊर्जा भी लगानी शुरू कर दी है ताकि उसको विंड सोलर हाइब्रिड का कार्य किया जा सके,
1: यानी दिन में सौर ऊर्जा मिलती रहे और पवन चक्कियां जो है रात भर काम करती रहे।
0: यही नहीं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक संसाधन हमें बनाने पड़ते हैं विंड मिल के लिए, उनका भी उचित इस्तेमाल हो जाता है
1: जी।
0: कि जिस समय जैसे सुबह 8 से 7 बजे से 4 बजे तक हमें सौर ऊर्जा मिलती है, उसके बाद हमारी पवन ऊर्जा का उत्थान होता है, तो वो जो ग्रिड लगी है, जो हमारी तारे हैं, जो हमारे सब स्टेशन लगे हैं, उनमें वो उस बिजली को पहुंचाने में इस्तेमाल करते हैं
1: जी।
0: ताकि जो खाली समय रह जाता है हमारे पवन जिस समय अच्छी नहीं मिलती उस समय सूरज मिल जाता है
1: जी। आपसे जानना चाहूंगी प्रबीर जी, हम अक्सर युवा जो हैं आजकल वो घूमना बहुत पसंद करते हैं, और ऐसे में जब हम नई जगह पर जाते हैं उस जगह की हिस्ट्री भी जानते हैं, भौगोलिक परिस्थितियां भी समझते हैं और वहां जो हाइलाइट्स हमको देखना चाहते हैं, तो जहां पवन चक्कियां होती हैं वो पूरा क्षेत्र अगर हम बात करें तो पर्यटन को ध्यान में रखते हुए क्या उस क्षेत्र में भी कुछ योगदान कर सकता है, और क्या ये पूरा एरिया सेफ होता है अगर हम पवन चक्कियों को नजदीक से देखना चाहें तो?
2: हाँ बिल्कुल, जैसे कि तनेजा जी ने भी बताया कि ये जो पवन प्रोजेक्ट्स है ये ज्यादातर रिमोट प्लेस पे ही होते हैं और शहर से थोड़ा दूर भी होते हैं
1: जी।
2: किसी भी पवन चक्की के प्रोजेक्ट के कारण वहाँ पे अच्छे रास्ते बन जाते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ जाता है, लोगों की इनकम थोड़ा सा बढ़ जाता है
1: जी।
2: तो जाहिर सी बात है कि फिर वो पर्यटन में भी योगदान करता है, जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छा होगा, होटल से रहने के लिए भी अच्छी मिलेगी
1: जी,
2: तो पर्यटन पे भी वहाँ पे सहायता होता है। अगर आप देखने भी जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ही सेफ होते हैं ये, जैसे इन्होंने बताया कि हमारा पूरा हम जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हम बनाते हैं
1: जी।
2: हमारा अपना ही BIS स्टैंडर्ड है और हमारा मंत्रालय का एक मैकेनिज्म है जिसको हम RLMM बोलते हैं, अभी हमने उसका नाम परिवर्तन करके ALMM कर दिया है
1: जी,
2: दैट इज अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, व्हिच मींस कि जो प्रत्येक मैन्युफैक्चरर जितने भी मॉडल बनाते हैं हर मॉडल की जो क्वालिटी है उसको इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना पड़ता है, जिसके ऊपर एक चेक्स एंड बैलेंस मंत्रालय खुद रखता है
1: जी।
2: फिर वो लिस्ट बनती है, तो सिर्फ वो लिस्ट में आने के बाद ही वो इंडिया में लग सकते हैं, तो जितने भी टर्बाइन लगे हुए हैं
1: जी
2: वो निश्चित रूप से वो क्वालिटी को कम्प्लाई करते हैं
1: जी,
2: तो ये बिल्कुल ही सेफ होते हैं। हाउएवर ये बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं
1: जी,
2: जैसे कि मैंने बताया कि जो सेफ्टी होता है उसको कभी जीरो नहीं किया जा सकता, उसको हम कम करते हैं
1: जी,
2: तो ऐसा नहीं है कि उसके नीचे जाके हमेशा खेलना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर पवन चक्की लगा है तो वे बिल्कुल सेफ है, इनफैक्ट जैसे इन्होंने बताया कि एक पवन चक्की से दूसरे पवन चक्की के बीच में जगह खाली होता
1: जी।
2: है तो वहाँ पे इनफैक्ट कृषि भी होती है, सोलर का पैनल भी लगाया जा सकता है या उस जमीन का दूसरा उपयोग भी कराया जा सकता है
1: जी।
2: इनफैक्ट सोलर और विंड में ये भी एक पार्थक्य है कि वहाँ पे उनको कंटिन्यूअस लैंड चाहिए और सारे के सारे लैंड में सोलर मॉड्यूल लग जाता है, बट पवन चक्की के लिए हम उसको फुटप्रिंट एरिया बोलते हैं, जहाँ पे वो पवन चक्की खड़ा है और उसके चारों तरफ थोड़ा जगह छोड़ना पड़ता है कि कभी मेंटेनेंस के लिए क्रेन का मूवमेंट हो, बाकी जो जमीन है वो दूसरा उपयोग में आ सकते हैं और वहाँ पे लोग भी रह सकते हैं। कंटिन्यूअस रहना बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारा जो मिनिस्ट्री का गाइडलाइन है वो ये बोलता है कि 500 मीटर तक का क्योंकि वहां पे थोड़ा बहुत साउंड भी आता है, तो वो

0: के कारण हमारा आज का गाइडलाइन है कि 500 मीटर तक का कोई ड्वेलिंग क्लस्टर नहीं होनी चाहिए। मतलब वहाँ पे कोई अगर गांव है, गांव बसा हुआ है, तो वहाँ से फिर वो 500 मीटर दूर ही रखेंगे उसको।
1: जी, लेकिन ऐसे घूमने के लिए जा सकते हैं, समझने के लिए, या रिसर्चर्स हैं,
0: और वो सड़क से आई थिंक उसका जो हाइट होती है, टिप हाइट तक आप मान के चलिए, उतना दूर में कोई सड़क नहीं रहता। मतलब जो कॉमन लोगों का यातायात का सड़क होता है, वहाँ से वो उतना मेंटेन करते हैं डिस्टेंस, ताकि अगर कभी किसी कारणवश वो गिर गया तो वहाँ पे जाते हुए लोगों को वो ना लगे।
1: जी, और वैसे भी बहुत ऊंची होती है तो दूर से भी दिखाई देती है।
0: बिल्कुल, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रिकल हैजर्ड भी है, इट इज नॉट ओनली मैकेनिकल हैजर्ड। वो गिरेगा भी नहीं तो, क्योंकि वो बिजली पैदा करते हैं और बिजली संरचना का एक हिस्सा है,
1: जी,
0: तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल हैजर्ड भी रहता है।
1: जी,
0: तो ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि वहाँ पे लोग जाए, उसको छुए।
1: एक निश्चित दूरी से देखा जा सकता है। जी, यहाँ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो टर्बाइन्स है, इनकी कितनी लाइफ होती है, और जब वो पुरानी हो जाती है तब उनका क्या किया जाता है?
0: तो जो टर्बाइन्स है उनका लाइफ निश्चित रूप से 25 साल होते हैं, बट उनकी हम बोलते हैं जब डिजाइन लाइफ, जब उनका सर्टिफिकेट लेते हैं वो स्टैंडर्ड के हिसाब से।
1: जी,
0: कुछ पुराने टर्बाइन्स है जिसमें वो 20 साल भी था, बट आजकल के जितने टर्बाइन है वो 25 साल के लिए बनते हैं, और इनफैक्ट लोग अभी सोच रहे हैं कि इसको 30 साल या 35 साल किया जाए, क्योंकि जितना टर्बाइन का लाइफ ज्यादा होगा तो उसमें हमें जो पर यूनिट बिजली पैदा करने के जो कॉस्ट लगता है वो कम होगा, तो हमें और सस्ते में बिजली मिलेगी।
1: जी,
0: तो कोशिश यही रहता है इंजीनियर्स का, साइंटिस्ट का, कि इसका लाइफ को आगे बढ़ाया जाए। और आपको जान के खुशी होगी कि जो पवन चक्कियां होती हैं, इसमें जो भी मटेरियल लगती है, जिस पदार्थ से बनते हैं, उसका 85% मेटल्स होते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं हम सबको पता है कि वो रिसाइकल हो जाते हैं, और इसका कॉस्ट, इनफैक्ट हमें कभी भी स्क्रैप जो है, चाहे वो आप कॉपर ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, यूनेम मेटल, स्टील ले लो, उसका कॉस्ट हमेशा बढ़ता ही है, तो स्क्रैप वैल्यू भी बढ़ेगा आगे जाके, और उसको हम 100% रिसाइकलिंग करा सकते हैं। बाकी जो 10-15% रह जाता है वो होता है वो जो ब्लेड, जो पंखा के बारे में बात किया, वो पंखा नॉर्मली हमारा ग्लास फाइबर रिइंफोर्स रेजिन से है उसमें, तो वही है जो रिसाइकल नहीं हो सकते हैं। बट एंड ऑफ लाइफ के बाद उसका भी बहुत सारे जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है, या उसको डिस्पोज करने का तरीका भी है। उसको हम जला सकते हैं, वो उसका जो आस बनता है वो सीमेंट इंडस्ट्री में जा सकता है, या तो उसको जो वो बहुत बड़े होते हैं उसको काट के, इनफैक्ट आप जो शेडिंग होती है जहाँ पे लोग रेस्ट करते हैं, बस स्टैंड हो, साइकिल स्टैंड हो, और इनफैक्ट यूरोप में बहुत सारे जगह पे आप देखेंगे वो सब जो सिटिंग प्लेसेस है, इट इज यूज लाइक ए शेड। और अभी बहुत ही नए चीज है ये, मैं आपको बता रहा हूँ, तो अभी एक ऐसा रेजिन लोग अभी डेवलप कर चुके हैं जहाँ पे जो ग्लास फाइबर से या कार्बन फाइबर से वो ब्लेड बना है, 25 साल बाद हम उसको भी रिकवर कर सकते हैं, जिस रेजिन से वो बनता है कुछ और केमिकल प्रोसेस करके वो 100% वो भी रिसाइकल हो जाएगा।
1: जी,
0: तो पवन एक ऐसा अक्षय ऊर्जा बनने जा रहा है जहाँ पे 100% चीज एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से रिसाइकल हो जाएगा।
1: जी,
0: और आपको एक और जानकारी देता हूँ कि जितने अक्षय ऊर्जा टेक्नोलॉजी है, चाहे सोलर हो, बायोमास हो, हाइड्रो हो, पवन हो, इनफैक्ट पवन शक्ति एक ऐसा शक्ति है जहाँ पे हम उसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट।
1: जी,
0: लाइक एक यूनिट बिजली पैदा करने में आपने कितना कार्बन डाइऑक्साइड निर्यात किया है। लाइक जो मैंने बता रहा हूँ, स्टील लगा है, कुछ लगा है, तो ये सबको बनाते हुए आपको कुछ एनर्जी खर्चा करना पड़ा होगा।
1: बिल्कुल,
0: तो उससे कुछ ना कुछ तो कार्बन डाइऑक्साइड आपने वायुमंडल में छोड़ा है। तो सबसे कम कार्बन फुटप्रिंट
1: पवन ऊर्जा का,
0: होता है।
1: जी,
0: तो पर्यावरण के लिए ये सबसे फ्रेंडली है।
1: जी, यानी बहुत ही साधारण शब्दों में समझें तो एक यूनिट बिजली बनाने के लिए अन्य माध्यमों से हम जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पर्यावरण में, पवन ऊर्जा में वो सबसे कम है। और एक लाभ ये भी है कि जो इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं, जो हमारी टर्बाइन्स है, वो रिसाइकल हो जाती है, और जो भी हम उन्हें डिस्पोज ऑफ करते हैं वो भी पर्यावरण के लिए नुकसानदेह नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पर्यावरण के हित में भी है और हमारे हित में भी है। जी, तो चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूंगी ओम जी, जो आपका संघ है, आपने बताया कि कई तरह की समस्या आती हैं और उसका हम समाधान निकालते हैं, और मंत्रालय से भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं और मंत्रालय के अपनी गाइडलाइंस है जिनको आप सब लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल्स जो है, अगर वो जुड़ना चाहें तो क्या उन्हें दूसरे बिजनेस जो है उन्हीं के माध्यम से जुड़ना पड़ेगा, या वो अपने आप भी अप्रोच कर सकते हैं? जैसा आपने कलाकारों का बताया कि वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या उसका तरीका है, वो कहाँ अप्रोच करें, क्या कोई वेबसाइट है इसकी, कोई लिंक है?
2: देखिए, आज के दिन क्योंकि ज्यादातर पवन ऊर्जा जो लग रहे हैं
1: जी,
2: वो बिल्डिंग पे लग रहे हैं, पर इसके साथ साथ एक जो छोटे उद्योग में इन्वेस्टमेंट जो करने वाले हैं, उनके लिए भी ये संभव है कि वो एक मशीन, दो मशीन, चार मशीन लेके लगा दें। अभी क्योंकि उनको डिस्काउंट्स में जो है थोड़ा सा, उनके लिए डिस्काउंट अपने सुविधा अनुसार उसके अंदर नहीं जुड़ते हैं, तो एक किस्म के स्वयं इस्तेमाल के लिए

0: जिसे हम कहते हैं कैप्टिव पावर कंजम्पशन, कि एक उद्योग में अगर मान लो 10 मेगावाट का या 5 मेगावाट का कुछ उनका इस्तेमाल हो रहा है, तो वो अपनी पवन चक्कियां लगाकर और किसी मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर एक पवन चक्की लगाकर उसको अपने ही क्षेत्र में अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा बहुत हो रहा है जिसमें कैप्टिव पावर जो है एक किस्म से अपनी पावर बना के अपने आप ही इस्तेमाल करते हैं इसको, ऐसा संभव है और हुआ भी है। और इस पावर को कई बार ये मॉल्स वगैरह वाले ये सब भी अपने उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जितने मॉल्स हैं उनको पावर जो है डिस्कॉम की पावर महंगी मिलती है और अपनी पावर उससे कुछ बचत कर पाते हैं, इसलिए इस कैप्टिव पावर का एक उपयोग जो है वो कर सकते हैं।
1: जी, तो एक तरह से ये प्रेरणा भी मिलती है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके अतिरिक्त अगर हम चाहें तो पवन ऊर्जा क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं और उससे भी कमाई हो सकती है। जी, हमने बचपन में ये कविता पढ़ी है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, लेकिन इस हवा का जादू जो है वो आज हमें समझ में आया कि पवन ऊर्जा जो है वो किस तरह से कारगर है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी इसका योगदान है, पर्यावरण में भी इसका योगदान है और जो आम जन है उनके जीवन को बेहतर बनाने में भी इसका योगदान है। इसके लिए मंत्रालय है जो नीतियां बनाता है और सहायता करता है, और इसके लिए इस तरह के इंडिविजुअल्स जो है वो संघ भी हैं जो कि जागरूक कर सकते हैं, जिनसे मदद ली जा सकती है। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज कार्यक्रम में हमने बात की पवन ऊर्जा के बारे में, और कार्यक्रम में हमारे साथ थे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पवन ऊर्जा विभाग के निदेशक डॉक्टर प्रबीर कुमार दास। आप वैज्ञानिक हैं लेकिन बहुत सरल भाषा में आज आपने हमें पवन ऊर्जा जो है उसकी पूरी कार्य प्रणाली वो समझाई। हमारे साथ कार्यक्रम में रहे उद्यमी ओम तनेजा जी, जो कि भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ से भी जुड़े रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी अपना समय हमें देने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए। प्रबीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद आपको, श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।
1: जी ओम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अति धन्यवाद, हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि हम इस कार्यक्रम में भाग ले सके, हमारे लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, धन्यवाद।
1: तो हम उम्मीद करते हैं कि अब जब आप बच्चों को हाथ में एक खिलौना लेते हुए खेलते देखेंगे जो हवा से घूम रहा है और बड़ी बड़ी पवन चक्कियां देखेंगे, उनके बीच का जो रिश्ता है वो आपको समझ में आएगा और पर्यावरण से आप थोड़ा और बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे। इस कार्यक्रम के संयोजक थे प्रमोद कुमार वत्स और दिलीप झा, कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले

0: वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को 2 दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सिंतुआंग को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो ने बताया कि ये गिरफ्तारी व्यापक निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने, अंतर्राज्यीय समन्वय और निरंतर कार्रवाई के बाद संभव हुई है। सरकार ने सोशल मीडिया में चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावा फर्जी है। अभी अभी मिले समाचार के अनुसार भारत और स्वीडन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर राजी हो गए हैं। यह सहमति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष उल्फ क्रिस्टर्सन के बीच हुई बातचीत के दौरान बनी। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के 194 रन के लक्ष्य को दिल्ली ने 4 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। मिचेल स्टार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं एक अन्य मुकाबले में कल धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. I am Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. The two sides also explored new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defence, space, climate action and people-to-people ties. Both the leaders have also agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership. Meanwhile, Sweden conferred the Royal Order of Polar Star Commander, Grand Cross, upon Prime Minister Modi. Sweden's Royal Order of Polar Star Commander Grand Cross is the utmost recognition and honour that can be conferred upon a head of government. This is the 31st global honour for PM Modi. Mr. Modi reached Gothenburg in the evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. Upon arrival at Gothenburg Airport, Prime Minister Modi was accorded a warm welcome and was personally received by his Swedish Prime Minister. During his two-day visit to the Netherlands, Prime Minister Modi held bilateral talks with his Dutch counterpart. The two countries signed 17 agreements to strengthen cooperation in defence, critical minerals and other key sectors. In a social media post, Mr. Modi said his visit to the Netherlands has added new momentum.

लोग देखेंगे तो अफसाना बना डालेंगे, लोग देखेंगे तो अफसाना बना डालेंगे, यूं मेरे दिल में चले आओ कि आहट भी ना हो। सदस्य प्लव 1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:12 और 10 सेकेंड। ऋषिगंधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं शैलेंद्र सिंह की आवाज के साथ।

मोहब्बत इंसान को शायर बना ही देती है ना। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये गाने लिखे ही उन लोगों के लिए जाते हैं जिन्होंने पहली बार किसी को देखकर दिल संभालना सीखा हो। पहले सब कुछ नॉर्मल लगता है, दिन रात मौसम बातें, और फिर अचानक कोई जिंदगी में आता है और वही पुरानी दुनिया थोड़ी और खूबसूरत हो जाती है। अगला गीत लता जी की आवाज़ में आप ही के लिए।

कभी ना कभी हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर आता है जिसकी वजह से हम खुद को भी अलग अलग तरह से देखने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं। और यही जो बदलाव है वही हमें और करीब ले आता है उस इंसान के, या शायद खुद के भी। अगला गीत रवि साहब की आवाज़ में।

वैसे इश्क में ऐसा ही होता है, जब दिल के कोई बहुत करीब होता है तो फिर हर खूबसूरत चीज में वही नजर आता है। बहार उस जैसी लगती है, घटा उस जैसी लगती है, और हर पल हर लम्हा

अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जो शख्स तेरे तसव्वुर से महक जाए, जो शख्स तेरे तसव्वुर से महक जाए, सोच तेरे दीदार से उसका क्या होगा। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 7.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूं आपके साथ, आपके रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:41 और 41 सेकेंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल निशिगंधा सुन रहे हैं आप।
1: You see, the whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own babasate.
2: What?
3: My name is Anthony Gonzalez.
2: That's all,
3: right? My name is Anthony Gonzalez.

0: आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: रियली?
0: राइट राइट।

0: जिस मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिस मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.

0: वाली तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: राइट,
0: मैं दुनिया

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: सेबेस्टियन।
2: नो
1: गोल्डी सोल्डी।
2: नो एंथनी।

0: Anthony Gonzalez.
1: 70s और 80s के दौर के हीरो का भी अंदाज अलग होता था, है ना। दिल टूटने की बात भी ऐसे करते थे कि आदमी उदास कम और एंटरटेन ज्यादा हो जाता था। इसी एंटरटेनमेंट को और बढ़ाते हैं अगले गीत के साथ।

0: जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले

प्यार में रंग वंग कहाँ देखा जाता है, बस दिल साफ होना चाहिए। और वैसे भी मोहब्बत में लोग चेहरा नहीं स्वभाव याद रखते हैं। अगला गीत शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में।

निशिगंधा में आज के लिए बस इतना ही। 1 बजे सुनेंगे आप समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 1:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ स्वीडन के चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, पारदर्शिता, नवाचार और स्थिरता के साझा मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने भारत के विकास में स्वीडिश कंपनियों के लंबे समय से चले आ रहे योगदान का स्वागत किया और अनुसंधान, नवाचार, हरित बदलाव और विनिर्माण के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग को साहित किया। श्री मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसी पहलों के तहत और स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, सेमीकंडक्टर तथा उन्नत विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का लाभ उठाते हुए भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से भी सम्मानित किया। यह प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे थे। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की थी। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सिंतुआंग को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो ने बताया कि ये गिरफ्तारी व्यापक निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने, अंतर्राज्यीय समन्वय और निरंतर कार्रवाई के बाद संभव हुई है। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई 6ठे स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। एक अन्य मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में क्वालिफाई किया। भारत के श्रेयांसी वलिशेट्टी ने चीन के बाउजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अलॉन्ग विथ हर रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ऑफ स्वीडन एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन हिज एक्सीलेंसी मिस्टर उल्फ क्रिस्टर्सन इंटरैक्टेड विद सेलेक्ट स्वीडिश सीईओज टुडे। During the interaction, PM Modi highlighted that India and Sweden are connected by shared values of democracy, transparency, innovation and sustainability, which provide a strong foundation for an ambitious and forward-looking economic partnership. He underlined that the India-Sweden partnership today is not merely an economic relationship, but a partnership of ideas, technology, innovation and co-creation.
1: स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड एआई कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए ठोस इनिशिएटिव्स पर काम करेंगे। दोनों देशों के स्टार्टअप्स और रिसर्च इकोसिस्टम्स के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए हम इंडिया स्वीडन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने जा रहे हैं।
2: He welcomed the long-standing contribution of Swedish companies to India's growth and encouraged deeper collaboration in research, innovation, green transition and manufacturing. PM highlighted India's rapid economic transformation driven by reform, strong domestic demand, digital public infrastructure, manufacturing expansion and next-generation infrastructure development. He invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, the National Green Hydrogen Mission, the National Critical Mineral Mission, and expanding opportunities in sectors including clean energy, defense, semiconductors, and advanced manufacturing. The discussions also focused on strengthening cooperation in resilient supply chains, green transition, sustainable mobility, life sciences, and digital technologies. PM Modi underlined the importance

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकेंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम गीत सुहाने। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ के साथ।

फिल्म हरियाली और रास्ता से मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में सुना आपने ये सदाबहार गीत। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1962 में और इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था विजय भट्ट ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी मनोज कुमार और माला सिन्हा ने। ग्रामीण परिवेश और प्रेम को लेकर लिखी हुई प्रदर्शित ये फिल्म दर्शकों के दिलों में खास जगह इस फिल्म ने बनाई थी। फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन ने तैयार किया था और इसके गीत आज भी बहुत पसंद किए जाते हैं। ये फिल्म मनोज कुमार के करियर की शुरुआती फिल्मों में से एक मानी जाती है। और अब सुनते हैं हम अगला गीत आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में।

आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में सुना आपने ये गीत। फिल्म का नाम था फागुन, संगीत ओपी नैयर का और गीतकार थे कमर जलालाबादी। 1958 में आई ये फिल्म। इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण किया था विभूति मित्रा ने और इस फिल्म की पटकथा लिखी थी प्रणब रॉय ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी मधुबाला और भरत भूषण ने। फागुन फिल्म की कहानी बीजन के इर्द गिर्द घूमती है और जो एक जमींदार का बेटा है अपनी रिलीज पर फागुन 1958 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिट फिल्मों में से एक गिनी जाती है और अगला गीत गीता दत्त की आवाज़ में

होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक।

101 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:34 और 34 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत फिल्म बरसात की रात से।

आशा जी, सुधा मल्होत्रा, शंकर शंभू की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गीत फिल्म बरसात की रात से। संगीत था रोशन का और गीतकार थे साहिर लुधियानवी। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1960 में और ये एक रोमांटिक संगीतमय फिल्म थी जिसका निर्देशन पीएल संतोषी ने किया था और निर्माण किया था आर चंद्र ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी मधुबाला, भारत भूषण और श्यामा ने। बरसात की रात फिल्म दो प्रेमियों शबनम और अमान के इर्द गिर्द घूमती है जो एक साथ रहने की कोशिश करते हैं लेकिन समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। 1960 में आई ये फिल्म दूसरी 1960 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। और अब अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म मधुमती से।

वक्त हुआ है 1:53 और 24 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ स्वीडन के चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, पारदर्शिता, नवाचार और स्थिरता के साझा मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने भारत के विकास में स्वीडिश कंपनियों के लंबे समय से चले आ रहे योगदान का स्वागत किया और अनुसंधान, नवाचार, हरित बदलाव और विनिर्माण के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसी पहलों के तहत और स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, सेमीकंडक्टर तथा उन्नत विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का लाभ उठाते हुए भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से भी सम्मानित किया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे थे। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर

0: हस्ताक्षर किए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। ये सभा आज से 23 मई तक आयोजित की जा रही है। श्री नड्डा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष के विषय वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, एक साझा जिम्मेदारी, वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने सोशल मीडिया में चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PAIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। एक अन्य मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Shri Narendra Modi, along with Her Royal Highness Crown Princess Victoria of Sweden and the Prime Minister of Sweden, His Excellency Mr. Ulf Kristersson, interacted with select Swedish CEOs today. During the interaction, PM Modi highlighted that India and Sweden are connected by shared values of democracy, transparency, innovation and sustainability, which provide a strong foundation for an ambitious and forward-looking economic partnership. He underlined that the India-Sweden partnership today is not merely an economic relationship, but a partnership of ideas, technology, innovation and co-creation.
2: स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड AI कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए ठोस इनिशिएटिव्स पर काम करेंगे। दोनों देशों के स्टार्टअप्स और रिसर्च इकोसिस्टम्स के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए हम इंडिया स्वीडन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने जा रहे हैं।
1: He welcomed the long-standing contribution of Swedish companies to India's growth and encouraged deeper collaboration in research, innovation, green transition and manufacturing. Prime Minister highlighted India's rapid economic transformation driven by reform, strong domestic demand, digital public infrastructure, manufacturing expansion and next-generation infrastructure development. He invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, the National Green Hydrogen Mission, the National Critical Mineral Mission, and expanding opportunities in sectors including clean energy, defense, semiconductors, and advanced manufacturing. The discussions also focused on strengthening cooperation in resilient supply chains, green transition, sustainable mobility, life sciences, and digital technologies. PM Modi underlined the importance of combining Sweden's strengths in innovation and sustainability with India's scale, talent and growth momentum to co-create solutions for the 21st century. The new Keralam government led by Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in Thiruvananthapuram today. Congress had announced Satheesan as the next Chief Minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front secured a more than 2/3 majority in the Keralam Assembly elections. Union Home and Cooperative

तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूं आपके साथ आपके रात के हम सफर बंजू। वक्त हुआ है 2:11 और 54 सेकेंड। आगाज हो चुका है प्रोग्राम रात सुरमई का। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की किशोर कुमार की आवाज के साथ।

फिर आप क्या हैं? हैं? आखिर तो आप फूल हैं, फौलाद नहीं हैं, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं हैं।

अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो यकीनन इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। वाकई इन पुराने गानों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि ये दिलों को जोड़ने का काम करते हैं, दिलों को नज़दीक लाने का काम करते हैं, और इस नज़दीकी को हम और बढ़ाते हैं अगले गीत के साथ। अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

वाकई कुछ लोगों की मौजूदगी हमारे जीवन में मोती की तरह होती है, जिसके साथ रहते हुए हमें सुकून मिलता है। कुछ रिश्ते हमें जिंदगी में किस्मत से मिलते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें गानों में, बातों में या फिर यादों में संभाल के रखना चाहिए। अगला गीत आशा जी की आवाज़ में।

मेरी पसंदीदा सफ़ेद शर्ट पहनकर आओ तुम मुलाकात पर, मेरी पसंदीदा सफ़ेद शर्ट पहनकर आओ तुम मुलाकात पर, तुम्हारी पसंदीदा सिल्क साड़ी में मैं आऊँ, पास में ही कहीं

गुलजार की लिखी गजल जगजीत सिंह की आवाज में बजती रहे। हम दोनों अपनी पसंदीदा कॉफी साथ में पीकर घंटों तक एक दूसरे को देखते रहे। उफ, मेरे ख्वाब भी कितने अमीर हैं, पर मेरी तमन्ना है कि मेरा ये ख्वाब पूरा हो एक रोज।

स्वादिष्ट प्लव 1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:39:17 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई।

मैं कहता रहा, वो सुनता रहा खामोश। मैं कहता रहा, वो सुनता रहा खामोश। कभी कभी इस तरह भी हार हुई है मेरी।

आज दिन भर ना याद किया तुम्हें, आज दिन भर ना याद किया तुम्हें, यही एक बात दिन भर याद रही।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी आज ही के दिन। अब से थोड़ी देर में यानी 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर आपके साथ रहेंगी नीता अग्रवाल। मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ स्वीडन के चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, पारदर्शिता, नवाचार और स्थिरता के साथ साझा मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने भारत के विकास में स्वीडिश कंपनियों के लंबे समय से चले आ रहे योगदान का स्वागत किया और अनुसंधान, नवाचार, हरित बदलाव और विनिर्माण के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसी पहलों के तहत भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से भी सम्मानित किया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे थे। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। ये सभा आज से 23 मई तक आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष के विषय वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, एक साझा जिम्मेदारी वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीश

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है रात्रि के 3:11 और 3 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमराही। युगल गीतों से सजे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके मित्र नीता अग्रवाल। ये रात का सफर पूरे 24 घंटों के सफर में सबसे अलग एक महत्वपूर्ण काल, क्योंकि ये समय जो सिर्फ अपना है, सुखकर है, जिसमें जागती आंखों संग नींद में भी सपनों को आने की अनुमति है और सपनों की बातें कुछ यूं भी हुआ करती हैं।

महेंद्र कपूर लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत गीत फिल्म से अभी आपने सुना। 1970 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। साथियों, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी। साथियों, रात का सफर रोज बरोज होता है, लेकिन हर रात फिर भी रोज अलग अलग रूपों में हमें नजर आती है। कभी आसमान में चांद पूरा, कभी आधा, कभी चांद है ही नहीं, कभी घटता या कभी बढ़ता चांद। न सिर्फ इतना बल्कि हमारे ख्यालों और एहसासों की दृष्टि से भी हर रात अलग अलग होती है।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज उसी सजा ये गीत शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ था। बोल लिखे थे हसरत जयपुरी ने और फिल्म का नाम एन इवनिंग इन पेरिस जो रिलीज हुई थी वर्ष 1967 में। और अब हमराही के प्यारे वादे से सजा ये गीत।

0: मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया था। गुलशन बाबरा की लिखी रचना थी। 1974 रिलीज इस फिल्म का नाम हाथ की सफाई।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता साथी इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही। कार्यक्रम में मेरे साथ हैं आप यानी अपनी मित्र नीता अग्रवाल के साथ। कार्यक्रम में बढ़ती है आगे। साथियों जीवन की राहें और कई बार दो राहें भी होता भी है ऐसा कभी कभी राहें दो राहें या स्थान विशेष छोड़ जाने की मजबूरी, लेकिन मन की राह एक ही रहती है। कैसे आइए जानते हैं इस गीत में।

मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गीत था साथियों राजा मेहंदी अली खां की लिखी रचना। फिल्म का नाम वो कौन थी जो रिलीज हुई थी वर्ष 1964 में। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजें थी। और अब हमराही बनकर आ गए हैं एक मतवाली आंखों वाले। क्या कहा जा रहा है इन्हें, सुनते हैं।

0: आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया गीत अभी आपने सुना। शैलेंद्र की लिखी रचना थी, फिल्म का नाम छोटे नवाब, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1961 में। गायक कलाकार थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर।
1: नब्बे वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
2: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
2: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1।

साथियों, रात का समय कई बार नींद न आने का समय भी बन जाता है। अब नींद न आने के कारण तो भाई कई हो सकते हैं, उन्हीं में से एक कारण ये भी।

शमशाद बेगम और किशोर कुमार की स्वरों से सजा ये गीत था नया अंदाज फिल्म से। 1956 में ये फिल्म रिलीज हुई थी मित्रों। ओपी नैयर का संगीत था, जानिसार अख्तर की लिखी रचना थी। और अब साथियों एक खूबसूरत अदा लीजिए गीत जिसमें एक मीठी प्यार भरी शिकायत का

बॉबी लहरी के संगीत से सजा ये गीत लिखा था रमेश पंत ने। मोहम्मद रफी, उषा मंगेशकर की आवाजें थी। फिल्म का नाम वारदात, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1981 में।

रात के खामोश सफर में चांद का साथ रहना और उस पर भीगी रात का चांद और भी सुंदर हो उठता है। काली घटा सी आंख मिचौनी से खेलता ये चांद हम सभी को भाता है।

लता मंगेशकर मन्ना डे के स्वरों से सजा ये गीत सुहागन फिल्म से अभी आपने सुना। 1964 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मदन मोहन का संगीत था हसरत जयपुरी की लिखी रचना। और अब हमराही कार्यक्रम के अंतिम गीत पर, आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रस्तुति पर बढ़ रही हैं। बहुत ही सुंदर गीत, एक और गीत आ रहा है परिवार फिल्म से।

ये हैं कल्याण जी आनंद जी का संगीत, गुलशन बाबरा की लिखी रचना, फिल्म का नाम परिवार जो रिलीज हुई थी वर्ष 1968 में। इसी गीत के साथ ही आज का हमराही कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपनी मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ स्वीडन के चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, पारदर्शिता, नवाचार और स्थिरता के साझा मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने भारत के विकास में स्वीडिश कंपनियों के लंबे समय से चले आ रहे योगदान का स्वागत किया और अनुसंधान, नवाचार, हरित बदलाव और विनिर्माण के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसी पहलों के तहत भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से भी सम्मानित किया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरों के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। ये सभा आज से 23 मई तक आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष के विषय वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, एक साझा जिम्मेदारी, वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट में नए शामिल और पदोन्नत किए गए मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित कर दिए हैं। विभागों का ये बंटवारा 10 मई को सरकार के दूसरे कैबिनेट विस्तार के बाद हुआ है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हुए हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है और इससे और खतरनाक स्थिति पैदा होगी। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए यह मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई 6ठे स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिसमें 4 दिनों का अंतर हो सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Ashish Abraham. PM Modi, along with Her Royal Highness Crown Princess Victoria of Sweden and the PM of Sweden, His Excellency Mr. Ulf Kristersson, interacted with select Swedish CEOs today. During the interaction, PM Modi highlighted that India and Sweden are connected by shared values of democracy, transparency, innovation and sustainability, which provide a strong foundation for an ambitious and forward-looking economic partnership. He underlined that the India-Sweden partnership today is not merely an economic relationship, but a partnership of ideas, technology, innovation and co-creation. He welcomed the long-standing contribution of Swedish companies to India's growth and encouraged deeper collaboration in research, innovation, green transition and manufacturing. Prime Minister highlighted India's rapid economic transformation driven by reform, strong domestic demand, digital public infrastructure, manufacturing expansion and next-generation infrastructure development. He invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, the National Green Hydrogen Mission, the National Critical Mineral Mission and expanding opportunities in sectors including clean energy, defense, semiconductors and advanced manufacturing. The discussions also focused on strengthening cooperation in resilient supply chains, green transition, sustainable mobility, life sciences and digital technologies. PM Modi underlined the importance of combining Sweden's strengths in innovation and sustainability with India's scale, talent and growth momentum to co-create solutions for the 21st century. The new Keralam government led by Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in Thiruvananthapuram today. Congress had announced Satheesan as the next Chief Minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front secured a more than two-thirds majority in the Keralam assembly elections. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has inaugurated and laid the foundation stone for development works worth over 700 crore rupees in Gandhinagar, Gujarat. Mr. Shah, who is on a two-day visit to the state, launched projects worth over 600 crore rupees of Gandhinagar Municipal Corporation yesterday. He also inaugurated a newly built milk processing plant of Madhur Dairy in the city, built at a cost of around 128 crore rupees. Earlier in the day, Mr. Shah inaugurated the Innovation and Incubation Center at the National Institute of Design in Gandhinagar. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has allocated portfolios to the newly inducted and promoted ministers of his cabinet. The portfolio distribution follows the second cabinet expansion of the government, which took place on May 10. During the reshuffle, two cabinet ministers and four ministers of state were inducted into the government, while two ministers of state were elevated to ministers of state with independent charge. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda has arrived in Switzerland to participate in the 79th World Health Assembly, which is being held from 18th to 23rd May 2026. In a social media post, Mr. Nadda said that this year's theme, Reshaping Global Health, A Shared Responsibility, highlights the importance of collective action in addressing global health challenges. He said the assembly will bring together health ministers, dignitaries and public health experts from more than 165 countries, reaffirming the shared global commitment towards building stronger, more inclusive and resilient healthcare systems. India has

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः की 4:11 और 7 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। सूर्य की सुंदर दर्शनीय आभा ने अपने आने की दस्तक दे दी है। सूर्य पर सूर्य की लालिमा, धरती पर सुंदर लालिमा का प्रकाश बिखेरे। सूर्य की सुंदरता, अंधियारे के बाद उजाले का सफर, जीवन को संदेश देती इसकी हर किरण।

सुमन कल्याणपुर की आवाज से सचा ये गीत अभी आपने सुना जानवर फिल्म से। 1965 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। साथियों, शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी।

मुकेश की आवाज से सजा ये गीत सचिन देव बर्मन का संगीतबद्ध किया आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना थी, फिल्म का नाम डॉक्टर विद्या, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1962 में। मित्रों, जैसे जैसे वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है, उसी प्रकार ये दुनिया, देश और हम भी उस परिवर्तन के दौर में बहते चले जाते हैं। जैसे कि विशेषकर बरसात के दिनों में झूलों का लगना, वो भी अम्बुआ की डारी पे। गीत भी है एक ऐसा, एक अब झूलों का दौर जरा कम ही नजर आता है। झूला झूलते समय जो हवा लगती थी उसका एहसास और झूले का आनंद इस गीत के साथ।

0: मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत बैजू बावरा फिल्म से अभी आपने सुना। 1952 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। साथियों, नौशाद का संगीत था, शकील बदायूनी की लिखी रचना थी।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल श्रोता साथी सुन रही हैं इस समय 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपके मित्र नीता अग्रवाल। साथियों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति जीवन में आता है, चला भी जाता है, लेकिन अपने होने का एहसास जीवन भर के लिए दे जाता है। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी बातें, यादबन बार बार उभरती हैं हमारे मन मस्तिष्क में।

लता मंगेशकर की आवाज से सजा ये गीत छोटी सी बात फिल्म से अभी आपने सुना। 1976 रिलीज ये फिल्म थी मित्रों। सलील चौधरी का संगीत था, योगेश की लिखी रचना। मित्रों गीत संगीत की तासीर ही कुछ ऐसी होती है कि जब हम इनका श्रवण करते हैं तो इनकी तासीर में खो सी जाते हैं। हम सफर में हों या घर पर या कहीं भी, इन गीत संगीत की आवाजों का जादू एक सुंदर अनुभूति कराता है।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले के स्वरों से सजा ये गीत गेटवे ऑफ इंडिया फिल्म से था, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1957 में। मदन मोहन का संगीत था, राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना।

मित्रों, अरुणिमा की आभा जब सजती है, अरुणिमा की आभा जब सजती है तो सबसे बेहतरीन मौसम होता है। प्रदूषण बहुत कम या नहीं भी होता, शांतिपूर्ण और सकारात्मक वातावरण, कोई व्यवधान नहीं। और ऐसे में कोई बजा रहा सुरीली धुन, छेड़ रहा ये गीत।

भूपेन हजारिका के संगीत निर्देशन से सजा ये गीत माया गोविंद ने लिखा था। लक्ष्मी शंकर की आवाज थी। फिल्म का नाम आरोप, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1974 में। और अब दिल में सजी आस का एक रूप ये भी।

सुबीर सेठ की आवाज से सजा ये गीत आज का पंछी फिल्म से लिया था। 1961 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना। साथियों, जीवन में रिश्तों का बहुत महत्व होता है। ये रिश्ते बनने का कारण चाहे कुछ भी हो, इन्हें भली प्रकार से निभाने के लिए जतन करने होते हैं। कभी कोई माफी मांग ले, कहीं कोई और हाँ माफी ली गई बात को दोहराए बिना ये ख्याल रखा जाए, नहीं तो माफी की भी कोई महत्ता नहीं रह जाएगी।

0: छोड़ो,
1: देखा दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया था हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।
1: अच्छा जी मैं हरी चलूंगा, जाओ ना,
0: देखी सबकी यारी मेरा दिल जला।
2: आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाज उसी सजा ये गीत काला पानी फिल्म से अभी आपने सुना। 1958 रिलीज ये फिल्म, बजरू सुल्तानपुरी ने गीत लिखा था और सचिन देव बर्मन का संगीत था। साथियों, सुबह होने वाले कार्यों में जब ऐसा कार्य जुड़ जाता है जो हम बहुत समय से सोच रहे हैं और वो हो भी जाता है या होने ही वाला है, तो इस तरह की खुशी तो व्याप्त होना स्वाभाविक ही है।

आशा भोसले की आवाज से सजा ये गीत सपन, जगमोहन का संगीत, नक्श लायलपुरी की लिखी रचना। 1966 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम जिम्बो फाइंड्स अ सन।

नितिन मुकेश और लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत क्रांति फिल्म से अभी आपने सुना। 1981 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। संतोष आनंद ने गीत लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। श्री मोदी दो दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के सम्मान में रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। उन्होंने व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार, हरित परिवर्तन, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा और सुरक्षा, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम, अनुसंधान तथा लोगों के बीच आपसी संबंधों में प्रगाढ़ करने के बारे में चर्चा की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। बहुपक्षीय मंचों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की गई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। ये सभा आज से 23 मई तक आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष के विषय वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, एक साझा जिम्मेदारी, वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। रूस में हुए ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हुए हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है, इससे और खतरनाक स्थिति पैदा होगी। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा ओरफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। एक अन्य मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्ले ऑफ में क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड टॉक्स विद हिज स्वीडिश काउंटर पार्ट उल्फ क्रिस्टरसन इन गोथेनबर्ग लास्ट नाइट। मिस्टर मोदी अराइव्ड इन गोथेनबर्ग यस्टरडे ऑन अ टू डे विजिट टू स्वीडन। पीएम मोदी वॉज अवार्डेड द रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉसेस इन रिकग्निशन ऑफ हिज एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडिया स्वीडन रिलेशनशिप एंड हिज विजनरी लीडरशिप। During the delegation level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. They discussed ways to deepen cooperation in trade and investment, technology and innovation, green transition, space, emerging technologies, defense and security, SMEs, research and people-to-people ties. The two leaders agreed to identify new opportunities in the spirit of the India-EU strategic partnership and recently concluded the India-EU FTA for the benefit of their people. The leaders also exchanged perspectives on regional and global issues. PM Modi has invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission. During an interaction with select Swedish CEOs in Gothenburg, Mr. Modi made a strong pitch to Swedish companies to enhance their presence in India in manufacturing, green hydrogen mission, clean energy and other sectors. In the fourth leg of his visit, the PM will reach Norway today for the third India-Nordic summit and bilateral engagements. This will be the first visit of Prime Minister Modi to Norway and will mark the first prime ministerial visit from India to Norway in 43 years. Mr. Modi will call on King Harald V and Queen Sonja and hold bilateral talks with Prime Minister Jonas Gahr Støre. The new Keralam government led by Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in Thiruvananthapuram today. Congress had announced Satheesan as the next Chief Minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front secured a more than two-thirds majority in the Keralam Assembly elections. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has reinaugurated and laid the foundation stone for development works worth over 700 crore rupees in Gandhinagar, Gujarat. Mr. Shah, who is on a two-day visit to the state, launched projects worth over 600 crore rupees of Gandhinagar Municipal Corporation yesterday. He also inaugurated a newly built milk processing plant of Madhur Dairy in the city, built at a cost of around 128 crore rupees. Earlier in the day, Mr. Shah inaugurated the Innovation and Incubation Center at the National Institute of Design in Gandhinagar. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda has arrived in Switzerland to participate in the 79th World Health Assembly beginning today till 23rd of this month. In a social media post, Mr. Nadda said that this year's theme, Reshaping Global Health, a Shared Responsibility, highlights the importance of collective action in addressing global health challenges. He said the assembly will bring together health ministers, dignitaries and public health experts from more than 165 countries, reaffirming the shared global commitment towards building stronger, more inclusive and resilient healthcare systems. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has allocated portfolios to the newly inducted and promoted ministers of his cabinet. The portfolio distribution follows the second cabinet expansion of the government, which took place on May 10. During the reshuffle, two cabinet ministers and four ministers of state were inducted into the government, while two ministers of state were elevated to ministers of state with independent charge. India has expressed deep concern at the attack targeting the Baraka nuclear facility in the UAE. In a statement, Ministry of External Affairs said such actions are unacceptable and represent a dangerous escalation. New Delhi has urgently called for restraint and a return to dialogue and diplomacy. In IPL cricket, hosts Delhi Capitals defeated

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 5:11 और 26 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम भोर सुहानी। भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। मित्रों, महात्मा गांधी जी का कथन है, केवल प्रसन्नता ही एकमात्र इत्र है, जिसे आप दूसरों पर छिड़कें तो उसकी कुछ बूंदें अवश्य ही आप पर भी पड़ती हैं। मित्रों, इस कथन को यदि हम अपने जीवन में ढाल लें तो हमें खुशी मिलेगी ही। खुशी को बांटे हुए लम्हे दूसरों के जीवन को भी महकाएंगे, जिनसे प्रेम और प्रसन्नता दोनों में बढ़ोतरी होगी।

हेमंत कुमार की आवाज से सजा ये गीत आबे हयात फिल्म से अभी आपने सुना। 1955 रिलीज फिल्म सरदार मलिक का संगीत हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी। साथियों, जब हम आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में, जब धरती किसान की मेहनत से अन्न से परिपूर्ण हो जाती है, तो किसान के साथ साथ धरती भी उस खुशी को महसूस करती है। इसी तरह से जब हम अपने पर्यावरण का ध्यान रखते हुए छोटे छोटे उपायों को करेंगे धरती को बचाने, उसे साफ रखने के वास्ते, तो भी धरती खुशी से झूम उठेगी और धरतीवासी भी उस खुशी को महसूस करके जरूर खुशी का अनुभव करेंगे।

लता मंगेशकर की आवाज से सजा ये गीत नौशाद का संगीत बद्ध किया। जानिसार अख्तर की लिखी रचना, फिल्म का नाम आईना जो रिलीज हुई थी वर्ष 1974 में। मित्रों, सुबह का सफर दिल में भी आशाओं की लालिमा लिए होता है, कई सपने कई अरमान कई चाहते।

0: किशोर कुमार की आवाज से सजा ये गीत मशाल फिल्म से अभी आपने सुना। 1984 रिलीज ये फिल्म। हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत था, जावेद अख्तर की लिखी रचना।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

इस समय श्रोता साथी सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। आज के इस कार्यक्रम में आप हैं मेरे साथ यानी अपने मित्र नीता अग्रवाल के साथ। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। साथियों, इस धरती पर हमारे पूजनीय होते हैं हमारे माँ पिता। उनकी सेवा आदर ही हमारा परम कर्तव्य है। उनका दिल न दुखे, उन्हें पूरा सम्मान मिले, ये हमारा ही फर्ज है। इस फर्ज को कभी न भूलें।